मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 12 अगस्त सन 2026। इस समय सुबह के 5:56 और 45 सेकंड हुए हैं। अब आज की हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। प्रातःकालीन सभा में आपके साथ हूँ मैं रश्मि राहुल। सभी श्रोताओं को रश्मि राहुल का प्यार भरा नमस्कार।

मीडियम वेव 216.1 यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को है। कुछ ही देर में हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र द्वारा अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया समाचारों के लिए प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। विधेयक के अंतर्गत संविधान की पहली अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। लोकसभा ने इसे कल ही पारित कर दिया है। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। वहीं लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और उसे पारित करने की प्रक्रिया होगी। कल विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही एक बार फिर बाधित रही। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
1: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के लिए तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायंफ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माय लाइफ माय स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जीवन की यात्रा का एक अत्यंत व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में व्यापक पौधारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। श्री चौहान की अपील पर वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी अपने अपने गांवों और शहरों में पौधारोपण अभियान चलाएंगे। इस अवसर पर देश भर में 50,000 से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन कल 18वें दिन भी जारी रहा। विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने शेयर बाजारों को वित्तीय नतीजों को जमा करने संबंधी अपने विनियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध ऋण साधन वाले नगर पालिकाओं की समय सीमा में छूट दी है। कल जारी किए गए नियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध नगर पालिकाओं को अब बिना ऑडिट वाले पहली छमाही के नतीजे 60 दिनों के भीतर जमा करने होंगे, जबकि पहले ये समय सीमा 45 दिन की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
2: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराए जाने की जरूरत है।
0: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करुण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:05 हुए हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना के इस कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं सामूहिक स्वर में देशगान।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत हमने की सामूहिक स्वर देशगान से। तो आइए कार्यक्रम में अब शुरुआत करते हैं साधना सरगम व साथियों के स्वरों के साथ इस भजन की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे साधना सरगम व साथियों की आवाज़ों में भगवान श्री गणेश के लिए ये भजन। तो आइए आप सुनते हैं पंडित भीमसेन जोशी के द्वारा गाया हुआ ये भजन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। तो आइए कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं कविता कृष्णमूर्ति और रॉबिन चटर्जी की आवाज़ों में कार्यक्रम का ये अगला भजन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। तो आइए कार्यक्रम में आप सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम भजन पीनाट मसानी के द्वारा।

0: श्रोताओं, इसी अंतिम भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं, तो नीचे प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। चिंतन के इस कार्यक्रम में आज सुनिए स्वच्छता पर डॉक्टर किशोर अरोरा का आलेख। वाचक स्वर है आभा गुप्ता का।
1: गर्द से मुक्त साफ रहने की अवस्था को साधारणतया स्वच्छता कह सकते हैं। इसमें इस अवस्था को प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होने वाले प्रक्रम भी शामिल किए जा सकते हैं। स्वच्छता को मानव के नैतिक गुणों में सम्मिलित कर ईश्वर को पाने की राह से भी परिभाषित कर सकते हैं। इसमें मानव स्वास्थ्य और सुंदरता के साथ साथ स्वस्थ समाज के निर्माण को भी शामिल कर सकते हैं। स्वच्छता शुद्धता से भिन्न होती है। भौतिक नैतिक रूप से प्रदूषकों से निजात पाना स्वच्छता हो सकती है, परंतु शुद्धता किसी व्यक्ति विशेष या पदार्थ की गुणवत्ता से संबंधित है। प्रायोगिक तौर पर स्वच्छता अथवा व्यवहारिक तौर पर स्वच्छता हाइजीन है और इसे व्याधि से मुक्ति से संबंधित किया जा सकता है। हमारे कार्यस्थल, घर, हमारे शहर आसपास स्वच्छता प्रदर्शित हो सकती है, पर सामान्यतः शुद्धता से संबंधित कोई प्रदर्शन यहाँ नहीं हो सकता। एक मान्यता के अनुसार स्वच्छता हमारे जीवन में सांस्कृतिक मानों को स्थापित करने में सहायक सिद्ध होती है, जिससे हमारे समाज का निर्माण होता है। सामान्यतः किसी वस्तु पदार्थ की, यहाँ तक कि हमारे स्वयं की स्वच्छता भौतिक रूप से झाड़ने, पोंछने और जल से धोने, स्नान आदि से संबंधित है। भौतिक रूप से स्वच्छता को पाने के लिए समस्त उपाय हमारे द्वारा दिन प्रतिदिन के कार्यों में अपनाए जाते हैं। हम नित्य प्रति स्नान करते हैं, कपड़े साफ करते हैं, घर साफ करते हैं, घर का सामान साफ करते हैं, भौतिक अवस्था की कई चीज़ों को धोते भी हैं। ये सब हम अपने और अपने आसपास भौतिक रूप से स्वच्छता को पाने हेतु करते हैं। कई कार्य नित्य प्रतिदिन, कई सप्ताह एवं कई कुछ समय अंतराल के पश्चात किए जाते हैं। ऐसा किया जाना आवश्यक भी है। इससे हमारा घर, हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ रहता है और हम भी स्वच्छ रहते हैं। यदि हम अपने घर से बाहर होते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर होते हैं, तो शायद अपना ये स्वच्छता अपनाने का कर्तव्य, अपनी आदत भूल जाते हैं। यहाँ तक कि अपने कार्यस्थल की स्वच्छता को भी बनाए रखना हम भूल जाते हैं। ये कदापि ठीक नहीं। हमें ये सदैव ध्यान रखना चाहिए कि घर के बाहर मेरी गली, मेरा मोहल्ला, मेरा शहर, मेरा कार्यस्थल, मेरा देश जब स्वच्छ रहेगा, तभी मेरी, मेरे परिवार की, मेरे समाज की स्वच्छता बनी रह पाएगी। इस सब के लिए मेरा भी उत्तरदायित्व है, मेरी भी जिम्मेदारी है। स्वच्छता स्वस्थ रहने का मूल मंत्र भी है। हम सभी स्वस्थ रहेंगे यदि हम स्वच्छ रहेंगे। स्वच्छ रहने के लिए हमारी वैचारिक स्वच्छता भी अति आवश्यक है। विचार स्वच्छ होंगे, दायित्व बोध होगा, तभी हम स्वयं को और अपने आसपास को स्वच्छ रख पाएंगे और इससे हमारा शहर, हमारा प्रदेश, हमारा देश सब स्वस्थ रहेगा। हम सब किसी न किसी कार्य को संपादित करते हैं, किसी न किसी व्यवसाय से, सेवा से अपने जीवन यापन के लिए जुड़े रहते हैं। अर्थात हम सब किसी न किसी कार्य में व्यस्त हैं और ये आवश्यक भी है। इससे

0: प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से हम अपने समाज, अपने राष्ट्र निर्माण में योगदान करते हैं, अर्थात हम व्यस्त रहते हैं। पर अपने व्यस्ततम समय में, अपनी व्यस्ततम दिनचर्या में हम कहीं ना कहीं अपने आसपास, घर के अतिरिक्त शहर, मोहल्ले, देश की स्वच्छता के बारे में अपने दायित्व को भूल जाते हैं। इस राह पर स्वयं कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। इसे भी अपने दैनिक दायित्वों में शुमार करना, अपनी आदतों में शामिल करना हमारा नैतिक कर्तव्य हो जाता है। अंत में सारांश के रूप में हम सब इन पंक्तियों को आत्मसात कर अपने जीवन में उतार लें। स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन, जिसके अंतर्गत आज आपने सुना स्वच्छता पर डॉक्टर किशोर अरोरा का आलेख। वाचक स्वर था आभा गुप्ता का। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:35 और 40 सेकंड हुए हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ।

जीने चले। श्याम और गौर वर्ण वाले इन दो ऋषि कुमारों का आकर्षक रूप देख नगर के बालक झुंड बनाकर इनके पीछे हो लिए। इस मनोहारी जोड़ी ने पीले रंग के वस्त्र धारण किए हैं, कमर में लिपटे दुपट्टों में तरकश बंधे हैं और हाथों में धनुष वाण सुशोभित हैं। सिंह के समान पुष्ट ग्रीवा, विशाल भुजाएं, चौड़ी छाती पर राजमुक्ता की माला, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र, जो भी ये रूप देखता है ठगा सा खड़ा रह जाता है।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:45 हुए हैं तो लीजिए प्रस्तुत है कृषि चर्चा। सामयिक चर्चा के अंतर्गत आज आप सुनिए, कम लागत में अधिक उत्पादन कैसे बढ़ाएं, और जानकारी दे रहे हैं SS चौधरी। तो आइए सुनते हैं कृषि चर्चा।
1: किसान भाइयों, हम सबकी यही कोशिश होती है कि हम जो भी फसल बोएं उससे हमको अधिक से अधिक लाभ मिले, और ये तभी संभव है जब हम सही समय पे बोनी करेंगे, सही समय पे खाद उर्वरक का प्रयोग करेंगे, और जो वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की जा रही नवीनतम तकनीक है उसका खेती में ठीक से प्रयोग करेंगे, तभी हम कम लागत में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। कुछ किसान भाई कहते हैं कि फसल की लागत लगातार बढ़ रही है इसलिए खेती में मुनाफा कम है। तो हम आपको बताएं कि बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनको यदि हम ध्यान में रखें तो हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति भी अच्छी रहेगी और कम लागत में अच्छा से अच्छा हम उत्पादन ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे जरूरी ये होता है कि समय पे तो हम बोनी करें, फिर उन्नत बीज कृषि अनुसंधान संस्थानों, पंजीकृत संस्थाओं, कृषि विश्वविद्यालयों, इनसे ही लेना चाहिए, वो खुला बीज ना लें। फसलों को रोग मुक्त और स्वस्थ रखने के लिए बीज उपचार बहुत ही जरूरी है। इसके लिए कवकनाशी, एग्रोसांजीएन, थायरम, कैप्टान, इसकी 2 ग्राम दवा प्रति किलो बीज में मिला करके यदि हम उपचारित कर लें तो करीब 50-70% रोग कम किए जा सकते हैं जो फसलों में लगते हैं। इसी तरह से कीट नियंत्रण के लिए समन्वित, यानी जिसको हम कहते हैं समन्वित कीट नियंत्रण प्रबंधन तकनीक, इसको अपनाएं। रासायनिक दवाएं हम कम डालें, इनकी जगह नीम पाद कीट भक्षी कीट हैं और जीवाणु, इनका ज्यादा से ज्यादा खेती में प्रयोग करें। इसी तरह से जो घनी बुवाई कहीं कहीं हो जाती है तो हमें निराई का खर्च करना पड़ता है, अच्छा ये रहता है कि हम सही बीज का प्रयोग करें, उचित पौध संख्या बनाए रखें और जो बोनी है वो कतारों में ही करें, तो इससे काफ़ी कुछ खर्च को कम किया जा सकता है। बीज की मात्रा ज़्यादा नहीं देना है, कतारों में बोने से खरपतवार के नियंत्रण में भी सुविधा रहती है, और जो बोनी करेंगे वो लाइन से यदि करेंगे तो सिंचाई आदि बहुत सी खेती की क्रियाएं हैं उनको करने में सुविधा रहती है। फिर फसल चक्र अपनाना भी बहुत जरूरी है। यदि फसलों को बदल बदल करके, हेर फेर करके हम बोते हैं तो फिर क्या है कि जो फसलों में कीट लगते हैं, कीट और रोग लगते हैं, उनके लगने की संभावना बहुत कम रहेगी। भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए हम फसलों को हेर फेर करके यानी फसल चक्र की मदद जरूर लें। पानी की बचत के लिए स्प्रिंकलर, ड्रिप, इन पद्धतियों को अपनाएं, इससे करीब 70% पानी की बचत हो जाती है। इसी तरह से समन्वित पोषक तत्वों द्वारा आवश्यक पोषण दें, अर्थात फसलों को आवश्यक पोषण तत्व रासायनिक उर्वरकों, कार्बनिक पदार्थ और जैविक पदार्थों को मिलाकर दें, इससे उपज और भूमि की उपजाऊ शक्ति टिकाऊ बनी रहेगी। बीज दवा खाद क्रय करते समय गुणवत्ता की सुनिश्चितता हेतु पक्की रसीद अवश्य प्राप्त करें। ये भी ध्यान रखें कि मिट्टी का परीक्षण कराकर ही एक संतुलित मात्रा में खाद उर्वरक का प्रयोग करें। श्रम और लागत कम करने के लिए सदैव उन्नत कृषि यंत्रों का ही प्रयोग करें तो काम जो है तकनीक से ही होगा। कृषि में प्राकृतिक जोखिम कम करने के लिए कारगर उपाय जैसे एकांतरिक कृषि पद्धति, कृषि वानिकी को अपनाएं। इस पद्धति को अपनाने से क्या होता है, पर्यावरण भी ठीक रहता है, पशुओं को चारा भी मिल जाता है। इसी तरह से कृषि विविधीकरण को अपनाएं तो इसके जो खेती के साथ साथ दूसरे सहायक व्यवसाय हैं, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, सब्जी उत्पादन, तो इन सबको यदि अपनाएं तो एक तो खेती में जोखिम कम रहता है और दूसरी फसल से कुछ ना कुछ अतिरिक्त लाभ भी मिल जाता है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात आती है अनाज का भंडारण। जो भी हमें उत्पाद मिले उसका सही समय पर यदि भंडारण करें, उचित तकनीक से करें, तो फिर अनाज बर्बाद नहीं होगा और अच्छे दाम भी मिलेंगे। तो ये सब कुछ बातें हैं, बहुत जरूरी हैं। ये बातें ध्यान में रखेंगे तो किसान भाई हमारी खेती में लागत कम आएगी और अच्छा लाभ भी मिलेगा।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा। सामयिक चर्चा के अंतर्गत आज आपने सुना, कम लागत में अधिक उत्पादन कैसे बढ़ाएं, और जानकारी दे रहे थे SS चौधरी। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं तो नीचे प्रस्तुत है सूचना परक कार्यक्रम दर्पण।

0: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हम सफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल, जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR, गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर, यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ, हमेशा, देश और दुनिया भर में, कहीं भी।
1: प्लास्टिक पॉलिथीन का छोड़ो साथ, प्रकृति से मिलाओ हाथ। प्लास्टिक पॉलिथीन थैलों का उपयोग भूमि की उर्वरा शक्ति के लिए है रोग। खरीदारी करते समय कपड़े से बना थैला हमेशा साथ रखें। यदि पर्यावरण बचाना है, पॉलिथीन दूर हटाना है। धरती बाकी यही पुकार, वृक्ष लगाओ बारंबार, मिलजुल कर पेड़ लगाओ, वातावरण को स्वच्छ बनाओ, धरती पर हरियाली लाओ। जल, थल, वायु, अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों से ही बनता है हमारा पर्यावरण। आइए इस पर्यावरण को हरा भरा बनाएं, वृक्ष लगाएं।
2: मैं तो चला जिधर चले रास्ता।
3: सड़क पर पैदल चलते समय रखें हम कुछ बातों का ध्यान।
4: हमेशा सड़क के किनारे बनी पटरियों पर ही चलें।
3: सड़क पार करने के पूर्व दाएं और बाएं अवश्य देख लें।
4: तेज गति से आ रहे वाहन के सामने से निकलने की भूल ना करें।
3: सड़क पार करते समय मोबाइल पर बात ना करें।
4: चौराहे पर हमेशा ज़ेब्रा क्रॉस से ही सड़क पार करें।
3: हम रहेंगे अगर सावधान, राह हो जाएगी आसान।
5: ए भाई, जरा देख

नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सूचना परक कार्यक्रम दर्पण। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को है। कुछ ही देर में संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र द्वारा अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया समाचारों के लिए प्रतीक्षा कीजिए।

0: लोकसभा ने कल ही इस विधेयक को पारित कर दिया था। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। वहीं लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और उसे पारित करने की प्रक्रिया होगी। कल विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों ही सदनों की कार्यवाही एक बार फिर बाधित रही। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा को तैयार है।
1: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के लिए तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को संबोधित भी करेंगे। ये आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जीवन की यात्रा का एक अत्यंत व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में व्यापक पौधारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। श्री चौहान की अपील पर वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी अपने अपने गांवों और शहरों में पौधारोपण अभियान चलाएंगे। इस अवसर पर देश भर में 50,000 से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। नागरिकों से अपील करते हुए श्री चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का पर्व है। उन्होंने कहा कि देश के हर त्योहार के पीछे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जीवन को बेहतर बनाने का संदेश छिपा होता है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन कल 18वें दिन भी जारी रहा। विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन को और तेज करने की घोषणा की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का विभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई भी बदल नहीं सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। कर्कटिका वावू के अवसर पर आज सुबह सुबह केरल में हजारों श्रद्धालुओं ने पितृतर्पण देना शुरू किया। हिंदू परंपरा में मलयालम महीने कर्कटम की अमावस्या को दिवंगत आत्माओं की शांति और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए अनुष्ठान करने का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। नाइजीरिया के लागोस में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग का कहना है कि पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:05 हुए हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में सबसे पहले जानकारी हमारी प्रथम सभा के कार्यक्रमों के बारे में। तब से कुछ

देर में आप सुनेंगे 7:20 पर कहानी सुबोध चौधरी के द्वारा। आप सुन सकेंगे कहानी सॉरी मम्मी। फिल्म संगीत का आप आनंद ले पाएंगे 7:30 पर। इसके साथ ही बता दें 8:30 पर होगा सुगम संगीत का कार्यक्रम, जिसको आप सुन पाएंगे महेश सिंह राजपूत के द्वारा गाए हुए कुछ भजन। सुबह 9:00 होगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे योगिनी तांबे के द्वारा ध्रुपद राग अहीर भैरव। जिले की चिट्ठी आप सुन सकेंगे सुबह 10:00, जो हमारे भोपाल केंद्र के द्वारा हम आप तक लेकर आएंगे। 10:05 पर होगा व्हाट्सएप फरमाइश का कार्यक्रम। फिल्म संगीत का आप आनंद ले पाएंगे 12:00। इसके अतिरिक्त 2:00 और 2:30 पर। 1:00 होगा महिला कार्यक्रम। 1:30 पर आप सुनेंगे लोक संगीत। 1:45 पर होगा सुगम संगीत। यह तीनों ही कार्यक्रम ग्वालियर केंद्र की प्रस्तुति होंगे और जिन्हें आप सुन सकेंगे हमारे मध्य प्रदेश केंद्र द्वारा। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारी प्रथम सभा के कार्यक्रमों के बारे में। तो आइए अब जानकारी लेते हैं द्वितीय सभा के कार्यक्रमों के बारे में। श्रोताओं, शाम 5:02 पर होगा युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। युववाणी कार्यक्रम आज ग्वालियर केंद्र की प्रस्तुति होगा, जिसे आप हमारे मध्य प्रदेश केंद्र द्वारा सुन सकेंगे। साथ ही बता दें, इस कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चाओं के विषय होंगे रेडियो और AI तकनीक के द्वारा मानवीय आवाज़ का महत्व। साथ ही इस कार्यक्रम में चर्चा होगी विश्व युवा दिवस पर, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप भेंटवार्ता भी सुन सकेंगे, जिसका विषय होगा राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी हर्षिता शुक्ला से सुमित गौतम की बातचीत। 5:33 पर होगा फिल्म संगीत। इसके अतिरिक्त आप फिल्म संगीत का आनंद ले पाएंगे 6:30 पर। 8:30 पर, 9:15 पर NCERT का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग आप सुन सकेंगे 6:00। 7:20 पर आप सुन सकेंगे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल, जिसके अंतर्गत चर्चा के विषय होंगे विक्रम साराभाई जयंती, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसके अतिरिक्त आप इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक भेंट वार्ता, जिसका विषय होगा बैंक से कृषकों को ऋण सुविधाएं, जिसके अंतर्गत आप सुन सकेंगे आशीष शुक्ला से सोहन सिंह की बातचीत। इसके अतिरिक्त एक फोन आउट कार्यक्रम कृषक प्रेरणा, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से फोन पर मौसम संबंधी जानकारी एवं कृषि सामायिक सलाह इस वार्ता के अंतर्गत फोन आउट कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुन पाएंगे। रात्रि 10:00 होगा संसद के मानसून सत्र 2026 के अंतर्गत संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाहियों का प्रसारण। 10:30 पर आप सुन सकेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारी द्वितीय सभा के कार्यक्रमों के बारे में। श्रोताओं, अभी आपने सुनी हमारी प्रथम सभा और द्वितीय सभा के कार्यक्रमों के संबंधित जानकारियां। इसी के साथ ही कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को है। कुछ ही देर में प्रादेशिक समाचार हमारे भोपाल केंद्र द्वारा अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया समाचारों के लिए प्रतीक्षा कीजिए।

0: आयोजन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज अहमदाबाद में उद्योगपतियों और निवेशकों से मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर करेंगे संवाद। मुख्यमंत्री ने कहा, कृषि भूमि अधिग्रहण पर अब किसानों को 4 गुना मुआवजा देगी सरकार। प्रदेश की खुशी दाभाड़े ने सीनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता और प्रदेश में भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ और जलभराव। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन की समीक्षा की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। ये आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जीवन की यात्रा का एक अत्यंत व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल यानी 13 अगस्त को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित विशेष अलंकरण समारोह में वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार प्रदान करेंगी। इनमें मध्य प्रदेश के भैरव सिंह चौहान को वर्ष 2025 के लिए लोक संगीत की निर्गुणी परंपरा में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज अहमदाबाद जाएंगे। वे गुजरात के प्रमुख उद्योग समूहों और निवेशकों के साथ प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 बैठकें कर निवेश प्रस्तावों, उद्योग स्थापना के लिए उपलब्ध सुविधाओं और सरकार के सहयोग पर चर्चा करेंगे। संवाद में विनिर्माण, नवकरणीय ऊर्जा, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सहित नए क्षेत्रों में निवेश पर भी चर्चा होगी। इस दौरान स्पेसटेक विजन फोरम का आयोजन भी किया जाएगा जिसमें 25 से अधिक स्पेसटेक कंपनियां, स्टार्टअप और निवेशक तथा उद्योग विशेषज्ञ शामिल होंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान का संचालन करेंगे। श्री चौहान के वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देशभर के हजारों सदस्य भी उनकी अपील पर अपने अपने गांवों और शहरों में वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे। देशभर में 50,000 से अधिक पौधे लगाने का सामूहिक संकल्प लिया गया है। नागरिकों से आग्रह करते हुए श्री चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने वाला त्यौहार है। उन्होंने लोगों से सक्रिय भागीदारी के माध्यम से और अपने परिवेश में हरियाली बढ़ाकर इस त्यौहार को प्रकृति का उत्सव बनाने का आह्वान किया। प्रदेश मंत्रिपरिषद ने कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में महिलाओं के राज्य स्तरीय पुरस्कारों की राशि बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप ने निर्णयों की जानकारी देते हुए प्रेसवार्ता में बताया कि सरकार ने रानी दुर्गावती राज्य स्तरीय पुरस्कार की राशि 2 लाख रुपये करने की मंजूरी दी है। वहीं रानी अवंती भाई राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार की राशि भी 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने एयर कनेक्टिविटी के बारे में भी संवाददाताओं को जानकारी दी।
1: पहले जहाँ हमारे पास केवल 4 एयरपोर्ट होते थे, जबलपुर, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर का, अब धीरे धीरे करके हम बड़े हैं। रीवा हमारा नया एयरपोर्ट बना है, हमारा की कनेक्टिविटी भी हमारी पहले से बढ़ी है। सतना का एयरपोर्ट बना है, दतिया का एयरपोर्ट बना है, उज्जैन और शिवपुरी में नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं और पिछले दिनों हमारी 8 नई हवाई मार्गों पर सेवाएं शुरू। इंदौर आबूधाबी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में शामिल है, भोपाल से सरजाह सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान प्रारंभ करने का भी लक्ष्य है और भोपाल से रीवा, भोपाल पटना, रीवा कोलकाता, जबलपुर कोलकाता, ये भी प्रारंभ की गई।
0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत राष्ट्रप्रेम और राष्ट्रीय एकता का संदेश देने वाले विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कल उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा में सिरमौर चौक से गंगा वाटिका तक निकाली गई विशाल तिरंगा यात्रा में भाग लिया। उन्होंने हेमू कलानी चौक पर स्वतंत्रता सेनानी हेमू कलानी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। श्री शुक्ल ने कहा कि तिरंगा देश की आन बान और शान का प्रतीक है और तिरंगा यात्राएं लोगों में राष्ट्रप्रेम की भावना को मजबूत करेंगी। इंदौर, खंडवा, नर्मदापुरम, जबलपुर, कटनी और डिंडौरी सहित विभिन्न जिलों में भी तिरंगा यात्रा, रैली और जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। नीमच में कल यानी 13 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में राज्य स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण करेंगे और प्रदेशवासियों के नाम संदेश देंगे। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर जबकि उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा मंदसौर और राजेंद्र शुक्ल रीवा में ध्वजारोहण करेंगे। जिला मुख्यालयों पर मंत्रीगण ध्वजारोहण करेंगे। इसके साथ ही 24 जिलों में कलेक्टरों को ध्वजारोहण की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि

0: शासकीय योजनाओं के लिए कृषि भूमि के अधिग्रहण पर किसानों को भूमि के 4 गुना मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कल भोपाल की करोंद कृषि उपज मंडी में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए कहा कि सरकार किसानों की जमीन और हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने किसानों से अपनी भूमि सुरक्षित रखने की भी अपील की। प्रदेश की फेंसिंग खिलाड़ी खुशी दाभाड़े ने नाइजीरिया में आयोजित सीनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 में रजत पदक जीता है। उन्होंने वुमेन्स ईपी इंडिविजुअल स्पर्धा में ये उपलब्धि हासिल की। खुशी मध्य प्रदेश राज्य फेंसिंग अकादमी भोपाल की खिलाड़ी हैं। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने खुशी को बधाई देते हुए कहा कि उनकी उपलब्धि प्रदेश की खेल प्रतिभा और उत्कृष्ट प्रशिक्षण का परिणाम है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से कई जिलों में बाढ़ और जलभराव की स्थिति बनी हुई है। नदी नाले उफान पर हैं और कई गांवों का संपर्क प्रभावित हुआ है। राजगढ़, आगरमालवा, शाजापुर, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम और खरगोन सहित कई जिलों में तेज बारिश दर्ज की गई है। प्रभावित जिलों में कलेक्टरों ने एहतियात के तौर पर स्कूलों में अवकाश के आदेश जारी किए हैं। नर्मदापुरम में नर्मदा और तवा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, जबकि खरगोन में अपर वेदा बांध के गेट खोले गए हैं और कई गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल में भी भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव हुआ है। इस बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल भोपाल स्थित राज्य आपदा कमान एवं नियंत्रण केंद्र पहुंचकर प्रदेश में अतिवृष्टि, जलभराव और बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिनों में SDRF, पुलिस, होमगार्ड और स्थानीय लोगों के प्रयासों से 527 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है और खंडवा जिले में पुलिसकर्मियों ने अब तेज बाढ़ के बीच में बहाव में फंसे एक दंपत्ति को सुरक्षित बाहर निकाला है।
1: बारिश का समय है, ऐसे समय में जहां बारिश ज्यादा हो रही है, जहां हमारे नागरिक या ग्रामवासी या मवेशियों सहित किसान कहीं अपने मकान में जहां जहां अभी फंसे थे, रेस्क्यू टीम द्वारा 527 लोगों की जान बचाई गई। खंडवा के अंदर एक साथ 7 लोगों को, उसमें से कावड़ियों को बचा करके उनको निकाला गया। रात में भी रेस्क्यू किया गया, दिन में भी रेस्क्यू किया गया। आवश्यकता पड़े तो एयर एम्बुलेंस भी लगाएंगे, लेकिन हर हालत ऐसी आपदा की घड़ी में सरकार जनता के साथ है।
0: अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ जिले में झाबुआ की आकांक्षा अभियान के तहत 62 अधिकारियों द्वारा 146 शैक्षणिक संस्थानों का निरीक्षण किया गया, जिसमें विद्यार्थियों की औसत उपस्थिति 62.5% मिलने पर कलेक्टर ने उपस्थिति बढ़ाने के निर्देश दिए। डिंडौरी जिले के विकासखंड शहपुरा के ग्राम सरईमाल में पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के अंतर्गत बांझ निवारण शिविर का आयोजन किया गया। नर्मदापुरम जिले में आयोजित जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने 134 आवेदकों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को समय सीमा में समाधान करने के निर्देश दिए। कटनी जिले में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद पंचायत में आयोजित कुकिंग कॉम्पिटिशन में 25 स्वसहायता समूहों ने भाग लिया। पन्ना जिले के सरकुहा गांव में पट्टा खदान में काम के दौरान मजदूरों को 16.96 कैरेट का अत्यंत दुर्लभ जेम क्वालिटी का हीरा मिला है, जिसकी अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। और इंदौर जिले के क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान राला मंडल में आयोजित 7 दिवसीय कार्यशाला के समापन पर 150 आपदा मित्रों को आपातकालीन स्थितियों में राहत एवं बचाव कार्य का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज अहमदाबाद में उद्योगपतियों और निवेशकों से मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर करेंगे संवाद। मुख्यमंत्री ने कहा, कृषि भूमि अधिग्रहण पर अब किसानों को 4 गुना मुआवजा देगी सरकार। और प्रदेश की खुशी दाभाड़े ने सीनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में जीता रजत पदक। और प्रदेश में भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ और जलभराव। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन की समीक्षा की। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:20 हुए हैं। तो डीजे प्रस्तुत है सुबोध चतुर्वेदी के द्वारा कहानी सॉरी मम्मी। तो आइए सुनते हैं ये कहानी।
1: आज राधिका का रिजल्ट निकलने वाला था। कक्षा 4 थी तो क्या, रिजल्ट तो आखिर रिजल्ट होता है। पूरे वर्ष का आकलन, परिश्रम दिखाई देता है। घर पर मम्मी पापा अपनी दोनों बेटियों का शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। छोटी बेटी नमिता कक्षा 2 में थी। वैन से उतरते ही दोनों ने दौड़ते हुए घर में प्रवेश किया। दोनों के हाथ में उनके रिपोर्ट कार्ड लहरा रहे थे, साथ ही उनका चेहरा खुशी से दमक रहा था। पापा जब तक हाथ बढ़ाते, मम्मी ने झपट कर दोनों के रिपोर्ट कार्ड अपने हाथ में थाम लिए। सबसे पहले बड़ी आतुरता से उन्होंने राधिका का रिपोर्ट कार्ड खोला। सेकंड रैंड देखकर उनके चेहरे की खुशी जैसे कपूर की तरह उड़ गई। चेहरा तमतमा उठा। डपटते हुए राधिका से बोली, क्यों, तुम्हारी सेकंड रैंक कैसे आई? फर्स्ट रैंक उसी रुचि की आई होगी। राधिका के चेहरे से खुशी काफूर हो गई, रुआंसी हो उठी, उसके पैर कपकपाने लगे। वह दौड़कर अपने पापा के पीछे छिप गई और वहां से धीमे स्वर में बोली, हाँ मम्मी, मैथ्स में मेरे रुचि से 5 नंबर कम आए थे, इसलिए उसकी फर्स्ट रैंक आ गई। सॉरी मम्मी। क्रोध के आवेश में रेखा का चेहरा लाल हो उठा। सामने राकेश खड़ा था, अन्यथा उसने क्रोध में आकर 2-4 चांटे अब तक राधिका में जड़ ही दिए होते। फिर गुस्से में उसे नमिता के रिजल्ट को देखने का होश भी न रहा। वह हताश होकर एक कुर्सी पर बैठ गई। उसकी आंखें छलछल आईं। उसे लगा जैसे आज राधिका ने सेकंड रैंक लाकर सभी के सामने उसे जलील कर दिया हो। अपनी बेटी से उसे कितनी उम्मीद थी, अब तक उसकी फर्स्ट रैंक आ रही थी। अपनी सहेलियों के बीच बड़े गर्व से चर्चा किया करती थी, उसकी बेटी हमेशा कक्षा में प्रथम आती है, अब उनको वह क्या मुंह दिखलाएगी? मिसेज मेहता और मिसेज गुप्ता पीठ पूछे खूब उसका मजाक बनाएंगी। वे तो हमेशा उसके बच्चों की प्रगति से कुड़ती ही रहती हैं। मम्मी का यह व्यवहार देखकर नमिता भी सहम कर पापा के पास जाकर खड़ी हो गई। दोनों के ही चेहरे उतर चुके थे। राधिका को समझ नहीं आ रहा था कि स्कूल में उसके रिजल्ट को लेकर टीचर ने उसकी कितनी तारीफ की थी, परंतु यहाँ मम्मी, उन्होंने तो एक बार भी उसे सीने से नहीं लगाया। वह कितना खुश खुश होकर स्कूल से वापस आई थी। सोच रही थी आज तो मम्मी उसे खूब प्यार करेंगी, शाबाशी देंगी, पर यह सब क्या हुआ? अब तक राकेश चुपचाप खड़े पत्नी का तमाशा देख रहे थे, चुप नहीं रह सके। तेज आवाज में बोल उठे, दिन रात बच्चियों पर तुमने कितना पढ़ाई का प्रेशर बनाकर रखा है, उनकी मासूमियत क्यों छीनने पर उतारी हो? यह उनके खेलने खाने के दिन हैं, अभी जिंदगी निकल नहीं गई, शुरुआत है। हर बच्चे का अपना एक अलग मानसिक स्तर होता है, किसी से किसी की तुलना करना बिल्कुल गलत है। एक ही माँ बाप के 2 बच्चे जब एक से नहीं हो सकते, तो क्लास में पढ़ने वाले सभी बच्चे अलग अलग स्तर के निश्चित होंगे। तुम्हें क्यों लगता है तुम्हारी बच्चियों से अधिक होशियार इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता? किस मगालते में जी रही हो? क्यों बच्चों पर अत्याचार करने पर उतारू हो? सेकंड रैंक लाकर क्या उसने इतना बड़ा अपराध किया है कि तुम प्यार से सिर पर हाथ भी नहीं फेर सकी, उसकी तारीफ नहीं कर सकती? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपनी सहेलियों के बीच अपने स्टेटस का इतना ख्याल है, परंतु तुम्हारे इस व्यवहार से इन बच्चियों के मासूम हृदय पर क्या असर पड़ेगा, कभी सोचा है तुमने? नमिता का तो तुमने रिपोर्ट कार्ड खोलकर भी नहीं देखा। क्या वे दोनों यही सोचकर दौड़ती हुई घर आई थी कि तुम्हारा यह व्यवहार देखने को मिलेगा? उसने दोनों बच्चियों को अपने से लिपटा लिया, दोनों का रिपोर्ट कार्ड देखा और शाबाशी देते हुए बोला, अरे वाह, इतने अच्छे नंबर आए हैं, मुझे तो कभी भी नहीं मिले। मेरी बच्चियाँ सचमुच बहुत होशियार हैं। चलो चलो, फटाफट जूते उतारो, यूनिफॉर्म बदलो, अच्छी सी ड्रेस पहन कर आओ, हम लोग आज सेलिब्रेट करने चलते हैं। पहले पिज्जा खाएंगे, फिर आइसक्रीम, और पार्क में मौज मस्ती करके शाम को लौट कर आएंगे। दोनों बच्चियों के चेहरे चमक उठे। अविश्वास से बोली, क्या पापा सचमुच? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो फटाफट तैयार होकर आओ, आज तो हमारा जश्न मनाने का दिन है, तीनों जश्न मनाएंगे। राधिका ने डरते डरते धीमे स्वर में पूछा, और मम्मी? राकेश हंस पड़े, बोले, उनकी चिंता मत करो, उन्हें अपना बचपन याद करने दो, इस समय हम उन्हें अकेला छोड़ देंगे, वही ठीक है, चलो चलो फटाफट तैयार होकर आओ। दोनों लड़कियां दौड़ती हुई अपने कमरे में चली गईं, फटाफट जूते उतारे, नई ड्रेस पहनी और तैयार होकर बोली, चलो पापा हम लोग तैयार हैं। अरे वाह, मेरी दोनों परियां कितनी सुंदर लग रही हैं। गाड़ी की चाबी उठाते हुए राकेश ने उनके सिर पर हल्की सी चपत लगाई और एक निगाह रेखा की ओर डालते हुए बाहर निकल गए। दोनों बच्चियों ने पापा के साथ खूब मौज मस्ती की, परंतु राकेश

ने महसूस किया कि अचानक राधिका कभी कभी अनमनी हो उठती है। शायद उसके कोमल मन पर गहरा आघात लगा था। राकेश उसके सिर पर हाथ फेर कर आँखों से इशारा कर कर बीच बीच में पूछ लेता था, क्या हुआ? वह एक हल्की सी मुस्कुराहट उत्तर में देती और सिर हिलाकर कह देती, कुछ नहीं। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि मम्मी उनके साथ नहीं थी। उनके बिना उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। पापा साथ में थे, फिर भी एक अधूरापन था जो उनकी खुशियों को ग्रहण लगा रहा था। सबसे ज्यादा खुश नमिता थी। उसकी उम्र अभी इस लायक नहीं हुई थी कि वह सही गलत का अधिक फर्क कर सके। मम्मी साथ नहीं आई थी तो उसका बाल मन यही सोचकर खुश था कि उन्होंने उसका रिपोर्ट कार्ड नहीं देखा, इसी की सजा उन्हें मिली है, इसलिए उन्हें ना पिज्जा खाने को मिला ना आइसक्रीम। यह सोचकर वह बैठी थी घर जाकर मम्मी को खूब चिढ़ाएगी। घर पहुँचते पहुँचते काफ़ी देर हो गई। दोनों काफ़ी थक भी गई थी। उनकी मम्मी कुर्सी पर बैठकर उनका इंतज़ार कर रही थी। उनका चेहरा अभी भी उदास था। नमिता तो गाड़ी में बैठते ही सो गई थी। उसे पापा ने उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया। राधिका भी बिना कुछ बोले पापा के पीछे पीछे अपने कमरे में आ गई। उसने अपने कपड़े बदले, पापा को गुड नाइट बोला और अपने बिस्तर पर चुपचाप लेट गई। राकेश उसकी उदासी को भांप रहे थे। उन्होंने अभी उसके सिर पर हाथ रखकर धीमे से गुड नाइट कहा और बोले, बेटी अब तुम भी सो जाओ। लाइट बंद करके वे बाहर चले गए। पापा के बाहर जाते ही अब तक का रुका बांध जैसे अचानक फूट पड़ा। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसकी हिचकियाँ बंद गईं। वह सोचने लगी, आज मम्मी ने उसके साथ ऐसा व्यवहार भला क्यों किया। स्कूल में वे होती तो देखती, उसे स्टेज पर बुलाकर रिपोर्ट कार्ड दिया गया था। प्रिंसिपल और उसकी कक्षा शिक्षिका ने उसकी बहुत तारीफ की थी, साथ में उसे चॉकलेट भी दी थी। परंतु इधर मम्मी इतनी नाराज हुई कि उन्होंने प्यार से एक बार भी उसके सिर पर हाथ नहीं फेरा। अभी तक तो वह हमेशा फर्स्ट रैंक आती थी, अब यदि सेकंड आ गई तो कौन सा आसमान टूट पड़ा। अभी कितनी पढ़ाई करनी है, अगली क्लास में कोशिश करेगी फिर से उसे फर्स्ट रैंक मिल जाए। वह भी क्या करे, मैथ्स के कुछ सवाल उसे समझ नहीं आते, पापा को फुर्सत नहीं है, मम्मी समझा नहीं पाती, ट्यूशन लगाने के नाम पर नाराज होने लगती हैं, कहती हैं इतनी छोटी कक्षा में ट्यूशन लगाकर हमें बच्चों की आदत खराब नहीं करनी है। अब इसमें गलती मेरी कहाँ है। मम्मी मुझसे नाराज मत हो, मैं वादा कर रही हूँ और मन लगाकर पढ़ूंगी, फर्स्ट रैंक लाने की पूरी कोशिश करूंगी, प्लीज मम्मी मान जाओ, नाराज ना हो, सॉरी मम्मी कहते कहते राधिका रोते रोते न जाने कब सो गई। इतनी देर से अकेली बैठी रेखा आज की घटना पर चिंतन कर रही थी। राकेश और बच्चों के लौटने के बाद उनकी जो प्रतिक्रिया थी उससे वह और अधिक आहत हो उठी थी। वह सोच रही थी कि बच्चियां बाहर खा पी कर खेल कूद कर अपनी मम्मी के दुर्व्यवहार को भूल चुकी होंगी, परंतु ऐसा कुछ भी न हुआ था। नमिता रास्ते में सो चुकी थी, परंतु राधिका भी उसे अनदेखा करके अपने कमरे में चली गई थी। अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि सोने से पहले वह अपने मम्मी के गले में बाहें डालकर और चुंबन दिए बिना गुड नाइट कहे कभी जाकर सोई हो। राकेश भी अनबोला कर अपने बेडरूम में जाकर बिस्तर पर लेट चुके थे। किसी ने जानने की कोशिश नहीं की रेखा ने आज कुछ खाया है या नहीं। सभी की निगाह में बहुत बड़ी अपराधिनी थी, उसका अपराध बिल्कुल अक्षम्य था। रेखा को अपनी गलती अब समझ में आ चुकी थी। सोने से पहले उसने बच्चों के कमरे में जाकर देखा, नमिता बेफिक्र होकर सो रही है, उसका हाथ बेड से नीचे लटक रहा है। उसने उसका हाथ ऊपर रखा, चादर ओढ़ाया, सिर पर हाथ फेरकर उसे आश्वस्त किया। फिर वह राधिका के पास आई, कुछ देर उसके पास बैठकर एकटक देखती रही। राधिका के चेहरे पर आंसुओं की लकीरें बनी हुई थी। सोते हुए भी वह बीच बीच में हिचकियाँ ले रही थी, अस्फुट स्वर में बोल रही थी, सॉरी मम्मा सॉरी, हर बार अपनी क्लास में फर्स्ट रैंक लाऊंगी, आप मुझसे नाराज नहीं रहना, सॉरी मम्मा सॉरी। अब तक का रुका हुआ बांध रेखा की आंखों से बह निकला, अविरल अश्रु प्रवाह होने लगा। उसने रोते रोते राधिका को उठाकर सीने से लगा लिया, बुदबुदाने लगी, मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैं अपनी सभी महत्वाकांक्षाओं का बोझ तुम्हारे नन्हे कंधों पर डाल देना चाहती थी। मैंने अपनी जिंदगी में जो नहीं पाया वही सब मैं तुम्हारे माध्यम से पा लेना चाहती थी। मैं यह क्यों भूल गई कि अभी तुम बहुत छोटी हो, अभी तो बहुत बड़ी जिंदगी सामने पड़ी है, तुम्हें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मेरा वायदा है आइंदा किसी भी तरह की महत्वाकांक्षाओं का बोझ तुम्हारे कंधों पर नहीं होगा। तुम अपनी मासूमियत को खोए बिना अपनी क्षमता के साथ जो कुछ पा सकती हो उसे ही पाने का प्रयास करना, क्लास में प्रथम आना अथवा द्वितीय। तुम तो बस एक अच्छा इंसान बनकर हम सबका नाम रोशन करना,
आज से मैं तुम पर

0: कोई भी दबाव नहीं डालूंगी। सहजता से जो मिले उसे पाना ही तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। मुझे माफ कर दो बेटी, माफ कर दो। आज के व्यवहार को लेकर सचमुच मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम अपनी क्षमता के अनुसार जीवन में आगे बढ़ना, प्रगति करना। ईश्वर हमेशा तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेंगे।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुबोध चौधरी के द्वारा कहानी सॉरी मम्मी। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं, तो लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं ये पहला गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म बरखा से। इस गीत में आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और साथियों की। गीत को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने। तो आनंद लीजिए फिल्म बरखा के इस गीत का।

0: भाई एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
1: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
0: मतलब
1: ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV एड्स और अन्य संक्रमक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
0: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हो।
2: आप भी सतर्कता अपनाएं

0: और HIV के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
1: अल्पविराम के बाद स्वागत करते हैं श्रोताओं आपका फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में। तो आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में फिल्म आकाशदीप का ये गीत। गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो आनंद लीजिए फिल्म आकाशदीप के इस गीत का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आप सुन पा रहे हैं बहुत ही प्यारे से नगमे। तो आइए कार्यक्रम में अब जोड़ते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में फिल्म एक दर्द जमाने का जाने। ये दर्द जमाना क्या जाने, इस फिल्म से लिया हुआ ये गीत। गीत को लिखा है भारत व्यास ने, संगीत दिया है कल्याण जी बिराज शाह ने। तो आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में इस गीत को।

जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: भाई,
3: सड़क पर चलते समय अपने वाहन की गति नियंत्रित रखें, किसी भी प्रकार का स्टंट

0: करने की कतई कोशिश न करें। हो सकता है आप कुशल चालक हों, लेकिन दुर्घटना सिर्फ हमारी गलती से नहीं होती, दूसरों की लापरवाही भी हादसों का कारण होती है। दाहिने या बाएं मुड़ते समय इंडिकेटर का प्रयोग अवश्य करें। खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें।
1: ए भाई दर्द।

अल्पविराम के बाद एक बार फिर से हाजिर है आपका अपना कार्यक्रम फिल्म संगीत लेकर। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में कार्यक्रम का ये अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म आखिरी खत। इस फिल्म से गीत को लिखा है कैफ़े आज़मी ने और संगीत दिया है कल्याण जी ने।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आर प्रोग्राम के बाद एक बार फिर से स्वागत है फिल्म संगीत में। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं फिल्म जिगरी दोस्त से लिया हुआ ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और फिल्म संगीत किस कार्यक्रम में आई सुनते हैं। कार्यक्रम का ये अंतिम गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में, इस फिल्म को, फिल्म आक्रमण से हमने लिया है इस गीत को। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो आनंद लीजिए फिल्म आक्रमण के इस गीत का।

0: मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा।

0: मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में करण सिंह, शेरजिन शांतिमोल और तनिष्का खत्री ने नाइजीरिया में स्वर्ण पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: केरल नाम परिवर्तन विधेयक का उद्देश्य संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करना है। इस संबंध में केरल विधानसभा ने जून 2024 में एक प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि मलयालम में राज्य को केरलम के नाम से जाना जाता है, जबकि संविधान की पहली अनुसूची में इसका नाम केरल दर्ज है। इस बीच खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन करना है। इस विधेयक का उद्देश्य देश के बढ़ते महत्वपूर्ण खनिजों की मांग को पूरा करने के लिए भारत के खनन क्षेत्र को अधिक प्रभावी, निवेश के अनुकूल और सक्षम बनाना है। दिलनशी आरज़ू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। यह आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जीवन यात्रा का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान का संचालन करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी उनकी अपील पर अपने अपने गांवों और शहरों में वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे। नागरिकों से आग्रह करते हुए श्री चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने वाला त्योहार है। श्री चौहान ने कहा कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता केवल शब्दों से ही व्यक्त नहीं की जानी चाहिए, बल्कि वृक्षारोपण के माध्यम से भी प्रदर्शित की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पौधा लगाना केवल पर्यावरण संरक्षण का कार्य ही नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित और सुंदर भविष्य की नींव रखने का भी एक तरीका है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। ये रैली स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा है। इसका उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और मजबूत करना है। रैली में बड़ी संख्या में युवा, स्वयंसेवी संगठन और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। अभियान के अंतर्गत देश भर के लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त करने का आह्वान किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज सुबह मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मांडविया ने दिल्ली विश्वविद्यालय के माय भारत वॉलंटियर्स के साथ इस रैली का नेतृत्व किया। इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि इस रैली से पूरे देश में फिटनेस का संदेश जाएगा।
3: दिल्ली में माय भारत के 1000 से अधिक वॉलंटियर्स ने हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा के द्वारा देश को फिटनेस का संदेश दिया है। कोई भी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनना है तो देश के नागरिक स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक है। साइकिलिंग ये फिटनेस का संदेश है, पोल्यूशन का सॉल्यूशन है।

0: तो हम सब लोग हमारी तिरंगा की आन बान और शान के लिए देश के युवा फिट रहे, इस हेतु को सिद्ध करने के लिए साइकिलिंग करते रहे।
1: जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलवर्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रैली का नेतृत्व किया, जिसमें हजारों विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा कर्मी और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए एक विधेयक लाने की योजना बना रही है। बांकुरा में कल पश्चिमांचल उन्नयन परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द ही एक समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में युवाओं, विशेषकर जेन जी से जुड़ने और कविता के जरिए उनके विचारों को समझने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रंग दे बसंती कैंपेन कल शुरू हुआ और ये 14 अगस्त तक राज्य के अलग अलग शहरों में चलेगा।
2: कल रात प्रयागराज की हिंदुस्तानी अकादमी में अपनी कविताओं के माध्यम से माफिया संस्कृति पर निशाना साधा। कार्यक्रम समन्वयक विश्वदीप शुक्ला ने बताया कि वीर रस और ओज रस की कविताओं के माध्यम से युवा पीढ़ी की भावनाओं को समझने वाले 8 कवियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रख्यात गीतकार डॉक्टर विनम्र सेन सिंह और अंतर्राष्ट्रीय कथाकार आचार्य शांतनु जी महाराज ने की। अगला कार्यक्रम आज लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। कल मुजफ्फरनगर में कॉमिक्स वितरण और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जो युवाओं को जोड़ने के लिए कई रचनात्मक माध्यमों को एक साथ लाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन में प्रवेश कर गया है। विद्यार्थी कथित परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्र संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, सीबीआई जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग दोहरा रहे हैं। छात्रों ने कल शाम मौन जुलूस निकाला और कहा कि इसका उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना है। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची और आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने दोहराया कि उनकी प्रमुख मांगें पूरी होने तक आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज वैज्ञानिक और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर विक्रम साराभाई को उनकी जयंती पर स्मरण किया। श्री बिरला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर साराभाई का मानना था कि विज्ञान को केवल प्रयोगशालाओं तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। कर्कटिका वावू के अवसर पर आज सुबह केरल में हजारों श्रद्धालुओं ने पितृतर्पण देना शुरू किया। हिंदू परंपरा में मलयालम महीने कर्कटम की अमावस्या को दिवंगत आत्माओं की शांति और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए अनुष्ठान करने का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। अधिकांश मंदिरों में यह अनुष्ठान सुबह 3:30 बजे से 5 बजे के बीच शुरू हुए। समाचार सेवा प्रभाग की विशेष श्रृंखला पर्सन बिहाइंड द स्टोरी के अंतर्गत आगामी कड़ी में आज हम दुनिया के पहले तीनों सेनाओं के महिला नेतृत्व वाले समुद्र यात्रा अभियान का हिस्सा रहीं विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता इस कार्यक्रम को न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल सुबह 9:10 से किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, सिक्किम, हिमालयी पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, कोंकण, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मानसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है, जिसके चलते कई स्थानों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मंडी जिला प्रशासन ने भारी बारिश के कारण भूस्खलन और पत्थर गिरने के खतरे के दृष्टिगत मंडी कुल्लू राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21 और मंडी

गिंदर नगर राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 पर यातायात बीती रात से ही पूर्णतः बंद रखा है। 45 विद्युत ट्रांसफार्मर जबकि 82 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 6 जिलों कांगड़ा

0: चक्रवाती परिसंचरण के कारण आज उसी क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इस सिस्टम से उड़ीसा में बारिश की गतिविधि बढ़ने की उम्मीद है। आईएमडी ने अनुगुल और केंदुझर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मछुआरों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर सबसे ऊपर छाई खबरें हैं। झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी नोकझोंक। और हाल ही में फुकेट से नई दिल्ली आ रहे एयर इंडिया विमान में अस्थिरता की जाँच में सामने आई कुछ नई बातें। लोकसत्य की पहली सुर्खी है पक्ष विपक्ष का आमने सामने प्रदर्शन, संसद में हंगामा। नवभारत टाइम्स ने इसी खबर को सचित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है ऐसे भिड़े सांसद हो गई धक्का मुक्की। जनसत्ता में इस खबर का शीर्षक है संसद परिसर में सत्ता पक्ष विपक्ष के सांसद आमने सामने, भारी हंगामा। पिछले सप्ताह फुकेट से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान के अचानक 300 फुट नीचे आने के मामले में हुई जांच को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए जनसत्ता ने शीर्षक दिया है मारिहुआना के प्रभाव में था पायलट। जबकि अमर उजाला की सुर्खी है एयर इंडिया पायलट गांजा के नशे में था, सहयोगी उड़ा रहा था विमान। पत्र ने पायलट एसोसिएशन द्वारा रखे पक्ष को भी शीर्ष समाचार में जगह देते हुए लिखा है टर्बुलेंस मामले में पायलट एसोसिएशन ने कहा हाइड्रोलिक में खराबी से हुई घटना। दैनिक भास्कर ने मतदाताओं को लुभाने के लिए कुछ राज्यों में बांटे जा रहे उपहारों के मुद्दे को अपनी संपादकीय लेख का विषय बनाया है और शीर्षक दिया है कम से कम गरीब राज्य तो रेवड़ी संस्कृति से दूर रहें।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Union Home Minister Amit Shah to move the Kerala Alteration of Name Bill 2026 for consideration and passing in Rajya Sabha today to alter the name of Kerala. In Lok Sabha, Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill to be tabled for consideration and passing. Prime Minister Narendra Modi to release autobiography of former President Ramnath Kovind in New Delhi today. Vice President C.P. Radhakrishnan to flag off Har Ghar Tiranga bike rally at Bharat Mandapam in a short while. Alert issued for heavy rainfall over East Rajasthan, Madhya Maharashtra, Odisha, Jharkhand and Gangetic West Bengal today. And in Commonwealth Fencing Championship, Karan Singh, Sherjin Shantimol and Tanishka Khatri clinch gold medals in Lagos, Nigeria. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah is scheduled to move the Kerala Alteration of Name Bill 2026 for consideration and passing in Rajya Sabha today to alter the name of Kerala. In Lok Sabha, Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 is to be tabled for consideration and passing. More from our correspondent.
4: The Kerala Alteration of Name Bill seeks to change the name of State of Kerala to Keralam in the first schedule of the Constitution. A resolution in this regard was passed by the Kerala Legislative Assembly.

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं सुगम संगीत, जिसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं महेश सिंह राजपूत के द्वारा गाए हुए भजन। तो आइए कार्यक्रम में सुनते हैं इनके द्वारा गाया हुआ ये अगला भजन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं सुगम संगीत, जिसके अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं महेश सिंह राजपूत के द्वारा गाए हुए कुछ भजन। आइए इनके द्वारा सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला भजन। साथ ही बताना चाहेंगे कि तबले पर संगत की है महेश बिशोपिया ने, सारंगी पर है उस्ताद अब्दुल मजीद खान।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुन पा रहे हैं महेश सिंह राजपूत के द्वारा गाए हुए भजन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं सुगम संगीत, जिसके अंतर्गत आज आप सुन पा रहे हैं महेश सिंह राजपूत के द्वारा गाए हुए कुछ भजन। तो आइए इनके द्वारा सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम भजन। साथ ही बता दें, तबले पर इन्हें संगत दी है महेश बिशोपिया ने, सारंगी पर है उस्ताद अब्दुल मजीद खान।

नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज अहमदाबाद जाएंगे। वे गुजरात के प्रमुख उद्योग समूहों के निवेशकों के साथ प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर संवाद करेंगे। इस दौरान स्पेसटेक विजन फोरम का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें 25 से अधिक स्पेसटेक कंपनियां, स्टार्टअप, निवेशक और उद्योग विशेषज्ञ शामिल होंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान का संचालन करेंगे। श्री चौहान की अपील पर देश भर के हजारों सदस्य भी अपने अपने गांवों और शहरों में वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे। प्रदेश मंत्रिपरिषद की कल हुई बैठक में सरकार ने रानी दुर्गावती राज्य स्तरीय पुरस्कार की राशि 2 लाख रुपये करने को मंजूरी दी है। वहीं रानी अवंतीबाई राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार की राशि भी 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है। वहीं मौसम की अगर बात करें तो प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से कई जिलों में बाढ़ और जल भराव की स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल भोपाल स्थित राज्य आपदा कमान एवं नियंत्रण केंद्र पहुंचकर प्रदेश में अतिवृष्टि, जल भराव और बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिनों में 527 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। और खेलों से भी एक अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश राज्य फेंसिंग अकादमी भोपाल की खिलाड़ी खुशी दाभाड़े ने नाइजीरिया में आयोजित सीनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बजे हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है सूचना और समाचारों पर आधारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।
1: गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

गुड मॉर्निंग ग्वालियर सुनने वाले सभी श्रोताओं को रश्मि राहुल का प्यार भरा नमस्कार। तो श्रोताओं कैसे हैं आप? बिल्कुल, हम तो चाहते ही हैं ऐसे ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने बदलते हुए मौसम का तो आनंद ले ही रहे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी गर्मी और थोड़ी सी बारिश के बाद जो आनंद आ रहा है ना मौसम के परिवर्तन का, वो तो आप उठा ही रहे होंगे। आजकल धूप कम होती है, बारिश ज़्यादा होती है, कभी बारिश धीमी होती है और कभी बंद हो जाती है, तो थोड़ी सी ह्यूमिडिटी हो जाती है। तो ऐसे में बदलते हुए मौसम का जो आनंद आप ले पा रहे हैं वो तो बहुत ही सुकून देने वाला है। थोड़ी गर्मी की वजह से हाँ राहत लेने की ज़रूरत पड़ती है, पर जैसे ही बारिश हो जाती है तो दिल फिर से खुश हो जाता है। हम तो चाहते ही हैं ऐसे दिल खुश रहे, ऐसे ही

0: अब बात हुई है बदलते हुए मौसम की, तो बिल्कुल बदलते हुए मौसम है। हम बात करेंगे तापमान के बारे में। तो न्यूनतम तापमान है 27.6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो तापमान है 34.9 डिग्री सेल्सियस। तो बदलते हुए तापमान की जब हम बात कर रहे हैं तो आजकल हवा में एक अलग ही सरगोशी है, एक अलग ही मस्त सा मौसम हो रहा है, क्योंकि एक अलग सी हवा चलने लगी है स्वतंत्रता की। जी हाँ, बिल्कुल हम बात कर रहे हैं हमारे आने वाले दिनों में, हमारे 15 अगस्त के बारे में। यानी कि अगर हम देखें तो केवल एक ही दिन क्यों हमें स्वतंत्रता का एंजॉय केवल एक ही दिन क्यों करें, इसका आनंद केवल एक ही दिन क्यों लें, बल्कि हम रोज़ स्वतंत्र हैं। हम हर रोज़ ऐसा कुछ करें कि लोगों में ये देशभक्ति का जज्बा, ये स्वाभिमान, ये स्वतंत्रता, ये जो सशक्तता है, एक साथ बनी रहे, एक साथ हो जाए, एक साथ मिल जाए। जैसा कि अगर हम प्रकृति की बात करें तो प्रकृति कभी हमारे साथ भेदभाव नहीं करती है ना। प्रकृति हमें संतुलन का सर्वोत्तम उदाहरण देती है, हमारे एक साथ होने का एहसास दिलाती है, हमें महसूस कराती है कि जैसे सूरज कभी भी समान रूप से प्रकाश देने में नहीं चूकता, जैसे वृक्ष हमें बिना किसी भेदभाव के हमेशा छाया देते हैं, फल देते हैं। ये सभी अपने निश्चित नियमों और सीमाओं में रहकर ही संतुलन बनाए रखते हैं। यदि हम अपनी मर्यादा लांघ भी दें तो जीवन का संतुलन बिगड़ जाएगा ना। वैसे ही इनकी भी अपनी एक स्वतंत्रता है, अपनी एक सजगता है, अपना एक एहसास है जो हमें हमेशा कराती रहती है। तो ऐसे ही हमें भी अपनी स्वतंत्रता का जब एहसास है, हमें भी इस बात का एहसास है कि हम साथ में रहकर, एक साथ होकर इस सामूहिक उत्सव को एक साथ मनाएं, तो केवल एक ही दिन क्यों, हर रोज़ क्यों नहीं। जैसे प्रकृति कभी अपना नियम निरंतर छोड़कर कभी कहीं रूठती है, अलग होती है, जब वो नहीं होती तो हमें इससे कुछ सीखने को मिलता है, हमें इससे कुछ सीखना भी चाहिए। प्रकृति हमेशा स्वतंत्रता का सबसे कोमल, सबसे सजीव पाठ सिखाती है। जल, जंगल, जमीन, ये तीनों अपनी अपनी गति से स्वतंत्र है, फिर भी एक दूसरे के साथ है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बहता हुआ जल जीवन देता है और आगे बढ़ता रहता है। जंगल अपने आंचल में अनगिनत जीवों को स्थान देते हैं, प्यार से सहेजते हैं। जमीन सबका भार उठाती है, सबको थामे रहती है, फिर भी कभी शिकायत नहीं करती। यहाँ मनुष्य ही नहीं बल्कि सभी प्राणी स्वतंत्र हैं, सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। स्वतंत्रता का शायद यही असली मतलब होता है। स्वतंत्रता का अर्थ केवल अपने लिए जीना नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना होता है, दूसरों के लिए जीने की वजह बनना होता है। प्रकृति भी हमें यही सिखाती है, सच्ची स्वतंत्रता, जिसमें अपनापन हो, संवेदना हो, सहानुभूति हो, साथ लेकर चलने का सहज इच्छा हो। इस भाव को समझना कि हमें परिपक्वता बनता हुआ देखकर एक परिपक्व नागरिक भी स्वतंत्रता को सही अर्थों में इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए हमें अधिकारों और कर्तव्यों के बीच का संतुलन हमेशा सहेज के रखना है और सहजता से अपने जीवन में उतार लेना है, तभी तो स्वतंत्रता का असली मतलब निकलता है। बिल्कुल, हम तो चाहते ही हैं कि ऐसे ही हम साथ रहें, स्वतंत्र रहें, और ना केवल एक दिन इस देशभक्ति के भाव को जागृत करें बल्कि हर रोज़ जो प्रकृति हमें सिखाती है, साथ होना किसी भी परिस्थिति में, चाहे तेज बारिश हो, चाहे तूफान आ जाए, चाहे आंधी आ जाए, चाहे गर्मी हो, चाहे ह्यूमिडिटी हो, चाहे कैसा भी मौसम हो, बदलता सब कुछ है, लेकिन फिर भी हर मौसम साथ साथ रहता है, आसपास रहता है और हमें ऐसे ही प्यार से सजोए रखता है। तो हम भी कुछ ना इससे सीखें और इस तरह से ही आगे बढ़ते जाएं। तो कार्यक्रम में भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और एक छोटे से विराम के बाद फिर से हाजिर होते हैं।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी

0: लेकर आए। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाए या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अल्पविराम में एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हम क्यों एक दिन ही देशभक्ति के लिए प्रयास करें, एक देशभक्ति का जज्बा जगाएं, बल्कि हर रोज़ थोड़ी थोड़ी सी ऐसी भावनाओं को जागृत करें जिससे हमारा समाज, जिससे हमारा परिवार, जिससे हमारा देश आगे बढ़े। अगर हम बात करें परिवार की, तो एक बहुत बड़ा समाज एक छोटे छोटे परिवारों से मिलकर बना है। परिवार, समाज और देश, इन तीनों स्तर पर स्वतंत्रता का अर्थ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। परिवार में अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के नाम पर सिर्फ अपनी इच्छाओं को महत्व देता है तो बाकी लोगों की जो भावनाओं को नज़रअंदाज करता है तो धीरे धीरे तनाव की और दूरियाँ बढ़ने लगती हैं। इसी तरह समाज के तौर पर जब हम केवल अपनी सुविधा और अपने विचार को सही मानते हैं तो दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश नहीं करते हैं तो ऐसे में हीन भावनाएं हमारे अंदर प्रवेश करती हैं और मतभेद होने लगते हैं, टकराव होने लगते हैं। देश के स्तर पर भी यही बात लागू होती है कि यदि देखें तो हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, अपने कर्तव्यों और जैसे राजकीय नियमों का पालन करना, देश हित में कार्य करना, दूसरों के अधिकारों पर सम्मान करना अगर भूल जाते हैं तो अर्थव्यवस्था भी गड़बड़ा जाती है। तो ऐसे में हमें करना क्या है? अधिकार, कर्तव्य, स्वतंत्रता हमारी व्यक्तिगत व्यक्तिक नहीं है। हम जिस परिवार, समाज, स्थान से जुड़े हुए हैं, हमारी स्वतंत्रता उनके उत्थान के लिए होनी चाहिए, उसे बढ़ावा देना चाहिए, साथ रहना चाहिए। हमारी स्वतंत्रता उनके उत्थान के लिए जुड़ी हुई है तो हमारी सोच में हमें तब स्वतंत्रता मिलती है, तब हम ठीक मायने में तब स्वतंत्र हो पाते हैं जब अपने विचारों के साथ दूसरों के विचारों का भी सम्मान करते हैं। हम अपनी दृष्टि में सब कुछ सही गलत नाप सकते हैं, कभी उन्हें आगे बढ़ाकर, कभी हम पीछे रहकर। एक तरीके से देखा जाए तो दोनों ही मायनों में हमारे परिवार, हमारे देश, हमारे समाज की इसमें भलाई होती है। हमेशा हर परिस्थिति में मनभेद से बचकर जो हम एक सही राह चुनते हैं वही हमारे समाज परिवार को आगे ले जाता है। स्वतंत्रता, कर्तव्य और अधिकार के बीच में संतुलन का भाव हमें आगे बढ़ाता है। सच्चे और सार्थक लोकतंत्र का यही एक आधार होता है। स्वतंत्रता एक ऐसा सशक्त और प्रेरक शब्द है जो मनुष्य के भीतर स्वाभिमान, आत्मविश्वास को खुलकर जीवन जीने का एहसास भर देता है। वह हमें एक दिशा दिखाता है, एक पथ प्रदान करता है जहाँ हम निर्भीक होकर चल सकें। इस निर्भीकता के संग आज़ादी का मूल्य ही हमें समझना होगा। हमारे स्वतंत्र संग्राम के इतिहास में अगर हम गहराई तक देखें तो इसका वास्तविक मूल्य हम समझ सकते हैं। असंख्य बलिदानों, संघर्षों और त्याग के बाद हमें यह आज़ादी मिली है, तो हम ऐसे ही उसे व्यर्थ होने देंगे क्या? बिल्कुल नहीं, बल्कि एक रोज नहीं बल्कि हर रोज़ अपने अंतर कर्तव्य, अधिकार, स्वतंत्रता की भाव को जागृत रखेंगे और इसी तरह से हम जहाँ भी रहेंगे अपने वतन को याद करते रहेंगे, अपने अधिकारों के लिए सजग रहेंगे, अपनी स्वतंत्रता को इसीलिए जिंदा रखेंगे क्योंकि हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी ऐसी ही स्वतंत्रता, ऐसा ही समाज और ऐसे ही जीवन देना चाहते हैं। तो आइए कार्यक्रम में भी हम आगे बढ़ेंगे।

बिल्कुल दोस्तों, ऐसे ही देशभक्ति का जज्बा जगाए रखना है, ऐसे ही हमें आगे बढ़ना है और ऐसे ही हमें अपनी स्वतंत्रता का पूरा जो है अधिकार है हमें कि हम अपने अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के लिए ऐसे ही हमेशा एक साथ रहें, सामूहिक इस उत्सव को मनाएं और दूसरों को भी एक अच्छा संदेश दें। तो आइए कार्यक्रम में अब हम बात करते हैं, एक समाज, एक परिवार सब बनता तो हमसे ही है ना, और अगर हम अपनी या अपनी पीढ़ी का या अपने बच्चों का अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो कैसे इस परिवार को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आइए बात करते हैं हमारी सेहत की चिंता की, यानी कि हमारे बच्चों की सेहत की चिंता की। तो देश में आप देखते हैं अधिकतर बच्चों के जो है शारीरिक परिवर्तन, यानी कि शरीर में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो एक चिंता का विषय है। कहना चाहिए कि अत्यधिक मात्रा में कैलोरी लेने से या शुगर लेने से बच्चों के शारीरिक जो परिवर्तन हो रहे हैं, उन्हें जो मोटापा आ रहा है या शरीर में अनगिनत जो है कैलोरीज का बढ़ने की वजह से जो परेशानियां हो रही हैं, यदि उस विषय पर हम अगर अभी सजग नहीं हुए तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी ज़्यादा कैलोरी की वजह से या जंक फूड की वजह से अपने आप को, अपने स्वास्थ्य को मुसीबत में डाल सकती है। तो ऐसे में देश में मोटे होते हुए बच्चों की चिंता के लिए अब सरकार को भी होने लगी है इस बात की चिंता। इसलिए सरकार ने देश में पहली बार बच्चों के खान पीन में कैलोरी में शुगर की मात्रा को तय कर दिया है और इसके तहत देश के किसी भी स्कूल में शैक्षणिक परिसर में निर्धारित मात्रा के तहत ही कैलोरी व शुगर बच्चों के खाद्य पदार्थ में रखी जाएगी। इसके साथ ही स्कूल में, कैंटीन में, कैफ़े में पिज्ज़ा बर्गर जैसी हाई कैलोरी वाली चीज़ों को नहीं बेचा जाएगा। केंद्र सरकार इन नियमों को जल्द लागू करने जा रही है। इस नियम ऐसी शिक्षा सत्र में सभी निजी, सरकारी और अर्धशासकीय स्कूलों पर लागू की जाएगी। इस दायरे में देश के करीब 24.69 करोड़ लोग या बच्चे आते हैं। खास बात यह है कि अभी तक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, सेफ फूड एंड बैलेंस्ड डाइट फॉर चिल्ड्रन इन स्कूल रेगुलेशन 2020 में केवल हाई कैलोरी व हाई शुगर ना देने की बात थी, लेकिन इसकी मात्रा तय नहीं थी। ऐसी स्थिति में किसी के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती थी। अब 100% जो है 100 ग्राम पर तरल ठोस पदार्थ के लिए मात्रा तय की जा रही है। इससे ज़्यादा मात्रा होने पर संबंधित पर

0: कार्रवाई भी की जा सकती है। यह नियम जो है कहाँ लागू होगा, इसका क्या असर पड़ेगा, ये भी आपको हम इस जानकारी में बताना चाहेंगे। यह नियम स्कूल गेट के 50 मीटर के दायरे में लागू होगा। इससे स्कूल परिसर में कैंटीन, कैफ़े, मैस, हॉस्टल, मैस जैसे सभी खान पान के सेंटर आ जाएंगे। नए नियम मिड डे मील निजी स्कूलों की कैंटीन पर लागू होंगे। नए नियमों में शीतल पेय, पिज्जा, बर्गर जैसे खाद्य पदार्थ बिकना बंद या कम हो सकते हैं। आंकड़े बताते हैं और ये बड़ी संख्या में ये जानकारी है कि 4 करोड़ बच्चे देश में ओवरवेट या मोटापे के शिकार हो चुके हैं, इसलिए यह कदम उठाना बहुत ज़रूरी था। 10% बच्चे जो है प्री डायबिटी के शिकार हैं, जिसमें जिनकी अगर हम एज की बात करें तो ये 6 से 19 वर्ष के बीच आते हैं। 23% ज़्यादा बच्चे प्री डायबिटीज़ के शिकार हैं, जिनमें 15 से 19 साल के बच्चे आते हैं। तो ऐसे में इस तरह के नियम का पालन होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी अगर अभी इस चीज़ों पर ध्यान नहीं देगी या इन बातों का ध्यान नहीं रखेगी तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम आज से ही सजग हों, सहज हों और बच्चों को यह बात समझाने के लिए हमें खुद भी प्रयास करने होंगे अपने स्तर पर कि बच्चों को अगर एक हफ्ते में केवल एक दिन इस तरह की चीज़ों का प्रयोग करने के लिए या इस तरह की चीज़ें खाने के लिए अगर वो मन करता भी है तो कर सकते हैं, लेकिन हर दिन इस तरह की इतनी ज़्यादा कैलोरी लेने से उनके शरीर को क्या नुकसान हो रहा है, उन्हें यह समझाना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही कार्यक्रम में हम भी आगे और भी कुछ आपको बताएं उससे लेते हैं, उससे पहले लेते हैं छोटा सा विराम और फिर से हाजिर होते हैं कार्यक्रम में एक बार फिर से।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: सड़क पर चलते समय अपने वाहन की गति नियंत्रित रखें। किसी भी प्रकार का स्टंट करने की कतई कोशिश न करें। हो सकता है आप कुशल चालक हों, लेकिन दुर्घटना सिर्फ हमारी गलती से नहीं होती, दूसरों की लापरवाही भी हादसों का कारण होती है। दाहिने या बाएं मुड़ते समय इंडिकेटर का प्रयोग अवश्य करें। खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें।
4: ए भाई।

बिल्कुल ऐसे ही आपका ध्यान रखना है हमें भी, क्योंकि हम आपको जो जानकारियाँ देते हैं वो बिल्कुल आपके लिए ही है और ज़रूरी भी है। और इस कार्यक्रम में आपको हम इसीलिए तो जोड़ते हैं, या हम आपसे इसलिए तो जुड़ते हैं कि आपसे ढेर सारी जानकारियाँ दे सकें, ढेर सारी बातें कर सकें, और ढेर सारी चीज़ों के बीच में आइए कार्यक्रम में। अब जब हम बात कर रहे हैं हमारे समाज, परिवार और बच्चों की, तो कैसे पीछे रह सकती है ये बात, जो कि हम हर दिन देखते हैं, हर बार सोचते हैं कि क्या करें और कैसे करें। और हम बात कर रहे हैं आजकल के बच्चों के मोबाइल के, टीवी के प्रयोग की, जो कि हर घर की एक नई समस्या है। यानी कि बच्चे हर दिन घंटों जो है मोबाइल या टीवी पर बिताते हैं, और जिसकी वजह से उनका स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ऐसे में छोटे बच्चों से लेके बड़े लोगों तक, युवाओं से लेके बुज़ुर्गों तक, सभी को जो है आँखों की प्रॉब्लम यानी कि नज़र की प्रॉब्लम होने लगी है। सभी की नज़र कमज़ोर हो रही है, कभी आँखों पर ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है, कभी सिर दर्द, माइग्रेन, ऐसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। और कई बार एक ही सिचुएशन में बैठे रहने की वजह से हाथों की नसें या काम सिर की नसें या गर्दन की नसों में बहुत समस्या होने लगी।

है, तो इससे कई सारी बीमारियां भी उत्पन्न हो रही हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमने तो अभी तक शायद कई बार बच्चों को समझाने का प्रयास किया, लोगों को भी, लेकिन कई बार ऑफिस से जुड़े हुए इस तरह के बहुत सारे काम होते हैं जिसकी वजह से हम चाहकर भी मोबाइल जैसी चीज़ों से या AI जैसी मोबाइल ऐपों से दूर ही नहीं रह पाते हैं। तो ऐसे में आजकल बच्चों की मोबाइल, TV और पढ़ाई में स्क्रीन का समय बढ़ जाने की वजह से जिन छोटे बच्चों की नज़रों कमज़ोर हो रही हैं और वह खतरे के निशान में है, यानी कि कहना चाहिए कि उनकी आंखों में समस्याएं बढ़ रही हैं, तो ऐसे में निगाह रखने और समय पर चेतावनी देने के लिए भोपाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के द्वारा एक एम्स यानी एक मोबाइल ऐप विकसित किया जा रहा है जो आँखों की स्थिति खराब होने से पहले ही बता देगा कि बच्चे के चश्मे का नंबर कितना बढ़ सकता है, इससे क्या समस्या हो सकती है, और अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो वह पहले ही आपको अलर्ट कर देगा, जिससे कि आप अंधेपन का खतरा आपका कम हो जाएगा। और एम्स के इस अनुसंधान कार्यक्रम को केंद्र सरकार ने क्लिनिकली ट्रायल रजिस्टर में पंजीकृत किया गया है। पहले चरण में भोपाल संभाग के 5 जिलों में करीब 5,000 स्कूली बच्चों पर यह सर्वे किया जाएगा। 6 से 18 साल तक के इन बच्चों की आँखों की जांच, चश्मे के नंबर, आँख की लंबाई, रोज़मर्रा की आदतें जैसे कितनी देर मोबाइल पर चलाते हैं या कितनी देर पर कौन सी स्क्रीन या कौन सी लाइट में उसे देख रहे हैं, कितनी बार कितने समय तक कौन सी TV में किस तरह कितनी दूरी पर उसका प्रयोग करते हैं, जैसी जानकारियां ली जाएंगी। दूसरे चरण में इन 5,000 से 500 बच्चों को चिन्हित करके 2 साल तक इनकी हर 6 महीने में जांच की जाएगी। इससे पता चलेगा कि चश्मे का नंबर कितनी तेज़ी से बढ़ा है या इनकी आँखों के नज़र में आईसाइट में कितना परिवर्तन हुआ है, और यह पूरी जानकारी जो है कंप्यूटर में डालकर AI टूल को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसमें एक्सी बूस्ट या डीप लर्निंग जैसी नए तकनीकों या नए तरीकों को इस्तेमाल किया जाएगा। इससे बच्चे की जानकारी डालते ही ऐप में बता देगा कि चश्मे का नंबर का खतरा बढ़ रहा है और या फिर हमें इनके स्क्रीन टाइम को सुनिश्चित करना चाहिए कि आवश्यकता होने पर कितनी देर तक यह जो है इस नज़र की प्रॉब्लम या आँखों की प्रॉब्लम या किसी भी तरह की जो शरीर में परेशानी हो रही है उस प्रॉब्लम को दूर रखने के लिए कितनी देर तक उसको मोबाइल दिया जा सकता है, उसको प्रयोग करने के लिए या आवश्यक काम के लिए दिया जा सकता है। तो ज़रूरी है इस तरह की सजगता और ज़रूरी है इस तरह के नए नए ऐप्स का आविष्कार होना, जिससे कि जो चीज़ें एक बार शुरू हो जाती है, यह हम चीज़ जानते हैं दोस्तों कि जो चीज़ें एक बार शुरू हो जाती है उनको उनसे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है, यानी कि कोई भी लत हमें लग जाए तो उससे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। आदतों को बदला जा सकता है लेकिन लत को बदलना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे ही हम मोबाइल की आदत ही नहीं, हमें लत लगने लगी है। हर काम को, हर चीज़ को ईजी बनाने के लिए, हम अपने काम को ईजी बनाने के लिए हर घंटे मोबाइल का प्रयोग करते हैं। जब भी कभी हमें ज़रूरत होती है तो हम अपना दिमाग लगाने की जगह मोबाइल का दिमाग खर्च करते हैं, और जितनी जल्दी हो सकता है काम आसानी से तो होता ही है, साथ में हम यह भी सोचते हैं कि काम जितनी ईजीली हो जाए उतना हमारा प्रॉब्लम कम होगा, हम समय बचा सकेंगे। पर कई बार हम स्क्रीन को देखते देखते समय का अंदाज़ा ही नहीं रख पाते हैं और ऐसे में कई सारी समस्याओं का सामना हमें करना भी पड़ता है। तो अगर इन सभी समस्याओं से बचना है तो इस तरह की जो है मोबाइल ऐप का प्रयोग हमें करना ही पड़ेगा। अगर यह मोबाइल ऐप सक्सेस होता है तो ऐसे में हम कई सारे बच्चों और कई सारे लोगों की समस्याओं का समाधान ढूंढ पाएंगे। तो बिल्कुल, हमने भी आपके कार्यक्रम को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक समाधान ढूंढा है, आपका मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

तो श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही अब हमें आपसे इजाज़त लेनी होगी इस कार्यक्रम में। इसीलिए सभी श्रोताओं को रश्मि राहुल का नमस्कार, और एक बार फिर से हाजिर होंगे हम आपके लिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर लेकर। लेकिन अभी इस कार्यक्रम में हमें दे दीजिए इजाज़त। सभी श्रोताओं को एक बार फिर से रश्मि राहुल का नमस्कार।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:30:45 हुए हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुनिए योगिनी तांबे के द्वारा ध्रुपद राग पर अहीर भैरव। पखावत संगत की है जयवंत गायकवाड़ ने। तो आइए सुनते हैं योगिनी तांबे के द्वारा शास्त्रीय संगीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत, जिसके अंतर्गत आज आपने सुना योगिनी तांबे के द्वारा राग अहीर भैरव। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, सुबह के 10 बजने को है। जिले की चिट्ठी हमारे भोपाल केंद्र द्वारा आप कुछ ही देर में सुनेंगे। कृपया अगले कार्यक्रम के लिए प्रतीक्षा कीजिए।
1: हर घर तिरंगा अभियान, इस विषय पर वरिष्ठ पत्रकार श्री अलीम बज़मी से अभिषेक कटियार की ली गई ये भेंटवार्ता अभी आप सुन रहे थे प्रदेश की सुर्खियों में। सुबह के 10 बजे हैं, लीजिए अब सुनवाते हैं आगर मालवा जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है आगर मालवा जिले की चिट्ठी। आलेख महेश शर्मा का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। आगरमालवा जिले में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बारिश के चलते मौसम में ठंडक आई है। वहीं जिले में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अभियान के तहत विभिन्न सामाजिक और स्वयंसेवी संस्थाओं, क्लबों तथा गणमान्य नागरिकों के साथ बैठक कर कार्यक्रमों के आयोजन पर चर्चा की गई। बैठक में तिरंगा यात्रा, तिरंगा रैली, मैराथन, साइक्लोथॉन, तिरंगा बाइक रैली, मानव श्रृंखला, तिरंगा सजावट, तिरंगा प्रदर्शनी, प्रश्नोत्तरी और देशभक्ति आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने पर विचार विमर्श किया गया। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कल यानी 13 अगस्त को तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी, जबकि जिला मुख्यालय पर 14 अगस्त को तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। आगरमालवा जिले के प्रभारी मंत्री नागर सिंह चौहान ने पिछले दिनों आगरमालवा में 111 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित आगरमालवा सुसनेर और नलखेड़ा के 3 सांदीपनी विद्यालय भवनों का लोकार्पण किया। प्रभारी मंत्री ने सुसनेर में एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण भी किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। श्रावण माह के दौरान आगरमालवा जिले के विभिन्न शिवालयों में भी श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। जिले के प्रमुख शिव मंदिरों में महारुद्राभिषेक, पूजन, भजन कीर्तन और विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं। आगरमालवा जिले में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत 19 शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसी क्रम में ग्राम तनोडिया में आयोजित शिविर में 253 आवेदन प्राप्त हुए। इस शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण जन और महिलाएं उपस्थित रहीं। अभियान के तहत जिले के नलखेड़ा, बड़ौद, सुसनेर और आगरमालवा में जनपदवार क्लस्टर के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 3-3 शिविर तथा शहरी क्षेत्रों में 1-1 शिविर लगाया जाएगा। वहीं तनोडिया में आयोजित जिला स्तरीय युवा संगम रोजगार मेले में पंजीकृत 280 युवाओं में से 113 शिक्षित बेरोजगार युवाओं को

0: रोजगार के लिए प्रारंभिक रूप से चयनित किया गया। स्वरोजगार योजनाओं के तहत इस शिविर में 63 हितग्राहियों को 52,03,000 रुपये के स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान IISR इंदौर के वैज्ञानिकों और आगरमालवा कृषि विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से जिले के ग्राम सोनचिड़ी, आगाखेड़ी, परसुखेड़ी और पालड़ा का भ्रमण किया। इस दौरान सोयाबीन की फसलों का निरीक्षण किया गया और किसानों को वर्तमान समय में सोयाबीन की फसल में लगने वाले प्रमुख कीटों और रोगों की पहचान के बारे में जानकारी दी गई। वहीं जिले में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड MPIDC द्वारा विकसित किए जा रहे औद्योगिक क्षेत्र में आवंटित और प्रस्तावित औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय बैठक भी आयोजित की गई। उज्जैन झालावाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 552G के आगरमालवा जिले के ग्राम आमला से चमली तक के 2-लेन मार्ग को अब 4-लेन में बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कलेक्टर डॉक्टर शेर सिंह मीणा ने नलखेड़ा स्थित विश्व प्रसिद्ध पीताम्बरा सर्वसिद्धपीठ माँ बगलामुखी देवलोक निर्माण के प्रस्तावित और निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से चर्चा कर स्वीकृत सभी कार्य को समय सीमा में पूरे करने के निर्देश दिए। जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विश्व स्तनपान सप्ताह की शुरुआत के अवसर पर जिला चिकित्सालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें चिकित्सकों ने महिलाओं को स्वच्छता और 4 माह तक अनिवार्य रूप से स्तनपान कराने के सही तरीके की जानकारी दी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2024 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अति उत्कृष्ट और उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित जिले के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए SP कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। स्वच्छता के क्षेत्र की अगर बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत आगरमालवा जिले के सुसनेर जनपद पंचायत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रावधानों की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें स्रोत स्तर पर गीले, सूखे और सैनिटरी अपशिष्ट को अलग अलग रखने, घर घर कचरा संग्रहण, कम्पोस्टिंग, पुनर्चक्रण और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन तथा वैज्ञानिक तरीके से अपशिष्ट निस्तारण के बारे में जानकारी दी गई। आगामी सिंहस्थ 2028 को देखते हुए आगरमालवा प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कलेक्टर डॉक्टर शेर सिंह मीणा और पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार सोनी ने जिले में प्रस्तावित होल्डिंग एरिया के लिए चिन्हित भूमि का बीते दिनों निरीक्षण किया। वहीं युवा वर्ग को नशे से दूर रखने के लिए मेरा युवा भारत के माध्यम से नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत आगरमालवा के शासकीय सांदीपनि विद्यालय में विभिन्न जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। जिले के विद्यालयों और महाविद्यालयों के 250 से अधिक विद्यार्थियों ने इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया। विद्यार्थियों ने जीवन भर नशे से दूर रहने और अपने परिवार, मित्रों तथा समाज को भी नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया। आगरमालवा जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे आगरमालवा जिले की चिट्ठी, ये आकाशवाणी का भोपाल
2: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:05 हुए हैं। तो नीचे प्रस्तुत है वाट्सअप फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत, उदित नारायण और कविता कृष्ण, कविता सुब्रमण्यम की आवाज़ों में। इस गीत को हमने लिया है फिल्म नायक से और साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है फूल चिचौंडी तालुका पंडपुर से, जाकिर मुलानी, सुमैया मुलानी, सुबान, समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद, नाशिर, चाचा और चाची, उनके सभी मुलानी परिवार ने, धनौरी तेलीवाला से निशार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया अयान बाबू ने, लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई लोखंडे, शैलेंद्र, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षिता, पूरा लोखंडे परिवार इस गीत को सुनना चाहता है। अगले श्रोता है हमारे शिवा गोपा, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप, पश्चिम सिंह भूम, चाईबासा, झारखंड से। इसी गीत के लिए हमें लिख भेजा है मुक्काम पोस्ट कालेगांव, जाफराबाद, मराठवाड़ा से श्री सुधार राजे, जाधव देशमुख, प्रशांत राजे, कुमार सचिन, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमार सरवत देशमुख, कुमार प्रणाली देशमुख, कुमारी सानवी, कुमारी हर्षिता, इन सभी ने हमें लिख भेजा है। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहते हैं बाबा साहेब कांगड़ेकर, साखरबाई कांगड़ेकर, परमेश्वरी, रोहिणी, श्रावणी, सभी कांगड़ीकर परिवार ने मुंगीपेट महाराष्ट्र से, दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, अजय किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, इंद्राणी साहू, माया साहू, इन सभी ने इसी गीत को सुनना चाहा है जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से। तो आइए इन सभी की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। तो आइए कार्यक्रम में जोड़ते हैं ये अगला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म राजा हिंदुस्तानी से। इस गीत में आवाज़ें हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की, गीतकार हैं समीर और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। तो आइए कार्यक्रम में इस गीत को सुनाने से पहले आपको बताते हैं कि इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ ने, राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार, बिट्टू कुमार और पूरे कुमार परिवार ने। इसी गीत के लिए हमें लिख भेजा है लखनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, कुंती साहू ने, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर ने। सब्जी मंडी झज्जर से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया, इन सभी ने इस गीत के लिए हमें फरमाइश लिख भेजी है। साथ ही हमें लिख भेजा है कबीर रेडियो श्रोता संघ डिंडोली से, डिंडोली बड़ौदा छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा, इन सभी ने इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है। नांगलोई दिल्ली से मदन चक्रवर्ती, राजेंद्र चड्ढा और चाकिया बाजार चंदौली से सुंदर सुमन मुराहू, देवंती, विजय सरोज, रोहान आर्य, इन सभी जायसवाल परिवार के द्वारा इसे पसंद किया गया है। तो आइए उनकी फरमाइश पर हम सुनवाते हैं आपको फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये गीत।

0: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
1: सच?
0: हाँ हाँ सच। लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
1: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए
0: तो बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
1: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
0: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
2: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
3: ओ, 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
5: हर प्रोग्राम के बाद एक बार फिर से स्वागत है श्रोताओं आपका व्हाट्सएप।

अल्पविराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है व्हाट्सएप फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में। तो आइए कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं फिल्म बचना ए हसीनों से लिया हुआ ये गीत लकी अली और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। और इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश की है जेल रोड जालंधर से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आसमा कौर, धर्मजीत फातिमा कौर, छटिया पोखर डुमराव से फातिमा अली बेलदार, डब्लू वली बेलदार, आसमा वली बेलदार, सोनम वली बेलदार, बिहार भवन दिल्ली से अकरम कुटरिया, उल्लाह कुटरिया ने। इसी गीत को सुनना चाहते हैं बिहारी कॉलोनी महासुमंद से मोहम्मद याकूब, आसमा कुरैसी, मोहम्मद यासुफ, आसमा कुरैसी, और जेल रोड मथुरा से सराफुद्दीन बेलदार, अल्ताफ बेलदार, कल्लू मल्लू करिया बेलदार, एस एम जावेद, अंजुम, नजमुल होदा, गुमला झारखंड से रियाद हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर जसपुर उत्तराखंड से इस गीत के लिए हमें फरमाइश लिख भेजी है। तो आइए इनकी फरमाइश पर आपको सुनाते हैं फिल्म बचना ए हसीनों से लिया हुआ ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं वार्स ऑफ फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। तो आइए कार्यक्रम में अब जोड़ते हैं ये अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म सुपर 30 से। उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत दिया है अजय अतुल ने। साथ ही आपको यह भी बताना चाहेंगे हम कि इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है बिहार रोड लिसनर क्लब से सुधा शर्मा, काजल शर्मा, मीरा शर्मा, सोनाली अनामिका, राजू, राजेश कुमार यादव, इन सभी ने। साथ ही इसी गीत के लिए सुनना चाहते हैं संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर, भरत मक्कर, कमल साहिनी, पिंगा वाला चौक, गोराया जलंधर से। इसी गीत के लिए हमें लिख भेजा है नरितम नेताम ने और कुसुम नेताम ने, बल बुड़वा पथरिया से। और इसी गीत के लिए हमारे अगले जो फरमाइश करता है वह है गंज टुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद असमान अंसारी, यासीन हाजमी और अमसुल कमर राही। इस गीत के अगले पसंद करता है प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर, करणवीर करण, दीपिंदर वरिंदर, कुलदीप, सीमू, एकम, दमन और अभिजीत। इन सभी ने हमें लिख भेजा है बठिंडा पंजाब से। साथ ही अगले फरमाइशकर्ता मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी अलोटा जिला रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़, रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़ ने। तो आइए इन सभी की फरमाइश पर आपको सुनाते हैं फिल्म सुपर 30 से लिया हुआ ये गीत उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। तो कार्यक्रम में जोड़ते हैं ये अगला गीत, जिसकी फरमाइश हमें की है कोरिया से डोनट पाबो, छत्तीसगढ़ से प्रभा जयपुरी, गौरैया जलंधर से अशोक जाटव ने। और इसी गीत के लिए हमें लिख भेजा है गुरमीत सिंह मीता, साउथ एक्सटेंशन, नई दिल्ली से। साथ ही हमें लिख भेजा है सुशीला देवी मंदूरकर, सनातन मंदूरकर, कौरव कुमार मंदूरकर ने। और साथ ही शंभू दयाल खटक, बिमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक और कुमारी पूजा खटक ने जाखोद राजस्थान से इसी गीत के लिए हमें फरमाइश लिख भेजी है। अगले पसंदीदा करता है कांटा रोड वसीम, महाराष्ट्र से विठल, सुरेश, सुषमा, परिधि, मायरा, इन सभी ने। ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांग वर्मा ने। के एच राही, गुड़िया बेगम, वकील प्रेमी, हम्माद जामिल, इन सभी ने हमें लिख भेजा है तहसील रोड गंज डुंडवारा से। मलकापुर महाराष्ट्र से सतदन धाड़े, वाल्मीकि धाड़े, नीनाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े ने। इसी गीत के अगले फरमाइश करता है हमारे सुदर्शन साहा, पल्लवी साहा, प्रखर साहा, कुशल साहा, नीति साहा, सुरभि साहा, अश्विन साहा, मंगला बहन साहा, राजेंद्र सिंह साहा ने, पद्मा टॉकीज, नेपा नगर से। तो आइए इन सभी की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं वाट्सअप फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम। तो आइए, कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं शान और अनुष्का की आवाज़ों में फिल्म गोलमाल 3 से लिया हुआ ये गीत। और इस गीत के लिए हमें लिख भेजा है शीतल रेडियो श्रोता संघ ग्राम बहरामपुर टेमा से, जिला खरगोन मध्य प्रदेश से, डॉक्टर तिलोक चंद्र वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, अमित जैन, सचिन मास्टर, समराज यारन, आर्यन रा बेबी, आरोही, इशिका, अंजलि, इन सभी ने। तो इन सभी की फरमाइश पर और इसी गीत को हमें लिख भेजा है पंचायत बिठाना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बालकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, उमेर, धनेश्वरी, प्रहलाद वर्मा, चित्रेखा वर्मा ने। तो इनकी फरमाइश को पूरा करते हैं और आपको इसके इनकी फरमाइश का ये प्यारा सा गीत सुनवाते हैं।

श्रोताओं, इसी अंतिम गीत के साथ ही वार्षिक फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 10:58 होने को है। कुछ ही देर में इस घंटे की खास खबरें आप सुनेंगे हमारे भोपाल केंद्र द्वारा। कृपया अगले कार्यक्रम के लिए प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान, गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया है। एक संदेश में उन्होंने लोगों से हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा अभियान के तहत हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल का नाम बदलने के लिए केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा ने कल ही इस विधेयक को पारित कर दिया था। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज अहमदाबाद में गुजरात के प्रमुख उद्योग समूहों से प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर संवाद करेंगे। इस दौरान स्पेसटेक विजन फोरम का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें 25 से अधिक स्पेसटेक कंपनियां, स्टार्टअप, निवेशक और उद्योग विशेषज्ञ शामिल होंगे। धार जिले की ऐतिहासिक भोजशाला मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में इंदौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम समाज की 5 याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी। हाईकोर्ट ने 15 मई 2026 को भोजशाला को मां सरस्वती का मंदिर घोषित करते हुए हिंदू समाज को रोजाना पूजा की अनुमति दी थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई को अंतरिम आदेश में राज्य सरकार को हर शुक्रवार जुमे की नमाज के लिए भोजशाला के पास वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। और मौसम की अगर बात करें तो प्रदेश में मानसून का स्ट्रांग सिस्टम सक्रिय है। भारी बारिश से राज्य के कई इलाकों में जल भराव और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं पिछले 3 दिनों में SDRF, पुलिस, होमगार्ड और स्थानीय लोगों के प्रयासों से 527 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। मौसम विभाग ने आज रतलाम, झाबुआ, धार, बड़वानी और इंदौर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोताओं, लीजिए अब प्रस्तुत है फोन इन प्रोग्राम, फोन करें गीत सुनें।

0: तुझसे हम दूर रह नहीं सकते, कोई बेचैनी हमको मारती है, खेलती है मेरे दुखों के साथ, जिंदगी किस कदर शरारती है। श्रोताओं नमस्ते, मैं हूं नीतिका वर्मा, हाजिर हूं आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम लेकर, फोन करें गीत सुने। आज कार्यक्रम में हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा फोन कॉल्स हम रिकॉर्ड कर सकें और सुनेंगे उनकी कुछ बातें और उनके पसंद के नगमे। तो सिलसिला शुरू कर रहे हैं फोन कॉल्स का, ये है हमारा पहला फोन।
1: जी अच्छी हूँ मैम।
0: अंजुम जी, कैसा मौसम है मंदसौर में?
1: मंदसौर में बारिश हो रही है अभी तो।
0: अच्छा क्या कुछ बताएंगे आप मंदसौर के बारे में, कुछ बताएं?
1: जी
0: कुछ बताएं मंदसौर के बारे में।
1: मंदसौर में यहाँ पे मंदिर है, पशुपतिनाथ फेमस है, एक पास तो यहीं पे है और दूसरा नेपाल में है, मतलब।
0: अच्छा चलिए,
1: और गार्डन है घूमने के लिए।
0: ठीक है चलिए, ये बताइए फोन किया है, कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी आज?
1: जी फिल्म का नाम है वक्त की आवाज। तू भी बेकरार मैं भी बेकरार, तू भी बेकरार मैं भी बेकरार।

0: हेलो
1: हेलो, फोन करे गीत सुने।
0: जी।
1: नमस्कार दीदी। दीदी
0: नमस्कार
1: दूल्हे सिंह यादव बोल रहा हूँ, ग्राम बापचिया जिला आगर मालवा से। दीदी यहाँ पे पानी बरस रहा था, कल दिन भर बरसा और वहाँ भी बरस रहा होगा पानी तो आपके यहाँ भी।
0: हाँ, झमाझम बारिश हो रही है, पूरा मध्य प्रदेश जो है इस समय भीग रहा है ना। बहुत
1: नहीं दीदी,
0: खुशी की
1: बढ़िया
0: बात।
1: रहा पानी का, बहुत बढ़िया मौसम है, गिर
0: जी
1: रहा है।
0: जी हाँ, बहुत दिनों की बाद ये पानी जो बरसा है वो हमें काफ़ी राहत दे रहा है, क्योंकि बहुत ज़रूरी था ये पानी बरसना, नहीं तो कैचमेंट एरिया में बहुत कम पानी था।
1: हाँ
0: दुल्हे सिंह
1: दीदी,
0: जी,
1: मैं सबसे पहले आपको रक्षाबंधन और ये हरियाली अम्मा और सावन सोमवार की ये बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ दीदी।
0: जी, आप एक चीज़ भूल रहे हैं, हमारा
1: हाँ दीदी,
0: स्वतंत्रता दिवस भी आ रहा है।
1: हाँ 15 अगस्त की भी दीदी आपको
0: जी,
1: शुभकामनाएं और ये।
0: बहुत बहुत बधाई हम सभी। इतने अच्छे मौसम में इतने अच्छे अच्छे पर्व आ रहे हैं हमारे लिए। और
1: हाँ
0: दुल्हे
1: दीदी,
0: सिंह जी आज फोन किया है, आपके पसंद का गीत बता दें।
1: दीदी सत्यम शिवम सुंदर का सुंदरम है नहीं, वो सत्यम शिवम
0: हाँ
1: सुंदर
0: जी,
1: उसका सुनवा दीजिए टाइटल सॉन्ग।

0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार, किससे बातें कर रहे हैं हम?
0: जी मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर तहसील सिरोंज जिला विदिशा मध्य प्रदेश।
1: जी
0: हम बहुत अच्छे हैं, और आपके मिजाज कैसे हैं?
1: हमारे भी मिजाज बहुत अच्छे हैं। और ये बताइए कि इस झमझमाती बारिश में आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे? पसंद का गीत
0: मिल
1: बताएं।
0: जाएगा जी, जो सुना देना गोपी कैसा साथी ना खोल बरसात में।

0: हेलो।
1: जी नमस्ते,
0: नमस्ते मैडम
1: किससे बात कर रहे हैं बताइए पहले।
0: जी, मैं राम सिंह बोल रहा हूँ,
1: कहाँ से
0: कटनी से। जी,
1: जी? बोलिए राम सिंह जी।
0: आप कैसी हैं?
1: जी हम तो बहुत अच्छे हैं। आपका पसंद का गीत कौन सा है पहले तो वो बता दीजिए।
0: मूवी का नाम है प्यार किया तो डरना क्या, सॉन्ग है तुम पर हमें अटके आ रहा।
1: धन्यवाद।

0: जय बजरंग रेडियो सोता था, बस स्टैंड बंडा बेले से लक्ष्मण को चाय बारे बोला दीदी।
1: जी लक्ष्मण रेकवार जी कैसे हैं?
0: अच्छे हैं दीदी, आप कैसी हैं?
1: हम बहुत अच्छे हैं, आपकी चाय की खुशबू हमें मिल रही है। क्या फरमाइश है आपकी?
0: आज सुनवा दी एक पिक्चर है, हाथी मेरे साथ।
1: हाँ?
0: नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना है।

0: नमस्कार।
1: नमस्ते मैडम। नमस्ते,
0: आपका शुभ नाम बताएं।
1: मैं सुमत कुमार जैन बोल रहा हूँ मैडम, पिंडरी जिला मंडला से।
0: कौन सा फरमाइशी नगमा है आपके लिए, आपकी
1: मेरे
0: पसंद
1: को
0: का?
1: सुना दीजिए मैडम, पग घुंघरू बांध मीरा नाचिए।
0: हाँ
2: हम्म।

0: हेलो,
1: हेलो
0: नमस्ते
1: जी, नमस्ते मैडम।
0: जी, परिचय दीजिए आपका।
1: हाँ, मैं राजू बोल रहा हूँ, मुझे एक गाना सुनना है।
0: कहाँ से बोल रहे हैं राजू जी?
1: बीना से। हाँ,
0: आपका गीत कौन सा है?
1: सावन को आने दो, ये एक गाना है, तो मैं गीतों में डालूंगा।

0: हेलो
1: हेलो, फोन करेंगी सुने
0: जी
1: नीतिका वर्मा जी शायद
0: जी
1: जी। बिल्कुल, मैं फूलचंद पाल बोल रहा हूँ, छतरपुर जिले की मनकारी गांव।
0: तो आप ये बताइए कि पानी तो अच्छा झमाझम बरस रहे हैं, और ऐसे बरसते पानी में आपकी पसंद का गीत कौन सा है?
1: जी जी बिल्कुल, आपने जो कहा है कि पानी रिमझे तो बिल्कुल है आपने कहा, लेकिन भोपाल साइड में बहुत अच्छा पानी गिर रहा है। हमारा बुंदेलखंड तो अभी बिल्कुल 2-3 दिन से बरसात नहीं हो रही है,
0: हाँ,
1: धूप निकली है
0: और
1: जी।
0: चलिए भगवान की कृपा सब पर बरसे और सब जगह झमाझम पानी बरसे, ताकि हमारा जो पानी का जो स्टॉक है वो पूरा हो जाए। हमारा बरस कैसे बीतेगा नहीं तो, है
1: जी
0: ना?
1: बिल्कुल नितिका जी, मैं आपको बता दूं कि लगभग लगभग हमारे जो छत्तर बुंदेलखंड में जितने जिले हैं वो लगभग अभी सूखे हैं।
0: अच्छा, पानी तो
1: हाँ,
0: काफी दिनों से नहीं गिर रहा था और यही बस 3 दिनों से बरस रहा है पानी।
1: अभी जब से पानी गिरा है, जब से पानी की शुरुआत भई है पानी बरसने
0: जी
1: की, तब
0: जी
1: से लेके आज तक अभी हमारे खेतों से पानी नहीं निकला है बाहर,
0: ओहो,
1: इतना कम पानी।
0: चलिए सही बात है, हम समझ सकते हैं इस समस्या को, क्योंकि हमारे किसान भाई काफी परेशान हो रहे हैं, है
1: जी
0: ना?
1: जी जी जी जी
0: तो
1: जी
0: इससे हमारी फसल भी मार खाएगी और वाकई में चिंता का विषय है, और ये चिंता का विषय जल्दी दूर हो जाए, पानी जल्दी अच्छे से बरस जाए और सभी की फसल अच्छी लहलहाए, यही हम चाहेंगे।
1: जी जी
0: और चलिए, लहलहाते खेत जब आपके भी हो जाएंगे और इस समय जो पानी बरस रहा है, तो ऐसे में आपको कौन सा गीत याद आ रहा है?
1: फिल्म का नाम है अमेरी गरीबी,
0: जी
1: और गीत के बोल हैं कि ओ मेरी सासू मेरे साले, बीबी करो मेरी मेरे हवाले।

0: जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ। ड्यूटी पीरियड में हूँ मैडम, और हाँ? आपका कार्यक्रम में फोन किया हूँ।
1: जी जी, आपके पसंद का गीत फिर जल्दी से बता दीजिए।
0: फिल्म का नाम है उपकार, मेरी देश की धरती सोना।

0: मांगीलाल चंदेल बोला, ग्राम सनोतिया जिला गुना से।
1: जी आपने फोन किया है, अपनी पसंद का गीत बता दीजिए।
0: फिल्म का नाम है हकीकत और इसमें कर चले फिदा जान तन साथी।

0: साथियों।
1: हेलो
2: हेलो।
1: जी नमस्कार।
2: हाँ नमस्कार दीदी। हाँ नमस्कार दीदी, मैं ग्राम चताहारी तहसील नरवर जिला शिवपुरी से आपका नियमित श्रोता प्रमोद कुमार शर्मा बात कर रहा था। दीदी पहले जो आकाशवाणी पर किसान वाणी कार्यक्रम आता था
1: जी जी
2: 1993 में लगाया था मैंने, 6 दिसंबर 1993 को।
1: जी
2: जब से दीदी आपका कार्यक्रम सुन रहा हूँ लेकिन मेरे पास नंबर नहीं था।
1: अच्छा।
2: हाँ दीदी, क्योंकि मेरा मोबाइल गिर चुका था तो अभी नंबर लिया मैंने दोस्त से, तो उससे मैंने कहा मैंने कि आज मैं कॉल लगाऊंगा, तो आज पहली बार में ही कॉल लगा दीदी मेरा।
1: चलिए तो प्रमोद कुमार जी, पहले तो आप अपने मित्र को धन्यवाद कीजिएगा, और आपने फोन किया है तो आपकी पसंद का गीत हमें बता दीजिए।
2: आज दीदी आपके पास पिक्चर मिलेगी,
1: जी बताएं।
2: जान पिक्चर का गीत सुनना है दीदी।
1: बोल बताएं।
2: नैनों में महबूब के देखूंगी मैं डूब के।

0: नीमच जिले से मनासा तहसील के चपलाना गांव से बोल रहा हूँ, मोहित साहू बोल रहा हूँ
1: जी। कैसे हैं मोहित साहू जी?
0: बस ठीक ठाक है, आनंद है
1: जी। फोन करें, गीत सुने कार्यक्रम में फोन किया है, अपने पसंद का गीत बताएं।
0: मेरे अनाड़ी फिल्म का गाना सुनना है मेरे को, अनाड़ी फिल्म का फूलों सा चेहरा तेरा।

0: नमस्कार
1: रमेश मालविया, इंदिरा नगर चौराहे उज्जैन से।
0: जी उज्जैन में अच्छा मौसम है,
1: महाकाल की नगरी से बोल रहे हैं हम।
0: जी जी रमेश मालवीय जी, आज आपका फोन लगा है, अपनी पसंद का गीत बताएं।
1: आज हमारी पसंद का गीत तो बस एक ही गीत है
0: जी,
1: दिल और दिमाग में।
0: हाँ,
1: फिल्म है याराना
0: जी,
1: और उसके बोले भोले।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन प्रोग्राम फोन करें गीत सुने, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित हर घर तिरंगा बाइक रैली में हिस्सा लेने वालों को आज संबोधित किया। उन्होंने राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कहा कि वंदे मातरम के शब्दों ने देशभक्ति की भावना जगाई और अलग अलग क्षेत्रों भाषाओं धर्मों के लोगों को एकजुट किया। इससे आज भी देश की पहचान को मजबूती मिल रही है। स्वतंत्रता दिवस पर भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ध्वजारोहण करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा मंदसौर, राजेंद्र शुक्ल रीवा और जिला मुख्यालयों पर मंत्रीगण ध्वजारोहण करेंगे। इसके साथ ही 24 जिलों में कलेक्टर ध्वजारोहण करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज इसरो के चेयरमैन डॉक्टर विक्रम साराभाई को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। श्री सिंह ने कहा कि डॉक्टर साराभाई की सोच, वैज्ञानिक सोच ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा की नींव रखने में मदद की। हरियाली अमावस्या के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये पर्व प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और उनके संरक्षण का संदेश देता है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने की अपील की है। उज्जैन में आज हरियाली अमावस्या पर दूध तलाई क्षेत्र

स्थित प्राचीन दुधेश्वर महादेव मंदिर में विशेष पूजन और श्रृंगार किया जाएगा। रात्रि 8 बजे महाआरती होगी। मंदिर के कुएं के जल को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष आस्था है। और नाइजीरिया में आयोजित राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता में भारत के करण सिंह, शेरजिंद, शांति मोल और तनिष्का खत्री ने स्वर्ण पदक जीते हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आपकी खिदमत में पेश है प्रोग्राम आपकी फरमाइश। पत्रों के माध्यम से आपके द्वारा भेजी गई फरमाइश का ये खास प्रोग्राम आपके लिए आपके रेडियो सेट पर। सबसे पहले सुनते हैं आपकी कसम फिल्म का गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों ने। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन आर डी वर्मन की है, और इस गीत को पसंद किया है सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा। यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से ये पत्र हमें मिला है दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार, जितेंद्र और धर्मेंद्र मालाकार का, और साथ ही साथ ये खत हमारे पास है। ये हमारे श्रोता है अनिल, सबीहा, सुषमा, आरती, अमृता, तृप्ति, राखी, पूजा, मीनू और श्वेता का। आप सभी की फरमाइश पर हम आपके लिए भेज रहे हैं आपकी कसम फिल्म का ये गीत आपके रेडियो सेट पर।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं चरस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। इस गीत की धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने। सुनने के ख्वाहिशमंद है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हृदया खान, असमा, सालिया, शोएब खान, साइमा खान, मुस्तावा खान, आफिया खान, राउफ भाई, शहीद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। और साथ ही साथ ये पत्र हमें मिला है आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मेंडी, सौरव, शाइना और निवान शर्मा का। और पटेल नगर मलोट पंजाब से ये पत्र है डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीतरानी जाजोरिया, गगनदीप और बेबी आरजू जाजोरिया।

अगला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो है मेरा साया फिल्म से, और इस गीत के लिए हमें फरमाइश लिख भेजी है दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित, और साथ ही साथ ये पत्र हमारे हाथ में है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, और शिरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। हमारे इन सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है लता मंगेशकर की आवाज़ में राजा मेहदी अली खान का लिखा ये गीत, जिसका संगीत

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आप सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का वो गीत जिसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने। और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है राजावत कॉम्प्लेक्स शाजापुर से मनमोहन राजावत राज, मधु राजावत, राशि, रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत और समस्त राजावत परिवार की है। साथ ही साथ वैष्णव कॉलोनी सनावत मध्य प्रदेश से ये पत्र हमारे हाथ में जो है वो है मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री का। और कंवर कॉलोनी बड़वाह से ये हमारे श्रोता है प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति शिवानी और मीनूराज श्रीमाली। इन सभी श्रोताओं की पसंद पर ये खूबसूरत सा नगमा आपके सेट पर।

मोहम्मद रफ़ी के गाए इस गीत के साथ ही श्रोताओं आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है एक अंतराल का।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।

सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग हर गुरुवार सुबह 8:30 पर। सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6:00 आकाशवाणी भोपाल पर।

अंतराल का समय पूरा हुआ, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम संग्रहालय से। रेडियो धारावाहिक अमर वीर बलिदानी झांसी वाली रानी आज प्रसारित की जा रही है, इसकी दूसरी कड़ी।

छल प्रपंच और कपट से सनी हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की विस्तार नीति में एक के बाद एक भारतीय अंचल प्रदेश और राज्य पराभूत होते जा रहे थे। यहां वहां यूनियन जैक की पताका लहराने लगी थी।

0: स्थानीय शक्तियों के प्रतिरोध रहित समर्पण ने जनगण की दास्ता के दस्तावेज लिखना शुरू कर दिया था। जनता की तकलीफें दिन दूनी रात चौकनी हो रही थीं। व्यापक असंतोष और सीमा रहित असहायता।
1: विदेशी आक्रांताओं का प्रतिरोध कर पाने में सक्षम राष्ट्रीय शक्तियों में से एक थे दक्षिण पश्चिम के मराठे, जो मुगलों की शहंशाही के दौर में निर्णायक हस्तक्षेप करते हुए पूरे भारत में उपस्थित हो चुके थे। इनकी अपनी रियासतें थीं, जिनके स्वामी सूबेदार पेशवा के प्रभुत्व से जुड़े हुए थे।
2: ग्वालियर, इंदौर, बड़ौदा, नागपुर, सतारा और झांसी का तामझाम विस्तृत था, लेकिन जब पेशवाई संकट में आई तब इसका खोखलापन भी उजागर हुआ। इन सूबेदारों के अपने स्वार्थ और कूटनीतिक कुटिलताएं पेशवा की काल्पनिक सर्वोपरिता की रक्षा नहीं कर सकी।
1: पेशवा का पद और पादशाही, नाना फडणवीस और बाजीराव प्रथम का संकल्प, दूरदृष्टि और चातुर्य अब विगत स्मृतियों का विषय मात्र रह गए थे।
0: मराठों का ताश का महल अंतिम मराठा युद्ध में बिखर गया। उनका प्रतीक पुरुष पेशवा अब अंग्रेजों का वेतन भोगी था। संधि में उसे मिली 8 लाख रुपए वार्षिक की पेंशन कि वो अपने दरबारियों, अमले, सेवक चाकरों, दास दासियों, स्त्रियों और संतानों का खर्च उठा सके। पेशवा बाजीराव द्वितीय को पूना से विस्थापित कर गंगा किनारे बसे हुए बिठूर का जागीरदार बना दिया गया था। स्वाधीनता, स्वाभिमान और छत्रपति महाराज के स्वप्न का विराम या फिर समापन।

0: मोरूपंत
1: जी श्रीमन,
0: कितना भिन्न है बिठूर का यह परिवेश पूना से। कहां पूना की हर क्षण खोलती खदबदाती राजनीति, और यहां बिठूर में सर्वत्र एक ठहरी हुई शांति, निस्तब्ध प्रशांतता। सुनने को केवल गंगा की लहरों की कलकल और गूंजते हुए आरती के गीत। क्या ही अच्छा नहीं हुआ कि वो सब एक सपने की तरह पीछे छूट गया।
1: उचित ही सोच रहे हैं श्रीमंत,
0: लेकिन एक तंश तो हमें सदा ही सालता रहेगा। काश हम इस होने को टाल पाते। पता नहीं इतिहास का निर्णय हमारे लिए क्या होगा। ये तो स्पष्ट ही है कि फिरंगियों ने हमें पराजित कर दिया, और हम ही क्या, लगता है समूचा देश इस पवंडर की लपेट में आ रहा है। कहीं कोई उम्मीद का आसरा नहीं, आंधी के तिनकों की तरह उड़ी जा रही हैं आस्थाएं। प्रभुता संपन्न पेशवाई भी एक ऐसा ही तिनका सिद्ध हुई है मोरूपंत।
1: हम प्रतिरोध में विफल रहे श्रीमंत, क्योंकि हमारी शक्तियां बिखरी हुई थी, हमारी दृष्टि सीमित और संकुचित थी।
0: गंगा की लहरों पर ठहरे हुए उस अस्ताचलगामी सूर्य को देखो मोरूपंत, जैसे एक सिंदूर रची नाव हो जो कालो दधि में बहती चली जा रही हो, अदृष्ट और अनिश्चय की दिशा में।
1: वाह, अच्छी काव्य कल्पना है पंत प्रधान।
0: काव्य कल्पना नहीं, जीवन का सच है। आसन्न का संकेत है कि अभी हाल ही में अंधेरा समूचे दृश्य पट को ली लेगा। कहीं कुछ भी किंचित भी नहीं दृष्टव्य रहेगा, किंतु मोरूपंत

हम कुछ नहीं कर पाए। नीति का स्वीकार्य यही था, लेकिन हमारे बाद की नई पीढ़ी है, नाना साहब हैं, राव साहब हैं, उन्हें ये झंडा उठाना पड़ेगा। मुक्ति पथ उनके लिए प्रशस्त है। ईश्वर उन पर कृपा करे, ईश्वर उन पर कृपा करे। अब हम तो यहां ठहर गए हैं मोरोपन, पतित पावनी गंगा के इस किनारे पर। यह लोग बिगाड़कर परलोक को सुधारने के लिए

0: लगता है कि आप सचमुच सभी कुछ त्याग बैठे हैं। श्रीमंत, आप अभी भी पेशवा हैं, अभी भी सूबेदारों का प्रधान पद और अधिकार आपके पास हैं। स्वतंत्रता संग्राम के संचालन सूत्र संभालकर दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की क्षमता आप में है।
1: मोरोपंथ बस देश की तकदीर बदलने की लगन लगी रहे, यही काफी है। हाल फिलहाल तो हालात बदलते नजर नहीं आते। पूरे आर्यावर्त में ऐसा कोई नहीं दिखाई दे रहा जो मुक्ति के अनुष्ठान का नेतृत्व कर सके। हां, हो सकता है कि कल किस्मत बदले, देश के दिन फिरें। बहुत बहुत अंधेरा हो रहा है। एक बात बताओ, व्यायामशाला से नाना साहब लौटे या नहीं?
0: अभी तक तो लगता है वापस नहीं आए, न नाना साहब और न राव साहब और ना ही मनु, आते ही होंगे।
1: नाना साहब और राव साहब को तो समझ में आता है, भाई पुरुष हैं तो उनकी शिक्षा दीक्षा भी पुरुषोचित होनी चाहिए। लेकिन तुम्हारी ये मनु, उसे तीर तलवार और कुश्ती से क्या लेना देना?
0: श्रीमंत, आचार्य बालाजी चाहते हैं, उनका कहना है कि रण कौशल पर केवल पुरुषों

0: का अधिकार नहीं है। और वो तो ये भी कहते हैं कि
1: रुक क्यों गए, बात पूरी करो। और क्या कहते हैं आचार्य बालाजी?
0: दृष्टता क्षमा हूं श्रीमंत। वो कहते हैं कि ऐसा कठिन समय है कि मातृभूमि को केवल पुरुषों के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता, देश की रक्षा के लिए मिलजुल कर कृपाण उठानी होगी, अंग्रेजों से बच्चे बच्चे को जूझना होगा।
1: शायद वो ठीक कहते हैं, अनुभव की सीख तो यही है। लेकिन मोरोपंत, आपको नहीं लगता कि अब मनु के विवाह पर भी सोचना चाहिए? उसकी आयु अब इस योग्य हो चली है।
0: श्रीमन, मेरी भी चिंता यही है, किसी योग्य वर की तलाश है मुझे, नाती रिश्तेदारों को भी कहलवाया है। देखिए कब संयोग बनता है। आ रही हूं पेशवा।
1: कहा? अरे भाई, वो तो कोई घुड़सवार है।
0: यही है हमारे बच्चे, हमारी आशा, हमारा विश्वास।
2: आजादी के महासंग्राम की तैयारी के लिए चटसार बन गई थी बिठूर में बाला गुरु की व्यायामशाला।

बिठूर के बाला गुरु की पाठशाला में जिस इतिहास की पीठिका पर नवागत शक्तियों का पल्लवन हो रहा था, उन पर दायित्व आने वाला था मुक्ति की मशाल को जलाए रखने का। ऐसी मशाल जिसके उजाले में देश अपनी संभावनाओं को देख समझ सके और व्यवधानों पर संकल्पित प्रहार कर सके। जागरण का एक नया राग जो संवेद स्वरों से गूंजे और निनादित करे।

0: पंत प्रधान पेशवा की सेवा में रामचंद्र राव प्रणाम प्रस्तुत करता है।
1: यशस्वी हो, पधारिए। क्या समाचार हैं आचार्य बालाजी और उनकी व्यायामशाला के? अरे भाई, पठन पाठन में कोई व्यवधान तो नहीं है?
0: अनुकंपा कृपा है श्रीमंत की, सब कुशल और यथोचित है।
1: कैसे पधारना हुआ?
0: आचार्य श्री का संदेश था, उन्होंने कहलवाया है कि उनके बाल सहपाठी तात्या दीक्षित देशाटन करते हुए बिठूर में पधारे हैं और आपके दर्शन लाभ की अनुमति चाहते हैं।
1: अहो भाग्य, पंडित शिरोमणि तात्या दीक्षित स्वख्यात मनीषी और ज्ञानी हैं। उनके चरणों की रस से बिठूर की भूमि पवित्र हुई। मोर पंत बुआ, उनके आदर सम्मान का राजकीय प्रबंध करें।
2: जो आज्ञा पंत प्रधान।
0: ये कष्टना उठाइए, तात्या दीक्षित के आवास विश्राम का यथोचित प्रबंध व्यायामशाला में हो चुका है। यो भी अब कैसी राजकीय व्यवस्था, काल चक्र की कृपा से हमारा समाज तो साधारण जनों का समाज बन गया है। तात्या दीक्षित जैसे यहां वैसे वहां।
1: ठीक कहते हो तुम, सभी भूमि गोपाल की। हमने तो तात्या दीक्षित की सुविधा की दृष्टि से कहा था, फिर भी कोई आवश्यकता हो तो संकोच न करें। तात्या दीक्षित के दर्शन हम भी करने के लिए उत्सुक हैं। बहु सुश्रुत देवज्ञ हैं, वर्तमान और अतीत में उनके लिए अलक्ष्य कुछ भी नहीं है। अरे भाई, हम भी जानना चाहते हैं कि अब क्या होने वाला है।
0: शायद वही बता सकें, किंतु श्रीमंत, हमारे आचार्य बालाजी कहते हैं कि मनुष्य की नियति में अदृष्ट कुछ भी नहीं है। मनुष्य जो चुनता है वही कालक्रम उसके लिए बुनता है।
1: अब क्या कहें, दो महापुरुषों के बीच की बात है। एक शास्त्रों का साक्षी है और दूसरा शस्त्रों का पक्षधर। शास्त्र और शस्त्र के इस विवाद में हम नहीं पड़ेंगे। बताइए कि तात्या दीक्षित के दर्शन कब सुलभ हो सकेंगे, हम उत्सुक हैं।
0: वो हमारे साथ ही पधारे हैं और बाहर प्रतीक्षारत हैं।
1: ओह, उन्हें ससम्मान लाइए।
3: प्रणाम विप्रवर, प्रणाम।
4: प्रणाम।
5: प्रणाम।
4: प्रणाम।
3: प्रणाम।
4: प्रणाम। प्रणाम। यशस्वी भव। कैसा परिदृश्य अनुभव कर रहे हैं पेशवा इन दिनों? गंगा के इन नीरव निर्जन किनारों पर पूना के वैभव की स्मृतियां विचलित तो नहीं करती?
1: हम उन्हें लगभग भूल चुके हैं पंडित राज। लाभ भी क्या है याद करने से, बीते हुए दिन तो लौटने वाले नहीं है ना। अब जो है और जैसा है वही ठीक है।
4: धन्य है, धन्य है ये योगियों जैसी तटस्थता। कुरुक्षेत्र का स्मरण हो आया। रणभूमि में शोक से व्याकुल होकर अर्जुन ने अपने धनुष्वाण पटक दिए और अपने रथ में बैठ गया। वाह वाह,
1: शायद आप ठीक कहते हैं विप्रवर। इतिहास हमें भग्नाश्चित विभ्रमित और खिन्न मनोदशा के रंगों से ही चित्रित करेगा। आप तो स्थान स्थान पर देशाटन करते रहते हैं, कहीं आपको प्रफुल्लित करने वाले दृश्य मिले?
4: क्यों नहीं, हमारे बाल सखा की व्यायामशाला तक जाने का कष्ट नहीं किया पंत प्रधान। कभी आकर तो देखिए कि साहस किस तरह शौर्य के सांचों में ढलता है।
1: बाला गुरु के प्रयोगों के लिए हम बहुत बूढ़े हो चुके हैं। प्रश्न अब युद्ध कौशल सीखने का नहीं रहा है, वो तो किशोरों का मनोरंजन मात्र है।
4: दीक्षा और शिक्षा को मनोरंजन कह रहे हैं श्रीमंत? वाह वाह, क्या किशोरों और तरुणों को आगत का सामना करने की तैयारी नहीं करना चाहिए?

0: मैंने अपने देशाटन में अनुभव किया है, देखा है, भीतर ही भीतर कुछ तप रहा है, कुछ उबल रहा है, जैसे कोई ज्वालामुखी हो। बड़वानल है जो क्रमशः विस्फोटित होगा, और तब पंत प्रधान की भूमिका क्या होगी?
1: आपकी भांति त्रिकालज्ञ होने का सौभाग्य हमें प्राप्त नहीं है विप्रवर। हम तो साधारण जन हैं, साधारण जन।
0: साधारण जन ही इस उद्घोष को दिग्दिगंत तक फैलाएंगे पंत प्रधान। मैंने वो खेत देखे हैं जिन्हें बीजों और अंकुरों का इंतजार है, वो पगडंडियां और प्रशस्त पथ जो यात्रा तुरपाओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऐसी रणस्थलियां जो जनता के सूर्य नाद के लिए तैयार है। सारा समूचा देश आहट सुन रहा है, रण निनादित हो रहा है। इस धर्म युद्ध को जो नहीं लड़ेगा वो अपने कर्तव्य और यश से विमुख हो रहा होगा और पाप का भागीदार होगा। मिथ्या भावुकता, दुर्बलता और कायरता ही तो वास्तविक पाप है।
1: सुनने में अच्छा लगा विप्रवर। काव्य को कर्ण मधुर तो होना ही चाहिए, सिद्ध कवियों ने ऐसी साधना की है।
0: पंत प्रधान, केवल कर्ण मधुर ही काव्य नहीं होता। परिभू स्वयंभू कविर मनीषियों के कंठ से युग के स्वर आकार लेते हैं। पेशवा, मनुष्य को कभी शेष और लाभ के प्रपंच में नहीं पड़ना चाहिए। ये जोड़ बाकी गुणा भाग केवल पश्चाताप मोह और अवसाद देता है, समय को इनकी आवश्यकता या वांछा नहीं है।
1: इन उपदेशों से हम लाभान्वित हुए विप्रवर, किंतु एक निवेदन था।
0: कहिए।
1: ये हमारे प्रिय मोरोपंत तांबे हैं।
0: परिचित हूं इनसे, काशी में इनसे भेंट हुई थी, तब ये चिम्मा जी के साथ थे। इनकी एक कन्या थी, कहाँ है वो?
1: यही है, और ये भी हमारे साथ ही रह रहे हैं। कन्या अब आयु प्राप्त कर चुकी है और मोरोपंत उसके उचित संबंध के लिए व्याकुल हैं। आपका महाराष्ट्रीय परिवारों में खूब आना जाना है, यदि संबंध में सहायता कर सके तो महती कृपा होगी।
0: भरसक प्रयत्न करूंगा। कन्या की जन्म पत्रिका उपलब्ध है क्या?
2: जी, अभी प्रस्तुत करता हूं। लीजिए।
0: अद्भुत अद्भुत। मोरोपंत बुआ, परम तेजस्वी है आपकी कन्या। ऐसी जन्म पत्रिका मैंने अरसे से नहीं देखी। वाह, शानदार। मेरा विश्वास और भी प्रबल हुआ। स्वतंत्रता के महायज्ञ की समिधा बनेगी ये यशस्वी कन्या। इसके जीवन से इतिहास के पृष्ठ आलोकित होने वाले हैं। मोरोपंत, जनक के रूप में आप भी अभिनंदनीय हैं।

कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे अमरवीर बलिदानी झांसी वाली रानी की दूसरी कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान, गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। एक संदेश में श्री मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा अभियान के तहत हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्रीय गीत के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कहा कि वंदे मातरम के शब्दों ने देशभक्ति की भावना जगाई और अलग अलग क्षेत्रों, भाषाओं, धर्मों के लोगों को एकजुट किया। इससे आज भी देश की पहचान को मजबूती मिल रही है। स्वतंत्रता दिवस पर भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ध्वजारोहण करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा मंदसौर, राजेंद्र शुक्ल रीवा और जिला मुख्यालयों पर मंत्रीगण ध्वजारोहण करेंगे। साथ ही 24 जिलों में कलेक्टर ध्वजारोहण करेंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज विश्व हाथी दिवस के अवसर पर साझा विषय को सुरक्षित करने के लिए देश की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री यादव ने लोगों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि हाथी आने वाली पीढ़ियों तक भारत के जंगलों और प्राकृतिक क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकें। और प्रदेश में मानसून का स्ट्रांग सिस्टम सक्रिय है। भारी बारिश से राज्य के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहीं पिछले 3 दिनों में SDRF, पुलिस, होमगार्ड और स्थानीय लोगों के प्रयासों से 527 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। और मौसम विभाग ने आज रतलाम, झाबुआ, धार, बड़वानी और इंदौर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है।
2: महिला सभा कार्यक्रम का आज का सफर आप तय करेंगी अपनी दोस्त ज्योति शर्मा के साथ। आप सभी सखियों का बहुत बहुत स्वागत है। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। सखियों, नए पौधे लगाने के लिए बरसात का मौसम एकदम परफेक्ट होता है। हमारे जो नन्हे नन्हे बच्चे होते हैं ना, वो भी पौधे के समान होते हैं। हर बच्चे की सोच, दुनिया को देखने का नज़रिया, सोचने समझने का नज़रिया अलग होता है। इसलिए सभी बच्चों को हम एक ही तरह से नहीं देख सकते, उनकी परवरिश भी एक ही प्रकार से नहीं हो सकती। प्यार तो हम सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को बेइंतहा करते हैं, पर ये हमें देखना होगा कि किस बच्चे को कब हमारे प्यार की ज़रूरत है और कब हमारे सख्त अनुशासन की। कहीं हमारे प्यार का ओवरडोज हमारे बच्चों की जड़ें खराब तो नहीं कर रहा। कहीं हमारे द्वारा बच्चे की हर ज़रूरत को पूरा करना, उसकी गलत बातों को बचपना समझकर अनदेखा करना और अपने बच्चे से कुछ भी काम ना करवाना उसकी ग्रोथ तो नहीं रोक रहा। सखियों, बचपन में बच्चे अक्सर कुछ ना कुछ गलत करते ही हैं। जैसे गलत बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, चोरी करते हैं और किसी के साथ में गलत व्यवहार भी करते हैं। पर कुछ पेरेंट्स इसे बहुत ही लाइटली लेते हैं, कहते हैं कि अरे बच्चा है, बड़ा होगा ना तो नहीं करेगा, अपने आप समझेगा। पर सखियों, यहाँ ये समझना होगा कि सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। कुछ समय के साथ बदलते हैं, बड़े होने पर खुद समझते हैं, पर कुछ बच्चों को यदि सख्ती से ना समझाया जाए तो फिर ये उनकी आदत में शुमार हो जाता है। सखियों, कभी कभी हमसे एक गलती ये भी होती है कि हम अपने बच्चे की क्षमता और प्रतिभा को भी अनदेखा करते हैं और दूसरे बच्चे से उसकी तुलना करते हैं। ऐसे में उस बच्चे का कोमल मन और उसकी क्षमता और प्रतिभा कुम्हला जाती है। तो सखियों, बच्चों को समझिए, उन्हें ऐसी परवरिश दीजिए कि वो कल के आदर्श युवा बने। ऐसे गगन की छांव में उन्हें पालिए जहां गम आंसू ना हो पर अच्छे संस्कार जरूर हों।

0: सखियों, बचपन बहुत कोमल होता है। बाल्यकाल में हुई घटना बच्चों के मन मस्तिष्क पर इस तरह अंकित हो जाती है कि उसकी टीस आजीवन रहती है। और आजकल बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के केस बहुत देखने में आ रहे हैं। सखियों, इसी सिलसिले में जानकारी देने के लिए आपको सुनवा रहे हैं एक भेंट वार्ता। पॉक्सो एक्ट बच्चों की सुरक्षा और कानून विषय पर एडवोकेट रागिनी मिश्रा से बातचीत कर रही हैं धम्म मित्रा।
1: छोटे बच्चों के साथ आज समाज में बहुत सारे अपराध हो रहे हैं, वो एक बहुत ही दुखद चीज है। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है एडवोकेट रागिनी मिश्रा जी को, जो जिला एवं सत्र न्यायालय में पॉक्सो समिति की सदस्य हैं। मैडम, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैडम, आप पॉक्सो समिति की सदस्य हैं, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि पॉक्सो एक्ट है क्या?
2: जी, ये पॉक्सो एक्ट भारत में संसद द्वारा एक अलग से एक्ट बनाया गया था, किसी आर्टिकल के अंतर्गत नहीं है। इसमें बच्चों की, जो 18 साल से छोटी उम्र के बच्चों के लिए, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये एक्ट बनाया गया था। इसको प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट कहा जाता है। और ये सारे जिलों में, सारे भारत में जितने भी अपने कोर्ट हैं, इनमें सब में है, और इनके लिए विशेष न्यायालयों की अलग से स्थापना की गई है।
1: जी, तो पॉक्सो एक्ट अलग से इसको बनाने का उद्देश्य क्या है?
2: आजकल समाज में आप देखते हैं कि बच्चों के साथ कितने अलग अलग प्रकार के अपराध होते हैं, घर में, समाज में, जहाँ भी वह जाते हैं, पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं, खेलने कूदने के लिए जाते हैं, पार्कों में जाते हैं।
1: जी।
2: तो हर जगह बच्चे अकेले होते हैं और छोटे बच्चे होते हैं।
1: जी।
2: उनके साथ में क्या है कि अलग अलग प्रकार से लोग, आजकल दूषित मानसिकता के लोग हैं, अलग उनकी सोच अलग है।
1: जी।
2: तो कुछ इस अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों से बच्चों को बचाने के लिए इस एक्ट का संशोधन किया गया है।
1: मैडम, आप ये बताइए कि पॉक्सो एक्ट के तहत हम कौन से अपराध जो होते हैं बच्चों के साथ, वो इसके अंतर्गत आते हैं?
2: पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जो भी अपराध होते हैं, वो होते हैं उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना, उनके साथ छेड़छाड़ करना, उनको कोई ऐसी पिक्चर दिखाना, इशारेबाजी करना, और छोटे बच्चों के साथ जो भी इस प्रकार से कोई करता है, जो इनकी उम्र 18 साल से कम की होती है, और यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार के कार्य करता है तो वह पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आता है।
1: यौन अपराध भी इसके अंतर्गत?
2: हाँ, यौन अपराध भी आते हैं, लैंगिक अपराध भी आते हैं, और लैंगिक हमला भी होता है जो किसी प्रकार से छेड़छाड़ करते हैं, तो वो सारे एक्ट के अंतर्गत आते हैं, सारे अपराध।
1: जी जी, आपने बताया कि ये 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ होता है, तो क्या ये एक्ट जो है लड़के और लड़कियां दोनों पर ही क्या ये
2: जी
1: लागू
2: होता है? यह एक्ट दोनों पर लागू होता है जो 18 साल से कम उम्र के हैं।
1: जी जी, आप बहुत समय से ऐसे केस देख रही होंगी, तो आप हमें ये बताइए कि किस तरीके के केस आपके पास आते हैं?
2: देखिए, मैं वर्ष 1991 से प्रैक्टिस कर रही हूँ, और मैं 2002 से 2004 तक अपने जिला सत्र न्यायालय में गवर्नमेंट एडवोकेट रही हूँ, और वर्तमान में इस समय मैं पॉक्सो समिति की सदस्य हूँ। तो जब मैं केस लड़ती हूँ, मेरे पास बहुत सारे इस प्रकार के केस आते हैं, तो ये केस अलग अलग जगह से आते हैं। जैसे अभी मेरे पास एक केस आया था, तो टीचर थे विद्यालय में, उनके द्वारा एक छोटी बच्ची के साथ, 14 साल की बच्ची के साथ में इस प्रकार का कृत्य किया गया था, वो आया था। अब उसमें क्या है कि वो बच्ची ने बहुत समय तक अपने घर में नहीं बताया, फिर कोई प्रॉब्लम हुई, मदर ने वॉच किया, देखा, फिर कंप्लेंट हुई, फिर ये केस आते हैं। तो इस प्रकार जहाँ जहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं, और जहाँ भी किसी भी को एजुकेशन में पढ़ते हैं या अलग से जाते हैं, तो वहाँ इस प्रकार के अपराध, इस प्रकार के केस कोर्ट में आते हैं। और ये टीचर हैं, जे कोई वर्कर हैं, ऑटो वाले हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ बच्चे आना जाना करते रहते हैं, उनके साथ इस प्रकार का अपराध किया जाता है।
1: जी जी, इस तरह के जो अपराध होते हैं, वो एक बहुत ही खराब मानसिकता के लोगों के द्वारा की जाती है, इसमें किस तरीके की सजा का प्रावधान होता है?
2: देखिए, पॉक्सो एक्ट में 46 सेक्शन है, और इसमें जो मेन है वो 3, 4, 5, 6, 9, 10 हैं। तो इसमें जो सेक्शन 3 और 4 है, वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि इसमें बच्चों के साथ में उनके यौन पार्ट को छूना, उनको हैरेस करना, उनके वेस्ट पे हाथ रखना, जो अलग अलग प्रकार से उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, जैसे कि बच्चे डर जाते हैं। और इसमें सजा का प्रावधान यह है कि 3 और 4 में 10 साल की सजा है, इसमें न्यूनतम सजा 3 ईयर की है, 3 ईयर से लेकर 10 ईयर है, 20 ईयर है और आजीवन कारावास है और यहाँ तक की फांसी भी है। तो यदि ये केस प्रूफ होने पे होता है कि किस बच्चे के साथ क्या किया, सबसे अधिक सपोर्टिंग मेडिकल होता है। यदि मेडिकल में भी सारी चीज़ें आती हैं और बच्चे सपोर्ट करते हैं, उनके मदर फादर सपोर्ट करते हैं, एविडेंस क्लियर होती है, तो एक्यूज को फांसी की सजा भी होती है।
1: जी मैडम, मान लीजिए किसी बच्ची के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार हुआ है और वो घर में अपनी मदर को बताती है, तो मदर अगर पुलिस में रिपोर्ट करना चाहती है या वो उस अपराधी को उजागर करना चाहती है, तो किस तरीके से कर सकती है?
2: यदि किसी बच्ची के साथ ऐसा होता है, वो अपने घर में बताती है, तो घर वालों का सबसे प्रथम कर्तव्य होता है कि उस बच्ची को अच्छे से मेंटल रूप से प्रिपेयर करें और समझाएं कि ये तुम्हारे साथ गलत हुआ है, इसको अपन को दबाना नहीं है। और जिसने भी किया है उसके लिए आप कंप्लेंट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप वहाँ ही जाएं। यदि आपका घर कहीं दूर है, 8-10 किलोमीटर दूर पर थाना है या कहीं है तो नहीं जा पाते, तो आप मोबाइल द्वारा या लेटर लिख के किसी भी प्रकार से कर सकते हैं इसकी रिपोर्ट और उनको सजा दिलवा सकते हैं।
1: मैडम, कई बार अपराध हुआ है,

0: तो सामाजिक दबाव भी रहता है उनको मन में। कई बार अभिभावकों को लगता है कि बच्चे का नाम कहीं आएगा तो फिर बच्चे के फ्यूचर को लेकर चिंता होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए?
1: ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। ये एक्ट इसलिए बना हुआ है, इसमें बच्चों का नाम उजागर नहीं किया जाता है, ना उनकी पहचान उजागर की जाती है, ना उनकी फोटो दी जाती है, यहाँ तक कि नाम भी उजागर नहीं, और उनका जो रेजिडेंस है ना वहाँ तक भी नहीं बताया जाता है कि वो उस एरिया के रहने वाले हैं, जिससे कि बच्चों की पूर्णता सुरक्षा रहती है और बच्चों के भविष्य पर कोई इस पर दुर्व्यवहार नहीं पड़ता है। और जहाँ तक हो सकता है कि इसके लिए कानून में ये सबसे अच्छी सुविधा है कि बच्चे बड़े होते हैं, आगे जाकर कुछ बनते हैं या उनकी शादी ब्याह होती है लड़कियों की, तो उनको कहीं भी इस प्रकार से नीचे ना देखना पड़े समाज में। इसलिए इसमें पेपर में मीडिया में कहीं भी इनका नाम नहीं दिया, यहाँ तक कि कोर्ट में जब स्टेटमेंट होते हैं और FIR होती है उसमें भी इनका नाम लिख नहीं किया जाता है, इनको पीड़िता के नाम से ही बुलाया जाता है।
0: जी जी मैडम, इस तरीके से जो केस चलता है तो इसमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता होगा।
1: इसमें यही चुनौतियाँ होती हैं कि भाई हमें पूरा अपना प्रूफ करना है, केस कैसे क्या हुआ था बोलना है, वहाँ पर बच्चों के साथ भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें मैन तो स्टेटमेंट बच्ची के होते हैं जो एक कोर्ट में होता है और एक कैमरा ट्रायल होता है, इसमें सबके सामने नहीं किया जाता है। तो इसमें बच्ची जो बोलती है उसको स्टेटमेंट कोर्ट करती है और बच्ची के बयान पर ही चुनौतियाँ ये होती हैं कि भाई कोई एक्यूज़ है, उनने चार लोगों को खड़ा कर दिया,

0: कि भाई अब आगे इस पर एक व्यक्ति को ऐसी सजा हुई है तो अब किसी को ये काम नहीं करना है।
1: मैडम अब आप ये बताइए कि जैसे घर में किसी बच्ची के साथ ऐसा हुआ है तो घर के ही लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं?
0: आजकल आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग घर के ही इन्वॉल्व होते हैं। बहुत सारे केस ऐसे आते हैं जिसमें फादर, ब्रदर, पड़ोसी या रिश्तेदार, चाचा, मामा, बच्ची कहीं जाती हैं तो उनके साथ में इस प्रकार के कृत्य किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज अपने घर परिवार में ही ज़्यादा हो रही हैं। तो सबसे पहले तो मदर फादर को अवेयर होना चाहिए अपने बच्चों के प्रति कि हम कहाँ जा रहे हैं और किसके साथ जा रहे हैं, कहाँ छोड़ रहे हैं और कितने समय तक छोड़ रहे हैं। और जब बच्चे को हम वापस लेते हैं तो हमें उससे सारी जानकारी लेनी चाहिए।
1: मान लीजिए किसी बच्चे के साथ ऐसा हुआ है तो मदर कहाँ पर अपनी शिकायत कर सकती है?
0: तो मदर जाकर सबसे नज़दीकी थाना जो हो वहाँ कर दे।
1: मैडम कई बार बच्चे उनके साथ अगर कोई अपराध होता है तो वो शांत हो जाते हैं, वो नहीं बता पाते अपनी समस्या को। मान लीजिए काफ़ी समय के बाद, साल दो साल के बाद वो बता रहे हैं तो क्या फिर ये एक्ट लागू होगा?
0: हाँ, यदि किसी बच्चे के साथ में कुछ हुआ है और टाइम निकल जाता है, वो डर के मारे नहीं बता पा रहा है या किसी कारण से उनको प्रेशर में लिया जाता है कि यदि तुम बताओगे तो हम ये कर देंगे, तुम्हारे घर वालों को कर देंगे, भाई बहन को कर देंगे, तो यदि उसके साथ माइनर के समय में कोई अपराध घटित हुआ है और यदि वो टाइम निकल गया है और यदि वो लगातार जारी है वो अपराध और वो बच्चा फिर आगे जाकर मेजर हो जाता है तो भी यदि वो कंप्लेंट करता है तो वो कंप्लेंट दर्ज की जाएगी और उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन उसी डेट से चलेगा जब वो माइनर थी।
1: मैडम आपने आज पॉक्सो एक्ट के बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी दी और इसे समझ के हमारे अभिभावक जानकारी का उपयोग जरूर करेंगे। मैडम आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सखियों अभी आप सुन रही थी भेंट वार्ता, पॉक्सो एक्ट, बच्चों की सुरक्षा और कानून विषय पर एडवोकेट रागिनी मिश्रा से बातचीत कर रही थी धम्म मित्रा। सखियों कभी कभी बच्चे अपने साथ हुई दुर्घटना से इतने आहत हो जाते हैं कि किसी से कुछ शेयर नहीं करते, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी नहीं बता पाते। हमें ही उनके व्यवहार में बदलाव को समझते हुए कुछ करना होगा। जैसे उनकी कॉपी के लास्ट पेज को देखें, वहाँ कुछ ऐसा मिलेगा जिससे हमें समझ आएगा कि हमारा बच्चा क्यों चुप है, या फिर हम जो हमारे बच्चे से बहुत क्लोज है उससे बोलें वो बच्चे से बात करें, या फिर हम अपने बच्चे को किसी काउंसलर के पास ले जाएं। सखियों ये सारी चीज़ें हमें करनी होंगी, तभी हम अपने बच्चे के मन को पढ़ पाएंगे। सखियों सावन का महीना चल रहा है, प्रकृति की सुंदरता जितनी सावन के महीने में देखने मिलती है ना, उतनी फिर नहीं मिलती। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, पर हाँ लगातार वर्षा से कुछ परेशानियाँ तो ज़रूर होती हैं, जैसे जगह जगह पर जल भराव हो जाता है जिसके कारण आना जाना मुश्किल हो जाता है, कपड़े नहीं सूख पाते। पर सखियों ये जो परेशानियाँ हैं ना, ये कुछ समय की होती हैं, पर बरसात का ये जो पानी है ना, ये हमारे साल भर तक काम आता है, क्योंकि बरसात के पानी से ही तो वाटर लेवल बढ़ता है कुओं में, बांधों में, नदी में, यहाँ तक कि घर के बोरिंग में भी और तालाबों में भी पानी का लेवल बरसात के पानी से ही बढ़ता है। सखियों बरसात के पानी का संचय यदि हम करते हैं ना, तो गर्मियों में पानी की जो परेशानी होती है ना, वो दूर हो सकती है और जल का संरक्षण भी हो जाता है। क्योंकि यदि बरसात औसत या औसत से कम होती है तो फिर गर्मियों में जल संकट की स्थिति बन जाती है, और पानी की कमी से हम कितने परेशान हो सकते हैं ये हमसे बेहतर और भला कौन जान सकता है। तो क्यों ना हम जल संरक्षण की शुरुआत अपने घर से ही करें। सखियों अपनी रोज़मर्रा की आदतों को बदलकर हम हजारों लीटर पानी खुद बचा सकते हैं। कैसे? अब सखियों जैसे हम बहते पानी में अक्सर काम करते हैं ना, फल धोना, सब्जियां धोना, और समय नल भी खुला छोड़ देते हैं, तो अगर ऐसा ना करके हम किसी बर्तन में पानी भरकर धोएंगे ना फल और सब्जियाँ, तो इससे पानी की बचत होगी, और जिस पानी से हम फल और सब्जियाँ धो रहे हैं वो पानी हम अपने पौधों की क्यारियों में भी डाल सकते हैं। सखियों आरओ से निकलने वाले पानी को हम रीयूज़ कर सकते हैं, पोंछा लगाने में, गाड़ी धोने में, पेड़ पौधों में डालने में, या फिर कपड़े धोने में। और सखियों हम जो फ्रोज़न सामान को पिघलाने के लिए बहते पानी का उपयोग करते हैं ना, अगर हम ये ना करें, उसे 2 से 3 घंटे पहले ही फ्रिज से निकाल कर रख दें, हमारा पानी बच जाता है। और अगर घर में किसी भी नल में थोड़ा सा भी लीकेज हो ना, तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर को तभी चलाएं जब उनमें पूरे बर्तन और कपड़े हों, और अपनी गाड़ियों को लेजम से ना धोकर

बाल्टी में पानी लेकर धोएं। सखियों एक ज़रूरी बात, सड़क से जाते वक्त यदि कभी भी कहीं भी नल बहता हुआ देखे ना तो उसे तुरंत बंद करें, और यदि कहीं कोई पाइपलाइन टूटने से पानी बहता देखें तो तुरंत संबंधित हेल्पलाइन पर कॉल करें। जल है तो कल है, ये हम सभी जानते हैं, पर इसे दिल से मानना शुरू कर देंगे ना तो हम कभी भी जल संकट की स्थिति में नहीं आएंगे। फिलहाल तो सखियों बरखा बहार है, तो इस रेनी सीजन को एंजॉय करते हैं इस गीत के साथ।

सखियों कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा। मतलब जो भी करने की हमारी इच्छा होती है ना, हम जिसे बहुत शिद्दत से चाहें, चाहे वो कुछ भी हो, आगे की राह हमें वहीं से मिलनी शुरू हो जाती है और जिस पर चलकर एक स्वर्णिम भविष्य का निर्माण होता है। विज्ञान विषय की चाह नहीं, एक बालक के वैज्ञानिक बनने की राह बनाई। वो वैज्ञानिक ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है, डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई, जिन्होंने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को दिशा प्रदान की। विक्रम साराभाई का जन्म अहमदाबाद में 12 अगस्त सन 1919 को हुआ था। उनके पिता का नाम अम्बालाल साराभाई और माता का नाम सरला साराभाई था। गुजरात कॉलेज से विज्ञान विषय में इंटरमीडिएट करने के बाद सन 1937 में वे इंग्लैंड चले गए और वहाँ कैम्ब्रिज से उन्होंने आगे की पढ़ाई की। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने पर वे भारत लौट आए और बेंगलोर में स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान में कार्य करने लगे। इसरो की स्थापना डॉक्टर साराभाई की महान उपलब्धियों में से एक है। रूस द्वारा प्रथम अंतरिक्ष अभियान स्पूतनिक के प्रमोशन के बाद उन्होंने भारत सरकार को भी अंतरिक्ष कार्यक्रम के महत्व से परिचित कराया। उनके प्रयासों से हमारे देश ने भी अपने

0: अंतरिक्ष कार्यक्रम को आरंभ किया। विक्रम साराभाई ने विविध क्षेत्रों में अनेक संस्थानों की स्थापना की और अनेक संस्थानों की स्थापना में सहयोग भी किया। अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई नवयुग की स्थापना हेतु छात्रों के लिए विज्ञान की शिक्षा को अनिवार्य मानते थे। उनका मानना था कि विज्ञान जीवन की अनेक समस्याओं को हल करने की क्षमता रखता है। विक्रम साराभाई ने कहा था, हमें अपने लक्ष्य पर कोई संशय नहीं है। हम चंद्र और उपग्रहों के अन्वेषण के क्षेत्र में विकसित देशों की होड़ का सपना भी नहीं देखते, किंतु राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थपूर्ण भूमिका निभाने के लिए मानव समाज की कठिनाइयों के हल में अति उन्नत तकनीक के प्रयोग में किसी से पीछे भी नहीं रहना चाहते। पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर विक्रम साराभाई जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। सखियों, अब घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि अपने कार्यक्रम महिला सभा को यहीं संपन्न किया जाए, तो दीजिए अनुमति अपनी दोस्त ज्योति शर्मा को। आप सभी का दिन शुभ हो, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति थी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
3: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
4: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
2: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
3: आकाशवाणी है ना,
5: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
3: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
2: शाम सुहानी हो,
3: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
2: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
3: सफर में
2: आपके साथ
3: आकाशवाणी।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
8: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा, स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
9: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है हरगोविंद खुशवाहा और साथियों द्वारा गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है। लीजिए प्रस्तुत है एक झूला गीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे हरगोविंद कुशवाहा और साथियों द्वारा गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है प्रियंका शर्मा द्वारा गाए भजन। ये कार्यक्रम भी आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे प्रियंका शर्मा द्वारा गाए भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति थी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: हिंदी वो धागा है जो विभिन्न मातृभाषाओं रूपी फूलों को पिरोकर भारत माता के लिए सुंदर हार का सृजन करेगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है केके और सुनिधि की आवाज में, फिल्म टैक्सी नंबर 911 से।

विशाल शेखर का संगीत विशाल दालदानी के लिखे बोल केके और सुनिधि की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म टैक्सी नंबर 9211 से। कार्यक्रम का अगला गीत केके और सुनिधि की आवाज़ में ही फिल्म खट्टा मीठा से।

0: प्रीतम का संगीत इरशाद कामिल के लिखे बोल के और सुनिधि चौहान की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म खट्टा मीठा से। और इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आत्मकथाएं पढ़ने और दूसरों के संघर्षों से सीख लेने की अपील की है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माय लाइफ माय स्ट्रगल्स के विमोचन कार्यक्रम में पीएम मोदी ने ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि आज के

रील के युग में युवाओं को शॉर्टकट से बचना चाहिए क्योंकि शॉर्टकट नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा कि रामनाथ कोविंद का जीवन दृढ़ संकल्प और संघर्ष से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज दिल्ली में हर घर तिरंगा एक रैली को हरी झंडी दिखाई। स्वतंत्रता दिवस से पहले आयोजित इस रैली में एनडीए के सांसद और बड़ी संख्या में समर्थक तिरंगा लेकर शामिल हुए। रैली भारत मंडपम से मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम तक निकाली गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज अहमदाबाद में गुजरात के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों से मुलाकात करेंगे। मेगा निवेश रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री उद्योग समूहों के प्रतिनिधियों के साथ 1-to-1 बैठकें भी करेंगे। बैठकों में ऊर्जा, वस्त्र, विनिर्माण, अधोसंरचना और औद्योगिक विस्तार के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर बात होगी। मुख्यमंत्री गुजरात के उद्योग जगत को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2027 के लिए भी आमंत्रित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति में सीपीसीटी परीक्षा बाधक नहीं बननी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीपीसीटी परीक्षा पास करने की अनिवार्यता को लेकर जल्द सकारात्मक निर्णय लिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिलना चाहिए और सीपीसीटी के कारण किसी कर्मचारी को पदोन्नति से वंचित या रिवर्ट नहीं किया जाना चाहिए। हरियाली अमावस्या के मौके पर आज तड़के उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की भस्म आरती हुई। करीब 2:30 बजे मंदिर के कपाट खोले गए और विधि विधान से पूजा अभिषेक शुरू हुआ। बाबा महाकाल का जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और फलों के रस से पंचामृत अभिषेक किया गया। इसके बाद भांग, चंदन, आभूषण और फूलों से बाबा महाकाल का आकर्षक श्रृंगार किया गया। बात खेल की। प्रदेश की फेंसिंग खिलाड़ी खुशी दाभाड़े ने नाइजीरिया में आयोजित सीनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। खुशी ने वुमेन्स ईपी इंडिविजुअल स्पर्धा में ये उपलब्धि हासिल की है। खुशी मध्य प्रदेश राज्य फेंसिंग अकादमी भोपाल की खिलाड़ी हैं और इससे पहले भी कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज सितंबर में दिल्ली में खेली जाएगी। तीनों मुकाबले अरुण जेटली स्टेडियम में 13, 15 और 17 सितंबर को होंगे। खास बात यह है कि मैच भारत में होने के बावजूद अफगानिस्तान इस सीरीज का मेजबान होगा। अफगानिस्तान लंबे समय से अपने घरेलू मुकाबले भारत में आयोजित करता रहा है। अब बात मौसम। भी मानसून का स्ट्रॉन्ग सिस्टम सक्रिय रहेगा। इससे इसका सबसे ज्यादा असर इंदौर संभाग में देखने को मिल सकता है, जहां रतलाम, झाबुआ, धार, बड़वानी और इंदौर में भारी बारिश का अलर्ट है। भोपाल और उज्जैन संभाग में कई जगह बाढ़ जैसे हालात हैं और नदियां उफान पर हैं। बारिश को देखते हुए भोपाल, रायसेन, गुना और खंडवा में आज सभी स्कूल बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 15 अगस्त को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में होने वाले राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। समारोह में पुलिस, एसएएफ, सीआईएसएफ, जेल गार्ड, होम गार्ड, एनसीसी और स्काउट्स गाइड की संयुक्त परेड होगी और मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। डिंडोरी जिले में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत जिले में देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया। सतना जिले के चित्रकूट में श्रावण मास की हरियाली अमावस्या को बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंची है। सर्वाधिक संख्या किसानों की है, जो अच्छी बारिश और अच्छी फसल होने के लिए को लेकर इस अमावस्या को चित्रकूट पहुंचते हैं। बड़वानी में कल युवा संगम आयोजित किया गया, जिसमें कुल 125 बेरोजगार आवेदकों ने पंजीयन करवाया, जिसमें 3 कंपनियों द्वारा 91 बेरोजगार आवेदकों का प्रारंभिक रूप से चयन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार, दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर

लगाया। इस राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं पर लगाया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान।

0: पूरी तरह तैयार है और संसद में सदस्यों की ओर से उठाए गए सभी सवालों का जवाब देगी। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और वो चर्चा के लिए तैयार है।
1: आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दें, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
0: श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रही।
1: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। यहाँ तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही मांग रहा है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि विपक्ष को गृहमंत्री के किसी भी बयान में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वो जवाबदेही चाहता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों को प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही सुबह शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। इस समय दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजधानी रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि सरकार द्वारा उनकी मांगे स्वीकार किए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से छात्रों के साथ संवाद करने की अपील की। प्रदर्शनकारियों के अनुसार वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी देर रात आंदोलन स्थल पर पहुंचे और आमरण अनशन कर रहे छात्रों से अनशन समाप्त करने का आग्रह किया। हालांकि छात्रों ने अनशन जारी रखने की बात कही और बताया कि आंदोलन की आगे की रणनीति कोर कमेटी तय करेगी। इस बीच झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र कल निर्धारित समय से एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। परीक्षा विवाद और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सदन में लगातार हंगामा हुआ। छात्रों का कहना है कि केवल परीक्षा रद्द करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच कर दोषियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। विश्व रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वो अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ें और रील्स तथा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचें। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया।
3: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का मार्गदर्शन उनके लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत रहा है।
3: कोविंद जी ने ये काम हम सब के लिए किया है, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कितना कुछ है जिसमें गरीब वंचित तबके से आए तमाम लोग अपने जीवन की परछाई देख सकते हैं। कैसे एक साधारण परिवार मुश्किल हालातों में भी जीवन की शुचिता और ईमानदारी से समझौता नहीं करता।
0: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक माध्यम भी है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल

0: की कीमतें बढ़ गई हैं। राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाए। संशोधित दरें कल आधी रात से लागू हो गई हैं। इससे प्राप्त राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए दिया जाएगा। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और विधायक राकेश जम्वाल ने इस फैसले को जन विरोधी बताया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय व्यापार महोत्सव का उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करना है, जिससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश की प्रगति को गति मिल सके। नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने ये बात कही। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा कि प्रौद्योगिकी और व्यापार भारत की विकास यात्रा के दो प्रमुख आधार हैं। गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का शुभारंभ करेंगे। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न लाइब्रेरियों को एक साथ जोड़ने के लिए विकसित किया गया है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने हथकरघा क्षेत्र में एक बड़े बदलाव का आह्वान किया है। उन्होंने उद्योग को पुनर्जीवित करने और बुनकरों तथा कारीगरों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए नवाचार, बाजार उन्मुख डिजाइन और टिकाऊ उत्पादन पर बल दिया। नई दिल्ली में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले वार्षिक सम्मेलन सूत्र 2026 में श्री सिंह ने ये बात कही। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।
1: इस वर्ष हर घर तिरंगा 2026 अभियान वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के जज्बे को समर्पित है। यह अभियान देशभक्ति, तिरंगे के प्रति गर्व और हमारे राष्ट्र गीत में झलकने वाले मातृभूमि के प्रति प्रेम का जश्न मनाता है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आजादी के उपलक्ष्य में उसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसकी शुरुआत इस सोच के साथ हुई थी कि राष्ट्र ध्वज के साथ हमारा रिश्ता हमेशा व्यक्तिगत होने के बजाय औपचारिक और संस्थागत रहा है। इसलिए एक राष्ट्र के तौर पर सामूहिक रूप से तिरंगे को घर लाना न केवल तिरंगे के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव का प्रतीक बन गया बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का भी प्रतीक बन गया। इस पहल का मकसद लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना और भारतीय राष्ट्रध्वज के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि वंदे मातरम की भावना ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया और आज भी ये देश की पहचान को मजबूत कर रही है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित हर घर तिरंगा बाइक रैली में हिस्सा लेने वालों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कही।
2: इन तिरंगा यात्रा, बाइक एंड साइकिल रैलीज, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड कंसर्ट्स, ईच एक्टिविटी हैज अ डिफरेंट फॉर्म बट द सेंटीमेंट बिहाइंड देम इज कॉमन। द नेशनल फ्लैग इज द सिंबल इन व्हिच एवरी सिटीजन कैन फाइंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान, गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। सोशल मीडिया पोस्ट में एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा अभियान के तहत हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज युवाओं से देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उठाने और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। नई दिल्ली में तिरंगा यात्रा के दौरान युवा छात्रों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही। जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलेवार्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में भी हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देशभक्ति का रंग देखने को मिला। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तिरंगा यात्राओं से लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
3: स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान जोर पकड़ रहा है। प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक चल रहे इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में तिरंगा यात्रा के साथ की। इसके बाद से प्रदेश भर में तिरंगा यात्राएं, बाइक और साइकिल रैलियां निकाली जा रही हैं। गांवों से लेकर शहरों तक तिरंगा मेले, प्रदर्शनियां, मानव श्रृंखला और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्कूल कॉलेजों में भी रंगोली, चित्रकला, निबंध और देशभक्ति गीतों जैसी प्रतियोगिताओं के जरिए बच्चों और युवाओं को अभियान से जोड़ा जा रहा है। 13 से 15 अगस्त तक लोगों से अपने घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने की खास अपील की गई है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए चर्चा शुरू हुई। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने ये विधेयक प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 में और संशोधन करना है।

0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे के लगभग 89% आरक्षित टिकट ऑनलाइन बुक किए जा रहे हैं। वर्ष 2013-14 में ये आंकड़ा लगभग 49% था। श्री वैष्णव ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के एक चौल में भूस्खलन होने से 6 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
1: मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 6 लोगों की मौत हो गई। बृहन मुंबई महानगर पालिका के अनुसार यह घटना चिराग नगर स्थित गौसिया चौल में हुई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पहाड़ी का एक हिस्सा चौल पर गिर गया, जिससे 2 से 3 मकान मलबे की चपेट में आ गए। घटना के बाद मुंबई की महापौर ऋतु तावड़े और अतिरिक्त नगर आयुक्त पूर्वी उपनगर डॉक्टर अविनाश घाटने ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और जारी बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। प्रार्थना के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से मैं स्वीटी जैन।
0: वहीं मौसम विभाग ने राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कल तक बिजली चमकने और तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा तट के पास उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उत्तरी और तटीय ओडिशा के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बना है, जिससे उड़ीसा में बारिश बढ़ गई है। भद्रक, केंद्रापड़ा और जगतसिंहपुर में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज चेतावनी जारी की गई है। 25 अन्य जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की गई है। IMD को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उड़ीसा में व्यापक होगी और आज व कल कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। तटीय इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। खेलों में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर के प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावुखेर सिंदारोव को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। 95 चालों तक चले इस मैच में प्रज्ञानंदा ने शुरुआत से अंत तक अपना दबदबा बनाए रखा। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंदा के 2 मैचों में 1.5 अंक हो गए हैं। अभी समाचार मिला है कि लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता के दूसरे दौर में जावुखेर सिंदारोव को हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रक्षा। इस कार्यक्रम में हम आपके भेजे हुए पत्रों को शामिल करते हैं और आपको सुनवाते हैं आप ही के पसंद के गीत। तो कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवाते हैं गीत कुमार सानू और संजीवनी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है करीब और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले की तरफ से। इसके अलावा हमें पत्र प्राप्त हुआ है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से TD मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल का। इसके अलावा रिंगनी छत्तीसगढ़ से हमें लिखा है दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये पहला गीत।

अनु मलिक का संगीत राहत इंदौरी के लिखे बोल। संजीवनी और कुमार सानू की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म करीब से। कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है अगला गीत आपको सुनवाने का, जो है सोनू निगम की आवाज़ में फिल्म वास्तव से। और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन की तरफ से। घंटाघर चौक खंडवा से हमें लिखा है संजय पंचौलिया, प्रियंका पंचौलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचौलिया ने। दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानकपुरी, लक्षणपुर से विश्वनाथ साहू और चारडूंगी से पिपरिया से दुर्गाराम साहू ने भी इस गीत की फरमाइश की है। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

जतन ललित का संगीत समीर के लिखे बोल, सोनू निगम की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म वास्तव से। कार्यक्रम आपकी फरमाइश का है और अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म सौतन से। और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूराज श्रीमाली की ओर से। इसके अलावा पत्र प्राप्त हुआ है पाकीज़ा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाखिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलकमश खत्री, रमेश गौर और मोहम्मद शादाब खत्री की ओर से। तो लीजिए, आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

उषा खन्ना का संगीत सावन कुमार के लिखे बोल, लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म सौतन से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म रॉकी से, और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार की ओर से। इसके अलावा आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से हमें लिखा है हमारे श्रोता अभिजीत गवाड़कर राही, श्रीमती सरिता गवाड़कर, प्रिंस एकांश गवाड़कर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाड़कर, प्रणीता गवाड़कर, अर्जुन गवाड़कर टुक टुक ने, आकार हाइट्स बहादुररा नागपुर से वैशाली शैलेश गवाड़कर, सुमित गवाड़कर, कुमारी ध्वनि गवाड़कर परी, कोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित मोहित और परमानंद आर्य ने। तो आप सभी श्रोताओं के लिए लीजिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

आर्डी बर्मन का संगीत आनंद बख्शी के लिखे बोल, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म रॉकी से। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म हिना से, और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है देवरी भाटापारा छत्तीसगढ़ से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री की तरफ से। इसके अलावा हमें लिखा है पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रामेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया और बेबी आरजू जाजौरिया ने। आदर्श नगर मलोट से हमें राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा का भी पत्र प्राप्त हुआ है। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

रविंद्र जैन का संगीत उन्हीं के लिखे बोल लता मंगेशकर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब हम आपको आज के सांधकालीन सभा के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण दे दें। आज शाम 5:02 पर सुनिए युवा साथियों का विशेष कार्यक्रम युवाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति होगी। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम सुनाया जाएगा आज शाम 6:00। रात 7:21 पर सुनिए कार्यक्रम ग्राम सभा। संसद समीक्षा सुनवाई जाएगी आज रात 8:00। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। सुर्खियों में सुनिएगा आज रात 8:15 पर कार्यक्रम चर्चा का विषय है, सुन सकेंगे आज रात 9:30 पर। नाटक सितार बज रहा है प्रसारित होगा आज रात 10:00। लेखक हैं श्रीकांत, प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आज रात 10:30 पर सुनिएगा कृष्णाराम चौधरी का शहनाई वादन राग केदार। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। ये आकाशवाणी भोपाल है। अब हमारी ये सभा मीडियम वेव पर समाप्त होती है। शाम 5:00 से मीडियम वेव पर सभा पुनः आरंभ होगी। इस दौरान डीटीएच के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा। ये आकाशवाणी भोपाल है। लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है हरगोविंद कुशवाहा और साथियों द्वारा गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे हरगोविंद कुशवाहा और साथियों द्वारा गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत, जहां हम आपको सुनवाएंगे प्रियंका शर्मा द्वारा गाए भजन। ये कार्यक्रम भी आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे प्रियंका शर्मा द्वारा गाए भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति थी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है सोनू निगम की आवाज़ में फिल्म हद कर दी आपने से।

आनंद राज आनंद का संगीत आनंद बख्शी के लिखे बोल। सोनू निगम की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म हद कर दिया आपने से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है सुखविंदर सिंह और अनुराधा श्रीराम की आवाज़ में, फिल्म जिस देश में गंगा रहता है से।

आनंद राज आनंद का संगीत देव कोहली और प्रवीण भारद्वाज के लिखे बोल, सुखविंदर सिंह साथ ही अनुराधा श्रीराम की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म जिस देश में गंगा रहता है से। कार्यक्रम का अगला गीत सोनू निगम की आवाज़ में प्रस्तुत है फिल्म जोरू का गुलाम से, और साथ दे रही हैं अलका याग्निक।

हिमेश रेशमिया का संगीत सुधाकर शर्मा के लिखे बोल, अलका याग्निक और कमल खान की आवाज़ में गीत सुना अपने फिल्म कहीं प्यार ना हो जाए से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म मिशन कश्मीर से, आवाज़ है शंकर महादेवन, सुनिधि चौहान और जसपिंदर नरूला की।

0: शंकर एहसान लॉय का संगीत, राहत इंदौरी के लिखे बोल, शंकर महादेवन, सुनिधि चौहान और जसविंदर नरूला की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म मिशन कश्मीर से। और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।
0: ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
2: लोकसभा ने आज विदेशी अंशधान विनियमन संशोधक विधेयक 2026 को विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। विधेयक का लक्ष्य विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आत्मकथाएं पढ़ने और दूसरों के संघर्षों से सीख लेने की अपील की है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माय लाइफ माय स्ट्रगल्स के विमोचन कार्यक्रम में पीएम मोदी ने ये बात कही। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 15 अगस्त को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में होने वाले राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। हरियाली अमावस्या के मौके पर आज तड़के उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल

की भस्म आरती हुई। करीब 2:30 बजे मंदिर के कपाट खोले गए और विधि विधान के साथ पूजा अभिषेक शुरू हुआ। प्रदेश की फेंसिंग खिलाड़ी खुशी दाभाड़े ने नाइजीरिया में आयोजित सीनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने खुशी को रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज सितंबर में दिल्ली में खेली जाएगी। तीनों मुकाबले अरुण जेटली स्टेडियम में 13, 15 और 17 सितंबर को होंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी भोपाल है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम कहकशां।

आदाब दोस्तों, उर्दू प्रोग्राम कहकशां को लेकर हाजिर हूं मैं आपका दोस्त वाजिद खान। इस प्रोग्राम में आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, महफिल समा में आज का मौजू है शेख अली मुत्तकी बुरहानपुरी हयात व खिदमात। सामीन, शेख अली मुत्तकी बुरहानपुरी सन 1480 में शहर बुरहानपुर में पैदा हुए। आबाई वतन शिराज हिंद जौनपुर था। शेख अली मुत्तकी की परवरिश नहायत ही नेक साले दीनदार माहौल में अपने वालिद के जेर आफियत हुई, जो कि उस इलाके के मारूफ आलिम दीन थे। लेकिन अभी शेख अली मुत्तकी 8 बरस के ही थे कि उनके वालिद का साया सर से उठ गया। लेकिन शेख ने हिम्मत नहीं हारी और दुनिया की तमाम मुश्किलात का सामना पूरी कुव्वत और जवां मर्दी के साथ किया। लेकिन आप रातों दिन ज़ात बारी ताला से लौ लगाए रखते, जिसके नतीजे में आपको महसूस होने लगा कि ये दुनिया यकीनन एक रोज खत्म हो जाएगी। जिंदगी का सूरज एक दिन जरूर गुरूब हो जाएगा। दुनिया दारुल अमल और आखरत दारुल जजा है। इस एहसास ने आपके जमीर और अंदरून को झिझोड़ कर रख दिया। फिर उन्होंने हिसामुद्दीन मुत्तकी के यहाँ मुल्तान में दरसो तदरीस और तरबियत बातनी में दिन गुजारे। फिर गुजरात वापस तशरीफ लाए और अहमदाबाद में इकामत पजीर हो गए। फिर रिश्ते इस दिवास से मुंसलिक हो गए। फिर अपनी अहलिया और दीगर अहले खानदान के साथ जिंदगी गुजारी। उस बीवी से एक बेटा भी हुआ, जो लड़कपन में ही दारे फानी को कूच कर गया। फिर शेख अली मुत्तकी ने मदीने में सुकूनत इख्तियार की और मक्का चले गए।

दोस्तों, अभी आप कव्वाल जानी बाबू की आवाज़ में कव्वाली ईमा की रोशनी है मोहम्मद के शहर में समात फरमा रहे थे और कलाम था पयाम सईदी का। मक्का मौजमा पहुंचकर शेख अबुल हसन शाफी की खिदमत में हाजिर होकर मजीद इल्म शरीयत और तरीक़त पाया और फिर शेख मोहम्मद बिन मोहम्मद सखावी की खिदमत में रहकर सिलसिलाए आलिया कादरिया का खिरका हासिल किया और हदीस की सनद शेख शहाबुद्दीन अहमद बिन हजज मक्की से हासिल की और मक्का मौजमा में सुकूनत इख्तियार कर ली। इसी दौरान आपने कंजुल उमाल नामी किताब मुदव्वन और मुरत्तब फरमाई। ये किताब आपका अजीम इल्मी और दीनी शाहकार है। साथ ही आपने अहादीस मुकर्ररा को छांट कर मुंतखिब कंजुल उमाल भी तहरीर फरमाई। इन किताबों को देखकर आपके शेख अबुल हसन शाफी ने फरमाया था कि इमाम सियूती ने जमउल जवामे लिखकर तमाम लोगों पर एहसान किया था, लेकिन शेख अली मुत्तकी ने कंजुल उमाल की तदवीन फरमा करके खुद उन पर एहसान किया है।

पर हम अहले बातिल हो गए। अबू जहल बोला ये दीने

देखकर गुस्से में पूछा क्या इरादा है उमर। ये उमर बोले चला हूँ काटने अहमद का सर। फिर नईम उनसे ये बोले लो खबर कुछ घर की भी है मुसलमान खुद तुम्हारे भी बहन और बहनोई। घर बहन के पहुँचे गुस्से में उमर ये सुनते ही दर पे जब पहुँचे सदा कुरान पढ़ने की सुनी। जब सुना कुरान उमर ने और बद दिल हो गए मुश्तैल।

में बोले बहन बहनोई से फिर ये उमर कि तुमने मजहब अपना बदला है ये मुझको है खबर। ये कहा गुस्से में और दोनों को मारा इस कदर छली जख्मों से बदन था खून से था जिस्म तर। ये बहन बोली तू चाहे हमको मारे जान से जीते जी हम फिर नहीं सकते कभी ईमान से। उनका दिल थर्रा गया ये जोश ईमान देखकर गर्क इबरत हो गई ये हमशीरा से बोले उमर तुम जो कुछ पढ़ती थी वो

0: गुस्ल करके आए थे कुरान, उमर ने फिर पढ़ी, हो गए बेखुद वो ऐसी मस्तीए बहदत चढ़ी, वो असर कुरान का हर लफ्ज दिल पर कर गया, जुल्मते बातिल मिटी, दिल नूरे हक से भर गया। फिर उसी आलम में पहुंचे शाह बता तक उमर, और गिरे पाए नबी पर बादब बाचश्मतर, पढ़ लिया तौहीद का कलमा मुसलमान हो गए, शाह बता पर उमर फारूक कुर्बान हो गए, शाह बता पर उमर फारूक कुर्बान हो गए।
1: दोस्तों, अभी आप जानी बाबू कव्वाल की आवाज में कव्वाली हजरत उमर का वाकया समाअत फरमा रहे थे, और कलाम था शबाब मीनाई का। दोस्तों, शेख अली मुत्तकी नहायत बाअखलाक, साहिब मुरव्वत और बेहतरीन सीरत और शख्सियत के हामिल थे। आपकी शख्सियत नहायत पुरकशिश थी। आप अपने तमाम कामों को किताब व सुन्नत के मुताबिक अंजाम दिया करते थे। हर चीज को शरीयत की कसौटी और तराजू में तोलते। उनके शागिर्द खास अब्दुल वहाब मुत्तकी एक अजीब व गरीब किस्सा नकल करते हैं कि उनको एक दफा किसी वजीर ने दावत दी तो उन्होंने उसको कबूल नहीं किया। जब वजीर ने इसरार किया तो उनकी दावत को तीन शर्तों के साथ कबूल किया। पहली शर्त ये रखी कि वो जिस जगह चाहेंगे बैठेंगे। दूसरी शर्त ये रखी कि जो खाना अच्छा लगेगा खाएंगे। और तीसरी शर्त ये रखी कि जब चाहें वापस आ जाएंगे। फिर शेख साहब ने कहा कि हम तुम्हारे यहाँ कल आते हैं। वजीर ये

दोस्तों, अभी आप कव्वाल मास्टर हबीब निज़ामी से कव्वाली ए हसीना तुझे मशहूर किया मैंने समात फरमा रहे थे, और कलाम था अनवर फर्रुखाबादी का। सामीन, शेख अली मुत्तकी बुरहानपुरी के असाज़ा की एक तवील फहरिस्त है। आपके तलामज़ा की भी बड़ी तादाद है जिन्होंने आपसे शर्फ व तलम्मुज़ हासिल किया। आप नहायत कसीरुल मुजाहिदा थे, पूरी उम्र ज़ोहद व तवक्कुल में गुजारी। आपका विसाल 2 जमादिउल आखिर 975 हिजरी सुबह सादिक के वक्त मक्का मुअज़्ज़मा में हुआ और वहीं तदफीन की गई। दोस्तों, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है। दोस्तों, हमारा प्रोग्राम कहकशां सुनना ना भूलें और अपने तासुरात व ख्यालात से हमें इस पते पर ज़रूर आगाह करें। हमारा पता नोट कीजिए, उर्दू प्रोग्राम कहकशां मार्फत स्टेशन डायरेक्टर आकाशवाणी शामला हिल्स भोपाल, पिन 4620002। अब आपके दोस्त वाजिद खान को दीजिए इजाज़त। आदाब।

अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम कहकशा। ये आकाशवाणी भोपाल है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी भोपाल है। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत लीजिए प्रस्तुत है रेडियो धारावाहिक अमर वीर बलिदानी झांसी वाली रानी की दूसरी कड़ी।

छल प्रपंच और कपट से सनी हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की विस्तार नीति में एक के बाद एक भारतीय अंचल प्रदेश और राज्य पराभूत होते जा रहे थे। यहां वहां यूनियन जैक की पताका लहराने लगी थी।

0: स्थानीय शक्तियों के प्रतिरोध रहित समर्पण ने जनगण की दास्ता के दस्तावेज लिखना शुरू कर दिया था। जनता की तकलीफें दिन दूनी रात चौकनी हो रही थीं। व्यापक असंतोष और सीमा रहित असहायता।
1: विदेशी आक्रांताओं का प्रतिरोध कर पाने में सक्षम राष्ट्रीय शक्तियों में से एक थे दक्षिण पश्चिम के मराठे, जो मुगलों की शहंशाही के दौर में निर्णायक हस्तक्षेप करते हुए पूरे भारत में उपस्थित हो चुके थे। इनकी अपनी रियासतें थीं, जिनके स्वामी सूबेदार पेशवा के प्रभुत्व से जुड़े हुए थे।
2: ग्वालियर, इंदौर, बड़ौदा, नागपुर, सतारा और झांसी का तामझाम विस्तृत था, लेकिन जब पेशवाई संकट में आई तब इसका खोखलापन भी उजागर हुआ। इन सूबेदारों के अपने स्वार्थ और कूटनीतिक कुटिलताएं पेशवा की काल्पनिक सर्वोपरिता की रक्षा नहीं कर सकी।
1: पेशवा का पद और पादशाही, नाना फडणवीस और बाजीराव प्रथम का संकल्प, दूरदृष्टि और चातुर्य अब विगत स्मृतियों का विषय मात्र रह गए थे।
0: मराठों का ताश का महल

अंतिम मराठा युद्ध में बिखर गया। उनका प्रतीक पुरुष पेशवा अब अंग्रेजों का वेतन भोगी था। संधि में उसे मिली 8 लाख रुपए वार्षिक की पेंशन कि वो अपने दरबारियों, अमले, सेवक चाकरों, दास दासियों, स्त्रियों और संतानों का खर्च उठा सके। पेशवा बाजीराव द्वितीय को पूना से विस्थापित कर गंगा किनारे बसे हुए बिठूर का जागीरदार बना दिया गया था। स्वाधीनता, स्वाभिमान और छत्रपति महाराज के स्वप्न का विराम या फिर समापन।

0: वो रूपंत
1: जी श्रीमन,
0: कितना भिन्न है बिठूर का यह परिवेश पूना से। कहा पूना की हर क्षण खोलती खदबदाती राजनीति, और यहां बिठूर में सर्वत्र एक ठहरी हुई शांति, निस्तब्ध प्रशांतता। सुनने को केवल गंगा की लहरों की कलकल और गूंजते हुए आरती के गीत। क्या ये अच्छा नहीं हुआ कि वो सब एक सपने की तरह पीछे छूट गया?
1: उचित ही सोच रहे हैं श्रीमंत,
0: लेकिन एक दंश तो हमें सदा ही सालता रहेगा। काश हम इस होनी को टाल पाते। पता नहीं इतिहास का निर्णय हमारे लिए क्या होगा, पर यह तो स्पष्ट ही है कि फिरंगियों ने हमें पराजित कर दिया, और हम ही क्या, लगता है समूचा देश इस पवंडर की लपेट में आ रहा है। कहीं कोई उम्मीद का आसरा नहीं, आंधी के तिनकों की तरह उड़ी जा रही है आस्थाएं। प्रभुता संपन्न पेशवाई भी एक ऐसा ही तिनका सिद्ध हुई है मोरोपंत।
1: हम प्रतिरोध में विफल रहे श्रीमंत, क्योंकि हमारी शक्तियां बिखरी हुई थी, हमारी दृष्टि सीमित और संकुचित थी।
0: गंगा की लहरों पर ठहरे हुए उस अस्ताचलगामी सूर्य को देखो मोरोपंत, जैसे एक सिंदूर रची नाव हो जो कालो दधि में बहती चली जा रही हो, अदृष्ट और अनिश्चय की दिशा में।
1: वाह, अच्छी काव्य कल्पना है पंत प्रधान।
0: काव्य कल्पना नहीं, जीवन का सच है। आसन्न का संकेत है कि अभी हाल ही में अंधेरा समूचे दृश्य पट को लील लेगा। कहीं कुछ भी किंचित भी नहीं दृष्टव्य रहेगा, किंतु मोरोपंत ये जीवन का अंत नहीं है, यात्रा का अंत भी नहीं है। अवसान के बाद उदय, तिमिर उपरांत आलोक,

0: सनातन सृष्टि क्रम को तो बदला नहीं जा सकता ना।
1: किंतु पंत प्रधान श्रीमान,
0: भोरोपंत, हताशा की इस घड़ी में टूटने से बात नहीं सदेगी। हमें आने वाले कल पर विश्वास होना चाहिए। हमारी उम्र तो ढलान पर है, हम कुछ नहीं कर पाए। नियति का स्वीकार यही था, लेकिन हमारे बाद की नई पीढ़ी है। नाना साहब हैं, राव साहब हैं, उन्हें ये झंडा उठाना पड़ेगा। मुक्ति पथ उनके लिए प्रशस्त है। ईश्वर उन पर कृपा करे, ईश्वर उन पर कृपा करे। अब हम तो यहां ठहर गए हैं मोरोपंत, पतित पावनी गंगा के इस किनारे पर। ये लोग बिगाड़कर परलोक को सुधार

0: लगता है कि आप सचमुच सभी कुछ त्याग बैठे हैं। श्रीमंत, आप अभी भी पेशवा हैं, अभी भी सूबेदारों का प्रधान पद और अधिकार आपके पास हैं। स्वतंत्रता संग्राम के संचालन सूत्र संभालकर दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की क्षमता आप में है।
1: मोरोपंथ बस देश की तकदीर बदलने की लगन लगी रहे, यही काफी है। हाल फिलहाल तो हालात बदलते नजर नहीं आते। पूरे आर्यावर्त में ऐसा कोई नहीं दिखाई दे रहा जो मुक्ति के अनुष्ठान का नेतृत्व कर सके। हां, हो सकता है कि कल किस्मत बदले, देश के दिन फिरें। बहुत बहुत अंधेरा हो रहा है। एक बात बताओ, व्यायामशाला से नाना साहब लौटे या नहीं?
0: अभी तक तो लगता है वापस नहीं आए, ना नाना साहब और

0: ना राव साहिब और ना ही मनु, आते ही होंगे।
1: नाना साहब और राव साहब को तो समझ में आता है भाई, पुरुष हैं तो उनकी शिक्षा दीक्षा भी पुरुषोचित होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारी ये मनु, उसे तीर तलवार और कुश्ती से क्या लेना देना?
0: श्रीमंत, आचार्य बालाजी चाहते हैं, उनका कहना है कि रण कौशल पर केवल पुरुषों का अधिकार नहीं है, और वो तो ये भी कहते हैं कि
1: रुक क्यों गए, बात पूरी करो, और क्या कहते हैं आचार्य बालाजी?
0: दृष्टता क्षमा हूं श्रीमंत, वो कहते हैं कि ऐसा कठिन समय है कि मातृभूमि को केवल पुरुषों के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता, देश की रक्षा के लिए मिलजुल कर कृपाण उठानी होगी, अंग्रेजों से बच्चे बच्चे को जूझना होगा।
1: शायद वो ठीक कहते हैं, अनुभव की सीख तो यही है, लेकिन मोरोपंत, आपको नहीं लगता कि अब मनु के विवाह पर भी सोचना चाहिए? उसकी आयु अब इस योग्य हो चली है।
0: श्रीमन, मेरी भी चिंता यही है, किसी योग्य वर की तलाश है मुझे, नाती रिश्तेदारों को भी कहलवाया है, देखिए कब संयोग बनता है। आ रही हूं पेशवा।
1: कहा? अरे भाई, वो तो कोई घुड़सवार है।
0: यही है हमारे बच्चे, हमारी आशा, हमारा विश्वास।
2: आजादी के महासंग्राम की तैयारी के लिए चटसार बन गई थी बिठूर में बाला गुरु की व्यायामशाला।

बिठूर के बाला गुरु की पाठशाला में जिस इतिहास की पीठिका पर नवागत शक्तियों का पल्लवन हो रहा था, उन पर दायित्व आने वाला था मुक्ति की मशाल को जलाए रखने का। ऐसी मशाल जिसके उजाले में देश अपनी संभावनाओं को देख समझ सके और व्यवधानों पर संकल्पित प्रहार कर सके। जागरण का एक नया राग जो संवेद स्वरों से गूंजे और निनादित करे।

0: पंत प्रधान पेशवा की सेवा में रामचंद्र राव प्रणाम प्रस्तुत करता है।
1: यशस्वी हो, पधारिए। क्या समाचार हैं आचार्य बालाजी और उनकी व्यायामशाला के? अरे भाई, पठन पाठन में कोई व्यवधान तो नहीं है?
0: अनुकंपा कृपा है श्रीमंत की, सब कुशल और यथोचित है।
1: कैसे पधारना हुआ?
0: आचार्य श्री का संदेश था। उन्होंने कहलवाया है कि उनके बाल सहपाठी तात्या दीक्षित देशाटन करते हुए बिठूर में पधारे हैं और आपके दर्शन लाभ की अनुमति चाहते हैं।
1: अहो भाग्य, पंडित शिरोमणि तात्या दीक्षित सुविख्यात मनीषी और ज्ञानी है। उनके चरणों की रस से बिठूर की भूमि पवित्र हुई। मोर पंत बुआ, उनके आदर सम्मान का राजकीय प्रबंध करें।
2: जो आज्ञा पंत प्रधान।
0: ये कष्ट ना उठाइए, तात्या दीक्षित के आवास विश्राम का यथोचित प्रबंध व्यायामशाला में हो चुका है। यूं भी अब कैसी राजकीय व्यवस्था, काल चक्र की कृपा से हमारा समाज तो साधारण जनों का समाज बन गया है। तात्या दीक्षित जैसे यहां वैसे वहां।
1: ठीक कहते हो तुम, सभी भूमि गोपाल की। हमने तो तात्या दीक्षित की सुविधा की दृष्टि से कहा था, फिर भी कोई आवश्यकता हो तो संकोच न करें। तात्या दीक्षित के दर्शन हम भी करने के लिए उत्सुक हैं। बहु सुश्रुत देवज्ञ हैं, वर्तमान और अतीत में उनके लिए अलक्ष्य कुछ भी नहीं है। अरे भाई, हम भी जानना चाहते हैं कि अब क्या होने वाला है।
0: शायद वही बता सकें, किंतु श्रीमंत, हमारे आचार्य बालाजी कहते हैं कि मनुष्य की नियति में अदृष्ट कुछ भी नहीं है। मनुष्य जो चुनता है वही कालक्रम उसके लिए बुनता है।
1: अब क्या कहें, दो महापुरुषों के बीच की बात है। एक शास्त्रों का साक्षी है और दूसरा शस्त्रों का पक्षधर। शास्त्र और शस्त्र के इस विवाद में हम नहीं पड़ेंगे। बताइए कि तात्या दीक्षित के दर्शन कब सुलभ हो सकेंगे? हम उत्सुक हैं।
0: वो हमारे साथ ही पधारे हैं और बाहर प्रतीक्षारत हैं।
1: ओह, उन्हें ससम्मान लाइए।
3: प्रणाम विप्रवर। प्रणाम।
4: प्रणाम।
5: प्रणाम।
4: प्रणाम।
5: प्रणाम।
4: प्रणाम। प्रणाम। यशस्वी भव। कैसा परिदृश्य अनुभव कर रहे हैं पेशवा इन दिनों? गंगा के इन नीरव निर्जन किनारों पर पूना के वैभव की स्मृतियां विचलित तो नहीं करती?
1: हम उन्हें लगभग भूल चुके हैं पंडित राज। लाभ भी क्या है याद करने से? बीते हुए दिन तो लौटने वाले नहीं है ना। अब जो है और जैसा है वही ठीक है।
4: धन्य है, धन्य है ये योगियों जैसी तटस्थता। कुरुक्षेत्र का स्मरण हो आया। रणभूमि में शोक से व्याकुल होकर अर्जुन ने अपने धनुष्वाण पटक दिए और अपने रथ में बैठ गया। वाह वाह,
1: शायद आप ठीक कहते हैं विप्रवर। इतिहास हमें भग्नाश्चित विभ्रमित और खिन्न मनोदशा के रंगों से ही चित्रित करेगा। आप तो स्थान स्थान पर देशाटन करते रहते हैं, कहीं आपको प्रफुल्लित करने वाले दृश्य मिले?
4: क्यों नहीं, हमारे बाल सखा की व्यायामशाला तक जाने का कष्ट नहीं किया पंत प्रधान। कभी आकर तो देखिए कि साहस किस तरह शौर्य के सांचों में ढलता है।

0: बाला गुरु के प्रयोगों के लिए हम बहुत बूढ़े हो चुके हैं। प्रश्न अब युद्ध कौशल सीखने का नहीं रहा है, वो तो किशोरों का मनोरंजन मात्र है।
1: दीक्षा और शिक्षा को मनोरंजन कह रहे हैं श्रीमंत? वाह वाह, क्या किशोरों और तरुणों को आगत का सामना करने की तैयारी नहीं करना चाहिए? मैंने अपने देशाटन में अनुभव किया है, देखा है, भीतर ही भीतर कुछ तप रहा है, कुछ उबल रहा है, जैसे कोई ज्वालामुखी हो। बड़वानल है जो क्रमशः विस्फोटित होगा, और तब पंत प्रधान की भूमिका क्या होगी?
0: आपकी भांति त्रिकालज्ञ होने का सौभाग्य हमें प्राप्त नहीं है विप्रवर। हम तो साधारण जन हैं, साधारण जन।
1: साधारण जन ही इस उद्घोष को दिग्दिगंत तक फैलाएंगे पंत प्रधान। मैंने वो खेत देखे हैं जिन्हें बीजों और अंकुरों का इंतजार है, वो पगडंडियां और प्रशस्त पथ जो यात्रा तुरपाओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऐसी रणस्थलियां जो जनता के सूर्य नाद के लिए तैयार है। सारा समूचा देश आहट सुन रहा है, रण निनादित हो रहा है। इस धर्म युद्ध को जो नहीं लड़ेगा वो अपने कर्तव्य और यश से विमुख हो रहा होगा और पाप का भागीदार होगा। मिथ्या भावुकता, दुर्बलता और कायरता ही तो वास्तविक पाप है।
0: सुनने में अच्छा लगा विप्रवर, काव्य को कर्ण मधुर तो होना ही चाहिए, सिद्ध कवियों ने ऐसी साधना की है।
1: पंत प्रधान, केवल कर्ण मधुर ही काव्य नहीं होता। परिभू स्वयंभू कविर मनीषियों के कंठ से युग के स्वर आकार लेते हैं। पेशवा, मनुष्य को कभी शेष और लाभ के प्रपंच में नहीं पड़ना चाहिए। ये जोड़ बाकी गुणा भाग केवल पश्चाताप मोह और अवसाद देता है, समय को इनकी आवश्यकता या वांछा नहीं है।
0: इन उपदेशों से हम लाभान्वित हुए विप्रवर, किंतु एक निवेदन था।
1: कहिए।
0: ये हमारे प्रिय मोरोपंत तांबे हैं।
1: परिचित हूं इनसे, काशी में इनसे भेंट हुई थी, तब ये चिम्मा जी के साथ थे। इनकी एक कन्या थी, कहाँ है वो?
0: यही है, और ये भी हमारे साथ ही रह रहे हैं। कन्या अब आयु प्राप्त कर चुकी है और मोरोपंत उसके उचित संबंध के लिए व्याकुल हैं। आपका महाराष्ट्रीय परिवारों में खूब आना जाना है, यदि संबंध में सहायता कर सके तो महती कृपा होगी।
1: भरसक प्रयत्न करूंगा। कन्या की जन्म पत्रिका उपलब्ध है क्या?
2: जी, अभी प्रस्तुत करता हूं, लीजिए।
1: अद्भुत अद्भुत। मोरोपंत बुआ, परम तेजस्वी है आपकी कन्या, ऐसी जन्म पत्रिका मैंने अरसे से नहीं देखी। वाह शानदार, मेरा विश्वास और भी प्रबल हुआ। स्वतंत्रता के महायज्ञ की समिधा बनेगी ये यशस्वी कन्या, इसके जीवन से इतिहास के पृष्ठ आलोकित होने वाले हैं। मोरोपंत, जनक के रूप में आप भी अभिनंदनीय हैं।

संग्रहालय से कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक अमर वीर बलिदानी झांसी वाली रानी का दूसरा भाग। यह आकाशवाणी भोपाल है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने वाले हैं। मीडियम वेव पर अब हमारा प्रसारण आरंभ होता है। कुछ ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज अहमदाबाद में गुजरात के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों से मुलाकात की। मेगा निवेश रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री ने उद्योग समूहों के प्रतिनिधियों के साथ 1-to-1 बैठकें भी की। बैठकों में ऊर्जा, वस्त्र, विनिर्माण, अधोसंरचना और औद्योगिक विस्तार के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई। लोकसभा ने आज विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। विधेयक का लक्ष्य विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 15 अगस्त को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में होने वाले राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। हरियाली अमावस्या के मौके पर आज तड़के उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की भस्म आरती हुई। करीब 2:30 बजे मंदिर के कपाट खोले गए और विधि विधान के साथ पूजा अभिषेक शुरू हुआ। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज सितंबर में दिल्ली में खेली जाएगी। तीनों मुकाबले अरुण जेटली स्टेडियम में 13, 15 और 17 सितंबर को होंगे। और मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में इंदौर, उज्जैन संभाग के रतलाम, झाबुआ, धार, बड़वानी और इंदौर में भारी बारिश हो सकती है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए सुनिए युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवा वाणी। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की प्रस्तुति है।

नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, साथ ही बदलते मौसम में अपना ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज का दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। मशीनें लिख रही हैं, बोल रही हैं, गा रही हैं, लेकिन एक सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है। क्या कोई मशीनी आवाज़ एक सच्ची मानवीय आवाज़ की गर्माहट और एहसास की जगह ले सकता है? इसी विषय पर आज हम करेंगे एक दिलचस्प चर्चा। ज़रा आंखें बंद कीजिए और सोचिए, सुबह की पहली चाय, खिड़की से आती हल्की हवा और कानों में गूंजती एक जानी पहचानी आवाज़ जो सिर्फ सुनाई नहीं देती बल्कि दिल को छू जाती है, यही है रेडियो की जादुई दुनिया। और आज जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के तेज युग में जी रहे हैं, तब एक बेहद अहम सवाल हमारे सामने है। क्या कोई मशीनी इंसानी आवाज़ की गर्माहट, उसकी भावनाएं और उसका अपनापन कभी महसूस करा सकती है? दोस्तों, हर दौर बदलता है, तकनीक भी बदलती है, लेकिन कुछ चीज़ें कभी पुरानी नहीं होती, और वो है अपनापन, भावनाएं और इंसानी आवाज़। और इन्हीं एहसासों को शब्द और संगीत में पिरोता हुआ यह खूबसूरत सा गीत, और इसके बाद हम लौटेंगे अपनी आज की चर्चा के साथ।

दोस्तों, इस मधुर से गीत के बाद बढ़ते हैं आज के विशेष संवाद की ओर। कहते हैं कि समय बदलता है, साधन बदलते हैं, तकनीक बदलती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर दौर में इंसान के दिल के सबसे करीब रहती हैं। उन्हीं में से एक है आवाज़। ज़रा एक पल के लिए अपने जीवन की सबसे प्रिय आवाज़ को याद कीजिए, वह आवाज़ जिसने बचपन में आपको डर लगने पर यह कहा था, मैं हूँ ना। वह आवाज़ जिसने आपकी पहली सफलता पर सबसे ज़ोर से ताली बजाई, या वह आवाज़ जो आज इस दुनिया में नहीं है लेकिन उसकी याद आज भी आपके दिल में बसती है। सोचिए, अगर वही शब्द किसी मशीन की आवाज़ में सुनाई दे, तो क्या वे आपके दिल को उसी तरह छू पाएंगी? शायद नहीं, क्योंकि आवाज़ केवल ध्वनि नहीं होती, वह भावनाओं का भी घर होता है। साथियों, आज का युग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का युग है। आज मशीनें हमारी भाषा समझ रही हैं, हमारे सवालों के जवाब दे रही हैं, और यहाँ तक कि इंसानों जैसी आवाज़ में बातें भी कर रही हैं। और कई बार तो यह पहचानना ही मुश्किल हो जाता है कि जो आवाज़ हम सुन रहे हैं वह किसी इंसान की है या किसी मशीन की। यह विज्ञान की अद्भुत उपलब्धि तो है, लेकिन जब मन उदास होता है, जब अकेलापन महसूस होता है, तब हमें किसी एल्गोरिदम की नहीं बल्कि एक सच्ची, संवेदनशील और मानवीय आवाज़ की ज़रूरत पड़ती है। और यही कारण है कि रेडियो आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में बसता है। रेडियो केवल सूचना का माध्यम नहीं बल्कि भावनाओं का साथी है। जब रेडियो जॉकी मुस्कुराकर कहते हैं, नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा, तो ऐसा लगता है जैसे कोई अपना हाल पूछ रहा हो। रेडियो की सबसे बड़ी ताकत उसकी आवाज़ है। यह आवाज़ सुनने वाले के मन में चित्र बनाती है, कल्पनाओं को पंख देती है और दूरियों को मिटा देती है। बिना चेहरे के भी रेडियो का एक गहरा रिश्ता बन जाता है। AI तेज़ है, सटीक है और उपयोगी भी है, लेकिन इंसान की आवाज़ में जो अपनापन, अनुभव और संवेदना होती है, उसे कोई मशीन पूरी तरह नहीं दोहरा सकती। रेडियो का इतिहास भी यही बताता है कि संकट की घड़ी में लोगों ने सबसे पहले रेडियो पर भरोसा किया। प्राकृतिक आपदाओं से लेकर राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं तक रेडियो ने लोगों तक सही जानकारी पहुंचाई और उनका मनोबल भी बढ़ाया, क्योंकि रेडियो सिर्फ खबरें नहीं सुनाता बल्कि उम्मीद भी जगाता है। और युवा पीढ़ी के लिए यह समय अवसरों का है। हमें AI से डरने की नहीं बल्कि उसे समझने और सही दिशा में उपयोग करने की आवश्यकता है। तकनीक तभी सार्थक है जब वह इंसानियत को मजबूत बनाए, न कि उसे कमज़ोर करे। आने वाला समय AI का भी होगा। नई नई तकनीकें आएंगी और हमारा काम पहले से आसान बन जाएगा, लेकिन अगर इस भागदौड़ में हम इंसानियत, अपनापन और एक दूसरे की परवाह करना भूल गए, तो इतनी तरक्की का भी क्या मतलब? दोस्तों, बातों का सिलसिला तो चलता ही रहेगा, लेकिन उससे पहले आपके सामने प्रस्तुत है ये प्यारा सा गीत।

गीत की इन मधुर पंक्तियों के साथ अब समय है अपने विषय को आगे बढ़ाने का। आज हमने जाना कि AI कितना भी विकसित क्यों ना हो जाए, वह इंसानी आवाज, संवेदनाओं और विश्वास की जगह नहीं ले सकता। तकनीक हमारी मदद कर सकती है, लेकिन दिलों को जोड़ने का काम आज भी इंसान ही करता है। अभी हम बात कर रहे थे AI और रेडियो की, एक ऐसी तकनीक की जो हमारे संवाद के तरीके को बदल रही है। लेकिन तकनीक कितनी भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, उसके पीछे सोचने वाला, सीखने वाला और नई दिशा देने वाला इंसान ही होता है। और जब बात इंसान की नई सोच, नई ऊर्जा और नए सपनों की हो, तो हमारे सामने सबसे पहले आते हैं हमारे युवा। क्योंकि आज का युवा सिर्फ तकनीक का इस्तेमाल करने वाला नहीं, बल्कि आने वाले कल की तकनीक और समाज दोनों को दिशा देने वाला है। और इसी युवा शक्ति को समर्पित है विश्व युवा दिवस। दरअसल युवा किसी भी समाज की सबसे सक्रिय और ऊर्जावान शक्ति होते हैं।

उनके पास नए विचार होते हैं, नई ऊर्जाएं होती हैं और कुछ अलग करने का साहस होता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि युवाओं को सिर्फ सलाह देने की नहीं, उन्हें अवसर देने,

0: युवा है। आज समस्त दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या युवाओं की भारत के पास ही है और कल का जो भविष्य है भारत का युवाओं पर ही निर्भर करता है। आज विश्व युवा दिवस हम मना रहे हैं और इस अवसर पर हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है एक ऐसी ही युवा को खेलों के क्षेत्र में जिन्होंने काफी अपना नाम कमाया है और कई सारे खेलों के साथ वो जुड़ी रही हैं। तो हमारे साथ स्टूडियो में है हर्षिता शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में हर्षिता।
1: थैंक यू सर।
0: तो हर्षिता, सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा कि
1: जी मैं ग्वालियर की ही निवासी हूँ और मैं अभी फ़िलहाल कामल कॉमर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्केटिंग सिखा रही हूँ और BPED कर रही हूँ जीवाजी यूनिवर्सिटी से। बाकी मेरा खेल में जो आपने बताया कि हाँ वॉलीबॉल और बाकी सारे गेम्स भी हैं तो स्केटिंग भी उनमें से ही एक है।
0: वॉलीबॉल में आपने नेशनल तक खेला है और अपनी टीम का प्रतिनिधित्व किया है।
1: हाँ जी।
0: उसकी जर्नी के बारे में बताएं, कब से खेलना शुरू किया और फिर कैसे ये आगे बढ़ी, इंटरेस्ट इसमें कैसे आया, क्या आपके पीछे की कहानी है?
1: जैसे हर स्पोर्ट टीचर के या स्पोर्ट्स का शुरुआत स्कूल से होता है, वैसे ही मेरी शुरुआत भी स्कूल से ही हुई थी। पहले मैं ज़्यादातर एक रनिंग गेम्स में ज़्यादा इन्वॉल्व रहती थी, मुझे टीम गेम्स का कुछ नहीं पता था। बट लकीली मेरे स्कूल में एक नई टीचर की नियुक्ति होती है, सीमा मैम, आई स्टिल रिमेम्बर हर, तो उन्होंने ही मुझे इस गेम से इंट्रोड्यूस करवाया। मैं नॉर्मल एक बैंड की कमांडर थी, कमांडिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। मेरी मैम ने मुझे बुलाया, उन्होंने बोला कि तुम्हारा बिल्ड अच्छा है, हाइट अच्छी है तुम्हारी, ये बॉल को एक बार एक सर्विस मार के देखो कैसी जाएगी। मैंने कि मुझे तो आता नहीं है, वॉलीबॉल में पहली बार टच कर रही थी, बट मैंने ट्राई किया एंड लकीली वो सर्विस मेरी ग्राउंड के पार भी गई। तो सब लोग इम्प्रेस हो गए थे कि अरे वाह, लड़की ने पहली बार में एक टफ चीज़ कर ली। तो तभी से मेरे इस गेम में शुरुआत हुई। मैंने अपना पहला स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया नेशनल SGFI खेला, जिसमें मैंने पहली बार में ही एक अपनी टीम को रिप्रेजेंट किया एज अ कैप्टन टेनिस वॉलीबॉल। उसके बाद मेरी जर्नी 2019 में मैंने ओपन नेशनल खेला सब जूनियर। उसमें मैंने सीखा कि एक बड़े लेवल पे कंपटीशन कैसा होता है, बड़ी बड़ी टीम्स आई, मैंने बहुत सारी अपनी एज की लड़कियां जो मुझसे भी ज़्यादा अच्छा खेलती है उनको देखा। बहुत ही इंस्पायरिंग था वो चीज़ कि एक अपने सिटी से निकल के फिर स्टेट लेवल खेलना, फिर नेशनल लेवल खेलना, एक बड़ा एक्सपोजर मिला। और फिर मेरी जर्नी कंटिन्यू रही, मैंने अपने कॉलेज के RG से खेला, जोनल लेवल्स मैंने खेले काफ़ी। फिर मैंने अपने नया गेम, क्योंकि मैं गेम्स बदलना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, मैंने एक नए जो मेरा बचपन से फेवरेट गेम था कॉम्बैट गेम, उसमें अपना एक बार चाल चला, उसमें मेरी भी सिलेक्शन हो गई थी। ऑल इंडियन इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पे मैं खेल के आई रेसलिंग में।
0: चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको आपकी सारी उपलब्धियों के लिए। एक सवाल है कि आम तौर पर घरों में बच्चियों को है पढ़ने के लिए ही ज़्यादा फोकस किया जाता है, खेलों के प्रति इतना मोटिवेशन उनको दिया नहीं जाता, लेकिन कैसा रहा माहौल आपका अपने घर में जब आप आगे बढ़ रही थी, तो आपके पेरेंट्स के क्या विचार?
1: जैसे मैं सुनती आ रही हूँ कि पेरेंट्स का पढ़ाई के ऊपर बच्चों को ज़्यादा फोकस रहता है या दिलवाया जाता है, मेरे पेरेंट्स उससे थोड़े अलग थे। मैंने जितनी मेहनत करी है उतनी ही मेहनत मेरे पिताजी और मेरी माँ ने करी है। सुबह सुबह उठना, उठ के मेरे लिए हर वो ऐसा खाना बनाना जिससे मुझे ताकत मिले, मैं थकूँ नहीं, मेरी माँ ने उसमें बहुत मेहनत करी। और मेरे पिताजी जब भी मुझे सीखना था, खेलना था, कहीं भी जाना था, उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया। मैं अकेले तेलंगाना Under-14 की मैं बात कर रही हूँ आपसे, जब मैं मतलब मात्र 13 या फिर 14 साल की रही होंगी, तब मैं अकेले तेलंगाना जैसी दूर जगह पे गई थी खेलने के लिए, मैं उड़ीसा जैसी दूर जगह पे गई थी। काफ़ी लोग नहीं मानते लड़कियों को इतना दूर भेजना, पढ़ने पे ध्यान रखवाना, लेकिन मेरे पापा ने कभी मना नहीं करा। तो आज मैं जो भी हूँ मेरे फैमिली के ही सपोर्ट से हूँ। और जहाँ तक बात रही आपकी कहने की, हाँ पेरेंट्स लोग बच्चों को ज़्यादा फोर्स करवाते हैं पढ़ाई के लिए, उसका रीज़न सिंपल सा ये है कि पेरेंट्स जानते नहीं है कि खेल में भी करियर है। मैं आज यहाँ खड़ी हूँ, मुझे भी नहीं पता था, मुझे लगा था गेम है, मस्ती है, घूमना है, फिरना है,
0: बट है उसे इंजॉय करना,
1: उसे इंजॉय करना है। बट आज जब मैं इस एज में हूँ, आज मैं इस अपने गेम से जानी जा रही हूँ, अपने गेम से ही काफ़ी करियर्स को ओपन कर रही हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि नहीं, बच्चों को इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए और पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए, जिससे वो उनको पढ़ाई के ऊपर ही ना फोर्स करें।
0: जैसा कि आप बीपीएड कर रही हैं, आपने खेल को ही अपना कैरियर के तौर पे भी चुन लिया,

0: है, कब ऐसा टाइम आया, कब ऐसा मोमेंट आया जब आपको ये रियलाइज हुआ कि अब यही मेरा कैरियर है? मतलब पढ़ाई और खेल दोनों साथ में चल रहे थे आपके,
1: हाँ
0: लेकिन कब आपने ये तय किया कि अब खेलों की तरफ ही अपने आप को मोड़ना है पूरी तरीके से?
1: सर, सिंपल ऐसा रहा था कि जब एक इंसान एक अलग फील्ड चूज़ करता है, वो हर किसी से अलग हो जाता है। मेरे भाई इंजीनियरिंग कर रहा है, मेरा सबसे छोटा भाई है वो इंस्पेक्टर का, हमेशा से उसको रहा है ड्रीम। बट मेरा थोड़ा फील्ड अलग था, मेरी थिंकिंग थोड़ी अलग थी। मेरा हमेशा से था कि मैं किसी को कुछ सिखाना चाहती हूँ। बचपन में ही जब मैंने स्केटिंग, मैंने आपको बताया स्केटिंग भी करी है, तो मैंने स्केटिंग में भी 6 बच्चों को ट्रेन किया था, एंड वो 6 बच्चे मेडल लेके आए, तो वो एक जो खुशी मिली मुझे अंदर से, वो खुशी मुझे शायद किसी जॉब करके नहीं मिलेगी। तो मेरा जो था ये करियर चूज़ करना इन गेम, ये स्टार्ट से ही रहा था। धीरे धीरे मुझे फील आने लगा था कि हाँ, ये एट द एंड जाके मेरा करियर बन जाएगा। आफ्टर माई ग्रेजुएशन फ्रॉम KRG, मुझे फील्ड चूज़ करनी थी कि वॉट शुड आई चूज़, मैं क्या करूँ, मैं मास्टर्स को अपना कंटिन्यू करूँ या फिर कॉम्पिटिटिव की तैयारी करूँ। तब मैं एक स्कूल में इंटरव्यू देने के लिए गई। वहाँ पर उन्होंने मैंने अपनी अपनी उपलब्धियाँ उनको बताई कि मैं नेशनल खेल के आई हूँ, अपने स्कूल की बैंड की कमांडर रही हूँ, सारी उपलब्धियाँ बताई। लेकिन जब उन्होंने मुझे नियुक्ति, मतलब पद देने की बात करी, तो उन्होंने कहा आपके पास डिग्री नहीं है। हर प्लेयर को अगर हम ऐसा जॉब दे देंगे तो फिर ऐसे तो गली गली में फिरते हैं। वो मुझे बहुत हर्ट किया कि मेरी उपलब्धियों के लिए ऐसा कोई ऐसा कैसे कह सकता है। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अपने गेम को भी एक नाम देने के लिए मुझे इससे रिलेटेड कुछ करना पड़ेगा,
0: प्रॉपर एजुकेशन लेनी
1: प्रॉपर
0: पड़ेगी।
1: एजुकेशन लेनी पड़ेगी। तो तब मुझे पता चला कि हाँ, BPED इज़ अ थिंग दैट आई हैव टू फोकस ऑन। तो मैंने BPED के लिए जीवाजी यूनिवर्सिटी चूज़ किया, मेरे घर के पास था, जा सकती थी, और अभी फ़िलहाल मैं वहीं से कर रही हूँ। तो आई कैन प्राउडली से कि येस, नाउ आई होल्ड अ डिग्री फॉर माई सर्टिफिकेट्स एंड दे आर नाउ सर्टिफाइड कि हाँ, अब मैं कहीं पे भी जाके मुझे ऐसा सुनने को नहीं मिलेगी। तो दैट्स इट।
0: तो खेलों में भी कैरियर है, ये आप कहना चाहती हैं।
1: हाँ
0: और आज हमारे युवक बहुत सारे खेलों की तरफ जा रहे हैं, ये अच्छा रुझान बना हुआ है। मैं ये मतलब बच्चों से आप क्या कहना चाहेंगी कि जो खेलों को चूज़ कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है जो उनको ध्यान रखनी चाहिए?
1: सर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, आप एक अच्छे एथलीट बन सकते हो फ्रॉम हार्डवर्क एंड प्रैक्टिस। लेकिन अगर आप ये सोचो कि मैं हार्डवर्क उतना ही रखता हूँ, मिनिमम रखता हूँ, बस खेल रहा हूँ, वो चीज़ नहीं है। आजकल मैंने काफ़ी बच्चों को देखा है कि वो गेम्स के लिए आ रहे हैं क्योंकि वो एक नया, एक युवाओं में चलन हो गया है, ट्रेंड हो गया है, तो वो गेम्स को यूज़ कर रहे हैं। बट जो खिलाड़ी होते हैं असल, वो उसमें हार्डवर्क और मेहनत देते हैं। अब मेरा गोल क्या है कि अब जो परेशानियां मुझे हुई थी एज अ अपब्रिंगिंग ऑफ अ स्पोर्ट पर्सन, वो और लोगों को ना हो। या तो मैं स्कूल की टीचर बन के ग्रास रूट लेवल पे स्कूल के बच्चों को इस करियर के बारे में बताऊं, या फिर मैं एक कोच बन के एक टीम को लीड करवाऊं, या तो किसी का एक ट्रेनर बन के उसको पर्टिकुलर अपना ध्यान दूं, या फिर एक डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल पे एज अ स्पोर्ट्स ऑफिसर बन के पूरी डिस्ट्रिक्ट को स्पोर्ट्स में हेल्प करवाऊँ। तो ये मेरा रहा है।
0: जो मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता था, उसका भी जवाब आपने अब दे दिया कि आपके फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या हैं, क्या करना चाहती हैं। तो आप लोगों के साथ काम करना चाहती हैं, स्पोर्ट्स में लोगों को मोटिवेट करना
1: हाँ
0: चाहती हैं,
1: जी
0: ये तो काफ़ी बेहतर बात है। आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने अपनी बातें रखी, हम लोगों से अपने जर्नी को साझा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपका भी मुझे बुलाने के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल प्लेयर हर्षिता शुक्ला से बातचीत। इनसे बात की सुमित गौतम ने। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि हमारी यह बातचीत आपको सोचने का एक नया दृष्टिकोण दे सकी होगी। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।

कार्यक्रम युववाणी। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: सर 2 लाख?
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं बागी फिल्म का गीत मीत ब्रोज और मोनाली ठाकुर की आवाज में। कुमार के बोल हैं और संगीत से सजाया है मीत ब्रोज ने।

केके की आवाज में आइए सुनते हैं बजरंगी भाईजान फिल्म का बहुत ही प्यारा सा गीत। कौसर मुनीर ने इस गीत को लिखा है और संगीत है प्रीतम का।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं इरशाद कामिल का लिखा हुआ गीत। विशाल शेखर का संगीत है और फिल्म का नाम सुल्तान, आवाज राहत फतेह अली खान की।

आइए अब सुनते हैं प्रीतम के संगीत से सजा हुआ गीत, जिसे बोल दिए हैं सईद कादरी ने। फिल्म का नाम है बर्फी और खूबसूरत आवाज़ अरिजीत सिंह की।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं सुनिधि चौहान की आवाज़ में आजा नचले फिल्म का बहुत ही प्यारा सा गीत। पीयूष मिश्रा ने इस गीत को लिखा है और धुन बनाई है सलमान सुलेमान ने।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

देशी एड दिखा पोखरण दिखा, मिस वर्ल्ड दिखी वर्ल्ड कप दिखा, चंद्रयान दिखा।

कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

भाई और फैमिली के साथ रील नहीं है, जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है, हिप हॉप भी है, न्यू रिलीजेस

0: है, है also gen old नई पुरानी, best of both the worlds, best of both the worlds, best of both the worlds, best of both the worlds.
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: नीट परीक्षा को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि सरकार ने फर्जी खबरों को रोकने के लिए पत्र सूचना कार्यालय PIB में एक तथ्य जाँच इकाई स्थापित की है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में निकाली जा रही तिरंगा यात्राओं की श्रृंखला में भोपाल में कल विशाल नौका तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में ये यात्रा सुबह 11 बजे बोट क्लब बड़े तालाब से प्रारंभ होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 15 अगस्त को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में होने वाले राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। हरियाली अमावस्या के मौके पर आज तड़के उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की भस्म आरती हुई। करीब 2:30 बजे मंदिर के कपाट खोले गए और विधि विधान के साथ पूजन अभिषेक शुरू हुआ। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज सितंबर में दिल्ली में खेली जाएगी। तीनों ही मुकाबले अरुण जेटली स्टेडियम में 13, 15 और 17 सितंबर को होंगे। और मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में इंदौर उज्जैन संभाग के रतलाम झाबुआ धार बड़वानी और इंदौर में भारी बारिश हो सकती है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, शाम के 6 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: जाए सब दंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। सुनते हैं एक सुंदर सुविचार जिसे हमें भेजा है प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, इसलिए सुख में विनम्र रहें और दुख में धैर्य रखें, क्योंकि समय हमेशा बदलता रहता है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो श्रोताओं, पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बान अब्बासी का।
2: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। उन्होंने लिखा है,
1: नमस्कार, उमंग कार्यक्रम में ये भी जानिए श्रृंखला में आप जिस विषय की जानकारी को समाहित करते हैं उसका पूरा इतिहास अच्छे से सरल शब्दों में समझाकर बताते हैं, जिसे बच्चों को भी समझ में आ सके। 13 से 17 जुलाई वाले सप्ताह में आपने पुस्तकों के उद्भव और विकास की कहानी को व्यापक जानकारी देकर बताया। इसी सप्ताह आपने मानसून, अरावली की कहानी और हिमालय की उत्पत्ति पर संग्रहणीय भौगोलिक जानकारी दी। पूरी उमंग टीम को हमारी ओर से हार्दिक धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत आभार संदेश भेजने के लिए। संघ संकारा सोमनी, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
1: रायगढ़ छत्तीसगढ़ से गेंदलाल श्रीवास संतोष और श्रीवास कृष्ण कुमार यादव और बल्लू निषाद।
2: ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
1: आप सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। एक बार फिर से निवेदन करते हैं कि संदेश भेजते रहिए और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से।
2: जी, ये भी जानिए श्रृंखला की इस कड़ी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम या भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल हुए कुछ ऐसे लोगों की,
1: जिन्हें महात्मा गांधी और अन्य प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों की तरह नाम और प्रसिद्धि तो नहीं मिली, लेकिन उनका योगदान भारत को स्वतंत्र कराने में किसी से कम न था।
2: उन गुमनाम और कम चर्चित लोगों में से आज हम जिनकी चर्चा करेंगे उनका नाम है पिंगली वेंकैया। बहुत कम है जो इस नाम को जानते हैं। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि वो पिंगली वेंकैया ही थे जिन्होंने हमारे प्यारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को डिजाइन किया था।
1: श्रोताओं, उनका जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी, कृषि वैज्ञानिक, भाषा विद्वान और भूविज्ञानी थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई के बाद उन्होंने कई भाषाओं का अध्ययन किया और महात्मा गांधी के संपर्क में आए।
2: वे ब्रिटिश भारतीय सेना में थे और उन्हें बहुत बुरा लगता था जब ब्रिटेन के झंडे को एक भारतीय सैनिक की हैसियत से उन्हें सलामी देनी होती थी। उन्हीं दिनों में उनके मन में एक तीव्र इच्छा जागृत हो गई कि भारत का भी अपना राष्ट्रीय ध्वज हो। समय बीता, वे गांधी जी के संपर्क में आए और स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए।
1: जब राष्ट्रीय ध्वज बनाने की बात आई तो इसके लिए पिंगली वेंकैया जी को ही चुना गया। लगभग 5 वर्षों तक उन्होंने दुनिया भर के झंडों का गहरा अध्ययन किया और करीब 30 डिजाइन संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किए। उनमें से आज का हमारा प्यारा तिरंगा चुना गया। श्रोताओं, वेंकैया जी का निधन 4 जुलाई 1963 को हुआ। उन्हें हमारा शत शत नमन।
2: श्रोताओं, तिरंगा हमारी जान है, आन है और शान है
1: जी।
2: लेकिन बहुत जरूरी है ये जानना कि हम इसका सम्मान कैसे करें। आइए कुछ प्रमुख नियमों को जानते हैं।
1: श्रोताओं, पहली बात, राष्ट्रध्वज हमेशा सम्मान पूर्वक फहराया जाना चाहिए। कभी भी इसे जमीन, पानी या फर्श को छूने नहीं देना चाहिए।
2: कभी भी फटा, गंदा या क्षतिग्रस्त तिरंगा नहीं फहराना चाहिए। ध्वज का उपयोग किसी अन्य प्रकार से कभी नहीं होना चाहिए, जैसे मेजपोश, पर्दे, कुशन या सजावट की वस्तु के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।
1: श्रोताओं, तिरंगे पर कुछ भी लिखना, चित्र बनाना या इसके वास्तविक रूप से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए
2: जी।
1: और हाँ, यह बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी अन्य ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा या अधिक सम्मानजनक स्थान पर नहीं लगाया जा सकता।
2: जी हाँ श्रोताओं, तिरंगा हमें केवल अधिकारों की याद नहीं दिलाता बल्कि हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। जब भी हम तिरंगे को देखें तो अवश्य उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करें जिनकी कुर्बानियों से हमें आजादी मिली।
1: तो आइए श्रोताओं, हम सभी संकल्प लें कि हम अपने राष्ट्र ध्वज का सदैव सम्मान करेंगे, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक बनकर भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे।
2: जी, और अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो श्रोताओ, आज का प्रश्न है, राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया जी ने झंडों के कुल कितने डिजाइन प्रस्तुत किए थे। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया जी ने झंडों के कुल कितने डिजाइन तैयार किए थे।
1: श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो आइए अब करते हैं रुख आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर और सुनते हैं कार्यक्रम सुभाष चंद्र बोस।
2: इस कार्यक्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके उल्लेखनीय योगदान के बारे में बताया गया है। विशेष रूप से उनके द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज की चर्चा की गई है।
3: तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बता सकते हो ये बात किसने कही थी? भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतवासियों से खून की मांग करने वाले इस देशभक्त का नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया और ब्रिटिश साम्राज्यवाद से जमकर टक्कर ली। देश के लिए जान न्योछावर करने वाले इस वीर का जन्म 23 जनवरी सन 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर जानकीनाथ बोस कटक के एक प्रतिष्ठित वकील थे। सुभाष की प्रारंभिक शिक्षा कटक में हुई और कॉलेज की पढ़ाई कलकत्ता में। जब वे प्रेसिडेंसी कॉलेज में BA के छात्र थे, तभी एक दिन
4: अरे दिलीप।
5: हाँ सुभाष।
4: अरे उधर कहाँ जा रहे हो भाई, कक्षा में नहीं चलना क्या?
5: वो प्रोफेसर ओटन का पीरियड है ना?
6: हाँ है तो सुभाष, लेकिन कक्षा में मैं नहीं जाऊँगा। प्रोफेसर ओटन जिस तरह हम भारतीयों को गाली देते रहते हैं, मुझे उससे सख्त नफरत है।
4: अरे तो तुम क्या समझते हो, मुझे गालियाँ खाने का शौक है, मगर इस तरह कक्षा में ना जाने से क्या होगा भाई?
6: कक्षा में नहीं जाएंगे तो अंग्रेज के मुंह से अपने देश के बारे में अपमानजनक बातें तो नहीं सुनेंगे ना?
4: अरे इस तरह कहां कहां से बचोगे? प्रोफेसर ओटन कोई अकेला अभिमानी अंग्रेज तो है नहीं इस देश में। स्कूल, कॉलेज, घर, दफ्तर, हाट बाजार, सभी जगह तो ये लोग हमारे लाखों करोड़ों देशवासियों को लांछित और अपमानित करते रहते हैं।
6: तो फिर?
4: और हमारा दोष ये है कि हम विरोध करने की बजाय पीठ फेर कर चले जाते हैं। जिस दिन हमने सामने खड़े होकर इनका विरोध करना शुरू कर दिया ना, उसी दिन से इनका गाली देना भी बंद हो जाएगा।
6: कहना आसान है सुभाष, इन गोरों के आगे विरोध करने के लिए खड़ा कौन होगा?
4: हमारे तुम्हारे जैसे लोग ही खड़े होंगे बंधु, जिनका ये लोग सत्ता के नशे में चूर होकर दिन रात अपमान करते रहते हैं।
6: सुभाष, प्रोफेसर ओटन आ रहे हैं।
7: Hey, you idiots! क्लास का टाइम में इधर खड़ा होकर क्या करता तुम?
4: आप ही के बारे में बात कर रहे थे प्रोफेसर ओटन।
7: Is that right? You black monkey?
6: जी सर, वो ऐसा था जी कि सर।
7: वाह जी जी, बोलता क्यों नहीं, क्या बात करता था?
4: हम ये कह रहे थे कि आप टीचर हैं, आपके मुंह से बात बेबात गाली शोभा नहीं देती।
7: You bloody rascal! You are telling me what to do? तुम्हारा यह हिम्मत?
4: हिम्मत की बात ना कीजिए प्रोफेसर, हिम्मत तो इससे भी ज्यादा है।
7: तो क्या करेगा? क्या करेगा तुम? मारेगा हमको? यू स्काउंडरल, यू ब्लडी स्वाइन, बोलो क्या करेगा तुम? हम तुमको गाली देगा, तुम्हारा बाप को गाली देगा।
4: बस प्रोफेसर बस, इससे ज्यादा एक शब्द भी नहीं सुनूंगा मैं।
7: ठीक है, हम तुमको देख लेगा। क्या नाम है तुम्हारा?
4: मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है मिस्टर ओटन, आइंदा याद रखिएगा।
3: अन्याय और अत्याचार के खिलाफ ये सुभाष की पहली जंग थी। परिणाम ये निकला कि उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया, लेकिन सुभाष को कोई अफसोस नहीं हुआ। बाद में दूसरे कॉलेज से उन्होंने BA पास किया। फिर अपने पिता के आग्रह पर उन्होंने लंदन जाकर इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी पास की, लेकिन वे अच्छी तरह जानते थे कि ICS के बंधन में बंधकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना असंभव है। इसलिए उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और स्वदेश लौट आए। बंबई आते ही वे महात्मा गांधी से मिले। गांधी जी के शांतिपूर्ण सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम उन्हें पसंद नहीं आए। गांधी जी ने उनकी परेशानी को समझा और उन्हें सलाह दी कि वे कलकत्ता जाकर देशबंधु चितरंजन दास से मिलें। देशबंधु के विचार सुभाष के जोशीले स्वभाव के अनुकूल थे। बस फिर क्या था, देशबंधु के नेतृत्व में सुभाष ने बंगाल के युवकों को संगठित करना शुरू किया। उन्हीं दिनों इंग्लैंड के युवराज भारत की यात्रा पर आए। कांग्रेस ने प्रस्ताव किया कि युवराज के दौरे का पूर्ण बहिष्कार हो और हड़ताल की जाए। बंगाल में यह हड़ताल अभूतपूर्व रूप से सफल हुई। सभी बड़े नेता बंदी बनाए गए।
8: क्या कहते हो, सभी नेता पकड़े गए?
6: अरे ये महात्मा जी का आंदोलन है भाई, यहाँ नेता लोग जनता के आगे खड़े होते हैं, पहली लाठी गोली खुद खाते हैं, पहले जेल खुद जाते हैं।
8: तो क्या देशबंधु भी पकड़े गए?
6: हाँ, सबसे पहले तो उन्हीं को पकड़ा।
8: और अपने सुभाष बाबू?
6: वो भी आते ही होंगे। जब पुलिस हम लोगों को गाड़ी में भर रही थी तब भी वे बचे हुए लोगों को आगे बढ़ने को प्रेरित कर रहे थे। लो ये एक और दल आ गया और शायद सुभाष बाबू भी साथ ही है। क्यों सुभाष दा,
9: कितनी सजा हुई?
10: नालायक कहीं के, सजा भी ठीक से नहीं दे सकते, उसमें भी कंजूसी कर गए।
8: क्या हुआ सुभाष बाबू?
10: अरे होगा क्या, इतनी बड़ी हड़ताल हुई और सजा दे रहे हैं सिर्फ 6 महीने की। मैं देशभक्तों की कोई मुर्गी चोर?
3: लेकिन इसके बाद से जेल यात्राओं का ऐसा दौर शुरू हुआ कि 1921 से 1940 के बीच सुभाष लगभग 16 बार जेल गए। जब जेल में रहते तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता, लेकिन जैसे ही जेल से छूटते फिर आंदोलन में जुट जाते। बार बार जेल जाने से उनका स्वास्थ्य इतना गिर गया कि उन्हें टीबी हो गई। जब भोवाली सेनेटोरियम में भी स्वास्थ्य नहीं सुधरा तो उन्हें स्विट्जरलैंड जाने की अनुमति दी गई। वहां पहुंचकर वे यूरोपीय देशों में भारत के प्रति सहानुभूति का वातावरण बनाने में लग गए। 1938 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 1939 में वे फिर अध्यक्ष चुने गए, लेकिन गांधी जी से मतभेद होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के भीतर ही एक प्रगतिवादी दल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तभी दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। एक बार फिर सुभाष और गांधी जी का मतभेद सामने आया। गांधी जी अंग्रेजों पर आई विपत्ति का फायदा नहीं उठाना चाहते थे, जबकि सुभाष का कहना था कि इस समय अंग्रेज दूसरे मोर्चों पर फंसे हुए हैं, उनकी पकड़ हिंदुस्तान पर से ढीली हो रही है, यही सही वक्त है जब हमें पूर्ण स्वराज्य प्राप्त कर लेना चाहिए। सुभाष के ऐसे वक्तव्यों से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1940 में उन्हें फिर बंदी बना लिया। सुभाष ने आमरण अनशन की घोषणा कर दी। इस पर सरकार ने उन्हें जेल से तो छोड़ दिया, लेकिन उनके घर पर सशस्त्र पुलिस का कड़ा पहरा बैठा दिया।
10: कौन? शिशिर?
11: हाँ सुभाष काका, मैं हूँ, दरवाजा खोलिए।
10: आओ अंदर आ जाओ, क्या खबर है?
11: सब तैयारी हो गई है, पीछे वाली गली में गाड़ी खड़ी है। कलकत्ता में आपका दिखाई देना ठीक नहीं है काका। ये सोचकर हम लोगों ने योजना बनाई है कि आप बिहार में गोमो से ट्रेन में बैठेंगे, मैं स्वयं गाड़ी चला कर ले चलूंगा।
10: ठीक है चलो, लेकिन मेरे ये कपड़े?
11: उसका भी प्रबंध हो गया है, आपके लिए तंग पैजामा, शेरवानी और तुर्की टोपी आ गई है। आप रास्ते में कहीं बदल लीजिएगा।
10: ठीक है।
11: उस वेशभूषा में आपकी ये दाढ़ी बिल्कुल ठीक लगेगी। किसी को शक नहीं होगा कि आप सचमुच मौलवी जियाउद्दीन नहीं हैं।
10: तो फिर ठीक है, आओ चलें।

0: 16 जनवरी की रात वे पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंककर गायब हो गए। इसमें उनके भतीजे शिशिर बोस ने उनकी मदद की।
1: दरवाजा खोलिए साहब, मैं रेलवे कर्मचारी हूँ। इन मौलवी साहब का रिजर्वेशन है यहाँ से।
2: खोलता हूँ भाई, खोलता हूँ, अभी खोल देता हूँ। आदाब अर्ज़ है मौलवी साहब।
3: आदाब, ये सामान यहाँ रख दीजिए।
2: लाओ लाओ।
3: शुक्रिया शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब गार्ड साहब।
1: नहीं साहब, इसमें शुक्रिया की क्या बात है।
3: अच्छा, खुदा हाफिज।
1: खुदा हाफिज साहब।
4: लो भाई, यहां तक तो आसानी से आ गए, अब कल ना जाने क्या हो।
5: ये अखबार कहां गए?
4: हाँ, ये रहा। कल दिन भर पढ़ने के साथ साथ चेहरा छिपाने के भी काम आएगा।
6: अब थोड़ी देर आराम कर लूं।
0: ट्रेन से पेशावर पहुंचने पर सुभाष को कुछ विश्वस्त साथी मिले, जिन्होंने सीमा पार करने में उनकी मदद की। इस तरह कभी पैदल, कभी खच्चरों पर, तो कभी ट्रक वालों से मुफ्त सवारी मांगते हुए सुभाष काबुल पहुंचे। काबुल में उन्होंने कई विदेशी दूतावासों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की और आखिर इटालियन दूतावास के जरिए यूरोप जा पहुंचे। उन्होंने जर्मनी में हिटलर से भेंट की। सुभाष ने बर्लिन में रहकर वहां रहने वाले भारतीयों को इकट्ठा करके फ्री इंडिया लीग की स्थापना की। जर्मनी की सहायता से उन्होंने आजाद हिंद रेडियो का प्रसारण आरंभ किया। स्वयं सुभाष भी इस पर अपने विचार व्यक्त करते थे। उधर जापान में भी एक पुराने भारतीय क्रांतिकारी

0: यद्यपि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेता यही मानते थे कि एक साम्राज्यवादी शक्ति को हटाने के लिए दूसरी साम्राज्यवादी शक्ति का सहारा लेना उचित नहीं है, मगर नेताजी का कहना था कि शत्रु का शत्रु अपना मित्र होता है और उससे मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। उधर युद्ध की भीषणता बढ़ती जा रही थी। आजाद हिंद फौज की टुकड़ियों ने भी कई मोर्चों पर युद्ध किया। खराब मौसम, कम रसद और बीमारियों के बावजूद नेताजी के सैनिकों के हौसले बुलंद थे। बर्मा की ओर बढ़ती हुई आजाद हिंद फौज कोहिमा तक पहुंच गई। भारत भूमि पर आजाद हिंद का झंडा फहराया गया, मगर इस बीच बहुत से सैनिक हताहत हुए। आजाद हिंद फौज को और अधिक बलिदानी वीरों की आवश्यकता थी। 22 सितंबर 1944 को रंगून का जुबली हॉल खचाखच भरा हुआ था। शहीद जतीन दास का स्मृति समारोह था। जय हिंद और दिल्ली चलो के नारे गूंज रहे थे।
1: मेरे बहादुर साथियों, तुम लोगों ने आजादी के लिए बहुत त्याग किया है, लेकिन अभी प्राणों की आहुति देना बाकी है। मैं भारत की स्वतंत्रता को स्पष्ट देख रहा हूं, वो अब ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन अभी उसे खून की जरूरत है। उसे ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो अपने हाथों अपना सर काटकर उसके चरणों पर न्योछावर कर सके, जो उसके लिए अपना खून बहा सके। बोलो साथियों, क्या तुम लोग तैयार हो?
2: हम तैयार हैं।
1: तो फिर ठीक है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
3: नेताजी, मेरे खून की एक एक बूंद ले लीजिए।
1: नहीं नहीं नहीं, इस तरह बातें बनाने से कुछ नहीं होता। मुझे इस प्रतिज्ञा पत्र पर तुम्हारे हस्ताक्षर चाहिए।
4: मुझे दीजिए कागज, पहले मैं हस्ताक्षर करूंगी।
1: ठहरिए ठहरिए ठहरिए, ये आजादी का परवाना है, इस पर सादी स्याही से हस्ताक्षर नहीं किए जाते, इस पर खून से हस्ताक्षर होते हैं। जिसकी नसों में सच्चा भारतीय खून बहता हो, जिसे अपने प्राणों का मोह ना हो, वो आगे बढ़े और इस पर हस्ताक्षर करे।
5: मैं करूंगी हस्ताक्षर, कागज मुझे दीजिए।
2: नहीं, नहीं, कागज मुझे।

और उस दिन नेताजी के आह्वान पर सैकड़ों हजारों लोगों ने आगे बढ़कर आजादी के उस परवाने पर अपने खून से हस्ताक्षर किए। पता नहीं उनमें से कितने आजादी की सुबह देखने को जिंदा रहे और कितने आजादी की राह में शहीद हो गए।

0: खुद नेताजी का विमान 18 अगस्त 1945 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 15 अगस्त 1947 की सुबह देखने के लिए नेताजी जीवित नहीं रहे, मगर जैसा उन्होंने खुद कहा था,
1: यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि हम में से कौन भारत को आजाद देखने के लिए जीवित रहेगा। यही काफी है कि भारत आजाद होगा और उसे आजाद करने के लिए हम अपना सर्वस्व अर्पित कर देंगे।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुभाष चंद्र बोस, और आइए अब सुनते हैं एक विशेष गीत जिसने भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान असंख्य युवाओं को प्रेरणा दी और उन्हें क्रांति पथ पर अग्रसर होने के लिए आह्वान किया। शीर्षक है जवानों उठो।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा देश के जवानों को संदेश दिया गया कि वे देश के लिए पूरे समर्पण और दृढ़ निश्चय के साथ काम करें और इसे विकास की दिशा में आगे ले जाएं।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत जवानों उठो, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता, जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 6:30 हुए हैं, एक बार फिर हाजिर हैं आपका अपना कार्यक्रम फिल्म संगीत लेकर। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं बारिश का एक बहुत प्यारा सा गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म काला बाजार से। गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाज है, शैलेंद्र के पोल हैं और संगीत से बिरोया है SG परमन ने।

कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, हसरत जयपुरी का लिखा हुआ संगीत है, शंकर जयकिशन का, फिल्म का नाम हरियाली और रास्ता और आवाज लता मंगेशकर की।

अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में आइए हम आपको सुनवा रहे हैं मोहरा फिल्म का गीत। आनंद बख्शी की रचना है और विजू शाह का संगीत।

एक नजर, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं सर फिल्म का गीत, कुमार सानू की आवाज में अनु मलिक का संगीत है। आइए सुनते हैं ये सर फिल्म का प्यारा संगीत।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का प्रदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्राप्त करने की अनुमति देता है। निगम किसी भी सहकारी समिति या सहकारी विकास में लगी संस्था को सीधे ऋण और अनुदान भी प्रदान कर सकता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों की कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया है। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। ये विधेयक विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगा। सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय एआई कौशल विकास पहल के प्रथम चरण में 60,253 नामांकन प्राप्त हुए हैं। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरगन ने लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि कुल 4,620 प्रतिभागियों ने प्रथम चरण के दो मॉड्यूल पूरे कर लिए हैं। उन्होंने बताया कि 552 प्रतिभागियों ने कार्यक्रम के प्रथम चरण के सभी चार मॉड्यूल पूरे कर लिए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर एक बार फिर कहा है कि वे नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई विभिन्न घटनाओं पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं। संसद परिसर में श्री रिजिजू ने ये बात कही।
1: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है क्योंकि पार्लियामेंट की डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे और ओपोजिशन जवाब सुनने नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचने का आग्रह किया है। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय, मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन करते हुए ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। श्री गोयल ने भारतीय उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक बाजारों में ले जाते समय पुनः उपयोग की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का भी आग्रह किया। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि 9 मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं।
2: भारत में उभरती हुई ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती है। पूरी दुनिया के ध्यान में आ गया है कि ये $4 trillion की आज की इकोनॉमी 2047 में जब हम 100 वर्ष आजादी के बनाएंगे तब ये $30 trillion की इकोनॉमी कम से कम बन जाने वाली।
0: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि एक जड़ी बूटी एक मानक पहल का उद्देश्य पारंपरिक औषधियों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता मजबूत करना है।

नई दिल्ली में आज श्री जाधव ने कहा कि ये पहल भारत की समृद्ध जैव विविधता और पारंपरिक चिकित्सा विरासत की रक्षा में योगदान देगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। छात्र अपना परिणाम डिजी लॉकर रिजल्ट पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। JPSC और JSSC सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। विपक्ष के नेताओं ने भी प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को अपना समर्थन दिया है। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीत लिए। कनाग लक्ष्मी, राजेंद्रन, शांतिमोल, शेरजन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं जॉयस अशिता ने रजत और कुमारिशन पद्म गिशो निधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। समय है कार्यक्रम विवरण का। सबसे पहले हमारी आज की सांध्यकालीन सभा के शेष कार्यक्रम। अब से कुछ ही पलों में 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा, जिसमें आप सुनेंगे भेंट वार्ता, खरीफ दलहनी फसलों में समसामयिकी कार्य। जानकारी देंगे डॉक्टर सुरेंद्र धतलहरी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा, जिसे हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 8:15 पर सुनेगा कार्यक्रम सुर्खियों में फिल्म संगीत। 8:30 पर और 9:30 पर सुनेगा कार्यक्रम चर्चा का विषय है, जो कार्यक्रम दिल्ली से रिले किया जाएगा। रात्रि 10 बजे पॉडकास्ट श्रृंखला के अंतर्गत आप सुनेंगे पर्सन बिहाइंड द स्टोरी की 7वीं कड़ी, जो विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निगम की कहानी पर केंद्रित होगी। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में हम आपको सुनवाएंगे रामकृष्ण चौधरी का शहनाई वादन, राग होगा किदा, और समय रहेगा रात्रि 10:30। और अब बारी है हमारे कल के कार्यक्रमों की। आकाशवाणी भोपाल से सुबह 7:20 पर प्रस्तुत करेंगे दैनिक सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। 8:30 पर सुनेगा प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। 9:02 पर होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:15 पर हम आपको सुनवाएंगे देशभक्ति गीत। अंधा मोड़ ये कार्यक्रम होगा सुबह 9:30 पर, लेखक होंगे अजीमुद्दीन, प्रस्तुतकर्ता राकेश टांडिया। जिले की चिट्ठी का समय रहेगा सुबह 10 बजे और 10:05 पर पेश करेंगे फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम गीत सागर। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में 11 बजे सुनेगा फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे आपकी फरमाइश। ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं दिन में 12 बजे और 2:30 पर। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत सुनेगा धारावाहिक अमर वीर बलिदानी झांसी वाली रानी का 3रा भाग। दिन में 1 बजे होगा महिला कार्यक्रम में 1:30 पर सुनेगा लोक संगीत का कार्यक्रम। 1:45 पर पेश करेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम और सांध्यकालीन सभा में 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र की प्रस्तुति होंगे। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं शाम 5:33 पर, 6:30 पर, रात्रि 8:30 पर और 9:30 पर। शाम 6 बजे होगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: आकाशवाणी भोपाल से 7:30 में पर सुनेगा कार्यक्रम किसान वाणी, जिसमें हम आपको सुनवाएंगे भेंटवार्ता मानसून के मौसम में उद्यानी की फसलों में समसामयिक कार्य। जानकारी देंगे डॉक्टर लवेश कुमार चौरसिया और होगी कृषि वार्ता, विषय रहेगा खरीफ फसलों में समसामयिक कार्य और हमारे विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर हरदयाल वर्मा। रात्रि 8:00 दिल्ली से संसद समीक्षा होगी। 8:15 पर सुनेगा कार्यक्रम सुर्खियों में। 10:00 दिल्ली से हम प्रसारित करेंगे संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। 7:00 है, कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। लोकसभा में नीट मामले पर विपक्ष का हंगामा, कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। मुख्यमंत्री मोहन यादव का अहमदाबाद में निवेशकों से संवाद, प्रदेश में निवेश के लिए उद्योग जगत को दिया न्योता। स्वतंत्रता दिवस पर भोपाल के लाल परेड मैदान में वंदे मातरम के गायन से शुरू होगा राज्य स्तरीय समारोह। और प्रदेश में मानसून सक्रिय, 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज नीट परीक्षा को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन में कथित पुलिस कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई कई बार बाधित हुई और बाद में दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह नीट मामले पर सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं। इस बीच विपक्ष के हंगामे के बीच खान और खनिज संशोधन विधेयक 2026 बिना चर्चा के पारित हो गया। वहीं विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज अहमदाबाद में गुजरात के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों से मुलाकात की। मेगा निवेश रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री ने उद्योग समूहों के प्रतिनिधियों के साथ 1-to-1 बैठकें भी की। बैठकों में ऊर्जा, वस्त्र, विनिर्माण, अधोसंरचना और औद्योगिक विस्तार के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने गुजरात के उद्योग जगत को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2027 के लिए आमंत्रित भी किया।
5: कि हमारे यहाँ 2000 एकड़ का बड़ा टेक्सटाइल पार्क, जिसका निर्माण का भूमि पूजन करने माननीय मोदी जी आए, उसी समय सारे प्लांट बिक गए, सारे उद्योगपतियों ने ले लिए। ये भी एक नया रिकॉर्ड मध्यप्रदेश के साथ बना है। ये हमारी साख और धाक के साथ हमारी विश्वसनीयता का भी बड़ा प्रमाण निकला है, जिसके आधार पर आज सभी सेक्टर में हरेक जगह हमारे व्यापार व्यवसाय की पॉलिसियों के कारण से निवेश को पर्याप्त प्रोत्साहन भी मिल रहा है और हमारी सरकार को समर्थन भी मिल रहा है।
4: डॉक्टर मोहन यादव ने अरविंद लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक कुलीन एस लाल भाई और वाइस चेयरमैन पुनीत लाल भाई से मुलाकात भी की। उन्होंने बताया कि अरविंद ग्रुप मध्य प्रदेश के देवास, पीएम मित्र पार्क और बेटमा में अपनी इकाइयां स्थापित करेगा। पीएम मित्र पार्क में एक साल के भीतर उत्पादन शुरू होने की भी उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस पर भोपाल के लाल परेड मैदान में होने वाले राज्य स्तरीय समारोह की शुरुआत सुबह 9:00 राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन से होगी। इस बार जिला, विकासखंड, नगर और ग्राम पंचायत स्तर के कार्यक्रमों की शुरुआत भी वंदे मातरम से की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव परेड मैदान में ध्वजारोहण करेंगे और इसके बाद राष्ट्रगान और परेड की सलामी होगी। मुख्यमंत्री परेड का निरीक्षण करेंगे और मार्च पास्ट के बाद प्रदेश की जनता के नाम संदेश देंगे। कार्यक्रम में पदक अलंकरण और परेड कमांडर और प्लाटून कमांडरों को पुरस्कार भी दिए जाएंगे। भोपाल के बड़े तालाब में कल नौका तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में सुबह 11 बजे से ये यात्रा शुरू होगी। इसमें 100 से ज्यादा नावों पर युवा हाथों में तिरंगा लेकर शामिल होंगे। यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मंत्री विश्वास सारंग आज बोट क्लब पहुंचे और अधिकारियों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने सुरक्षा, यातायात, नावों के संचालन, गोताखोरों और SDRF की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रदेश में भी एनालॉग पनीर के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। एनालॉग पनीर को असली दूध से बने पनीर के विकल्प के तौर पर तैयार किया जाता है। इसमें दूध के साथ या उसकी जगह वनस्पति वसा, स्टार्च और दूसरी सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
4: समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भारत सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से भोपाल के श्यामला हिल स्थित क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान में कल से 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। प्रदर्शनी हर घर तिरंगा अभियान और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आधारित होगी। इसका उद्घाटन कल सुबह 10:30 बजे भोपाल की महापौर मालती राय करेंगी। प्रदर्शनी में देशभक्ति और विभाजन की त्रासदी से जुड़ी तस्वीरों और जानकारियों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसका उद्देश्य लोगों को स्वतंत्रता संग्राम और विभाजन के इतिहास से अवगत कराना है। केंद्र सरकार ने देश भर में अंगदान को बढ़ावा देने के लिए जुग जुग जियो अभियान शुरू किया है। इसकी शुरुआत 3 अगस्त को 16वें भारतीय अंगदान दिवस के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने की। ये अभियान 1 साल तक चलेगा। अभियान के तहत शहरों के साथ गांव और कस्बों में भी लोगों को अंगदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। लोगों को मृत्यु के बाद अंगदान का संकल्प लेने और इससे जुड़ी भ्रांतियां दूर करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सरकार ने इसके साथ ई प्रत्यारोपण डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है। एक पेड़ प्रदेश के शासकीय और निजी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक पेड़ मां नाम अभियान चलाया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने उस सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को अभियान में सक्रिय भागीदारी के निर्देश दिए हैं। अभियान के तहत विद्यार्थियों को पौधारोपण के साथ जल संरक्षण, स्वच्छता और प्लास्टिक के उपयोग में कमी जैसी गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। लगाए गए पौधों की जानकारी मेरी लाइफ पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं। विश्व हाथी दिवस पर भोपाल के राज्य पुरातत्व संग्रहालय परिसर में हाथियों के संरक्षण और इतिहास पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बताया गया कि करोड़ों वर्ष पुराने जीवाश्म इस बात का प्रमाण है कि मध्य प्रदेश दुनिया के प्राचीनतम हाथी क्षेत्रों में से एक रहा है। पद्मश्री डॉ. नारायण व्यास ने कहा कि हाथियों का प्रदेश की कला, संस्कृति और साहित्य में प्राचीन काल से विशेष स्थान रहा है। कार्यक्रम में गजलोक वाइल्ड सेक्रेड इटर्नल डॉक्यूमेंट्री फिल्म का विमोचन भी किया गया। बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय है और पिछले 24 घंटे में प्रदेश के आधे से ज्यादा हिस्सों में तेज बारिश हुई है। बड़वानी में टोरी नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। वहीं शहडोल में नदी पर पुल नहीं होने से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। तेज बारिश के चलते भोपाल, रायसेन, गुना और खंडवा में स्कूल बंद किए गए हैं। मौसम विभाग ने रतलाम, झाबुआ, धार, बड़वानी और इंदौर में भारी बारिश की चेतावनी दी है, जहां अगले 24 घंटे में 4 इंच या उससे ज्यादा बारिश हो सकती है। मौसम एक्सपर्ट्स के मुताबिक प्रदेश में अगले 4 दिनों तक तेज बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर में 15 अगस्त को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। नीमच जिले में पंख अभियान के अंतर्गत बालिकाओं के अधिकार, शिक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। धार में एड्स रोग के प्रति जनसामान्य में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जागरूकता रैली निकालकर अभियान का शुभारंभ किया गया। और राजगढ़ जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आज विभागवार समीक्षा बैठक कर CM हेल्पलाइन की शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण करने के निर्देश दिए गए। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में नीट मामले पर विपक्ष का हंगामा, कार्यवाही

दिन भर के लिए स्थगित। मुख्यमंत्री मोहन यादव का अहमदाबाद में निवेशकों से संवाद, प्रदेश में निवेश के लिए उद्योग जगत को दिया न्योता। स्वतंत्रता दिवस पर भोपाल के लाल परेड मैदान में वंदे मातरम के गायन से शुरू

जय जवान जय किसान। चौपाल कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भैया बहन का विवेक भैया की दो ही हाथ जोड़ के राम राम नमस्कार पहुंच जावे। देखो भैया रो मौसम है बसकारे को, और बसकारे के मौसम में जब पानी बरसत रहे तब तो कितना बढ़िया लगता है, और जब पानी रुक जाए और वह उमस पड़ा थे भैया तब देखा तो अपन काहाल होते। तो कहते नहीं भैया जैसे मौसम होते वैसे अपन को अपनों खान पान रखने हैं, और ई मौसम में विशेष करके कहा होते हैं कि पाचन क्रिया जो है वह बड़ी कमज़ोर हो जाते हैं। तो अपन को ध्यान रखना है कि ज़्यादा तेल मिर्चा और गलत चीज़ें भैया नहीं खाने हैं, पानी तो भैया साफ़ सुथरा पीने ही पीने हैं, क्या कि ई मौसम में पानी भी है, पानी की गंदगी बहुत हो जाती है, और जो अपने घर के कूलर हैं होदी हैं भैया उनको पानी बिल्कुल टाइम से अपन को बदलत रहने हैं, क्या कि बोर रुको पानी बड़ी दिक्कत देते हो और बीमारियन की भैया सबसे बड़ी जड़ वही होते है। तो अपन का जैसो मौसम भैया वैसे ही अपन को अपनों खान पान और रहन सहन रखना है, और संगे संगे ध्यान रखना भैया एक बात को कि देखो आज का है भैया, आज है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। दुनिया में भैया जब भी इंसान युवा होते हैं तब उनके काम करने का तरीका उनको जोश कछु अलग ही होते भैया, ये सब चीज़ें अपन ने भी जीवन में देखी हैं। तो जब आज युवा की बात हो रही है, जवानी की बात हो रही है भैया, तो ई को जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि जो युवाओं से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पे ध्यान दे वो, और समाज के विकास में उनकी भागीदारी को बढ़ावो। और ई की शुरुआत जो करी गई थी वो वर्ष 2000 से करी गई थी, और पहली बार जो युवा दिवस भैया मनाओगे तो वो मनाओगे तो 12 अगस्त 2000 को। और मुख्य उद्देश्य तो भैया हमने अपन को बताई दो कि ई को मुख्य उद्देश्य है युवाओं के अधिकारों और उनकी आवाज़ को उठावो, शिक्षा रोजगार और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे पे भैया बात करवो, और समाज और देश के निर्माण में युवाओं की जो ताकत है उसको सही उपयोग करवो। और बिल्कुल साँची बात है भैया कि जो अपने युवा हैं चाहे अपने देश के हों चाहे भैया पूरी दुनिया के हों, उनकी जो ताकत है भैया उसकी कोई सीमा नहीं है, और जब वह ताकत सकारात्मक होके अच्छे काम में लगते हैं तो फिर देखो भैया देश दुनिया के विकास की बात, और वास्तव में जो दुनिया आगे बढ़ी है जो तरक्की अपन देख रहे हैं उनमें भैया सबसे बड़ा योगदान अगर है तो जो अपनी युवा शक्ति को है, और अपने देश की तो भैया बात कछु और ही है, युवा की जो ताकत है भैया बहुत अनूठी है, वे कोनो भी ऐसा काम कर सकते हैं जी की लोग कल्पना करते हैं। लेकिन बस बात भैया भैया कि अपनी सोच का अपन का सकारात्मक रख रहे हैं, और चाहे पढ़ाई लिखाई के मामले में होवे चाहे काम धाम के मामले में होवे, और भैया सबसे बड़ी बात होती है स्वास्थ्य। कहते नहीं भैया अगर आदमी को स्वास्थ्य सही है तो फिर दुनिया में सब चीज़ें सही है। पहलो सुख निरोगी काया, काया अगर निरोग है, हैं मन में शांति है भैया, सोच अच्छी है, तो फिर ऐसी दुनिया में कौन सी ताकत है भैया कि कोनू काम को रुके। और स्वास्थ्य रहवे के लाने भैया सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अपन का अपने ई शरीर से काम लेने हैं, व्यायाम भैया साइकिल चलावो जो तुम कहूँ छोड़ने नहीं है भैया। कहते नहीं जब अपन चलत हैं चलत फिरते हैं शरीर को चलात फिराते हैं तो कितना अच्छा लगता है भैया, मन कितना हल्को होते हैं कितना हालफुल रहते हैं।

वही अपन का एक तो व्यायाम करने हैं, जितना हो सके अपन का पैदल चलने हैं, जहाँ ज़रूरी है भैया उतना तो अपन गाड़ी घोड़ा से जा सकते हैं, लेकिन जहाँ अपन का लगत है कि पैदल चले से काम चल सके, साइकिल चलाए से काम चल सके, तो भैया एक तो उसमें प्रदूषण बचत है और अपना शरीर बढ़िया रहता है, और संगे संगे पौष्टिक भोजन, पौष्टिक भोजन तो भैया बहुत ही ज़रूरी है। कहते नहीं है खान पान अगर सही है तो भैया फिर सब सही है, तो खान पान सही रखने हैं, और खान पान के संगे संगे अपनों सोबे को टाइम। कहते नहीं है भैया कि जो ये 24 घंटा बने हैं उनमें 8 घंटा सोबे के लाने हैं, नींद भैया बिल्कुल 8 घंटा की जी की पूरी होते, देखो तुम सवेरे आदमी कैसे बढ़िया उठते हैं जग के हैं, और हर काम में उनको मन लगा थे, तो चाहे काम करे के घंटा होवे 8, चाहे भैया अपने ऊपर समय देवे के घंटा होवे 8, और चाहे भैया सोबे के घंटा होवे 8, ऐसे 24 घंटा हो जाते हैं। तो भैया इन घंटन को ध्यान रखना है और जीने, ये नियम को पालन कर लो, ये अनुशासन में रह लो भैया, फिर उकी का पूछ रहे हो, और कहते हैं कि जी को स्वास्थ्य बढ़िया है तो ऊ के हाथ में दुनिया के सारे सुख हैं, तो अपन का अपने स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देने हैं, और ई मौसम में तो भैया विशेष तौर पे ध्यान देने हैं। और अब बतकाओ तो भैया ऐसा है कि अपन होती रहने हैं कार्यक्रम का, अपन आगे बढ़ाएं तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपन सुनाते हैं जो लोकगीत, और ये गाँव है चंद्रभूषण पाठक भैया ने।

0: और भैया यारो, आज को जो दिना है तो एक बात के लाने आज को दिन और अपना महत्वपूर्ण है, और वो काय के लाने है भैया, वो है महान वैज्ञानिक जिनने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की जिन्हें जनक कहा जाते हैं भैया, उनकी जयंती है आज। अब 12 अगस्त का मनाई जाते विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिनको जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में हुआ था, और जो अपना भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जीए इसरो भी कहा जाता है, इनकी स्थापना को उन्हें श्रेय दिया जाता है। और परमाणु ऊर्जा के लाने उन्होंने महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी भाभा के संगे मिलके देश में परमाणु ऊर्जा के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनने बहुत सारे संस्थान को निर्माण कराया भी है, जिनमें फिजिकल रिसर्च लैब, IIM अहमदाबाद और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जैसे प्रमुख संस्थान की उनने नींव रखी, और पद्म भूषण और पद्म विभूषण इसे सरकार ने उनको सम्मानित करे है। तो आज को दिन अभी यह अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस तो है ही, संगे संगे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई को जन्मदिन भी है। तो आज जो अपन देख रहे हैं कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो भी बड़े बड़े आविष्कार हो रहे हैं, उनके जनक कतनी भैया कि जी ने कल्पना करी हो तो कोनो काम की शुरुआत जी ने करी है, शुरुआत भैया महत्वपूर्ण होते है। तो आज वही के जनक को जन्मदिन है, और अपन का जब आज ध्यान रखना है कि आज जो तरक्की अपन ने देखी है वो तरक्की उनकी कारण है, उनके प्रयासन के कारण है। और कार्यक्रम का अपन आगे बढ़ाएं, और आज अभी यह बुधवार, और आज अपन सुने थे आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से फ़ोन पे मौसम संबंधी जानकारी और कृषि सामायिक सलाह, और जानकारी दे रहे हैं अपन का डॉक्टर हरविंद सिंह। तो अपन सुने।
1: ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से डॉक्टर हरविंद सिंह का सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं हमेशा की तरह आपको मौसम के बारे में जानकारी दूंगा, साथ ही संभावित मौसम में कौन कौन से कृषि कार्य करने चाहिए उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। तो किसान भाई, सबसे आप पहले आप पिछले सप्ताह के मौसम के बारे में जानिए। आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना स्थित मौसम वेधशाला की गणना के आधार पर पिछले सप्ताह में मुख्यतः मध्यम से घने बादल रहे तथा हवा लगभग 5.1 से 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से मुख्यतः पश्चिम दक्षिण दिशा से बही तथा अधिकतम तापमान 34 से 34.5 और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया एवं अपेक्षित आर्द्रता सुबह 72 से 78 और शाम को 68 से 71% के बीच दर्ज की गई। किसान भाई, आगामी 5 दिन का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार से है। आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना को मध्यमकालिक मौसम पूर्वानुमान केंद्र भोपाल से प्राप्त जानकारी के आधार पर आगामी 5 दिनों में घने बादल रहने तथा हल्की वर्षा होने का अनुमान है। हवा लगभग 2 से 2 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से मुख्यतः पश्चिम और पश्चिम उत्तर दिशा से बहने की संभावना है तथा अधिकतम तापमान 35.4 से 35.7 और न्यूनतम तापमान 27 से लेकर 27.3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। अपेक्षित आर्द्रता की बात करें तो सुबह 93 से 95 और शाम को 73 से 82% के बीच रहने का अनुमान है। किसान भाई, संभावित मौसम की बात की जाए तो आगामी 5 दिनों में हल्की वर्षा की संभावना है पूरे ग्वालियर और मुरैना चंबल संभाग में। तो इसके देखते हुए जो आप अभी कृषि कार्य कर सकते हैं उसकी जानकारी दे रहा हूँ। तो किसान भाई, संभावित मौसम में आगामी 5 दिनों में हल्की वर्षा होने के अनुमान को देखते हुए इस समय फसलों और सब्जियों में खरपतवार नाशी एवं नाइट्रोजन का छिड़काव करें, यानी खरपतवार का नियंत्रण करें और जो नाइट्रोजन की शेष मात्रा है उसको दें। फसलों की बात करें तो किसान भाइयों, इस समय अरहर की फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु खरपतवार नाशी इमेजाथायपर प्लस इमेजामाक 70 ग्राम दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर 20 से 25 दिन की अवस्था पर मौसम साफ होने पर इसका छिड़काव करें। साथ ही किसान भाइयों, उर्दू और मूंग की बात करें तो संभावित मौसम में खरीफ उर्दू और मूंग में पत्ती धब्बा रोग की संभावना हो सकती है, अतः सतत निगरानी रखें और दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु मैंग को जो 1 किलोग्राम दवा प्रति हेक्टेयर 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका भी छिड़काव करें। साथ ही किसान भाइयों, तिल की बात करें तो संभावित मौसम में तिल में पत्ती धब्बा व काली डंडी रोग की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु मेनकोजेब 1 किलोग्राम दवा प्रति हेक्टर 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर मौसम साफ होने पर इसका छिड़काव करें। साथ ही किसान भाई बाजरा की बात करें तो बाजरा की भी इस फसल इस समय वृद्धि अवस्था में कलले निकलने की अवस्था में है, तो मौसम को देखते हुए बाजरा में जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसको इस समय दें। साथ ही किसान भाई धान की बात करें तो संभावित मौसम को देखते हुए क्योंकि हल्की हल्की बरसात होती है तो धान में पानी की जोड़ी कमी होती है उस समय खरपतवार होने की मात्रा बढ़ जाती है, खरपतवार बढ़वार हो जाती है खरपतवार की, तो उसमें इस समय खरपतवार अवश्य रूप से करें। साथ ही किसान भाई सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन की फसल में इस समय चक्रभंग एवं सेमी लूपर कीट की संभावना हो सकती है, सतत निगरानी रखें और दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु ट्राइजोफास 750 से 800 ml दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करें। साथ ही किसान भाई सब्जियों की बात करें तो किसान भाई इस समय जो सब्जियां आपने नई सब्जियां जिनकी रोपाई की है जैसे आपकी अगेती गोभी हो, बैंगन हो, टमाटर हो, मिर्च हो, तो उनमें इस समय खरपतवार नियंत्रण करें और साथ ही आवश्यकता अनुसार जो नाइट्रोजन की मात्रा हो उसको दें। साथ ही किसान भाई भिंडी की बात करें तो इस समय भिंडी फलन अवस्था में है तो भिंडी में इस समय फल छेदक कीट की संभावना हो सकती है, तो इसके नियंत्रण हेतु डाइमेथोएट 750 ml दवा प्रति हेक्टर 500 से 600 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर इसका मौसम साफ होने पर छिड़काव करें। साथ ही किसान भाइयों मिर्च की बात करें जो इस समय फलन अवस्था में है तो उसमें चुरा मुरा रोग की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु थायोमेथाक्सिजाम 25 WG 100 ग्राम दवा 500 से 600 लीटर पानी घोल बनाकर इसका छिड़काव करें। साथ ही किसान भाइयों बैंगन की बात करें तो बैंगन और टमाटर में तना छेदक और जो फलन वाली फसल है उसमें फल छेदक कीट की संभावना हो सकती है, अतः सतत निगरानी रखें और दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु निवाक्रोन 1 लीटर दवा को 500 से 600 लीटर पानी घोल बनाकर इसका छिड़काव करें। साथ ही किसान भाई पशुपालन की बात करें तो संभावित मौसम को देखते हुए पशुओं की नाद और पशुशाला की नियमित सफाई करें और प्रतिदिन पशुशाला की सफाई के बाद 5 ml दवा फिनाइल प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर इसका फर्श पर छिड़काव करें। साथ ही किसान भाई संभावित मौसम में पशुओं में संक्रामक रोगों के होने की संभावना अधिक बनी रहती है, अतः पशुओं को इसके बचाव हेतु दूषित चारा दाना न दें और साथ ही तालाबाद का पानी न पिलाएं, शुद्ध पानी पिलाएं। साथ ही किसान भाई इस समय पशुओं को अधिक मात्रा में हरा चारा खिलाने से अफरा रोग की संभावना

0: रहती है और अपरा रोग हो जाता है। अतः अपरा रोग की रोकथाम के लिए टिम्पल या बिलोटोसोल दवा 500 ml प्रतिदिन प्रति पशु के हिसाब से खिलाएं, यानी टिम्पल हो या अथवा बिलोटोसिल हो उसको 200 ml दवा प्रतिदिन प्रति पशु के हिसाब से खिलाएं। इसी के साथ आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र से मैं डॉक्टर हरबीन सिंह।
1: तो भैया अब अपन ने सुने आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से फ़ोन पर मौसम संबंधी जानकारी एवं कृषि सामयिक सलाह। और भैया देखो, जहाँ बात सलाह की आती है तो वहाँ एक बात और सलाह की आती है कि अपने जो किसान भैया आ रहे हैं उन्हें बैंकन से ऋण से लेने हैं, हैं? अब ऋण तो भैया ऐसा है कि देखो आवश्यकता पड़ती पड़ते काम धाम के लाने, तो बैंक से कृषकों को ऋण की सुविधाएँ और ये पर जानकारी दे रहे आशीष शुक्ला जी और उनसे बतकाव करे अपने सोहन सिंह भैया ने, और बड़ी उम्दा जानकारी है भैया, तो अपन ये सुनते हैं।
2: किसान भाइयों, हम फसल उत्पादन करते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि हम फसलों से अच्छा उत्पादन लें। अच्छा उत्पादन लेने के लिए उन्नतशील बीज, खाद और सिंचाई महत्वपूर्ण अवयव होते हैं और इनके लिए धन की आवश्यकता होती है। पहले हमारे ग्रामीण भाई जो धनवान लोग होते थे उनसे पैसे उधार लेकर अपना कार्य किया करते थे, लेकिन उनकी ब्याज दरें अधिक होती थीं। आज जगह जगह पर बैंकें स्थापित हो गई हैं और बैंकें कृषकों को ऋण प्रदान करती हैं, जिसको लेकर हमारे किसान भाई अपनी फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बैंकों से कृषकों को किस तरह ऋण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में आमंत्रित हैं श्री आशीष शुक्ला। शुक्ला साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है।
3: धन्यवाद सर।
2: शुक्ला साहब, हमारे किसान भाइयों को कृषि के लिए किस तरह ऋण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और इनका लाभ लेकर हमारे किसान भाई किस तरह अपनी खेती से अधिक उत्पादन ले सकते हैं?
3: किसान के लिए सरकार का बड़ा फोकस है और फोकस में मुख्यतः सबसे प्रथम अगर किसी के पास जमीन है तो जमीन में वो KCC के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसमें 7% इंटरेस्ट लगता है। अगर वो सुचारू रूप से चलाता है, दोनों टाइम ईयर में पलटी करता है, तो उसको 4% लोन मिलेगा। 3% का इंटरेस्ट सबमिशन मिलता है जो सरकार की तरफ से उसको दिया जाता है सही चलाने में। और KCC होने से अगर उसकी फसल में कुछ खराबी भी होती है तो उसके साथ में फसल बीमा किया जाता है, जिसके लिए रवि के सीज़न में जो रहता है उसका KCC अमाउंट होता है, जो लोन होता है उसका 2% होता है और खरीफ के लिए होता है 1.5% होता है।
2: शुक्ला साहब, आप बता रहे हैं KCC, जिसे ग्रामीण भाषा में कहते हैं किसान क्रेडिट कार्ड, अगर इसे हमारे किसान भाई बनवाना चाहते हैं तो उन्हें ऐसी कौन कौन सी प्रक्रिया है जो उन्हें पालन करते हुए आपके बैंकों से ऋण स्वीकृत करवा सकते हैं?
3: बहुत आसान प्रक्रिया है। कृषक भाई स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में जाएं, जाने के बाद उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड हमको चाहिए होगा, KYC जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स में है उसको लेकर जाएं, फसल की जो किताब होगी उसको लेके जाएं और खसरा खतौनी जो लगता है उसकी वकील जो होता है वो उसको सर्च करता है। सर्च में जब उपयुक्त आ जाने के बाद हम लोग उसको कर देते हैं, बस हमको इतना ही चाहिए होता है, ज़्यादा कुछ इसमें लगता नहीं है। बहुत इसी सुगमतापूर्वक हो जाता है और किसानों के लिए बहुत फायदेमंद भी है।
2: जैसे ऋण हमारे किसान भाई स्वीकृत कराते हैं तो इसकी कुछ सीमा रहती होगी, ये किस तरह आप निर्धारित करते हैं?
3: इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में स्केल ऑफ फाइनेंस निर्धारित करती है, उस जितना स्केल ऑफ फाइनेंस होता है उस आधारित पर हम उसको कैलकुलेट करते हैं और जो उच्चतम होता है तो हम उसको प्रदान करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं 5 साल में, तो उसको फर्स्ट ईयर में जो मिलता है सेकंड ईयर में उसका 10% इंक्रीज होता है और जो 5वें साल में उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वहां तक पहुंच जाता है वो। हर साल 10% इंक्रीज होकर 5th ईयर में उसकी जो फाइनल लिमिट होगी वो उसको मिलेगी। इसके लिए उसको हर साल रिन्यूअल कराना पड़ेगा, जो इंटरेस्ट बेनिफिट लेने के लिए उसको रिन्यूअल करने पड़ेंगे, रेगुलर बेसिस पे रिन्यूअल होगा, रिव्यू होंगे तो उसको इंटरेस्ट सबमिशन का भी बेनिफिट मिलेगा, जो एडिशनल इंटरेस्ट सबमिशन सरकार की तरफ से मिलता है उसका बेनिफिट मिलेगा, तो इंटरेस्ट बहुत नॉमिनल रह जाता है। अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर जो KCC का जो ऋण है वो सबसे सस्ता पड़ता है किसान भाई को, जस्ट लाइक अगर कहीं बाजार में भी कोई भी रहता है, किसी साहूकार के पास भी जाएंगे तो 1% लेता है या 2% का इंटरेस्ट रहता है, वो 24% पड़ता है ईयरली, बट आपको यहाँ पे 7% नॉर्मल है, अगर आप सही सुचारू रूप से चलाते रहेंगे तो 4% इंटरेस्ट रेट लगेगा आप पे।
2: शुक्ला साहब, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे हमारे पास एक एकड़ जमीन है,

0: जी,
1: तो हमें कितना ऋण स्वीकृत हो सकता है 1 एकड़ जमीन पर?
0: 1 एकड़ जमीन है अपने पास, तो अपना ऋण जो है, एकड़ को अपन हेक्टेयर में काउंट करते हैं, 1 हेक्टेयर पर 2.47 एकड़ होगा जाके, तो उसमें जो उसका स्केल ऑफ फाइनेंस डिसाइड होगा वहाँ का, उस हिसाब से उसको डिसाइड करेंगे एकड़ में। जो एकड़ में जैसे दतिया डिस्ट्रिक्ट में है 33,260 रुपीज़ कुछ वीट के, मतलब गेहूँ के उत्पादन के लिए हैं, चावल के लिए अलग रेट है, तो जो उसका रेट आएगा एक पर एकड़ के हिसाब से, तो हम उसको उसी हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, उसी हिसाब से डिवाइड करेंगे उसको।
1: तो शुक्ला साहब, जिस तरह हमारे किसान भाई ऋण तो लेते हैं तो खुशी खुशी लेते हैं
0: जी,
1: उन्हें अच्छा भी लगता है कि चलो हमें बैंक से धन मिल रहा है, लेकिन उनसे जो आप जो भुगतान है वो किस तरह करते हैं?
0: किसान क्रेडिट कार्ड में तो किसान के लिए बहुत फायदा है, किसान के पास जो भी लेन देन फसल का आ रहा है अगर कार्ड में आएगा तो उसमें ट्रांजेक्शन दिखेगा, उस आधार पे उसको जो सबमेंशन मिलता है वो सबमेंशन भी उसको दिखेगा उसमें, और वो उससे पैसा निकाल सकता है, क्योंकि वो एक ओवरड्राफ्ट सीसी लिमिट टाइप का अकाउंट है, सीसीओडी लिमिट अकाउंट है, जिसमें वो पैसा अपना निकाल सकता है और डाल सकता है उसमें, वो जस्ट लाइक ओडी अकाउंट काम करेगा किसान के लिए।
1: शुक्ला साहब, जिस तरह हमारे किसान भाई खरीफ के लिए ऋण लेते हैं या रबी फसल के लिए लेते हैं, तो उन्हें जो धन है वो एक साथ मिल जाता है कि वो किस्तों में मिलता है?
0: जो आपकी लिमिट है उस साल के लिए डिसाइड की गई है, जिसका एग्रीमेंट होता है पहले साल में, आपको उस पूरे साल के लिए वो पूरा पैसा मिल सकता है, आप चाहे तो एक बार में निकालिए चाहे आप किस्तों में निकालिए, वो आपको मिल जाएगा।
1: खेती के साथ साथ हमारे जैसे सहायक व्यवसाय हैं, पशुपालन है, उद्यानिकी है, और या दूसरे हमारे किसान भाई व्यवसाय करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी कुछ आपके यहाँ से ऋण सुविधाएं हैं?
0: हाँ, मध्य प्रदेश शासन अभी भारत सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है कि अभी पशुपालन के लिए भी केसीसी शुरुआत की गई है, हर डिस्ट्रिक्ट में लक्षित किया गया किसानों को कि किसानों को पशुपालन के लिए केसीसी देनी है, जिससे वो अपनी मतलब पैदावार को बढ़ा सकें और अधिक से अधिक जानवरों का फीड कर सके, उसमें दिक्कत नहीं आए। इसी तरह मत्स्य पालन के लिए भी अभी स्टार्ट किया गया है कि हम उनको भी केसीसी दे सकते हैं।
1: इसमें हमारे किसान भाइयों को किस तरह जो सुविधाएं वो प्रदान की जाती है, जैसे पशुपालन करना चाहते हैं?
0: पशुपालन के लिए आपको जो वहाँ पे वेटनरी का हॉस्पिटल है, आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ के थ्रू डॉक्टर्स उसको सर्टिफाइड करके हमारे पास एप्लीकेशन भेजते हैं, हम उनको देखते हैं, एप्लीकेशन हम लगती हैं, इसमें सब चीज़ें सही पाई जाती हैं, उसको हम करते भी हैं उसको प्रोसेस, और बहुत आसान काम है वो, तो सिर्फ आपको वेटनरी में जाके उसको जो आवेदन है उसको भरना है, डॉक्टर उसको सर्टिफाइड कर देगा और हम यहाँ से उसको फाइनेंस कर देंगे।
1: शुक्ला साहब, आपके तरफ से तो पूरी जो सरकारी प्रक्रिया है वो लागू होती है
0: जी।
1: लेकिन हमारे कुछ किसान भाई ऐसे भी होते हैं जिनकी आवश्यकताएं अधिक होती हैं
0: जी जी,
1: कुछ सामाजिक कार्यों के लिए भी ऋण लेना चाहते हैं, तो क्या सामाजिक कार्यों के लिए भी आपके यहाँ से ऋण की सुविधा है? जैसे शादी होती है, किसी की विवाह होता है, तो उसके लिए भी उन्हें धन की आवश्यकता होती है?
0: किसानों के तार्थ में हम उनको तरह तरह के लोन देते हैं, उसमें उनके खेतीबाड़ी से उपकरण में जो भी आते हैं उनके लेके, कृषि में फसल लगाने से लेके पैदावार तक, हार्वेस्टिंग तक का हम लोग करते हैं। अगर हमें शादी ब्याह के लिए अगर हमें कुछ लेना है तो हमें मतलब बैंक के कुछ किसी और प्रोडक्ट में जिसमें एसेट बैक्ड लोन आता है उसमें ले सकते हैं,
1: क्योंकि ये जो आपके बैंक ऋण हैं अगर हमारे किसान भाई समय पर भुगतान करते रहते हैं तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में ब्याज पर ऋण लेते हैं उसकी अपेक्षा काफ़ी लाभदायक।
0: हाँ, निश्चित ही आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर किसान भाई अगर उसको लेते हैं तो उसमें किसान को फायदा भी है, और जो प्रताड़ित होते हैं जो कहीं बाहर से पैसे लेने से जो 2% लेने पड़ते हैं 3% लेने पड़ते हैं, तो उससे बहुत आरामदायक है केसीसी करण, और आगे आपकी लाइजनिंग क्रेडिट रेटिंग अच्छी होती तो और बैंक आपको कंसीडर करता है बहुत सी सारी चीज़ों के लिए।
1: शुक्ला साहब, हमारे कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं आपके यहाँ से भी ऋण ले लिया
0: जी,
1: कोई दूसरी बैंक हैं वहाँ से भी ऋण ले लिया, फिर उन्हें जो भुगतान में काफ़ी समस्याएँ आती हैं, तो उन्हें कैसे आप चिन्हित करते हैं?
0: आज के समय में बहुत सारी चीज़ें सब ऑनलाइन हो गया है, अगर किसी व्यक्ति ने अगर मान लीजिए किसी का केसीसी स्टेट बैंक में है और किसी ने अगर दूसरी बैंक से फाइनेंस कराया है तो उसमें दिखता है, तो हम उसको बताते हैं, हम उसको लीगल नोटिस देते हैं कि हम ऐसा कार्य ना करें, कि हमें ऐसी कार्रवाई करना पड़े, चूंकि हम भी किसान के हितैषी हैं, स्टेट बैंक का एक ही मोटिव है कि रूरल क्षेत्र में जितना भी है सरकार का जो मुख्य बिंदु है उसको फोकस करते हुए हम उसको आगे बढ़े और किसान को उसको लाभान्वित करवा सके, इसलिए मतलब ऐसा कार्य ना करें कि एक जगह आपने लिया है उसको प्रॉपर बंद करें तभी दूसरी जगह अप्लाई करें और उसको लें, ऐसा डबल आप करेंगे तो वो लीगल कार्रवाई में आएगा।
1: इतनी सुविधाएं देने के बाद भी शुक्ला साहब अभी भी हमारे ग्रामीण भाई जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो ऋण लेते हैं उसे ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं बजाय बैंकों के, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं?
0: ग्रामीण बैंक के ब्रांच में होने के नाते मैं ही कहूँगा, किसानों को कम पढ़े लिखे होने के कारण वो अपनी बात को रख नहीं पाते और वो बैंक में आने से डरते हैं, और जो उनको पूछना चाहिए क्वेरीज जो आती हैं वो उनको डिसीजन नहीं मेकिंग नहीं कर पाते। इसमें क्या होता है, जो बिचौलिए होते हैं जो जो मतलब एक्टिवली आते हैं वो उनका उपयोग करके कहीं ना कहीं उनको कर देते हैं। अदरवाइज बैंक तो बहुत इजी मतलब एक्सेस देता है, स्टेट बैंक स्पेशली मतलब किसानों के लिए हम लोग नाइट कैंप लगाते हैं, जाके नाइट कैंप में जाके उनको अवेयर करते हैं कि आप आइए, आप ऋण चुकाइए, और हम उसको रीफाइनेंस भी करते हैं। इवन स्टेट बैंक में तो ऋण समाधान स्कीम थी, अक्टूबर से लेकर मार्च तक रही वो, उसमें जो किसान खराब भी हो जाते हैं तो उनको भी हमने इंटरेस्ट में हर स्टेप वाइज स्टेप उसको छूट देते हुए उनको सेटल किया है, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है कि जो हमारा ऋणी है उसको मुख्यतः बेनिफिट मिले और वो आगे सुधार करते हुए चले।
1: शुक्ला साहब, अंत में चलते चलते हमारी किसान भाइयों से और क्या कहना चाहेंगे जिससे हमारे किसान भाई आपके जो बैंक के हैं उनसे जुड़ें और अधिक से अधिक लाभ लें?
0: मैं सभी किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि वो अगर किसी भी तरह का ऋण लेना है, किसी बिचौलिए के चक्कर में ना आए, किसी भी साहूकार के चक्कर में ना आए, वो सीधे ब्रांच में आए, अपने डॉक्यूमेंट्स लाएं। आजकल सब कुछ मिल जाता है, गूगल पे कुछ जानकारी लेनी वहाँ लीजिए, ब्रांच में भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो प्राधिकृत अधिकारी जो कंट्रोलिंग ऑफिस में है वो आपको जानकारी प्रदान करेंगे। हम सभी लोग आपके लिए तत्पर हैं, लेकिन किसी भी बिचौलिए के चंगल में ना फंसें।
1: शुक्ला साहब, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे किसान भाइयों को बैंक द्वारा किस प्रकार के ऋण प्रदाय किए जाते हैं इसके बारे में जानकारी दी, और इस जानकारी से हमारे किसान भाई निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो भैया आरो, अभी अपन ने सुनी जानकारी बैंक से कृषकों को ऋण सुविधाएं, जानकारी दे रहे थे आशीष शुक्ला जी और उनसे बतकाव करिए तो अपने सोहन सिंह भैया ने, और भैया बड़ी उम्दा जानकारी है थी कैसे अपन बैंक से लोन ले सकत है ना, कोनो बिचौलिया के चक्कर में अपन का नहीं फंसने हैं, कोनो साहूकार के चक्कर में नहीं फंसने हैं, बढ़िया अपन का लोन लेना है, समय से भैया चुकाना है और बढ़िया मजे से अपना काम करना है। और देखो भैया आरो, एक बात अपन से हमें और करना है कि देखो आज को जमाना जो है वो है भैया काय को, वैकल्पिक ऊर्जा को। अपन देख रहे भैया लाइट के लाने जो जे सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है ना, तो अपन को चाहना भैया कि जो सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है इको अपन को पूरो अपन को फ़ायदा उठाना है। और जो योजना भैया कितनी अच्छी योजना है कि जो है सूरज जो है भैया ऊ की रोशनी से जो लाइट बन रही है अपने देखो घर के काम में आ रही है। अपन देख रहे हैं कि जागन तांगन अपन कहूँ जाओ, चाहे शहर में चले जाओ भैया, चाहे गाँव में चले जाओ, बिल दिख जाता अपन को हैं, सोलर की छतें बनी। और इको उद्देश्य ये तो भैया कि कम से कम 1 करोड़ घरों की छतों पे सोलर को पैनल लगाने हैं जिसे उन्हें हर महीना 30 यूनिट तक मुफ्त बिजली भैया उन्हें मिल जावे। और ये योजना की शुरुआत जो करी गई है वह 15 फरवरी 2024 को अपने प्रधानमंत्री महोदय ने करी थी। और इकला ने भैया सब्सिडी की बड़ी अच्छी दरें हैं, 1 किलोवाट तक 30,000 की सब्सिडी, 150 यूनिट तक मासिक खपत बाले घरन के लाने, 2 किलोवाट अगर सिस्टम है तो भैया 60,000 की सब्सिडी मिले थे, और 3 किलोवाट के लाने अधिकतम 78,000 की भैया फिक्स सब्सिडी है। बस ई के फ़ायदा उठावे के लाने पनखा चाहने हैं कि एक तो भैया जो आवेदन करे वो भारतीय नागरिक होवे, अपने खुद को ऊ को पक्को मकान होवे, जी की छत पे सोलर पैनल लग जाए, और घर में भैया एक वैध ऊ को बिजली को कनेक्शन होवे। तो कितनी अच्छी योजना है भैया प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है ना, तो अपन का भैया को फ़ायदा उठाने हैं। और जैसे जमाना है भैया वो जमाने के हिसाब से अपन को अपना काम धाम करने हैं और अपना घर परिवार चलाने हैं। और अब चलती मिरियाँ भैया सुनते हैं जो लोकगीत, और ये गाँव है देशाज पटेरिया ने।

तो भैया रो अभय, अपन ने सुने देशराज पटेरिया से जो लोकगीत, और बस बात भैया वही है अपनी कि सबसे पहले ध्यान रखने काय को, अपने स्वास्थ्य को, काय के अगर अपन स्वस्थ हैं तो भैया मस्त हैं, और व्यस्त हैं तो समझो दुनिया में सारे सुख अपने पास हैं। और स्वस्थ लेवे के लिए बस अचूक दवा है सही खान पान, व्यायाम और सोच को अपनी सकारात्मक। जब सोच भैया सकारात्मक होते है तो हर काम, कोनो भी काम हो भैया, हर काम में अपना मन लगाते हो, और जब काम मन लगा के करे जाते हैं तो कोनो काम हो भैया, कोनो भी काम में इंसान का असफलता नहीं मिलते। और अब ऐसे भैया के बातचीत करे को तो मन बहुत है, लेकिन अब बात भैया जाता ना कि भैया 8 बजियाँ हैं, ब्यारू की बिरियाँ हैं और भैया ई बेरा तो ब्यारू बिल्कुल टाइम से करना चाहिए, क्या कि बस कार्य को मौसम है। सो आज्ञा दो भैया अपने भैया विवेक का, अपना गांव फिर मिलें, फिर अपनों बतकाव हुई है, मनोरंजन हुई है, जानकारी हुई है, बहुत सारी और बातें हुई हैं। तो अपने सभी किसान भैया बहन का, विवेक भैया की दो ही हाथ जोड़ के भैया राम राम और नमस्कार, जय जवान जय किसान।

में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। संसद ने आज राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। इसमें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने का प्रावधान है। राज्यसभा ने विधेयक पर हुई चर्चा पर सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल के जवाब के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। उच्च सदन में विधेयक पर विपक्ष द्वारा पेश संशोधनों को खारिज कर दिया गया। एक बार स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे सदन की बैठक फिर शुरू होने पर विधेयक पेश किया गया। विधेयक पर चर्चा शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात पर आपत्ति जताई कि इस विधेयक पर चर्चा के समय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह सदन में उपस्थित नहीं हैं। हालांकि उपसभापति ने उनकी ये आपत्ति खारिज कर दी। बाद में कांग्रेस सहित कई विपक्षी सदस्य विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से बाहर चले गए। विधेयक पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए सहकारिता राज्य मंत्री मोहोल ने कहा कि एनसीडीसी को सहकारिता क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और अन्य बदलावों के अनुरूप बनाने और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस विधेयक में कई प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र ने सहकारिता क्षेत्र में कानून बनाने के लिए सदैव राज्यों की सरकारों से सुझाव लिए हैं और किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। विधेयक के अंतर्गत एनसीडीसी को सहकारी समितियों या इस क्षेत्र के विकास में लगी किसी भी इकाई को सीधे ऋण और अनुदान देने का अधिकार मिल सकेगा। सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एनसीडीसी एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1963 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 के अंतर्गत की गई थी। चर्चा में बीजू जनता दल की सोलता देव, डीएमके सदस्य के आर एन राजेश कुमार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, भारतीय जनता पार्टी के रामराव सखाराम वडकुते, अमरपाल मौर्य, सदानंद महालू शेठ तानवड़े, बंशीलाल गुर्जर, डॉक्टर अलका गुर्जर, एआईएडीएमके सदस्य एम थंबीदुराई, डॉक्टर एन धनपाल, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, शिवसेना की ज्योति नागनाथ बागमारे, टीडीपी के विजय चिंता कायला, जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राव ने भी हिस्सा लिया। विधेयक के पारित होने के बाद उच्च सदन में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को चर्चा करने और पारित करने के लिए लिया गया। विधेयक पर हुई चर्चा के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल की 15वीं विधानसभा ने 14 जून 2024 को संकल्प पारित कर केंद्र सरकार से अपील की थी कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाए। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा में केरल के सदस्यों ने अपनी बात मलयालम में रखी तथा केरल की संस्कृति की सराहना करते हुए इसे भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग बताया। कई सदस्यों ने ध्यान दिलाया कि यह कदम राज्य के लोगों की इच्छा के अनुरूप उठाया जा रहा है। चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के तरुण चुग, सुधांशु त्रिवेदी, लहर सिंह सरोया, कांग्रेस की जेबी माथेर हिशम, मनोनीत सदस्य सी सदानंद मास्टर, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन, डीएमके के तिरुचि शिवा, बीजू जनता दल के सुभाशीष खुंटिया, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राय, एआईएडीएमके सदस्य एम थंबीदुराई, शिवसेना की ज्योति नागराज बागमारे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वी शिवदासन और ए रहीम, टीडीपी के विजय चिंता कायला, केसीएम सदस्य जोस के मणि, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सदस्य संतोष कुमार पी, आईयूएमएल के हारिस बीरन, यूपीपीएल के रवंगवरा नारजारी और डीएमके सदस्य एल के सुधीश ने भी भाग लिया। संविधान के अनुच्छेद 3 में मौजूदा राज्यों के नाम परिवर्तन का प्रावधान है। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद कानून द्वारा किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है। इस विधेयक के पारित होने के बाद सदन की बैठक कल सवेरे 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उच्च सदन में दोनों विधेयकों को पेश करने से पहले भारतीय जनता पार्टी की सुष्मिता देव ने कहा कि उन्होंने
भी राज्य की वेशभूषा पर कोई टिप्पणी नहीं की है और राज्यसभा से ऐसा कोई संदेश नहीं जाना चाहिए जिससे भारत को सांस्कृतिक या धार्मिक आधार पर बांटने की भावना पैदा हो। ये स्पष्टीकरण उन्होंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद जॉन ब्रिटास के उस आरोप के सिलसिले में दी जिसमें उन्होंने कहा था कि सोमवार को सदन की कार्यवाही के दौरान भारतीय जनता पार्टी सदस्य ने उन्हें बार बार लुंगी वाला कहा था। सवेरे 11 बजे राज्यसभा की बैठक शुरू होने पर इस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ था। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी थी। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर सुष्मिता देव ने अपना पक्ष रखा। सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने दोनों सांसदों के बीच पैदा हुई गलतफहमी को दूर करने की पेशकश की। इससे पहले दिन की कार्यवाही शुरू होने के बाद सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद ब्रिटास ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने नाम लिए बिना कहा कि भाजपा के एक सदस्य ने उन्हें कथित तौर पर लुंगी वाला कहकर निशाना बनाया। विपक्षी सदस्यों ने ब्रिटास का समर्थन किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जब ये कथित घटना हुई थी तब वो सदन में मौजूद थे। उन्होंने सभापति से अनुरोध किया कि वो संबद्ध सदस्यों को अपने कक्ष में बुलाएं और उनकी बात सुनकर समाधान निकालें। सभापति राधाकृष्णन ने कहा कि सदन में एक सदस्य द्वारा दूसरे सदस्य के खिलाफ कथित अमर्यादित टिप्पणी करने का मामला उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने कहा कि सदस्यों को टिप्पणियां करते समय ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी की भावनाएं आहत ना हो। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति अनूठी है और विविधता में एकता हमारी विशेषता है जो बनी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी की संस्कृति को लेकर कोई भी आहत करने वाली बात कहना ठीक नहीं है। सभापति ने कहा कि वो संबंधित सांसदों को अपने कक्ष में बुलाकर इस मामले पर चर्चा करेंगे। सदन में सुष्मिता देव मौजूद थी। इस बीच कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी सांसदों ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का अवसर देने की मांग की। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के लिए दिए गए चंदे की कथित चोरी को लेकर नारेबाजी की। हंगामे के बीच सभापति राधाकृष्णन ने 12:20 पर सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अब आप सुनिए लोकसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव महेश्वरी। लोकसभा में आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं सदन में हंगामे के बीच ही खान और खनिजों से संबंधित एक विधेयक पारित कर दिया गया और FCRA विधेयक को विस्तृत समीक्षा के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेजने को मंजूरी दी गई। अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने के कुछ मिनट के भीतर अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही और प्रश्नकाल चलाने में सहयोग का आग्रह करते हुए कहा कि नीतियों और विचारों में मतभेद हो सकते हैं लेकिन देश सदन चलते हुए दिखना चाहता है। श्री ओम बिरला ने आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होने का उल्लेख करते हुए कहा कि देश का युवा भी चाहता है कि उनके विषयों पर चर्चा हो, छात्रों के मुद्दों पर चर्चा हो। अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने छात्रों के मुद्दे पर चर्चा के लिए सहमति दे दी है। गृह मंत्री भी अपना वक्तव्य देने को तैयार हैं। उन्होंने आसन के समीप हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि देश की भावनाओं को समझना चाहिए। देश चाहता है कि संसद चले। उन्होंने विपक्षी सांसदों से अपील की कि प्रश्नकाल चलने दें, इसके बाद सभी को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा। दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन FCRA विधेयक 2026 को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और DMK ने विधेयक को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस विधेयक में एक भी प्रावधान अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है तथा ये सिर्फ देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। विधेयक का विरोध करते हुए कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि विधेयक गैर सरकारी संगठनों और अल्पसंख्यक संस्थानों को निशाना बनाने के लिए लाया गया है। उन्होंने विधेयक को वापस लेने की मांग की। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने

एफसीआरए विधेयक को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताते हुए तंज कसा कि ये सरकार आज तक ऐसा कौन सा विधेयक लाई है जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है। डीएमके नेता टीआर बालू ने भी विधेयक को वापस लेने की मांग की। अल्पसंख्यक और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस विधेयक में ऐसा एक भी प्रावधान नहीं है जो अल्पसंख्यकों या किसी भी समुदाय के खिलाफ हो। उन्होंने कहा कि किसी भी समुदाय को निशाना बनाने का सवाल नहीं उठता। श्री रिजिजू का कहना था कि कांग्रेस और कई विपक्षी दलों ने खुद मांग की थी कि विधेयक को संयुक्त समिति को भेजा जाए और अब जब इसे भेजा जा रहा है तो इस पर आपत्ति क्यों है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष को विधेयक के किसी बिंदु का विरोध करना है तो वो संयुक्त समिति के समक्ष अपनी बात रख सकते हैं। मंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष कुछ समुदायों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। इसके बाद सदन ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक को संयुक्त समिति को भेजने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। नियम के अनुसार इस संयुक्त समिति में 31 सदस्य होंगे। इनमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल होंगे। प्रस्ताव में कहा गया है कि समिति इस वर्ष शीतकालीन सत्र से पहले सप्ताह में लोकसभा को रिपोर्ट सौंपेगी। हंगामे के बीच पीठासीन सभापति जगदंबिका पाल ने अपराह्न 2:27 पर सदन की बैठक 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बजे बैठक फिर शुरू होने पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को सदन में चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विपक्षी सदस्य अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी पर चर्चा और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। इसके साथ ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और डीएमके सदस्य विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन एफसीआरए विधेयक 2026 वापस लेने की मांग करते हुए भी हंगामा करते रहे। आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन ने खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 का विरोध करते हुए कहा कि संविधान और संघीय ढांचे के खिलाफ है। हालांकि सदन के हंगामे के बीच ही बिना चर्चा के विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कुछ विपक्षी सदस्यों के प्रदर्शन के तरीके की इशारा करते हुए आसन से मांग की कि विपक्ष के वरिष्ठ साथियों को अनुशासन के साथ प्रदर्शन करने के लिए समझाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता सही नहीं है। विपक्ष के सदस्य अपनी सीटों पर चले जाएं तो हम विद्यार्थियों के मुद्दे पर अभी चर्चा शुरू करने को तैयार हैं। 80% सदस्य चर्चा चाहते हैं। रिजिजू ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक पत्र लिखकर लोकसभा अध्यक्ष से फिर से अनुरोध किया है। नीट परीक्षा को लेकर छात्रों का जो आंदोलन हुआ है उस पर तत्काल चर्चा शुरू करने के लिए सरकार तैयार है, बशर्ते विपक्ष के सदस्य शांति से बैठें। पीठासीन सभापति जगदंबिका पाल ने कहा, सरकार इसके लिए तैयार है कि इस चर्चा को तत्काल प्रारंभ किया जाए। आपकी मांग थी कि गृह मंत्री इस पर जवाब दें। सरकार चर्चा के लिए तैयार है। गृह मंत्री हर बिंदु पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। हंगामा नहीं थमने पर सदन की कार्यवाही 3:15 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कल इसका अंतिम कार्य दिवस है। राम मंदिर, चढ़ावा चोरी और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण पूरे सत्र में सदन में गतिरोध बना रहा और अब तक एक भी दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चला है। निचले सदन की ने पिछले कुछ दिनों में हंगामे के बीच ही कुछ विधेयकों को ध्वनिमत से मंजूरी दी है। इस बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने वाली समिति की रिपोर्ट आज लोकसभा में पेश की गई। न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक आवास से कथित तौर पर नोटों की अधजली गड्डियां मिलने के मामले में उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही शुरू की गई थी। उस समय वो दिल्ली उच्च न्यायालय में कार्यरत थे। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने जांच समिति की 2 खंडों वाली रिपोर्ट लोकसभा के पटल पर रखी। अभी आप संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

0: Surgióme.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव चोपड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
2: नमस्कार। कोयला और खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने 10 अगस्त 2026 को लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसका उद्देश्य क्या है, किस रूप में यह भारतवर्ष में विभिन्न प्रांतों में आने वाले खनन क्षेत्र की जमीन पर अपना असर डालेगा, इसके विनियमन पर नया परिवर्तन क्या होगा, इसी विषय पर हम मुख्य रूप से आज के कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव चोपड़ा। संजीव जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: जी धन्यवाद।
2: सबसे पहले तो संजीव जी, हम यही समझना चाहेंगे कि वर्तमान संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है और पहले से यह किस रूप में अलग है।
3: जी, ये जो माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 का लेके आए हैं, ये जो 1957 का एक्ट है, द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, उसको अमेंड करने के लिए है। और प्राइमरीली इससे एक चीज सबसे बड़ी जो इसका मायने है कि जो मिनरल्स और माइंस जो है हमारे देश में इन डिफरेंट पार्ट्स में, वो सेंटर अपने कंट्रोल में ले रही है इस अमेंडमेंट के थ्रू, कि स्टेट्स जो हैं, जिस स्टेट में भी है, तो स्टेट्स अपनी तरफ से टैक्सेस, लेवीज या सेस कोई किसी तरह का नहीं लगा सकती। एनी जो भी कोई मिनरल रिच लैंड है, वो सेंटर अपने कंट्रोल में लेगी और निर्धारित करेगी कि ये कंडीशंस हैं स्टेट्स के लिए या माइनर के लिए, तो वो कंडीशंस ही एप्लीकेबल होंगी। स्टेट्स अपनी तरफ से कोई टैक्स या लेवी इसके ऊपर नहीं लगा सकता। इसकी बैकग्राउंड मैं बताता हूँ कि माइनिंग इंडस्ट्री बहुत अनकॉम्पिटिटिव हो गई थी। उसके दो रीजन हैं, एक कि अगर माइनिंग हमारे देश में नहीं हो रही तो इंपोर्ट करेंगे, अगर यहाँ टैक्स महंगा पड़ रहा है, देश के अंदर से माइनिंग अगर करेंगे वो महंगी पड़ रही है तो विदेश से सस्ती मिल सकती है तो वो करेंगे, इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ज्यादा लगा हो, किसी स्टेट ने ज्यादा लगाया हो। ऐसे कुछ एग्जांपल्स आए हैं जो माइनिंग इंडस्ट्री सेंटर को अपील किया है कि माइनिंग अनरिम्यूनरेटिव होती जा रही है, कुछ स्टेट्स हैं जो एडिशनल लेवी लगाई जा रही है, तो उसको रोकने के लिए स्टेट ने कि माइनिंग इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहे और जो रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स और माइंस के रिसोर्सेज हैं जो पूरे देश के, वो पूरे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल हो और यूनिफॉर्मिटी हो, टैक्सेस की भी यूनिफॉर्मिटी हो और रिसोर्सेज भी पूरे यूनिफॉर्मली इस्तेमाल हो पूरे देश के लिए, तो इस संदर्भ में ये अमेंडमेंट लेके आए हैं। तो लोकसभा में ये 10 अगस्त को जी किशन रेड्डी जी, जो कोल एंड माइन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था बिल, वो आज पारित हो गया है और राज्यसभा में शायद ये कल आएगा।
2: यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे कि कुछ क्षेत्र राज्य के विषय हुआ करते हैं, कुछ केंद्र के हुआ करते हैं और कुछ दोनों के बीच के हुआ करते हैं, तो यह जो कदम उठाना पड़ा, हालांकि आपने उसका थोड़ा स्पष्ट किया, लेकिन थोड़े से उदाहरण के साथ हम समझना चाहेंगे कि विभिन्न खनिज बहुल जो प्रांत रहे वहां किस रूप में कर को लेकर एक रूपता नहीं थी, जिससे कि खनन उद्योग से संबंधित पार्टियों को अपना पक्ष रखना पड़ा कि हमें खनन विस्तारीकरण के लिए या कह लें एक रूपता के लिए अपनी जो लागत है उसे घटाने के लिए समाधान चाहिए।
3: मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कुछ स्टेट्स झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये कुछ स्टेट्स हैं जो आसपास हैं, नेबरिंग स्टेट्स हैं।
2: जी, जी।
3: तो यहाँ पे कुछ खनन होते हैं, हर स्टेट में होते हैं, फॉर एग्जांपल कोयला है, तो अगर डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट पार्टीज की है और हर स्टेट अपने अपनी तरफ से लेवी लगा रही है, किसी ने 500 पर टन लगा दिया है कि एक पदार्थ पे, किसी ने 1000 पर टन लगा दिया है, अपने अपनी सहूलत के हिसाब से लगाया, तो डिस्पैरिटी हो रही थी टैक्स की। स्टेट में एक खनन सस्ता मिल रहा है, दूसरी स्टेट में महंगा मिल रहा है, तीसरी स्टेट में जो माइनिंग कर रहे हैं माइनर्स हैं उनको मुश्किल आ रही थी कि यूनिफॉर्मिटी नहीं थी टैक्सेस की, तो इसीलिए उन्होंने अपील की सेंटर को। और सबसे बड़ा कि प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हो रही थी माइनिंग सेक्टर की, कि उस पर एडिशनल लेवी जब स्टेट लगाती थी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हायर हो रही थी, और जी, इसी संदर्भ में उन्होंने अपील की सेंटर को और सेंटर ने ये अख्तियार अपने पास लिए।
2: यहाँ पर यदि ये हम समझना चाहें कि श्रोताओं के नजरिए से कि राज्य अपनी आवश्यकताओं के लिए, राजस्व प्राप्ति के लिए,

0: पदार्थ, तो उस स्टेट को उसका कोई बेनिफिट नहीं, उसके ऊपर टैक्स भी नहीं, तो सारा कुछ सेंटर ले जाएगा। सेंटर जो आपको स्टेट को देगा उतना ही स्टेट को मिल सकेगा। लेकिन सेंटर का नजरिया ये है कि अगर किसी एक स्टेट में मिनरल है, माइनो मिनरल है, वो पूरे देश के लिए का इस्तेमाल होना चाहिए, पूरी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उसका इस्तेमाल होना चाहिए और टैक्सेशन जो है यूनिफॉर्म होना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: तो सेंटर इसको कह रही है कि हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे किसी एक स्टेट के साथ, सबके साथ बराबर टैक्स होना चाहिए। तो अपनी कंडीशंस जो पहले ले करेंगे, ये नहीं कि स्टेट को टैक्स मिलेगा नहीं, उसमें से कुछ मिलेगा नहीं, सारा सेंटर लेगा। पहले कंडीशंस ले होंगी, उसी कंडीशंस के मुताबिक चलेगा। तो मैं आपको एग्जांपल जैसे देता हूं कि जैसे लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन झारखंड में भी होता है, तमिलनाडु में भी होता है, कुछ और स्टेट्स में भी है। तो लाइमस्टोन के ऊपर झारखंड में 40 रुपए पर टन का लेवी लगाया गया था, टैक्स लगाया गया था, और तमिलनाडु में 250 रुपए का टैक्स लगाया गया था। तो जो साउथ में कोई कंज्यूमर है या माइनिंग कर रहा है, उसको महंगा पड़ रहा है, ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, झारखंड में कम देना पड़ रहा है। तो ये डिस्पैरिटी को भी खत्म करने के लिए ये यूनिफॉर्मिटी लाना बहुत जरूरी था।
1: नटसेल में समझे तो यह राज्यों का जो अधिकार था उसमें एक रूपता लाने के उद्देश्य से मुख्य रूप से यह अधिकार केंद्र ने अपने पास इस संशोधन के माध्यम से लिया है। यदि हम ये समझना चाहें कि देश की खनिज सुरक्षा प्राप्त करने और आयात पर निर्भरता कम करने में यह जो व्यापक उद्देश्य हमारा है खनिज उत्खनन का, उसे कैसे पूरा करेगा, क्या लग रहा है आपको?
0: यही मैं बता रहा था कि सपोज टैक्स इतना हैवी लग गया किसी एक मिनरल के ऊपर,
1: जी
0: मिनरल रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड हैं, तो अगर एक स्टेट बहुत हैवी टैक्स लगा देती है तो विदेश से उसका इम्पोर्ट सस्ता हो रहा है।
1: जी,
0: कोई
1: जी।
0: और कंट्री है जिसके ऊपर टैक्स बहुत कम है और जहां मिनरल्स ज्यादा हैं, तो इंपोर्ट होगा, तो जिससे हमारा फॉरेन रिजर्व्स भी जाएंगे और रेवेन्यू दूसरे देश में जाएगा, कि अपने देश में रहने की जगह दूसरे देश में जाएगा। और आत्मनिर्भरता भी जरूरी है कि देश आत्मनिर्भर हो और विकसित भारत 2047 तक बने, इस उद्देश्य को लाते हुए कि जो रिसोर्सेज हमारे देश के अंदर हैं वो देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के काम आए।
1: जी जी।
0: और इसीलिए ये यूनिफॉर्मिटी जरूरी थी।
1: यहाँ पर यदि हम कर व्यवस्था को लेकर समझना चाहे कि राज्य द्वारा लेवी यानी पहले ली गई होगी या कुछ कंपनियों का बाकी होगा, उसको लेकर इस विधेयक में क्या कहा गया है?
0: जी, इस विधेयक में एक सेक्शन 9D एक एडिशनल ऐड किया है, जो अमेंडमेंट है उसमें ये कहता है कि जो कर आपने किसी स्टेट ने अगर लगाया हुआ था और पहले अदा कर दिया, स्टेट ने रिकवर कर लिया वो, तो उसका रिफंड नहीं होगा। ये अमेंडमेंट जब एक बारी जो बिल है, ये प्रपोज लेजिस्लेशन एक बारी जब एक्ट बन जाएगा, उसके बाद वो स्टेट किसी भी माइनर को या वापस रिफंड नहीं होगा। लेकिन अगर किसी ने ये कर नहीं दिया अभी तक, जब तक कि ये एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता, तो उस डेट के बाद वो स्टेट रिकवर नहीं कर सकती उस टैक्स को।
1: अच्छा।
0: पुरानी डेट से कि ये आपका बकाया है, ये हमें दीजिए। तो ये अमेंडमेंट भी एक लाया गया है इसमें कि ये खत्म करने के लिए कि रिकवरी पुराने टैक्स की नहीं कर सकते और जो दिया हुआ टैक्स की रिफंड नहीं होगा।
1: अच्छा, वहां की जमीन को परिभाषित करने का भी कोई प्रावधान किया गया है नए विधेयक में?
0: जी, वो तो सेंटर ने लिया ही है, यही तो मेन है कि सेंटर ही डिसाइड करेगा कि कोई भी लैंड जो मिनरल रिच है, जहां पे मिनरल्स हैं, वो सेंटर उसको अख्तियार करेगा और उसका कंट्रोल सेंटर लेगा, और उसमें मिनरल्स जो निकलेंगे, उसकी जो माइनिंग के लिए लीज देनी है, जो लाइसेंसेस देने हैं, वो सब सेंटर करेगा, स्टेट्स का कंट्रोल उसके ऊपर नहीं,
1: अलग हो जाएगा। यहाँ यदि हम ये समझना चाहें कि नए विधेयक से निजी क्षेत्र किस रूप में आकर्षित होगा और अपना निवेश लेकर आएगा, क्या भविष्य दिखा रहा यह विधेयक?
0: जी, इस विधेयक से क्योंकि यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, तो पूरे देश में कहीं पे भी माइनिंग करनी हो तो इसमें इन्वेस्टमेंट और लगेगी, माइनिंग सेक्टर के लिए प्रॉफिटेबल हो जाएगा क्योंकि स्टेट्स अब एडिशनल लेवी नहीं लगा सकते, तो माइनिंग विल बिकम मोर प्रॉफिटेबल। इससे माइनिंग इंडस्ट्री में और इन्वेस्टमेंट आएगी, कुछ फॉरेन इन्वेस्टर भी आ सकते हैं कि हमारे देश में खनन पदार्थ तो बहुत है लेकिन माइनिंग में उतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इस विधेयक से स्टेट्स को इन्वेस्टमेंट और आने का स्कोप है और माइनिंग सेक्टर में।
1: यहाँ पर यदि हम थोड़ी सी चर्चा को अपना आगे बढ़ाएं और ये समझना चाहें कि जो पुराना विधेयक था उससे यह निश्चित रूप से थोड़ा सा अलग है, राज्यों के अधिकार थोड़े सिमट जाएंगे और खनन के क्षेत्र में केंद्र के पास पूरी शक्तियां आ जाएंगी जमीन परिभाषित करने से लेकर इसके नियमन तक की। यहां पर पर्यावरण की चिंताओं को इस विधेयक में या पुराने विधेयक में किस रूप में आंका गया है और कैसे उन चिंताओं का समाधान किया जाएगा, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग का हम असर देख रहे हैं और खनन क्षेत्र में जो उद्योगपति हैं उनकी चिंताओं को देख रहे हैं, तो दोनों का संतुलन कैसे बनाया गया है?
0: अब तो सेंटर के अंडर आ गया, तो एनवायरमेंट भी सेंटर के अंडर ही है
1: जी।

0: तो अब सेंटर डिसाइड करेगी कि कोई इलीगल खनन ना हो, इलीगल माइनिंग ना हो उस एरिया में, तो सेंटर लाइसेंसेस देगी। जब लैंड ईयरमार्क हो गया, सेंटर के कंट्रोल में आ गया, सेंटर उसके ऊपर माइनिंग लाइसेंसेस इशू करेगा और टैक्स और लेवी डिसाइड करेगा कितना देना है।
1: जी,
0: तो एनवायरनमेंट भी वही देखेगा कि इलीगल क्वारिंग ना हो, ये ना हो। लेकिन एक चैलेंज जरूर है कि अभी भी, क्योंकि सेंटर ने वो लैंड को तो अपने कंट्रोल में ले लिया, लेकिन है तो स्टेट में, और वेयर विद ऑल सारा स्टेट्स का है, जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस फोर्स है जो एनफोर्स करेगी लॉ को, वो तो स्टेट में ही है। तो इस एक्ट से जब तक कि माइनिंग लाइसेंस नहीं दिया जाता, तब तक इलीगल माइनिंग और क्वारिंग का ये चैलेंज जरूर रहेगा।
1: यदि आपने लाइसेंस की चर्चा की तो हम समझना चाहेंगे इस विधेयक के दायरे से थोड़ा सा आगे निकलकर कि खनन के क्षेत्र में जो ई नीलामी की प्रक्रिया शुरू हुई और सब कुछ पारदर्शी बनाने की कवायद हुई, उससे कितना लाभ वस्तुतः पहुंचा है अभी तक?
0: जी बिल्कुल, स्टेट को रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अब ई ऑक्शन होता है। माइंस किसी भी क्षेत्र की हो, किसी भी मिनरल को माइनिंग के लिए अब ई ऑक्शन होता है। तो अलॉटमेंट जो थी वो खत्म कर दी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, करप्शन कि किसी को मेरा रिश्तेदार है, मेरा ये क्लोज है, या किसी ने कोई एक्सट्रैनियस कंसिडरेशंस करके किसी को माइनर लाइसेंस दे दिया, माइनिंग लाइसेंस, तो अब वो सब खत्म हो गया है।
1: जी,
0: और स्टेट को रेवेन्यू, आपने अगर देखा होगा, लैक्स ऑफ क्रोर्स एडिशनल रेवेन्यू मिला है थ्रू ई ऑक्शन। और जितने भी लाइसेंसेस हैं, बाहर से कोई आएगा, देश से, विदेश से, जहां से भी जो भी कंपनी उसमें अप्लाई करेगी, उसको जो ज्यादा रेवेन्यू देगा उसको मिल जाएगा लाइसेंस।
1: बिल्कुल।
0: तो अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या जो अलॉटमेंट की प्रक्रिया है वो खत्म ही कर दी है।
1: यानी बाबूशाही की जो बीच की प्रक्रिया थी वो अब यानी घट गई नहीं बल्कि खत्म हो गई है। यहां फिर एक कैप्टिव माइंस को लेकर सवाल पूछना चाहूंगा कि कैप्टिव माइंस के लिए क्या नए निर्देश नए विधेयक में रखे गए हैं, उनको लेकर कोई दृष्टि दी गई है इसमें?
0: नहीं, इस विधेयक में सिर्फ एक अमेंडमेंट ये है, प्राइमरीली दो चीजों के लिए, कि स्टेट्स एडिशनल टैक्स नहीं लगा सकता और जो मिनरल रिच लैंड है वो सेंटर के अख्तियार में आ जाएंगे।
1: जी,
0: ये प्राइमरीली इसका स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव इसका यही है। और एक नया सेक्शन मैंने आपको बताया कि वो जो पुराना टैक्स रिफंड नहीं होगा और नया रिकवर नहीं कर सकते पुराना टैक्स।
1: कुल मिलाकर यदि आने वाले भविष्य को देखते हुए हम समझें तो खनन उद्योग के लिए यह कितना सहायक होगा, किस रूप में आकलन करते हैं आप?
0: जी बिल्कुल, जैसे भारत विकसित भारत की तरफ 2047 की तरफ बढ़ रहा है, तो आत्मनिर्भरता मिनरल सेक्टर में हमारी बढ़ रही है। और ये जो अमेंडमेंट लेके आए हैं, इससे इस लिहाज से नहीं देखना चाहिए जैसे कुछ ऑपोजिशन देख रही है कि हमारे राइट्स ले लिए, हम लेवी नहीं कर सकते टैक्स, इस लिहाज से नहीं देखना चाहिए, बल्कि नेशनल डेवलपमेंट गोल के लिहाज से देखना चाहिए कि इससे क्या है कि माइनिंग सेक्टर में एक तो रिसोर्सेज ज्यादा लगेंगे, माइनिंग प्रॉपरली होगी, रेगुलेटेड होगी बाय वन एजेंसी विच इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। और वैसे भी ई ऑक्शन करते हैं तो कोई इसमें प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का कोई स्कोप नहीं है, तो सारा कुछ मॉनिटरिंग इसकी प्रॉपर होगी और इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में और बढ़ेगा।
1: कुल मिलाकर श्रोताओं, नया विधेयक देश की तरक्की के लिए उपयोगी साबित होगा, इसी नजरिए से इसका प्रावधान किया गया है और आने वाले दिनों में प्रत्यक्ष लाभ निश्चित रूप से हम देखेंगे। आप सभी श्रोताओं की ओर से हम अपने विशेषज्ञ संजीव जी आपको बहुत धन्यवाद देते हैं।
0: जी बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार संजीव चोपड़ा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए दिल्ली का दादा फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

मन्ना डे और आशा भोसले की आवाज़ में आप सुन रहे थे दिल्ली का दादा फिल्म का ये प्यारा संगीत, साहिर के बोल थे और एन दत्ता का संगीत।

आप सुन रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में दो खिलाड़ी फिल्म का गीत गौहर कानपुरी ने से लिखा है और संगीत से सजाया है उषा खन्ना ने।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर। सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा।
2: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया। केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा वे नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले दो दिन तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की संभावना। और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
4: सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
3: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा ने इसे कल पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने आज विधेयक संसदीय समिति को भेजने को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है।
5: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
3: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर एक बार फिर कहा है कि वे विभिन्न घटनाओं पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं।
6: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ओपोजिशन जवाब सुनना नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
3: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में चर्चा को लेकर विपक्ष पर बार बार अपना रुख बदलने का आरोप लगाया है।
7: अरे
8: विपक्ष पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। इस सत्र के शुरुआत से ही सरकार लगातार बातचीत कर रही है। पहले वो चर्चा डिमांड करते हैं, चर्चा के लिए सरकार तैयार होती है तो अपना स्टैंड बदल देते हैं। बार बार उनके रवैये में इस प्रकार का बदलाव ये स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष विषयहीन है, सदन चलने नहीं देना है।
3: उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक विकास के प्रमुख इंजनों में से है, लेकिन निजी पूंजी आकर्षित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। श्री गोयल ने भारतीय उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक बाजारों में ले जाते समय चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का आग्रह भी किया। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि नौ मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं।
9: भारत में उभरती हुई ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती है। पूरी दुनिया के ध्यान में आ गया है कि ये $4 trillion की आज की इकोनॉमी 2047 में जब हम 100 वर्ष आजादी के बनाएंगे तब ये $30 trillion की इकोनॉमी कम से कम बन जाने वाली है।
3: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि एक जड़ी बूटी एक मानक पहल का उद्देश्य पारंपरिक औषधियों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता मजबूत करना है। नई दिल्ली में श्री जाधव ने कहा कि ये पहल भारत की समृद्ध जैव विविधता और पारंपरिक चिकित्सा विरासत की रक्षा में सहयोग देगी। इस बीच आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक आयोजित की। श्री जाधव ने कहा कि ये समिति हिंदी के उपयोग और प्रचार को मजबूत करने और इसे जन कल्याण तथा संचार का एक प्रभावी माध्यम बनाने के लिए महत्वपूर्ण मंच है। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा जारी रोड ओवर और अंडरब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि देश में लगभग 440 अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप पंजीकृत हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर देते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने 52 गैर सरकारी संस्थाओं को विभिन्न अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए 113 अधिकार पत्र प्रदान किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल और माओवाद से अत्यधिक प्रभावित रहे बस्तर इलाके में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए।
7: छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में शांति, एकता और राष्ट्र निर्माण का संदेश लेकर आज से तिरंगा यात्रा शुरू हुई है। इस यात्रा का नेतृत्व छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा कर रहे हैं। यह यात्रा बस्तर के दुर्गम और आदिवासी इलाकों से होकर गुजरेगी। विशेष तौर पर यह यात्रा उन क्षेत्रों से होकर गुजरेगी जहां पूर्व में माओवादियों ने बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था। 3 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा 14 अगस्त शुक्रवार को पुर जिले के कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर पहुंचकर संपन्न होगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
3: जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। हरियाणा के भिवानी में शहीद मदन लाल ढींगरा स्मारक से एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। महाराष्ट्र में देशभक्ति रैलियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान देशभक्ति, राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। मिजोरम में दोपहिया वाहनों की एक रैली का आयोजन किया गया। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की है। इसके कारण कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। इसके अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल और उससे सटे बांग्लादेश के तटों से होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। मुंबई में आज घाटकोपर पश्चिम के चिराग नगर स्थित एक चौल में भूस्खलन होने से 7 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। सुबह एक छोटी पहाड़ी से मिट्टी और मलबा चौल के 2 से 3 कमरों पर गिर गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12 की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपना परिणाम डिजीलॉकर रिजल्ट पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। JPSC और JSSC सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। विपक्ष के नेताओं ने भी प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को अपना समर्थन दिया है। आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर 31 राज्यों में 50,000 से अधिक पौधे लगाए गए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। दुनिया के कई हिस्सों में आज महत्वपूर्ण खगोलीय घटना पूर्ण सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण उत्तरी ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, अटलांटिक महासागर, स्पेन और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। बेंगलुरु स्थित रमन अनुसंधान संस्थान ने सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की जटिल चुंबकीय संरचना का अध्ययन करने की व्यवस्था की है। भारत से दिखाई न देने वाला ये पूर्ण सूर्य ग्रहण रात 9:04 पर शुरू होगा और चंद्रमा की छाया सूर्य को 2:18 तक ढक कर रखेगी। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के 3रे दिन भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। कनाग लक्ष्मी, राजेंद्रन, शांतिमोल शेरजन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किए, वहीं जॉयस आशिता ने रजत और कुमारिशन पद्मा गीशो निधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाथियों के संरक्षण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री यादव ने कहा कि हाथियों की सुरक्षा के लिए कई आधुनिक उपाय किए जा रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया। केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा वे नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले दो दिन तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की संभावना। और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: Good evening, this is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Parliament passes bill to enhance funding and development of cooperative sector, also gives nod to legislation to rename state of Kerala as Keralam. Both houses refer Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. Home Minister Amit Shah says he is ready for detailed discussion on NEET paper leak related issue, writes letter to Lok Sabha Speaker. Finance Minister Nirmala Sitharaman calls for greater private capital mobilization in BRICS economies for global growth. Heavy to extremely heavy rainfall likely over parts of Odisha and Gangetic West Bengal for next 2 days as low pressure forms over Bay of Bengal. And Indian fencing team clinches 5 medals, including 3 gold on third day of Commonwealth Championship in Nigeria. Parliament has passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. The Lok Sabha has
11: passed
10: already
11: the bill. Passed. Minister of State for Cooperation Muralidhar Mohol moved the bill, which aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. The legislation also allows the state governments to extend funding from the corporation to any entity engaged in cooperative development. The corporation can also provide loans and grants directly to any cooperative society or entity engaged in cooperative development. The Parliament has also passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. The Lok Sabha had passed the legislation yesterday. The bill seeks to change the name of the state of Kerala to Keralam in the first schedule of the constitution. Replying to a debate on the bill, Minister of State for Home Nityanand Rai said the Kerala Legislative Assembly had passed a resolution in 2024 requesting the centre to change the name of the state from Kerala to Keralam. He said the request in this regard was made because the name of the state in Malayalam is Keralam, while in the constitution it is written as Kerala. We have a report.
12: Both the houses of parliament once again witnessed disruption following opposition uproar on various issues. Due to the ruckus, the question hour in both the houses could not be taken up today. Lok Sabha could not take up the 0 hour as well, while the Rajya Sabha took it up for a brief period. Despite government's assurance that it is ready for a detailed discussion and reply on the issues raised, the opposition parties, including Congress, continued with their sloganeering. Post lunch, the Rajya Sabha cleared the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026 and the Kerala Alteration of Name Bill 2026. Both Lok Sabha and the Rajya Sabha today gave their approval for referring the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. Anupam Mishra, Akashvani News, Delhi.
11: The Lok Sabha has passed the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026. When the House met at 3 p.m. after the second adjournment, Union Coal and Mines Minister G. Kishan Reddy moved the bill to further amend the Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957. The bill aims to make India's mining sector more efficient, investment-friendly and well-equipped to fulfill the country's growing demand for critical minerals. Following the passage of the bill, the lower house was adjourned for the day. Both Houses of Parliament today gave their approval for referring the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. The bill aims to further amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010. The objective of the bill is to make the use of foreign contributions more transparent and accountable. Minister of State for Home Nityananda Rai moved a motion in the Lok Sabha to refer the bill to a JPC comprising members of both the houses for wider consultations. The committee will consist of 21 members from the Lok Sabha nominated by the Speaker and 10 members from the Rajya Sabha nominated by the Chairman. The committee will submit its report to the House by the last day of the first week of the winter session. The report of the inquiry committee investigating allegations concerning former Allahabad High Court Judge Yashwant Verma was tabled in both Houses of Parliament. The Judges Inquiry Committee investigating allegations concerning Yashwant Verma had submitted its report to the Lok Sabha Speaker Om Birla in May this year. The committee was constituted by Mr. Birla on the 12th of August last year to probe the allegations levelled against Justice Verma after a sum of burnt cash was found at his official residence in New Delhi. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has said that Home Minister Amit Shah wrote a letter to Lok Sabha Speaker Om Birla stating once again that he is open to having a detailed discussion on the several incidents that took place during the protest on the NEET paper leak issue. Talking to reporters in Parliament complex, the minister said the government itself is saying that it is ready for a discussion and will provide answers, but the opposition does not want to hear the answers and is shying away from the discussion.
13: The government wants a discussion in parliament while the opposition is running away from it. This is difficult to imagine because in a parliamentary democracy, it is usually the opposition that demands a discussion and the government that responds. But here, the government itself is saying that it is ready for a discussion and will give answers while the opposition does not want to hear those answers and is walking away. We have repeatedly said that we want a discussion, but they are not agreeing to it.
11: In Jharkhand, despite several rounds of talks and assembly gherao, no breakthrough has been reached between the government and the protesting students. The students are demanding cancellation of the 2024 JSSC CGL examination, through which more than 2,000 candidates have already been appointed in various government departments. The state government maintains that the examination cannot be cancelled at this stage, citing judicial scrutiny by the Jharkhand High Court and the Supreme Court and the ongoing CID investigation. The protesters, however, have questioned the credibility of the CID probe and have cited the arrest of Abhay Tiwari, linked to the examination outsourcing agency TDAPL, as one of the grounds for their allegations. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're with us on the news at 9. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has said that public capital should act as a catalyst for private investment rather than a substitute for it. Addressing a seminar in Jaipur on the role of the new development bank in mobilizing private capital in BRICS member countries, Ms. Sitharaman said BRICS economies are among the major engines of global growth, but they also face challenges in attracting private capital. The finance minister highlighted the role of multilateral development banks in reducing investment risks, making projects more financially viable and strengthening investor confidence, thereby helping mobilize private capital on a larger scale. The seminar is being held as part of the BRICS Finance Ministers and Central Bank Governors meeting in Jaipur under India's BRICS Chairship 2026 with the objective of strengthening cooperation on global economic and financial issues. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has urged Indian businesses and citizens to adopt fair trading practices, promote recycling and reuse, and encourage a circular economy while taking Indian products and services to global markets. The minister said this while addressing the inaugural ceremony of Bharatiya Vyapari Mahotsav 2026 in New Delhi today. Highlighting the government's trade initiatives, he said free trade agreements signed over the last 4 years cover 38 developed nations with a combined GDP of $60 trillion.
14: India's emergence as a rising power is being witnessed by the entire world today. Countries across the globe want to strengthen their trade relations with India. It has been clear to the world that India's economy, which stands at $4 trillion today, is poised to become $30 trillion economy by 2047 when we celebrate 100 years of independence.
11: Indian Railways has approved 153 crore rupee construction project of a four-lane road overbridge at Giratpur-Ahmedabad section of Western Railway. The Railways Ministry has informed that the project has been sanctioned under Western Railway's ongoing umbrella work for construction of road over and under bridges, foot over bridges, drainage movement and drainage improvement and rebuilding of road over and under bridges. The ministry said the railway bridge portion will have a total length of 106 meters. It will comprise two composite girders of 53 meters each. Indian Railways has also approved the provision of coverage version 4.0 on 660 route kilometer of the Izzat Nagar division of Northeastern Railway at an estimated cost of 295 crore rupees. The Ministry of Railways informed that coverage version 4.0 has been approved under the umbrella work provision of coverage with communication backbone of long-term evolution on balanced sections of Indian Railways. As part of the Har Ghar Tiranga campaign in Jammu and Kashmir, the Riyasi District Administration today organized a Tiranga boat rally in the River Chenab as part of the celebrations marking 150 years of Vande Mataram with the aim of fostering patriotic spirit among the people ahead of the Independence Day celebrations. The rally provided a unique and adventurous platform to celebrate the spirit of patriotism with the tricolour fluttering proudly against the scenic backdrop of the Chenab. In Chhattisgarh, the tribal-dominated Bastar region, once severely affected by Maoist violence, is witnessing a Tiranga Yatra. A large number of youth are participating in the Tiranga Yatra, along with Deputy Chief Minister Vijay Sharma.
7: The Bastar Tiranga Yatra began today from Narayanpur with the message of peace, unity and nation building. The Yatra was flagged off by representatives of various communities. It is being led by Chhattisgarh Deputy Chief Minister and Home Minister Vijay Sharma and will pass through remote tribal areas of Bastar, including places that had earlier witnessed major Maoist incidents. The three-day Yatra will conclude on the 14th of August at Karregutta Hill in Bijapur district, where the national flag will be hoisted. Deputy Chief Minister Vijay Sharma said that the Tiranga Yatra aims to convey a message to the country and the world that Maoist insurgency has now come to an end in these areas. Vikalp Shukla, Akashwani News, Raipur.
11: The Central Board of Secondary Education, CBSE, today announced the Class 12 Supplementary Examination 2026 results. Students can check their result through DigiLocker results portal at the results.digilocker.gov.in. A rare and spectacular total solar eclipse is taking place today. What is being described as a once-in-a-generation celestial event, the total eclipse is passing across parts of the northern hemisphere, including Greenland, Iceland, northern Russia, the Atlantic Ocean, Spain, and parts of Portugal, with a deep partial eclipse visible across the UK and Europe. The Intermeteorological Department has predicted the formation of a low-pressure area over the North Bay of Bengal in the next 12 hours, leading to extremely heavy rainfall expected in Odisha and Gangetic West Bengal today and tomorrow. The Weather Department said heavy rainfall conditions are also likely to prevail over Karnataka, East Uttar Pradesh, Gujarat, Tamil Nadu, Karaikal, Puducherry. The Indian fencing team collected 3 gold, 1 silver and 1 bronze medal across various senior individual events on the third day of the Commonwealth Championships at Lagos in Nigeria today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Parliament passes bill to enhance funding and development of cooperative sector, also gives nod to legislation to rename state of Kerala as Kerala. Both houses refer Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. Home Minister Amit Shah says he is ready for detailed discussion on NEET paper leak related issue, writes letter to Lok Sabha Speaker. Finance Minister Nirmala Sitharaman calls for greater private capital mobilization in BRICS economies for global growth. Heavy to extremely heavy rainfall likely over parts of Odisha and Gangetic West Bengal for next 2 days as low pressure forms over Bay of Bengal. That is all in the news at 9. Good night.
15: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पार्लियामेंट ने इमदाद बाहमी शोबे के लिए सरमाए की फराहमी और इसके फरोग से मुतालिक बिल को मंजूरी दे दी है। केरला रियासत का नाम बदलकर केरलम रखने से मुतालिक बिल को भी मंजूर कर लिया गया है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने गैर मुल्की अतियात को मुंजबित करने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को मजीद जांच के लिए मुशरका पार्लिमानी कमेटी को भेजने की मंजूरी दे दी है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि वो नीट पेपर लीक से मुतालिक मामले पर तफसीली बहस के लिए तैयार हैं। उन्होंने लोकसभा स्पीकर को एक मुरासला तहरीर किया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आलमी सतह पर तरक्की की खातिर ब्रिक्स मुल्कों की मईशतों में और ज्यादा प्राइवेट सरमाए पर जोर दिया है। खलीज बंगाल के ऊपर हवा के कम दबाव का हल्का बनने की तनाजुर में उड़ीसा और गंगा के तराई वाले मगरबी बंगाल के बाद हिस्सों में अगले 2 दिन के दौरान शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। और नाइजीरिया में दौलत मुशतरका चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत की फेंसिंग टीम ने सोने के 3 तमगों समेत 5 तमगे जीते। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट ने कौमी इमदाद बाहमी तरक्याती कॉरपोरेशन तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूर कर लिया। लोकसभा इस बिल को पहले ही पास कर चुकी है। इमदाद बाहमी के महकमे के वजीर ममलकत मुरलीधर मोहन ने यह बिल पेश किया जिसका मकसद कौमी इमदाद बाहमी तरक्याती कॉरपोरेशन से मुतालिक 1962 के एक्ट में मजीद तरमीम करना है। मजकूरा बिल के तहत कॉरपोरेशन को सनती सामान के शोबे में भी अपनी सरगर्मियां अंजाम देने की इजाजत होगी। मजकूरा बिल की रूह से रियासती सरकारों को कॉरपोरेशन से सरमाया हासिल करके इमदाद बाहमी के फरोग में शामिल किसी भी इदारे को देने की इजाजत होगी। इसके अलावा ये कॉरपोरेशन इमदाद बाहमी की तरक्की में शामिल किसी भी इदारे या इमदाद बाहमी से मुतालिक किसी भी सोसाइटी को बराह रास्त कर्जे और ग्रांट भी फराहम कर सकती है। लोकसभा ने कानों और मादनियात के फरोग और इन्हें मुंजबित करने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। आज दूसरी बार कार्रवाई मुलतवी होने के बाद जब से पहर 3 बजे ऐवान की कार्रवाई फिर शुरू हुई तो कोयले और कानों के महकमे के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कानों और मादनियात के फरोग और उन्हें मुंजबित करने से मुतालिक 1957 के एक्ट में मजीद तरमीम की खातिर बिल पेश किया। मजकूरा बिल का मकसद भारत के कानकनी शोबे को और ज्यादा मुअसर सरमायाकारी के लिए साजगार और अहम मादनियात की मुल्क की बढ़ती हुई मांग पूरी करने के लिए तैयार करना है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने गैर मुल्की अतियात को मुंजबित करने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को मजीद जांच के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी JPC के सपुर्द करने के लिए मंजूरी दे दी है। मजकूरा बिल का मकसद गैर मुल्की अतियात को मुंजबित करने से मुतालिक 2010 के एक्ट में मजीद तरमीम करना है। इस बिल का मकसद गैर मुल्की अतियात के इस्तेमाल को और ज्यादा शफाफ और जवाबदेह बनाना है। उमूर दाखिला के वजीर ममलकत नित्यानंद राय ने यह बिल वसी तर सलाह मशवरे के लिए JPC के पास भेजने के लिए लोकसभा में एक तहरीक पेश की। JPC दोनों ऐवानों के अरकान पर मुश्तमिल होगी। इस कमेटी में लोकसभा के 21 अरकान होंगे जिन्हें स्पीकर मौसूफ नामजद करेंगे। इसके अलावा राज्यसभा से 10 अरकान भी हैं इसमें शामिल होंगे जिन्हें चेयरमैन नामजद करेंगे। ये कमेटी अपनी रिपोर्ट मौसम सरमा के इजलास के पहले हफ्ते के आखिरी दिन ऐवान में पेश कर देगी। इधर राज्यसभा ने भी غیر ملکی اتیاد کو منضبط کرنے سے متعلق ترمیم بل 2026 پر غور و خوض کی خاطر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے لیے اپنے 10 ارکان کو نامزد کرنے کی تحریک منظور کر لی ہے۔ پارلیمنٹ نے کیرالا کے نام کو تبدیل کرنے سے متعلق بل 2026 کو بھی منظور کر لیا ہے۔ راجیہ سبھا نے آج اس کی منظوری دی، لوک سبھا نے کل اس بل کو پاس کیا تھا۔ مذکورہ بل کا مقصد آئین کے پہلے شیڈیول میں ریاست کیرالا کا نام تبدیل کر کے کیرالم کرنا ہے۔ بل پر بحث کا جواب دیتے ہوئے امور داخلہ کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے کہا کہ کیرالا قانون ساز اسمبلی نے 2024 میں ایک قرارداد منظور کر کے مرکز سے ریاست کا نام تبدیل کرنے کی درخواست کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ درخواست اس لیے کی گئی کیونکہ ملیالم زبان میں ریاست کا نام کیرالم ہے جبکہ آئین میں اسے کیرالا تحریر کیا گیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
16: مختلف معاملات پر اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کے تناظر میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی ایک بار پھر متاثر ہوئی۔ شور و غل کی وجہ سے آج دونوں ایوانوں میں سوالات کا وقفہ نہیں ہو سکا، لوک سبھا میں وقفہ صفر بھی نہیں ہو سکا، جبکہ راجیہ سبھا میں یہ مختصر مدت کے لیے ہوا۔ حکومت کی جانب سے یہ یقین دہانی کرائے جانے کے باوجود کہ وہ اٹھائے گئے مسائل پر تفصیلی بحث اور جواب دینے کے لیے تیار ہے، کانگریس سمیت اپوزیشن پارٹیوں نے نعرے بازی جاری رکھی۔ انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی۔
15: مرکزی وزیر پیوش گوئل نے اپوزیشن پر الزام لگایا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں بحث کرانے کے معاملے پر اپنا موقف بار بار بدل رہی ہے۔ پارلیمنٹ کے احاطے میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے الزام لگایا کہ اپوزیشن نے پہلے تو بحث کا مطالبہ کیا تھا لیکن جب سرکار اس پر رضامند ہو گئی تو اپنا موقف

0: सरकार लगातार बातचीत कर रही है। पहले वो चर्चा डिमांड करते हैं, चर्चा के लिए सरकार तैयार होती है तो अपना स्टैंड बदल देते हैं। बार बार उनके रवैये में इस प्रकार का बदलाव ये स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष विषयहीन है, सदन चलने नहीं देना है।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि सरकार पार्लियामेंट में तलबा के मामले समेत किसी भी मामले पर बहस और अरकान की जानिब से उठाए गए किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। पार्लियामेंट अहाते में नामा निगारों से बात करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है और वो बहस के लिए तैयार है।
2: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
1: इधर लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने कहा कि अपोजिशन नीट मुजाहिरीन के खिलाफ मुबैना पुलिस कार्रवाई के मामले पर सरकार की जवाबदेही चाहती है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि प्राइवेट सरमायाकारी के लिए पब्लिक सरमाया एक मुतबादिल होने के बजाय इसे तकवियत पहुंचाने वाला एक वसीला होना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स मेंबर मुल्कों में प्राइवेट सरमाए को यकजा करने में नए तरक्याती बैंक के रोल के बारे में एक सेमिनार से खिताब करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि ब्रिक्स मुल्कों की मईशतें आलमी सतह पर तरक्की में सरकर्दा रोल अदा कर रही हैं, लेकिन साथ ही उन्हें प्राइवेट सरमाए को रागिब करने में चैलेंजों का भी सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरमाए की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के साथ साथ सरमायाकारों का एतमाद कायम करना, इस्तेहकाम बरकरार रखना और एक तवील मुद्दती पॉलिसी फ्रेमवर्क फ्राहम करना भी उतना ही अहमियत का हामिल है। तजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज कहा कि भारतीय व्यापार महोत्सव का विजन खलाई टेक्नोलॉजी और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में भारत की बढ़ती हुई ताकत को उजागर करना और मुल्क को आत्मनिर्भर भारत की जानिब आगे बढ़ाना है। जनाब गोयल ने नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि खुद कफालत और कौमी तरक्की साथ साथ फरोग पाती हैं। उन्होंने कहा कि भारत की $4 खरब की मईशत मजबूत रफ्तार से आगे बढ़ रही है और ये $30 खरब की मईशत बनने की राह पर गामजन है। तजारत से मुतालिक हुकूमत के इकदामात को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में किए गए आज़ाद तजारती समझौते 38 तरक्की याफ्ता ममालिक का इहाता करते हैं जिनकी मुश्तरक मजमूई घरेलू पैदावार GDP तकरीबन $60 खरब है।
0: भारत में उभरती हुई ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती है। पूरी दुनिया के ध्यान में आ गया है कि ये $4 ट्रिलियन की आज की इकोनॉमी 2047 में जब हम 100 वर्ष आजादी के मनाएंगे तब ये $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी कम से कम बन जाए।
1: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने 12वीं क्लास के जिमनी इम्तिहान 2026 के नतीजों का ऐलान कर दिया है। तलबा डीजी लॉकर पोर्टल के जरिए अपने इम्तिहान के नतीजे देख सकते हैं जो इस तरह है results.djlocker.gov.in। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत जम्मू कश्मीर के रियासी जिला इंतजामिया ने वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के जश्न के हिस्से के तौर पर दरियाए चनाब में तिरंगा बोट रैली का एहतमाम किया ताकि यौम आज़ादी की तकरीबात से कबल लोगों में हुब्बुल वतनी के जज्बे को और ज्यादा फरोग दिया जा सके। इस रैली से दरियाए चनाब के दिलकश पस मंजर में शान से तिरंगा लहराने के साथ हुब्बुल वतनी के जज्बे का जश्न मनाने का एक मुनफरिद और पुरजोश वसीला फराहम हुआ। उधर छत्तीसगढ़ में कबायलियों की अक्सरियत वाले बस्तर खित्ते में भी तिरंगा यात्रा का एहतमाम किया गया जो कभी मावनवाजों के तशद्दुद से सबसे ज्यादा मुतासिर रहता था। इस तिरंगा यात्रा में नायब वजीर आला विजय शर्मा के हमराह बड़ी तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
3: तिरंगा यात्रा आज नारायणपुर से अमन इतिहाद और मुल्क की तामीर के पैगाम के साथ शुरू हुई। मुख्तलिफ बिरादरियों के नुमाइंदों ने यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। छत्तीसगढ़ के नायब वजीर आला और वजीर दाखिला विजय शर्मा की क्यादत में ये तिरंगा यात्रा बस्तर के दूरदराज कबायली इलाके से गुजरी जिनमें वो इलाके भी शामिल हैं जहां माजी में माओनवाजों के बड़े वाकयात पेश आए। 3 रोज़ा यात्रा 14 अगस्त को बीजापुर ज़िले की करेगुट्टा पहाड़ी पर इख्तिताम पजीर होगी।

0: जहां कौमी परचम लहराया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आला विजय शर्मा ने कहा कि तिरंगा यात्रा का मकसद मुल्क और दुनिया को ये पैगाम देना है कि इन इलाकों में अब माओनवाज़ों की शोरिश ख़त्म हो चुकी है। विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
1: भारतीय रेलवेज ने शिमाल मशरकी रेलवे के इज्जत नगर डिवीज़न के 660 रूट किलोमीटर पर कवच निज़ाम के चौथे मरहले के बंदोबस्त की मंजूरी दे दी है, जिस पर 295 करोड़ रुपये की लागत आने का तखमीना लगाया गया है। रेलवे की वजारत ने बताया है कि शिमाल मशरकी रेलवे के इज्जत नगर डिवीज़न के बालांस सेक्शन इसके दायरे में आएंगे। कवच निज़ाम के चौथे मरहले से मुतल्लिका रेल सेक्शनों पर सेफ्टी का बुनियादी ढांचा मजीद मुस्तहकम हो सकेगा। कवच निज़ाम मुल्क में ही तैयार किया गया अज खुद काम करने वाला एक ऐसा तहफ़ुज़ाती निज़ाम है, जिसका मकसद रेलगाड़ियों की आमदोरफ़्त की लगातार निगरानी के जरिए रेलगाड़ियों के आपस में टकराने के हादसों की रोकथाम करना है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में सूरत हाल अब भी कशीदा है। वहां मुजाहिरीन पाकिस्तानी फोर्सेस के जेर साए निशाना बनाकर की गई हलाकतों और बेकसूर अफराद को लापता किए जाने और सप्लाई निज़ाम में रुकावटों के तनाजुर में कराए गए हालिया मुतनाज़ा इंतखाबात पर सवाल उठा रहे हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले 12 घंटे के दौरान शिमाली खलीज बंगाल के ऊपर हवा के कम दबाव का हल्का बनने की पेशगोई की है, जिसके जेर असर कल उड़ीसा और गंगा के तराई वाले मगरबी बंगाल में इंतहाई शदीद बारिश होने का इम्कान है। मौसमियात महकमे ने कहा है कि कर्नाटक, मशरकी उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, कराईकल, पुदुचेरी, अंडमान व निकोबार जजायर, केरला, गोवा और राजस्थान में भी तेज बारिश हो सकती है। इधर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य महाराष्ट्र, उत्तराखंड और मुल्क के शिमाल मशरकी हिस्सों में भी इस महीने की 15 तारीख तक इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। नाइजीरिया के शहर लागोस में जारी दौलत मुशरका फेंसिंग चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारतीय फेंसिंग टीम ने मुख्तलिफ सीनियर इनफरादी मुकाबलों में सोने के 3, चांदी और कांसे का एक एक तमगा जीता। भारत के तमगों की मजमूई तादाद अब 29 हो गई है, जिनमें सोने का 8, चांदी के 7 और कांसे के 14 तमगे शामिल हैं। भारत ने सीनियर खवातीन के फॉयल मुकाबले में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने और चांदी के दोनों तमगे हासिल किए। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट ने इमदाद बाहमी शोबे के लिए सरमाए की फराहमी और इसके फरोग से मुतालिक बिल को मंजूरी दे दी है। केरला रियासत का नाम बदलकर केरलम रखने से मुतालिक बिल को भी मंजूर कर लिया गया है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने गैर मुल्की अतियात को मुनजबित करने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को मजीद जांच के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी को भेजने की मंजूरी दे दी है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि वो नीट पेपर लीक से मुतालिक मामले पर तफसीली बहस के लिए तैयार हैं। उन्होंने लोकसभा स्पीकर को एक मुरासला तहरीर किया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आलमी सतह पर तरक्की की खातिर ब्रिक्स मुल्कों की मईशतों में और ज्यादा प्राइवेट सरमाए पर जोर दिया है। खलीज बंगाल के ऊपर हवा के कम दबाव का हल्का बनने की तराजुर में उड़ीसा और गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल के बाद हिस्सों में अगले 2 दिन के दौरान शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर एमएसएमई मंत्रालय के सचिव भरत खेड़ा के साथ आनंद श्रीवास्तव की विशेष बातचीत।
2: नमस्कार। जब किसी शहर की एक गली में वर्कशॉप का शटर उठता है, जब किसी गांव में एक छोटा कारखाना शुरू होता है, तो सिर्फ मशीनें नहीं चलती, देश की अर्थव्यवस्था की धड़कन भी चलती है। देश की जीडीपी में 30% से अधिक की हिस्सेदारी और करोड़ों हाथों को रोजगार देने में एमएसएमई सेक्टर का कोई सानी नहीं है। लेकिन क्या हो जब एक छोटा उद्यमी काम करने के बाद अपनी मेहनत के पैसे के लिए वर्षों इंतजार करे? क्या हो जब उसे कानूनी दांवपेच या कागजी कार्रवाई में लंबे समय तक परेशानी झेलनी पड़े? इन्हीं अड़चनों को जड़ से समाप्त करने के लिए संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ है एमएसएमई डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2026। क्या है इसके प्रावधान, या फिर यूं कहें कि क्या इससे समस्या का समाधान हो जाएगा और एमएसएमई सेक्टर एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ेगा? इन तमाम सवालों पर चर्चा के लिए मौजूद हैं एमएसएमई मंत्रालय में सचिव भरत खेड़ा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
3: नमस्कार।
2: यहीं से शुरुआत करते हैं। 2006 में एमएसएमई एक्ट बना, 20 वर्ष यानी 2 दशक बीत गए। बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात आ रही है कि 20 वर्षों के बाद अमेंडमेंट बिल की जरूरत क्यों पड़ी?
3: आनंद जी, 2006 में जैसे आपने बताया, सबसे पहले ये एक्ट बना था एमएसएमई क्षेत्र के लिए, और इन 20 वर्षों में कई ऐसे चेंजेस आए जिसके लिए ये आवश्यक हो गया था कि हम इस एक्ट में संशोधन करें। और 20 वर्षों बाद जब संशोधन होता है तो वो बड़ा स्वाभाविक है कि ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस किए जाते हैं, और इस पीरियड में टेक्नोलॉजी का भी बहुत स्वीपिंग चेंजेस आए, और उसके साथ साथ कई ऐसे प्रोविजंस थे जो कि रिडंडेंट और ऑब्सोलीट लगने लगे, और हमें ज़रूरत लगी कि आज के युग के साथ उनको भी आगे बढ़ाया जाए। और कुछ चुनौतियां रहीं हमारे एमएसएमई क्षेत्र में जो हम अनुभव कर रहे थे पिछले कुछ वर्षों में, उनसे भी निपटारा करने के लिए ये ज़रूरी हो गया था कि हम एक्ट के प्रोविजंस के अंदर प्रावधानों में अमेंडमेंट करें। इसी के चलते ये चेंजेस इस बार लाए गए हैं, और जैसे आपने कहा, 3 अगस्त को राज्यसभा से और 7 अगस्त को लोकसभा से हमारा एमएसएमई बिल पारित हुआ है।
2: कई सारी चुनौतियों के समाधान को खोजने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। एक एक करके अगर आपसे समझना चाहें तो मध्यस्थता के लिए 90 दिनों का समय निर्धारित किया गया है कि अगर कोई भी समस्या होती है तो पहले मध्यस्थता में उसे भेजा जाएगा, जिसे मीडिएशन भी कहते हैं, और 90 दिन एक समय सीमा निर्धारित की गई है। लेकिन फैसिलिटेशन सेंटर्स के पास अभी भी हजारों की समस्याएं पेंडिंग है। आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या राज्यों के साथ मिलकर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, कोई एक कार्यप्रणाली बनाई जा रही है जिससे 90 दिनों की समय सीमा के अंदर उस मामले को निपटारा किया जा सके?
3: देखिए, एमएसएमई क्षेत्र के अंदर पेमेंट्स का डिले होना एक बहुत बड़ी चुनौती हमेशा से रही है। छोटे सप्लायर्स हैं जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम श्रेणी के सप्लायर्स हैं, और उनके लिए लिक्विडिटी बहुत क्रिटिकल रहती है। उनके लिए वर्किंग कैपिटल समय से उपलब्ध हो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसी से वो खरीदारी करके अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि पेमेंट्स में विलंब हो जाता है। इसी के चलते प्रावधान पहले एक्ट में किया गया था कि डिलेड पेमेंट्स को कैसे एड्रेस किया जाए। हालांकि मीडिएशन, आर्बिट्रेशन के भी प्रावधान थे, लेकिन ये देखने में आ रहा था, पिछले वर्षों में अनुभव ये किया जा रहा था कि इसमें उसके बावजूद, इन प्रावधानों के बावजूद विलंब हो रहा था। तो इस नए संशोधन के अंदर एक तो ये तय किया गया है कि हर चीज़ की अपनी समय सीमा हो, और उस मीडिएशन और आर्बिट्रेशन शुरू करने से पहले प्रयास ये हो कि जो सप्लायर है और जो ऑर्डर प्लेस करता है, उन दोनों के बीच में अगर म्यूचुअल नेगोशिएशन और डिस्कशन से भी मामला सुलझ सकता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि जो कंपनी ऑर्डर प्लेस करती है छोटे सप्लायर के ऊपर, उनका भी बड़ा लंबे समय तक एक रिश्ता बन जाता है आपस में, तो वो चाहते भी नहीं कि कोई डिस्प्यूट हो, और प्रयास भी सबसे पहले यही होता है कि उसको आपसी बातचीत से सुलझा लिया जाए। लेकिन अगर वो निपटारा नहीं हो पाता और किसी वजह से उसमें डिस्प्यूट का फॉर्म ले लेता है, तो मीडिएशन के लिए समय निर्धारित किया गया कि वो 90 दिन के भीतर भीतर किया जाए, और अगर मीडिएशन में भी उसका सोल्यूशन नहीं निकला तो 30 दिन के अंदर अंदर उसके लिए आर्बिट्रेशन में मूव किया जाएगा, और आर्बिट्रेशन में आने के बाद 90 दिन के अंदर अंदर अवार्ड अनाउंस किया जाएगा। तो ये जो समय सीमा है, इसको एक्ट में ही निर्धारित किया गया है। प्रयास ये है कि बहुत ज्यादा विलंब इन डिस्प्यूट्स के अंदर भी ना हो। आपका कहना सही है, जो MSESCs हैं जहां पर फैसिलिटेशन काउंसिल्स के अंदर ये डिस्प्यूट्स आती हैं, उनमें कई समय तक कई बार डिलेज भी हो जाते हैं चूंकि प्रोसेस उनके लंबे होते हैं। तो प्रोसेस को भी सरल किया गया है, चूंकि अब प्रावधान किया गया है ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का। तो एक ODR पोर्टल है हमारा, जो पिछले साल हमने लॉन्च भी किया था, उसमें हमारा जो सेलर और परचेजर दोनों उस पर रहेंगे और पहले प्रयास करेंगे कि आपसी बातचीत से हो जाए, नहीं होगा तो उसी के माध्यम से मीडिएशन के लिए जाएगा। और ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन की जा सकेगी, अपने घर के एंटरप्राइज के कंफर्ट में बैठ करके, कहीं फिजिकली दूर जाने की जरूरत नहीं है, तो ये ऑनलाइन प्रक्रिया हो पाएगी और आर्बिट्रेशन का काम भी ऑटोमेटिकली वहीं से फॉरवर्ड हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ इस समय सीमा को निर्धारित करने से इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में और आसानी होगी और जो पेमेंट्स समय से नहीं हो रही थी वो समय से होने लगेंगी, डिलेज ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे।
2: थोड़ी चर्चा अगर ट्रेड्स की कर लें इस बिल पर, ट्रेड्स पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, उसको बहुत अहमियत दी गई है। आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए हम बता दें कि मान जाइए कि आपने ये साथ आपकी डील हुई, वो डील 25 करोड़ रुपए की है। ट्रेड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपने वहां पर अपनी इनवॉइस जेनरेट की, किसी दूसरी कंपनी को लगता है कि वो 24 करोड़ रुपए आपको अभी तत्काल दे सकती है, बायर के पैसे 2 सालों के बाद आएंगे तो उसको 25 करोड़ मिल जाएगा, लेकिन हमने अपना पैसा लगाया है तो हम 24 करोड़ में अगर सेटल होना चाहें तो वो हम सेटल हो सकते हैं। ये ट्रेड्स की खासियत है इनवॉइस सेटलमेंट के लिए, इसको कैसे प्रभावी बनाया जा रहा है इस बिल के माध्यम से?
3: देखिए, ट्रेड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सभी के लिए विन विन सिचुएशन है, सप्लायर के लिए, परचेजर के लिए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, तीनों के लिए। और जैसे आपने बड़े सरल रूप से बताया, ये जो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है 2017 में RBI ने शुरुआत की थी और शुरुआती दौर में इस पे ट्रांजैक्शंस बहुत कम होती थी। रादर मैं ये कहूंगा 2021-22 में भी हम तकरीबन 40,000 करोड़ के करीब ट्रांजैक्शंस कर पा रहे थे, जो पिछले वर्ष में 2025-26 में बढ़कर के 3.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया। और ज्यादा से ज्यादा कंपनीज हमारी ऑनबोर्ड कर रही हैं ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर। इस नए संशोधन के अंदर जितने हमारे केंद्रीय उपक्रम हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, उनके लिए अनिवार्य किया गया है कि जितने भी MSME से संबंधित पेमेंट्स हैं उनको ट्रेड्स के माध्यम से इनवॉइसेस को वहां पर रेज किया जाए, ताकि उनकी पेमेंट्स ट्रेड्स के माध्यम से की जा सके। तो इसके चलते काफी आराम हमारे MSMEs को मिलेगा, क्योंकि कई बार उनको बहुत देर तक इंतजार करना पड़ता था, उसके चलते वो आगे रॉ मटेरियल की खरीद नहीं कर पाते थे, तो उसमें उनको आसानी होगी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इसमें बेझिझक

0: करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले उपक्रमों को भी ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो ट्रेड्स के माध्यम से करें। और स्टेट गवर्नमेंट्स को इस नए संशोधन के अंदर प्रावधान ये किया गया है कि वो भी चाहें तो अपने स्टेट के जो उपक्रम हैं उनको भी मैंडेटरी कर दें ट्रेड्स के माध्यम से ऑपरेट करने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ पूरा इकोसिस्टम जब इसका बेनिफिट उठाएगा तो हमारे एमएसएमईज के लिए ये व्यवस्था बहुत बेहतर हो जाएगी और लिक्विडिटी क्रंच जो अक्सर वो फेस करते हैं उससे उनको छुटकारा मिलेगा।
1: एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल जहन में आ रहा है कि कोई भी जो उद्यमी है अगर उसने बायर के अगेंस्ट कोई कंप्लेन की है और उसके पक्ष में वो निर्णय आता है, लेकिन बायर चूंकि मजबूत होता है, उसके पास आर्थिक ताकतें ज्यादा होती हैं, वो कोर्ट में उस मामले को ले जाता है और फिर वो मामला काफी लंबा खींचता है। जो छोटा उद्यमी है जिसने अपना पैसा लगाया है, जिससे उम्मीद है कि काम पूरा होने के बाद उसको पैसे मिलेंगे, उसके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उसकी वो सैलरी दे पाएगा, जो रॉ मटेरियल्स लाया है उसका भुगतान कर पाएगा, ऐसे में जो कोर्ट में लंबा मामला खींच रहा है, क्या इस बिल में उसके लिए प्रावधान है?
0: इसके लिए भी बड़ा प्रभावी प्रावधान किया गया है। अगर कोई डिक्री या अवार्ड को अपील के अंदर चैलेंज किया जाता है तो उस अवार्डेड राशि का 75% अनिवार्य है कोर्ट के पास जमा करवाना। अब उस राशि में से कोर्ट्स को ये एम्पावर किया गया है कि अवार्डेड अमाउंट का 50% राशि वो उसको तुरंत जारी करवा सकते हैं एमएसएमईज के फेवर में अगर कोई अपील 6 महीने से ज्यादा पेंडिंग है। एक समय सीमा आ गई 6 महीने की, अगर 6 महीने से ज्यादा कोई अपील लंबित रह जाती है तो कोर्ट्स 50% राशि अवार्डेड अमाउंट की उस एमएसएमई को तुरंत जारी कर देंगे ताकि विलंब अगर होता भी है तो भी 50% राशि तो उसको मिली गई फैसला होने तक, बाद में बाकी भी मिल जाएगी। ये नया प्रावधान इस संशोधन में लाया गया है।
1: एक और प्रावधान किया गया है उद्यम पंजीकरण पोर्टल का, थोड़ा इसके बारे में भी बताइए। जो लोग एमएसएमई से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए किस तरीके से ये सहायक होने वाला है?
0: देखिए, इसमें मैं सबसे पहले तो ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि उद्यम पोर्टल पर या अन्य कहीं पर पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है, पूर्ण रूप से स्वैच्छिक है। यही प्रावधान एक्ट में भी किया गया है। और उद्यम पोर्टल पर ये ऑनलाइन प्रोसेस है, बहुत ही सरल प्रक्रिया है इसकी। इसमें उद्यम पोर्टल हमने लॉन्च किया था 2020 के अंदर और धीरे धीरे फॉर्मलाइजेशन काफी हुई, क्योंकि पहले अक्सर ये देखा जाता था कि एंटरप्राइजेस इनफॉर्मल क्षेत्र में तो कई साल काम करते थे लेकिन फॉर्मल इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं बनते थे। शायद इस बात से भी घबराते हों कि कंप्लायंस बर्डन बढ़ जाएगा और परेशानी आने लगेगी। तो सरकार ने बड़े प्रयासों के बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्री के ऊपर कंप्लायंस बर्डन भी कम किया। इसके भी चलते प्रेरित हुई एंटरप्राइजेस कि हम फॉर्मल रूप से अपना पंजीकरण करवाएं। और मैं ये समझता हूँ इसमें बहुत बढ़ोतरी हुई पिछले कुछ वर्षों में। 1.65 करोड़ हमारे एंटरप्राइजेस फॉर्मल इकोसिस्टम में थे आज से 4 साल पहले और आज हमारी संख्या 9 करोड़ से ऊपर पहुंच गई है। तो ये तभी संभव हो पाया जब उनको लगा कि ये इससे उनको लाभ मिलेंगे, सरकार द्वारा जो विभिन्न योजनाएं और बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं उसका भी वो लाभ उठा पाएंगे तो आगे बढ़कर के हिस्सा ले रहे हैं इसमें। अब चूंकि उद्यम पोर्टल का प्रावधान एक्ट में ही किया गया है तो ये फॉर्मलाइजेशन की हमारी जो कैंपेन है ये और बेहतर रूप से चलेगा और इसमें हम सैचुरेशन प्राप्त करेंगे।
1: आपने अभी कैंपेन का जिक्र किया, ये नए प्रावधान से एमएसएमई से जुड़े उद्यमियों को रूबरू कराने के लिए किस तरह के कैंपेनिंग प्रोग्राम शुरू करने की दिशा में सोचा जा रहा है? क्योंकि हमने देखा कि कई सारे मंत्रालय एक्सपोज करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, वेबिनार करते हैं और जहां पर बहुत सारे छोटे बड़े उद्यमियों को मिलाकर विशेषज्ञ उनको बारीकियां समझाते हैं, क्या इस तरह की भी कोई योजना है?
0: देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जो संशोधन विधेयक लाया गया इससे पहले भी फील्ड में हमारे बहुत अच्छा एंगेजमेंट रहा सभी एमएसएमई एसोसिएशंस के साथ, इंडस्ट्री के लोगों से, उन्हीं से ये फीडबैक लेकर के उन्हीं के सुझावों के आधार पर ये प्रस्ताव तैयार किया गया। और अब चूंकि बिल पारित हो गया है, आने वाले समय में हम एमएसएमई के साथ डायरेक्टली एंगेज करके उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी डिसेमिनेट करेंगे। हमने अभी तकरीबन 5 करोड़ मैसेजेस एक ही दिन में सभी एमएसएमई को डायरेक्टली भी भेजे हैं, ईमेल्स भी भेज रहे हैं और एसोसिएशन के माध्यम से भी हम उन तक ये सारे प्रावधान जो नए हैं उसके बारे में उनको जानकारी उपलब्ध करवाएंगे ताकि वो पूरा इसका लाभ उठा सके।
1: सचिव साहब, एक और यहाँ पर एक जो पेंच समझ में आता है वो ये है कि जो रिकवरी का मामला है उसमें ज्यादा हिस्सेदारी राज्यों की होती है। ऐसे में एमएसएमई मंत्रालय राज्यों के साथ किस तरीके का संगठनात्मक समन्वय की स्थिति बना रहा है जिससे रिकवरी थोड़ी फास्ट हो सके?
0: देखिए, समन्वय तो इसमें हमेशा राज्यों के साथ रहता ही है, लेकिन इस संशोधन के अंदर एक एक्ट में भी प्रावधान किया गया है, अगर कोई सेटलमेंट होता है मीडिएशन के आधार पर या आर्बिट्रेशन

0: के बाद कोई अवार्ड होता है तो उस अमाउंट को रिकवर करने के लिए उसको एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू भी घोषित किया जा सकता है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने नॉर्मली जो जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर होते हैं उनको अधिसूचित किया गया होता है एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू के तौर पर रिकवर करने के लिए। वो प्रावधान भी पहली बार इस एक्ट में किया गया है ताकि कोई अमाउंट अगर ड्यू है तो वो अनरिकवर्ड ना रह जाए, उसकी वसूली सुनिश्चित करने के लिए ये भी प्रावधान किया गया है। और ये हमें राज्यों से ही फीडबैक भी आया, राज्य सरकारों से, और मैं ये समझता हूँ ये जो प्रावधान है ये आने वाले समय में और प्रभावी रूप से काम कर पाएगा।
1: एक और इसमें व्यावहारिक बदलाव किया गया है, पहले अगर कोई उद्यमी जो है वो छोटी मोटी गलती कर देता था या चूक कर देता था उसके लिए जेल या जुर्माने का प्रावधान था, लेकिन इसमें उसको हटाकर वार्निंग की व्यवस्था की गई है। क्या इससे वो जो इंस्पेक्टर राज वाला कॉन्सेप्ट था उसको समाप्त करके एमएसएमई से जुड़े उद्यमियों को आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस देने की सोच है?
0: देखिए, डीक्रिमिनलाइजेशन और ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिसके आधार पर पूरी केंद्र सरकार में आप देख ही रहे हैं सभी एक्ट्स के अंदर बदलाव लाया जा रहा है। हमारा जो ये एक्ट है इसमें जेल का प्रावधान तो खैर नहीं था लेकिन क्रिमिनल ऑफेंस जरूर था, क्योंकि उसमें कन्विक्शन बेस्ड पेनल्टी थी कि कोर्ट के माध्यम से कन्विक्शन होगा और फिर उस पर पेनल्टी लगेगी। उसको अब सरल कर दिया गया है, उसमें ग्रेडेड फाइन, जो ग्रेडेड पेनल्टी का प्रावधान किया गया है, और वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर उसका डिसीजन लिया जा सकता है, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई पहले कोई जानबूझकर गलती नहीं करता, किसी कारणवश नासमझी की वजह से कोई लैप्स होता है तो पहले इंस्टेंस पर वार्निंग देने का प्रावधान है, दूसरे इंस्टेंस पर पेनल्टी लगेगी वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर 1,000 से 50,000 के बीच में, और अगर उसके बाद भी वो करता है तो पेनल्टी का अमाउंट बढ़ जाएगी, लेकिन कन्विक्शन के लिए कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसीलिए हमने डेवलपमेंट कमिश्नर को एडजुडिकेट करने के लिए अधिकृत किया है, और अगर उसमें भी अगर कोई अपील करना चाहे तो वो सचिव के पास अपील भी कर सकता है, उसके लिए भी समय सीमा निर्धारित की गई है। तो मैं ये समझता हूँ ये पूरा जो इकोसिस्टम है ये ट्रस्ट के आधार पर काम करने के लिए बनाया गया है।
1: एक और व्यवहारिक सवाल जहन में आ रहा है कि जब भरोसा दिया जा रहा है, और आपने शुरू में भी कहा कि चूंकि 20 वर्षों में तकनीक बहुत बदल गई इसलिए इस संशोधन बिल की जरूरत आन पड़ी, आज का जमाना एआई का जमाना है, क्या इस बिल में तकनीक को लेकर या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे समस्याओं को सुलझाने को लेकर भी कोई प्रावधान है या कोई चर्चा है?
0: देखिए, जो हमारा ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का पोर्टल है वो नया पोर्टल बना, बहुत ही रोबस्ट है, और उसमें सारा जो प्रक्रिया है वो उस पोर्टल के माध्यम से हो रही है। उसमें एआई भी मदद करेगा ड्राफ्ट करने में भी, कि आपने कोई डिस्प्यूट है उसको ड्राफ्ट करना है वो भी एआई भी मदद करेगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली मीडिएशन के अंदर, आर्बिट्रेशन के अंदर भी एआई का इस्तेमाल किया जाएगा, और ये सारी प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से होगी, जो कि मैं ये समझता हूँ टेक्नोलॉजी के अच्छे यूजेज को दर्शाता है। और जो MSCSCs हैं हमारी, जो फैसिलिटेशन काउंसिल्स है, उनके कार्य में भी और ज्यादा एफिशिएंसी आएगी, क्योंकि वो भी अपने पुराने फैसलों का अध्ययन कर पाएंगे, सब तरह के केसेस का एक साथ निपटारा करना भी उनके लिए सरल हो पाएगा। तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग पोर्टल के अंदर किया जा रहा है, उसके साथ ही जो उद्यम पोर्टल है उसमें भी टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग किया गया है। आज हम बड़ी सरल रूप से बता पाते हैं कि हमारे कितने माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, कितने स्मॉल हैं, कितने मीडियम हैं, किस सेक्टर में कितने हैं, किस राज्य में, किस जिले में, कितने महिलाओं के हैं। ये सारी जो सेग्रीगेशन है, ये सारा जो एनालिसिस है, ये हम कुछ सेकंड्स के अंदर कर पाते हैं, और ये एनालिसिस हमें मदद करता है नीतियां निर्धारित करने में, नई योजनाओं को प्लान करने में। तो मैं ये समझता हूँ टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये चीजें और सरल होती जा रही
1: है। आकाशवाणी से युवाओं का एक बड़ा वर्ग हमेशा से जुड़ा रहा है, उनके जहन में जरूर एक सवाल उठ रहा होगा कि अब तक बहुत सारे हाथों को रोजगार देने का काम किया है एमएसएमई ने, क्या इस नए बिल से रोजगार के अवसरों में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है?
0: देखिए, हमारे देश में एमएसएमई का रोजगार में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और कृषि के बाद ये दूसरा क्षेत्र गिना जाता है रोजगार के टर्म्स में, तकरीबन 38 करोड़ से 40 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। मैं ये समझता हूँ आने वाले समय में हमारे एमएसएमई जो हैं ग्लोबल वैल्यू चेन का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रहे हैं, और ये तभी संभव है जब उनमें कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस आएगी, उनमें इनोवेशन रहेगी। तो नवाचार में सबसे ज्यादा योगदान युवा पीढ़ी का रहता है। हमारी एमएसएमई चैंपियंस योजना के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि हम इनोवेशन के लिए हमारी युवा पीढ़ी को इंसेंटिवाइज करें, उनको प्रेरित करें, और वो अपनी क्वालिटी को भी इंश्योर कर पाएं अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस ला पाएं और अलग अलग प्रोडक्ट चेन के

0: अंदर किस प्रकार से वो एक इंडस्ट्री का महत्वपूर्ण हिस्सा बन पाए, टीयर टू और टीयर थ्री वेंडर से बढ़ करके पूरी वैल्यू चेन संभाल पाए और स्केल अप करें अपने एंटरप्राइज को। आज भी हमारे एमएसएमई क्षेत्र में 98% माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, तो हमारा प्रयास है फॉर्मलाइजेशन होने के बाद स्केलिंग अप करें, माइक्रो बढ़ करके स्मॉल बने, स्मॉल बढ़ करके मीडियम बने, मीडियम के बाद लार्ज एंटरप्राइजेस बने। तो ये स्केलिंग करने में इनोवेशन का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा और मैं ये समझता हूँ हमारी युवा पीढ़ी आज के समय में बहुत इसमें रुचि भी रखती है। पहले वेज एम्प्लॉयमेंट की तरफ ध्यान रहता था, अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बजाय इसके कि रोजगार ढूंढे वो खुद रोजगार देने के लिए तैयार है और स्कूल कॉलेज के अंदर ही प्रयास करने लगते हैं कि किस प्रकार से अपना एंटरप्राइज खोलें और लोगों को रोजगार दे पाए।
1: आपने अभी बात की एक सपने की, उस आपकी बात में एक सपना छिपा था कि छोटे से बड़े स्तर तक अपने कारोबार को लेकर जाने की। आपने बात की कि ग्लोबल स्तर पर अपने प्रोडक्ट की अहमियत को बनाने की, लेकिन इसमें एक जो बड़ी भूमिका है वो आपके स्किल सेट की होती है, कौशल विकास की होती है। क्या एमएसएमई जो दूर दराज के छोटे शहर हैं, गांव हैं, वहां की उद्यमियों को स्किल बढ़ाने के लिए, उनको और बेहतर बनाने के लिए किसी कार्यक्रम पर, किसी योजना पर काम कर रहा है?
0: आपने बिल्कुल सही कहा, जो स्किल अपग्रेडेशन है बड़ा महत्वपूर्ण रहता है खासतौर पे युवाओं के लिए। और हमारे मंत्रालय की दो मुख्य योजनाएं हैं इसको लेकर के। एक तो टेक्नोलॉजी सेंटर्स हैं, हमारे 55 टेक्नोलॉजी सेंटर्स देश भर में बन रहे हैं और इसमें से 35 ऑलरेडी फंक्शनल हैं, कुछ बाकी अभी बन रहे हैं। इनमें अलग अलग टेक्नोलॉजीज की ट्रेनिंग और स्किल अपग्रेडेशन दिया जाता है और हाल ही में इसमें ऐड की गई हैं रोबोटिक्स, AI, IoT, इस तरीके की टेक्नोलॉजीज जिसमें हमारे सक्षम बन रहे हैं युवा। उसके साथ ही साथ हमारी एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट योजना भी है जिसके माध्यम से वोकेशनल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जाती है पूरे देश भर के अंदर। और हम दूसरे जो मंत्रालय हैं जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, उनके साथ कन्वर्जेंस करके भी हम कौशल विकास की ओर विशेष ध्यान देते हैं।
1: इस बिल में क्लासिफिकेशंस की भी थोड़ी चर्चा है, इस बारे में भी बताएं।
0: देखिए, पहले क्लासिफिकेशन में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के अंदर अंतर रखा जाता था और अब वो खत्म हो गया 2020 के अंदर, जब हमने कहा कि चाहे वो एंटरप्राइज मैन्युफैक्चरिंग में लगा हो या सर्विसेज में कार्यरत हो, उसके क्राइटेरिया सिमिलर होंगे। और उसी से ट्विन क्राइटेरिया लाया गया इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का। पहले सिर्फ इन्वेस्टमेंट आधार रहता था, अब कितना निवेश किया गया प्लांट एंड मशीनरी में और कितनी उसकी टर्नओवर है, इन दोनों क्राइटेरिया को ध्यान में रख करके क्लासिफिकेशन की जाती है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम के अंदर। तो अब इसको बकायदा एक्ट के अंदर प्रावधान किया गया, क्योंकि ये पहले सरकार की नोटिफिकेशन के माध्यम से तो किया गया था, लेकिन अब ये एक्ट का हिस्सा बन चुका है कि ये ट्विन क्राइटेरिया को फॉलो करके क्लासिफिकेशन की जाएगी। उसकी सीमा कितनी होगी वो समय समय पर सरकार निर्धारित करती रहेगी। जैसे आप जानते हैं 2025 के अंदर पिछले वर्ष ही इसकी जो सीमा है उसको भी बढ़ाया गया था। आज के समय में 125 करोड़ तक के निवेश और 500 करोड़ तक का जो टर्नओवर है वो एमएसएमई क्षेत्र को डिफाइन करता है, तो इसमें पिछले वर्ष ही बढ़ोतरी की गई थी। तो मैं ये समझता हूँ आने वाले समय में और ज्यादा एंटरप्राइजेज फॉर्मल इकोसिस्टम का हिस्सा बन पाएंगे डेफिनेशन में बदलाव आने के कारण।
1: सचिव साहब, कोई अगर बैंक से लोन लेता है एमएसएमई के तहत, लोन तो बहुत आसानी से मिल जाता है कानूनी प्रक्रिया के तहत, लेकिन अगर वो 6 महीने या निर्धारित समय में वो वापस नहीं कर पाता है, तो जो क्रेडिट पॉलिसी बनाई गई है इस बिल में, उसके लिए भी क्या कोई प्रावधान है, उसमें भी कोई जोड़ घटाव किया गया है क्रेडिट पॉलिसी को लेकर?
0: देखिए, एमएसएमई क्षेत्र में क्रेडिट सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और क्रेडिट इन्फ्यूजन इस क्षेत्र में काफी बढ़ा भी है। 2014 में तकरीबन 10 लाख करोड़ का क्रेडिट था इस क्षेत्र को, जो आज के समय में तकरीबन 38 लाख करोड़ पे पहुंच चुका है। और ये तभी संभव हो पाया जब सरकार ने क्रेडिट गारंटी को बड़ा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस दी और क्रेडिट गारंटी के माध्यम से जब बैकिंग मिली बैंक्स को, तो उनका भी विश्वास और बेहतर हो गया। और बैंक्स ने यह भी अनुभव किया कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगातार गिरते आए हैं इस क्षेत्र के अंदर। हमारा परसेप्शन पहले ये रहता था कि जो छोटा उद्योग है वो शायद डिफॉल्ट करेगा, लोन वापस नहीं कर पाएगा, लेकिन फॉर्चुनेटली नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कमी आई पिछले वर्षों में। और ये जब बैंकों ने अनुभव किया तो वो और ज्यादा प्रेरित हुए क्रेडिट बढ़ाने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि क्रेडिट का आने वाले समय में और ज्यादा भूमिका बढ़ेगी और बैंक्स जो हैं प्रेरित होंगे और बेहतर रूप से क्रेडिट उपलब्ध करवाने के लिए हमारे उद्यमियों को।
1: एक थोड़ा अलग सा सवाल जहन में आ रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को भारत में GI टैग्स भी मिले हैं, बहुत सारे शहरों की अपनी खासियत है, जैसे हम बनारस की बात करें तो वहाँ बनारसी साड़ियों की खासियत है, कहीं का दाल काफी फेमस है, कहीं के मसाले बहुत फेमस हैं, क्या मंत्रालय का कोई यूनिट उन छोटे शहरों में जहां कुछ विशेष चीजें बनती हैं वहां पर किसी को सिलेक्ट करता है या वहां कोई कैंप का आयोजन करता है कि यहां की ये खासियत अगर आप इसको लेकर कुछ करना चाहते हैं, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की भी बात है, वोकल फॉर लोकल की भी बात है, अगर आप इसको लेकर कोई उद्यम शुरू करना चाहते हैं तो मंत्रालय आपको विशेष योगदान देगा या आपको सपोर्ट करेगा?
0: देखिए DPIIT जो डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और GI टैग को भी प्रमोट किया जा रहा है। तो GI टैग जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें अपना आवेदन करने के लिए और GI सर्टिफिकेशन लेने के लिए अगर MSMEs सामने आते हैं तो उसमें हम लोग भी अपने MSME चैंपियंस स्कीम के तहत उनको इंसेंटिव प्रदान करते हैं और इसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है पिछले कुछ वर्षों में। बिकॉज कुछ साल पहले तक शुरुआती दौर में तो बहुत ही कम GIs थे, लेकिन पिछले सालों में आज हम करीब 800 के करीब GIs ऑलरेडी देश में रजिस्टर्ड हैं और आने वाले समय में भी हमने MSME चैंपियन स्कीम में ये प्रावधान रखा है कि GI लेने के लिए जो प्रक्रिया है उसमें हम लगभग 100% इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं अपने मंत्रालय के माध्यम से।
1: ये जो बिल आया है क्या इसमें कोई नेशनल डैशबोर्ड बनाने की भी कोई पहल की गई है जिससे कि रियल टाइम जो लोकेशन है मामलों के निपटान की उसको लेकर कोई प्रावधान है जो कि आसानी से बायर भी देख सके उद्यमी भी देख सके?
0: देखिए जैसे मैंने आपको ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल के बारे में बताया, ये एक ऐसा पोर्टल रहेगा जो कि देश भर में बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा और ये इंटीग्रेटेड पोर्टल रहेगा। तो इसमें बायर और सेलर दोनों रहेंगे और साथ ही साथ MSESCs भी इसमें ऑपरेट करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ ये प्लेटफॉर्म इतना उपयोगी सिद्ध होगा कि जो डिस्प्यूट्स हैं उनमें काफी कमी आने की संभावना है, ये हमारी सोच है।
1: 2047 भारत विकसित भारत बने ये सपना प्रधानमंत्री का है और हर भारतीय चाहता है कि जब हम आजादी के 100 वर्ष पूरे करें तो एक विकसित भारत का निर्माण हो सके। ये जो बिल है और MSME, चूंकि हमने कार्यक्रम के शुरू में ही बताया कि 30% GDP में उसकी हिस्सेदारी 30% से थोड़ी ज्यादा ही है, क्या लगता है इस बिल के माध्यम से विकसित भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है?
0: देखिए मैं ये समझता हूँ विकसित भारत 2047 के संदर्भ में MSME क्षेत्र की भूमिका और अधिक बढ़ेगी आने वाले सालों में। आपने सही कहा कि आज के समय में भी GDP में 31% हमारा योगदान है और निर्यात में 48% है, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में 45% है। आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि ये तकरीबन 40% GDP का बन जाएगा, एक्सपोर्ट्स भी हम 60% के करीब पहुंचेंगे। तो इन प्रयासों को ध्यान में रखकर, इस विजन को ध्यान में रखकर के ही हम अपनी योजनाओं को भी और बेहतर रूप से इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयासरत हैं। आने वाले समय में हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो MSMEs हैं वो स्केल अप करें और कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हों ताकि वो ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बन सकें, और उसके लिए हम उनकी प्रोडक्ट्स अच्छी क्वालिटी के हों, बेहतर गुणवत्ता के हों, तभी वो ग्लोबल मार्केट्स में पहुंच पाएंगे, उसमें भी उनको हम सहायता प्रदान करेंगे। और साथ ही जो प्रोसेसेस हैं वो सस्टेनेबल हो, कम लागत के हों, कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हों, उसकी ओर भी हमारी कुछ स्कीम्स हैं MSME चैंपियंस के तहत जिसको अब हम और आगे प्रभावी रूप से इम्प्लीमेंट करेंगे।
1: आपको बहुत सारे छोटे उद्यमी या फिर मध्यम उद्यमी सुन रहे हैं या वैसे युवा भी सुन रहे हैं जो भविष्य में MSME से जुड़ना चाहते हैं, क्या संदेश देंगे उन्हें आप?
0: देखिए हम तो यही चाहेंगे कि ये क्षेत्र और आगे बढ़े और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेज हैं वो ये विजन रखें कि किस प्रकार से अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाएंगे, स्केल अप करें, और जो युवा सोच रहे हैं कि अब आगे बढ़ करके भविष्य में क्या करना है वो बजाय इसके कि नौकरियां ढूंढने बेहतर है कि अपना खुद का एंटरप्राइज स्थापित करने के लिए इनोवेशन लेकर के आएं और प्रयास करें और रोजगार प्रदान करें, बजाय इसके कि रोजगार ढूंढने रोजगार प्रदान करें। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा युवा पीढ़ी से,
1: ये नया भारत है, नए भारत में नई संभावनाएं होती हैं और उन संभावनाओं को संभव बनाना जीवन की भी सच्चाई है और साथ ही साथ सरकार का भी दायित्व बन जाता है। सरकार ने समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए और खासकर ऐसे MSME क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए इस बिल में कई प्रावधान किए हैं, उस पर विस्तार से चर्चा की हमारे साथ भरत खेड़ा ने, और उम्मीद है कि MSME क्षेत्र आने वाले वर्षों में और तरक्की करेगा। भरत जी आकाशवाणी में बात करने के लिए और विस्तार से इस अमेंडमेंट बिल पर अपने विचार रखने के लिए बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद आनंद जी।
2: अभी आप सुन रहे थे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर MSME मंत्रालय के सचिव भरत खेड़ा के साथ आनंद श्रीवास्तव की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है

0: irnsdetox@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: चर्चा का विषय है

0: ये आकाशवाणी है। पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत सुनिए ऐतिहासिक समुद्र प्रदक्षिणा अभियान का हिस्सा रहीं विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम के साथ विशेष बातचीत। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं प्रियंका अरोड़ा।
1: साहस, अनुशासन, राष्ट्र सेवा, ये वो गुण हैं जो हमारी सेना, हमारे सशस्त्र बलों की पहचान है। और जब इन मूल्यों में नारी शक्ति का अदम्य साहस और कठिन परिस्थितियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन जुड़ जाता है तो एक प्रेरक गाथा बन जाती है। ऐसी ही एक प्रेरक गाथा के बारे में आज हम बात करेंगे IASV त्रिवेणी समुद्र प्रदक्षिणा की, जिसमें पहली बार सेना के तीनों अंगों की महिलाओं ने हिस्सा लिया और समुद्र प्रदक्षिणा की। तो ये अभियान कैसा रहा, क्या चुनौतियां रही, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और साथ में है मेजर प्राजक्ता पी निकम। आप तीनों का स्वागत है कार्यक्रम में। शुरुआत करें, आगाज करें इस कार्यक्रम का, तो सबसे पहले जब आपको एक एक्सपीडिशन के बारे में, इस अभियान के बारे में पता चला, तो व्हाट वाज दैट फर्स्ट थॉट इन योर माइंड
2: कि ऐसा भी कोई एडवेंचर होता है क्या? टू इमेजिन कि आप पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आएंगे और उससे पहले कभी फॉरेन कंट्री तक नहीं गए थे, तो वो जो ख्याल है कि पूरी दुनिया का चक्कर, वो नाम ही इतना बड़ा था कि लगा कि नहीं, ये तो करके देखना है कि ये चीज क्या होती है।
1: विभा जी और वैशाली जी, वायुसेना से आप हैं, तो आपने हमेशा बादलों के बीच उड़ान भरी है, लेकिन इस बार समुद्र के बीच लहरों के साथ आपको सफर करना था। तो वैशाली जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्या वो हलचल रही मन में जब आपको पता चला?
3: तो एक नॉर्मल डे की बात है, हम ऑफिस में बैठे हैं, ये सिग्नल आता है कि सेलिंग के लिए चुनाव हो रहे हैं और 3 सर्विसेज से लिया जा रहा है। पहले तो वो ही अविश्वसनीय था मेरे लिए। रही बात भाई एयरफोर्स से सेलिंग की, हर कोई नहीं समझ पाता, यही पूछते हैं कि एयरफोर्स से होकर सेलिंग कर रहे हो, वो भी इंडियन आर्मी के साथ, ये पॉसिबल कैसे हो रहा है? तो मैं ये बताना चाहूंगी कि यही एक मैसेज है सबके लिए कि ये पॉसिबल है। और यही नहीं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पॉसिबल आज के टाइम में हमारे देश में और ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है
1: जी, और टीम स्पिरिट से ये सब पॉसिबल हुआ। प्राजक्ता जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आपके मन में क्या उस समय जहन में था जब आपका सिलेक्शन हुआ, तो ये सिलेक्शन कैसे आपको एकदम से बताया गया या आपने अपने बारे में बताया कि आप इंटरेस्टेड हैं, इच्छुक हैं इस अभियान के लिए?
4: एक्चुअली ये जो एक्सपीडिशन है, इसकी प्रिपरेशंस 3-4 साल पहले स्टार्ट हुई है, तो 3 साल का हमारा सिलेक्शन रहा है एंड 1 ईयर आप ले लो 10 मंथ्स फॉर आर एक्सपीडिशन टू यू नो स्टार्ट एंड फिनिश। तो इनिशियली इट वॉज ऑन अ वॉलेंट्री बेसिस, तो 41 वुमेन ऑफिसर्स एंड एक अग्निवीर हमारे साथ थे और हम 42 टोटल थे फ्रॉम ऑल 3 सर्विसेज, जिन्होंने 3 फेजेज ऑफ सिलेक्शन ट्रायल्स कम्प्लीट किया ओवर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो उसके बाद जाके फिर ये फाइनल टीम सेलेक्ट हुई है 9 वुमेन ऑफिसर्स की फ्रॉम आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। पहले तो चलो हमारा ट्रेनिंग ही चल रहा था, बट जिस दिन पता चला कि अब जाने का टाइम आ गया है, तो उस टाइम ऐसे लगा कि अब तो गए। तो एक्चुअली बिकॉज इट इज अ मैसिव थिंग, इट इज नॉट अ नॉर्मल थिंग टू यू नो गो अराउंड द वर्ल्ड, तो इनिशियल फियर तो रहता ही है।
1: आपसे जानना चाहूंगी

0: विभाजी जैसे आपका सिलेक्शन हुआ तो नेक्स्ट होता है ट्रेनिंग का पार्ट, क्योंकि आपको फिजिकल ट्रेनिंग तो आपको आर्मी के जब आपने ट्रेनिंग ली होगी तब भी आपको मिली होगी, लेकिन इसमें क्या आपको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दी गई?
1: देखिए, अगर हम सेलिंग की बात करेंगे तो जो हमारी सेलिंग थी वो छोटी मोटी सेलिंग नहीं थी, हमें समुद्र में 9 से 10 महीने रहना था। इसका मतलब कि हमको तैयार करना था मानसिक, शारीरिक एंड एज अ टीम ऑल्सो। तो जो हमारी ट्रेनिंग थी, जो एकेडमी की जो हमारी ट्रेनिंग होती है, फिर एज डिफेंस फोर्सेस जिस तरीके से हमको ट्रेन किया जाता है, यस, वो काफी हद तक हमारे काम आई, क्योंकि हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज बहुत कॉमन होती है। लेकिन समुद्र में इस एक्सपीडिशन को करने के लिए एडिशनल हमारी फिजिकल ट्रेनिंग हुई। जैसे हम सबको याद है कि हम सुबह 5 बजे उठते थे और 1.5 घंटे तक भागना, दौड़ना, रस्सी चढ़ना, पुशअप, पुलअप, मतलब हर बॉडी की एक एक मसल को इतना स्ट्रांग बनाया गया कि जब आप समुद्र में रहोगे तो आपको किसी तरीके की तकलीफ ना आए। फिर दूसरा, ट्रेनिंग को इतना कठिन इसलिए किया गया बिकॉज समुद्र में आप खुद हो, आपके पास हेल्प करने के लिए कोई नहीं है। फिर रही बात, हम सब में से किसी को सेलिंग आती नहीं थी, तो इसका मतलब हमें बोट क्या होती है, कैसे चलाते हैं, हवा को कैसे पढ़ते हैं, नेविगेट कैसे करते हैं, समुद्र में अगर दूसरे शिप्स हैं तो उनके साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं, ये एक एक चीज हमें पढ़ाई गई। और उसके बाद टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज अ टीम आप वहां पे जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हमारी टीम बिल्डिंग की एक्सरसाइजेज हुई।
0: जी, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली, आपको फिजिकल ट्रेनिंग तो दी गई और थोड़ा सा और ज्यादा इंटेंसिव दी गई इसमें, लेकिन जो सबसे जरूरी होती है आपकी मेंटल ट्रेनिंग, क्योंकि आप कई बार आपको ट्रेन किया जाता है लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आपको लगता है शायद दिस वाज नॉट द पार्ट ऑफ अ ट्रेनिंग, तो कुछ ऐसा अलग रहा आपको, तो मेंटल ट्रेनिंग भी फिजिकल ट्रेनिंग किस तरह से काम आई आपके एक्सपेडिशन में?
2: बींग फ्रॉम अ डिफेंस बैकग्राउंड और वेयरिंग अ यूनिफॉर्म इटसेल्फ, बी इट आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, मेंटली स्ट्रांग होने की हमें ऑलरेडी ट्रेनिंग दी जाती है, तो यहाँ पे भी वही चीज काम आई। थोड़ा सा मैं ये बोलूंगी कि एंड्योरेंस और स्टैमिना की महीनों महीनों तक कुछ ना दिखना, कोई कलर ना दिखना, कोई पक्षी ना दिखना, इंसान ना दिखना, और महीनों बाद कोई एक शिप भी दिख जाती है तो उसमें भी बहुत खुशी होती है कि आज हमने एक शिप देखी, और उसकी बात पूरे 1-1.5 दिन तक करते रहना कि आज हमने रेड कलर की एक शिप देखी करके। तो वो चीज ट्रेनिंग करते करते, सेलिंग करते करते बढ़ाई गई। अकेलापन फील होना, उसकी जो फाइट होती है वो हमने सेलिंग करते करते ही सीखी। बस ये एक छोटा सा डिफरेंस आई फील की था, बाकी सेम।
0: मेजर प्राजक्ता, आपका अनुभव कैसा रहा, क्योंकि जैसे अब आप फिजिकल ट्रेनिंग भी, मेंटल ट्रेनिंग भी, फिर भी उसको सस्टेन करना और अपने एक ना आत्मविश्वास बनाए रखना, नहीं हम कर लेंगे, तो ऐसे भी कुछ पल आए उस समय जब आप एक्सपेडिशन पर थी?
3: ऐसा नहीं था कि हम हर रोज जब उठ रहे हैं कि हम मोटिवेटेड फील करें कि आज तो भाई एकदम जोश में है हम, ऐसा नहीं था। बहुत सारे दिन थे जब हम इतने टायर्ड थे, रात रात तक हम कुछ रिपेयर कर रहे हैं, हम सो नहीं पा रहे हैं, अगले दिन इतना फटीग है हम में, एंड नॉट ओनली ड्यूरिंग द एक्सपेडिशन, इनफैक्ट पहले भी, बिफोर फ्लैग ऑफ हुआ हमारा, उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हुए हैं जब हमें लगा है कि हम जा पाएंगे या नहीं, क्या हम कर पाएंगे या नहीं, बट बिकॉज 9 लोगों का एक ही मिशन था, एक ही गोल था, सो दैट यू नो मोटिवेट्स यू। इवन अगर आप एक दिन मैं बहुत लो फील कर रही हूँ तो आई नो कि बाकी हैं हु विल लिफ्ट मी अप।
0: टीम वर्क काम आई इस पूरे एक्सपेडिशन में। विंग कमांडर विभा जी, जैसे उन्होंने कहा कि वैशाली जी ने कि शिप एक दिख जाती थी तो बहुत अच्छा लगता था, और हम सभी के जहन में ये है कि आप लोग एक शिप में गए हैं, बहुत आरामदायक थी जिसमें सभी सुविधाएं थी, तो क्या वाकई में ऐसा था या आपको और भी कई इसको लेकर भी, उठने, जागने, सोने को लेकर भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा?
1: जनरली हम फोर्सेस में तो हमारे पास खाना खाने के लिए एक मेस होती है, हमें एक अकोमोडेशन दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो जैसे जब मेरे घर वालों पूछते थे कि अच्छा आज मेस में क्या बना है, मतलब शिप में भी एक मेस होती है, डाइनिंग हॉल होता है जहाँ आप खाते हो, तो मैंने कहा मेस नहीं है हमारे पास, हमारे पास सिर्फ एक खड़े होने की जगह होती है। फिर उन्होंने पूछा अच्छा कुक अच्छा खाना बनाता है, हमने कहा कोई कुक नहीं होता है। हमारा लिविंग एरिया था एक 50 फीट लंबी बोट और 15 फीट चौड़ी, इसी में हमारी पूरी दुनिया थी। और धीरे धीरे जब हम उस बोट में रहे तो हमको ये भी इतना लंबा लगता था कि अरे वाह हमारे पास कितनी ज्यादा जगह है। और अगर दिनचर्या की बात करेंगे तो वो जो बोट है वो बहुत छोटी है, तो जब समुद्र की लहरें या विंड होता है तो बोट कभी सीधी नहीं चलती है. तो उसमें अगर आप मुझसे पूछेंगे कि एक दिन बताइए, तो उसमें सोना, खाना, पीना, जागना, कुछ भी एक जो नॉर्मल इंसान करता है वैसा नहीं होता है. एक तो समुद्र में वैसे ही आपकी बॉडी के रिएक्शन बहुत स्लो हो जाते हैं बिकॉज कंडीशंस बहुत हार्श होती है, और उसमें हम खुद ही खाना बना रहे हैं, तो मौसम अच्छा हो खराब हो उसके हिसाब से खाना बनता था. धरती पे खड़े होने का, सीधे खड़े होने का जो आनंद है, और वो 6 घंटे की नींद लेने का जो आनंद है, और वो कहते हैं जॉय ऑफ लिटिल थिंग्स, ये हमने बोट पे रह के सीखा.
0: जैसे खाने के बारे में आपने बताया, आप लोग तीनों अलग अलग कोने से हैं, तो सबका जो उसका जो टेस्ट होगा वो भी डिफरेंट होगा. तो किसकी पसंद का खाना बनता था, कैसे बनता था?
1: फॉर्चुनेटली हमारी बोट में ऐसे टीम मेंबर्स थे जिनको खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था. और जब हम कहते हैं बहुत अच्छा, वो ऐसा नहीं कि खाना बनाना चाहता है, वो उनका पैशन था. तो यहाँ पे जो ये प्राजक्ता जी बैठी है, हम वेट करते थे कि ये मदर ऑफ द बोट, मतलब वो क्रू मेंबर जो उस दिन तीनों टाइम का खाना बनाएगा. तो जब पता चलता था कि हाँ भाई आज प्राजक्ता जी की ड्यूटी है, तो पूरा दिन सब यही पूछते थे आज क्या बनेगा, आज क्या बनेगा. प्राजक्ता जी ने बोट में, समुद्र में हालत खराब है, सबको सी सिकनेस हो रही है, मतलब उल्टियां लग रही है, बट इन्होंने हमें छोले आलू टिक्की चाट खिला दी और हम
0: दिन बन गया,
1: दिन महीने बन गए.
0: ये है, मतलब जब आप ट्रैवल करते हैं तो जैसे सी सिकनेस की बात की, तो इस तरह से कई प्रॉब्लम्स आई होंगी, तो आप बताएं वैशाली जी किस तरह से उसको आपने हैंडल किया? तो कोई वहाँ पे कोई स्वास्थ्य चिकित्सक भी था आपके साथ जिसने आपको मदद की इस दौरान?
2: हमने मेडिकल वाइज जो हमने इश्यूज फेस किए हैं, मोस्टली इट इज विद रिस्पेक्ट टू, पहले तो सी सिकनेस है, फीवर है, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस है उसमें जो तबीयत खराब होती है, और इट इज योर मंथली साइकिल. दीज आर द काइंड ऑफ इश्यूज दैट वी हैव फेस्ड. एंड वी हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ कि हमारी एक क्रू मेंबर, एक मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर है हु इज ट्रेन ऑन ऑल दीज थिंग्स. तो बिसाइड्स वो सेलिंग तो कर ही रही हैं, लेकिन उसके साथ ही उनकी एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सबका बोट में ख्याल रखना. वो उनका रहना ही हमारे लिए एक मोटिवेशन होता था. वो उस हालत में आने ही नहीं देती थी हमें कि हम बिल्कुल ही बेड में पड़ जाएं. शी यूज टू टॉक टू अस, पता करना एवरी डे आज कैसा फील हो रहा है, आज कैसा फील हो रहा है. प्लस थैंक गॉड ऐसी कोई आपदा नहीं आई, मेडिकल इमरजेंसी नहीं आई जिसकी वजह से हमें डिटोर करना पड़े या कोई बहुत सीरियस सिचुएशन हो जाए.
0: तो आप कुल 9 लोग थे, मेजर प्रोजेक्ट था, तो किस तरह से काम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था? क्योंकि आपको 24 घंटे रात दिन काम करना है, सेलिंग करनी है, तो कौन कैसे किस तरह से जिम्मेदारी निभाता था?
3: तो बोट पे एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 6 ऑफिसर्स होते थे. उसमें से एक, मतलब एवरी डे देयर वाज अ मदर ऑफ द बोट, तो हम 6 में से वो रोटेट होते रहते थे. बाकी जो 5 बचे उनमें से 2 ऑफिसर्स, मतलब 2 ऑफिसर्स की ड्यूटी होती थी, तो वो रोटेशनल बेसिस पे होती थी. एंड ऐसा नहीं है कि किसी एक, जैसे कि आई एम स्पेशलाइज्ड इन समथिंग और मैम इज स्पेशलाइज्ड इन समथिंग, वी ऑल नो एवरीथिंग. तो हमको सब चीज में ट्रेनिंग दी गई है, चाहे वो रिपेयर हो, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो साफ सफाई हो, प्लम्बिंग हो, इलेक्ट्रिकल वर्क हो, हम सबको सब आता है. तो वैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता था, इट वाज नॉट कि एक ही पर्सन पे लोड आए.
0: तो दिस वाज द बेस्ट पार्ट कि सबको सब कुछ मालूम था, किसी तरह की दिक्कत ना आए. तो आपका जब ये एक्सपीडिशन था, तो आप किन किन जगहों से गुजरी, कहाँ कहाँ से गए आप?
1: देखिए, जब हम सरकम नेविगेशन की बात करते हैं, तो सरकम नेविगेशन में बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जो आपको मीट करने होते हैं. उन्हीं क्राइटेरियाज को मद्देनजर रखते हुए हमने अपना रूट प्लान किया था. तो हम इंडिया से सबसे पहले गए ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वहां पे हमें केप लुइन क्रॉस करना था. ऑस्ट्रेलिया में हम गए फ्रीमेंटल, फिर फ्रीमेंटल ऑस्ट्रेलिया से हमारा अगला था पोर्ट ऑफ कॉल लिटिलटन न्यूजीलैंड में. लेकिन इस दौरान क्या हुआ, जब हम जा रहे थे हम एक स्टॉर्म में फंस गए और हमारा सेल फट गया, और उस सेल के बिना हम आगे नहीं जा सकते थे. तो लकीली हमने एक पास में एक आइलैंड था तस्मानिया करके, वहां पे हमने हॉल्ट लिया. वो अनप्लान्ड था, बट वहां पे हम रुके, हमने अपना सेल रिपेयर किया और फिर हम आगे बढ़े न्यूजीलैंड की तरफ. न्यूजीलैंड से फिर हम गए अर्जेंटीना, ब्यूनोस आयरिस, क्योंकि हमें सदर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका में केप हॉर्न करके एक जगह है जिसको ड्रेक्स पैसेज भी कहा जाता है, वो क्रॉस करना अगेन मैंडेटरी होता है. उसको क्रॉस करते हुए हम ब्यूनोस आयरिस पहुंचे अर्जेंटीना में. फिर वहां से हम गए साउथ अफ्रीका के केप टाउन में. केप टाउन से इंडिया आते हुए जो हमारा थर्ड ग्रेट केप होता है, जिसको केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, उसको क्रॉस करते हुए फिर हम वापस इंडिया में मुंबई आ गए. तो हमारा एक्सपीडिशन मुंबई से शुरू हुआ और फिर मुंबई पे ही आके खत्म हुआ।
0: विभा जी आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने दो बार

0: इक्वेटर को पार किया, सदर एक बार सदर्न हेमिस्फेयर फिर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस रही होंगी आपने, बहुत ह्यूमिड भी, गर्मी का मौसम भी देखा होगा और बहुत ही ठंड का मौसम भी देखा होगा, तो उस जो वेदर कंडीशंस को फेस किस तरह से किया और मन में क्या दुखदुखी चल रही थी?
1: अभी भी जैसे हम आए हैं कोई हमसे पूछता है कि आप सब तो एक साल सेलिंग करके आ गए बट आपके चेहरों में कहीं लग नहीं रहा है कि आपको टैनिंग हुई है, हम उसका यही आंसर देते हैं कि हम 8 महीने इतने लेयर ऑफ क्लोथ्स हम पहन के सेलिंग करके आए हैं, हमारे शरीर का कोई हिस्सा एक्सपोज ही नहीं हुआ। हमने जब इंडिया से शुरू किया तो मौसम गर्म था लेकिन रात को हल्की हल्की ठंड होती थी इंडिया से ऑस्ट्रेलिया। जब हम ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले थे उस टाइम पे ठंड बढ़नी शुरू हो गई थी, तो हम दो दो लेयर ऑफ क्लोथ्स पहनते थे। उसके बाद आप ये मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड से अर्जेंटीना जब हम सदर्न हेमिस्फेयर में गए थे वहां पे इतनी ज्यादा ठंड थी कि मैं आपको बताती हूँ, हम सर पे जितने कपड़े आ सकते थे हम उतने पहनते थे, और अब वो अगर हम काउंट करेंगे उनको तो सर पे 3 लेयर, हाथों में ग्लव्स की 3 लेयर, ऊपर 5 लेयर, 3 लेयर इनर की, उसके ऊपर फ्लीस एंड विंटर एंड वाटरप्रूफ जैकेट, सेम नीचे सॉक्स के 3 पेयर और शूज। जब हम अपनी ड्यूटी करने जाते थे तो हम इतने पैक हो जाते थे कि हम चल भी नहीं पाते थे, और उस वेदर में जैसे ही आप बाहर जाओगे, बाहर आप मानिए कि हवा की गति 50 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा ऑलमोस्ट, और 0 डिग्री की हवा जब आप पे लगेगी 5 मिनट में हमारे हाथ सुन्न हो जाते थे। अगर हम अपनी ड्यूटी को एक्सटेंड भी करना चाहते थे, मान लीजिए 1 घंटा, हमारे हाथ इतने सुन्न होते थे कि हम वापस अंदर आते थे, गैस पे अपने हाथ सेकते थे ताकि थोड़ा ब्लड फ्लो बन पाए। एक इंसिडेंट मैं आपको इस चीज का बताना चाहूंगी, हमारा सेल फट गया था, तो जब हमारा सेल फटा तो हमें वो चेंज करना था। चेंज करने के लिए अब क्या है कि उसमें आपको हुक्स लगाने पड़ते हैं, मैन्युअली वो चेंज करनी थी, और हुक्स हमने जब ग्लव्स से लगाने की कोशिश की तो नहीं लग पाए क्योंकि ग्लव्स में फिंगर मूवमेंट नहीं हो पा रहा था 3 ग्लव्स से। हमने अपने ग्लव्स उतारे और हाथ एकदम सुन्न, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी ठंड कभी महसूस नहीं की कि मेरे हाथ सुन्न हो जाए, और कहते हैं ना सोने पे सुहागा, ऊपर से कॉन्टिन्यूस आपके ऊपर पानी गिरता है, तो जितने भी आपने लेयर्स पहने हैं वो हमेशा अंदर तक भीगे रहते हैं। तो हमने फाइनली फिर हाथों में पैरों में पॉलिथिन्स पहनना शुरू किया कि पानी और स्किन का थोड़ा सा टच बचे और हमारे हाथ थोड़ा लेट नंब हो। तो ये वेदर था एक्सट्रीम,
0: मतलब एक तो पानी की लहरें, ठंड और हवा, और उसके बाद अगर बरसात आ जाए तो बताइए वैशाली जी, उस समय कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपको याद आ रहा हो कि ऐसा भी कुछ हुआ था? और जैसे अभी तो हम हंस रहे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उस समय क्या हाल था?
2: नहीं नहीं, उस समय हमने ऐसे दिन देखे हैं जब हफ्तों हफ्तों बारिश हो रही थी, तो सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि हाँ ठंड थी, लेयर्स पहने हैं, गीले हो गए हैं, अभी आप 4 घंटे की ड्यूटी करके गए हो और 6 घंटे बाद आपको दोबारा ड्यूटी पे आना है क्योंकि रोटेशन ऐसे ही चलता है, 6 घंटे में आपके कपड़े नहीं सूखेंगे, तो आपको वही गीले कपड़े पहन के फिर 4 घंटे आना है, फिर आपको गीला होना है, फिर अगले 6 घंटे आपके वो कपड़े नहीं सूखेंगे। तो हमने शायद हफ्ता ऐसे ही निकाला होगा कि बारिश भी आ रही है, पानी भी आ रहा है, बट आप कुछ कर नहीं सकते, तो आप वैसे ही पहन के बैठे रहो, और जब आपकी ड्यूटी खत्म हो रही है तो विद इन 2 मिनट्स यू हैव चेंज्ड और आप एक गर्म कपड़े में आके, आपको कोई भगवान आके गरम गरम चाय पिला देता है। ऊपर से अगर बारिश पीछे से आ रही है तो इट इज स्टिल फाइन, आपको डायरेक्ट नहीं लग रही, बट अगर आपको सामने से बारिश आ रही है एंड यू आर गोइंग एट अ स्पीड, तो वो एकदम सुई की तरह चुभती है। अब आप आंख भी नहीं खोल पा रहे हो तो आप देखोगे क्या, तो विजिबिलिटी वैसे ही पुअर है क्योंकि बारिश हो रही है, उसमें आप जो बचा कुचा दिख रहा है वो भी आप पूरी तरह से नहीं खोल पा रहे हो क्योंकि बारिश का पानी आपको आंखें खोलने ही नहीं दे रही है। तो आप मतलब ऐसा था कि 15 सेकंड आप ऊपर देखोगे फिर नीचे देखोगे, उस तरह से हमें 4 घंटे बिताना बहुत मुश्किल हो जाता था।
0: तो मेजर प्राजक्ता आपका क्या कहना है इस बारे में, क्योंकि जैसे अगर हवा आ रही है सामने से बहुत तेज आ रही है तो आपको शायद कई बार ऐसा भी हुआ होगा डायरेक्शन चेंज करनी होगी, लंबा रास्ता भी तय करना पड़ा होगा, तो इस तरह की भी आपने समस्या देखी?
3: हमारी बोट चलती ही सिर्फ विंड पावर पे, तो हम अपना डायरेक्शन अकॉर्डिंगली चेंज ही करना पड़ता था, तो काफी बार ऐसा हुआ है कि हम बहुत नॉटिकल माइल्स दूर चले गए हैं अपने जहाँ पे हमने पहुंचना है एग्जैक्ट वे पॉइंट से, तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम कभी उल्टा भी निकल गए बिकॉज हवा ही नहीं है, तो उस टाइम पे ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन फील होता था, बट फिर हम कुछ कर नहीं सकते उस ड्यूरेशन में।
1: एक्सट्रीम देखा है हमने, एक्सट्रीम मतलब 0 हवा भी देखी है, जैसे इन्होंने बताया कि हम पीछे जा रहे हैं, पानी हमको पीछे धकेल के ले गया, और हमने 60 knots of wind मतलब ऑलमोस्ट 100+ किलोमीटर पर आर

0: का विंड भी देखा जब हमारी बोट ऑलमोस्ट पानी के अंदर जाने वाली थी, और एकदम इतनी गर्मी भी देखी है कि हम सब एकदम पसीना पसीना, और इतनी सर्दी भी देखी है कि हम हमारे हाथ जम गए।
1: ये गर्मी और सर्दी वाला मैं आपको जस्ट एक्सट्रीम का आई जस्ट वांट टू गिव अ स्मॉल दिस थिंग। सदर्न ओशन में जब हम थे, मैम ने जैसे बताया, इतनी ठंडी थी कि हमारे बोन्स तक दर्द होने लग जाते थे। आई हैव सर्वड इन थर्ड स्टेज हाई ऑल्टीट्यूड, उधर भी बहुत ठंडी होती है। आई हैव सर्वड इन लद्दाख, वहां पे मैंने ठंड देखी है, बट वो ठंड मेरे को बहुत कम लगी कम्पेयर टू वॉट वी विटनेस्ड हियर। एंड एक्सट्रीम गर्मी का मैं बताऊं, हमारे लिए पाउडर हमारा बेस्ट फ्रेंड बन गया था। हम गले से लेके एंकल तक सिर्फ पाउडर में ही होते थे।
2: आप बताएं स्क्वाड्रन लीडर वैशाली की, नाउ वुमेन आर दे आर अनस्टॉपेबल, ठीक है, तो बीइंग अ वुमन व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टी यू फेस्ड?
3: मैं फ्रेंकली ये बताना चाहूंगी, नॉट टू एग्जैजरेट, मुझे नहीं लगता ऐसा कि ऐसी कोई डिफिकल्टी आई है। जो मैंने लड़कों को करते हुए देखा है वही एग्जैक्ट चीज हमने करी है। हाँ, अगर मैं पहले से ये बना के चलती कि मैं पीरियड्स में कैसे करूंगी, मुझे एक कंफर्ट जोन चाहिए और नहीं मुझे नहाना है, अगर इफ आई एम ट्रेन्ड इन दैट मेंटालिटी एंड इफ आई कंटिन्यू टू वर्क इन दैट मेंटालिटी, ऑब्वियसली इट बी इट सेलिंग और एनी अदर एक्टिविटी, आई विल नेवर बी एबल टू डू इट। बट हम हमेशा से ट्रेन ही लड़कों के साथ हुए हैं, हम ट्रेन ही वैसे हुए हैं एज लाइक वी आर इक्वल। इट इज जस्ट अबाउट दैट मेंटल स्ट्रांगनेस टफनेस विच वी से, वो हमने कंटिन्यू रखी।
2: विंग कमांडर, जैसे आप लोग वायुसेना से हैं, आप थल सेना से हैं, तो वहाँ का भी जो कुछ अनुभव आपके सेलिंग के दौरान काम आया हो, एक्सपेडिशन में काम आया हो?
0: अगर आप अनुभव की बात करेंगे तो अनडाउटली इंडियन नेवी का पानी में बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, तो उन्होंने हमें काफी हेल्प की, गाइड किया कैसे करना है क्या करना है। इंडियन आर्मी का अगर कहेंगे तो भारत में जो सेलिंग की शुरुआत हुई थी वो इंडियन आर्मी से ही हुई थी। पहला जो दुनिया का चक्कर लगा के बोट आई थी वो इंडियन आर्मी की ही थी, तो इंडियन आर्मी के पास वो एक्सपीरियंस भी था। और अगर हम इंडियन आर्मी की बात करते हैं तो जो जिस तरीके का मेंटल और फिजिकल कंडीशनिंग इनकी होती है, अनडाउटली वो हमें रिक्वायर्ड थी, तो हमें उसी तरीके से ट्रेन किया गया। ट्रेन इस तरीके से किया गया कि हम जंग लड़ने जा रहे हैं, तो ये जो तीनों सर्विसेज का आपस में जो कोर वैल्यूज लेके टीम बना के गए थे, कहीं ना कहीं इन सब ने मिलके इस एक्सपीडिशन को सफल बनाया है।
2: तो जैसे इतनी चैलेंजेस थे इस आपाधापी में, आपने क्या अपने परिवार वालों से बात की मेजर प्राजक्ता? मतलब ऐसा भी कुछ मोमेंट आया कि शायद अब याद आ रही है उनकी?
1: हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस थे बोट पे, एक तो था हमारे पास सैटेलाइट फोन था, एंड प्लस वी हैव समथिंग नोन एज फ्लीट ब्रॉडबैंड जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है। बट एक महीने के लिए हमारे पास सिर्फ 10G

0: बिल्कुल ही नहीं है एंड बात नहीं हो पा रही है। तो रहा है, बहुत बार टाइम लगा है ऐसे कि यार घर वाले क्या सोच रहे होंगे, बट फिर उनको खुशी होती थी कि अगर कॉल नहीं आया है, बिकॉज अगर कॉल आया और अगर हमने बोला कि आज ऐसा ऐसा हो गया तो उनको और टेंशन हो जाती थी। तो इट वॉज बेटर फॉर देम कि वी हैव नॉट गिवन देम अ कॉल।
1: तो आपने वैशाली जी, आपने कभी अपने पेरेंट्स से बात की और बताया कि आज ऐसा हुआ, आपका मन किया मैं
0: नहीं,
1: बताऊं?
0: बिल्कुल भी नहीं। व्हाट हैपेंस ऑन द बोर्ड स्टेज ऑन द बोर्ड।
1: तो स्ट्रॉन्ग लेडी, मतलब ये है नारी शक्ति, आज की नारी है जो अपने एक्सपीरियंस को, अपने साहस को साथ लेते हुए अकेले लड़ना जानती है और अकेले चलना जानती है। टीम भावना जब हो तो उसके साथ सबको लेकर साथ चलते हैं। मतलब आपका पड़ाव भी था, जैसे पोर्ट कॉल कहते हैं, जिसको 4 देशों में रुका,
0: जी
1: तो उस दौरान क्या किया गया, कैसा आपको, क्योंकि आप ऐतिहासिक अभियान पर थी, तो उस समय कैसा गर्व की भावना आप में आई?
2: देखिए, पोर्ट ऑफ कॉल जो हमने हॉल्ट्स लिए थे, जैसे हमने आपको अपनी बोट के बारे में बताया कि लिमिटेड स्पेस है और एक्सपीडिशन बहुत लंबा था, तो उसको मद्देनजर रखते हुए बोट के जो रिपेयर, रिप्लेनिशमेंट, राशनिंग एंड रेस्ट एंड रिकूप ऑफ द क्रू, ये चीज़ों को ध्यान में रख के हमने पोर्ट ऑफ कॉल्स लिए थे। अब वो जो पोर्ट ऑफ कॉल में जब आप जा रहे हैं, देखिए, जैसे हर भारतीय का सपना होता है कि जब आप अपने राष्ट्र ध्वज को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करें, तो जब हम इन 4 कंट्रीज में गए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना एंड साउथ अफ्रीका, और वहाँ पे आप अपने राष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा प्राउड मोमेंट हमने अपनी लाइफ में फील नहीं किया। जैसे जब हम अर्जेंटीना में गए थे, वहाँ पे जो उनका नेवल बैंड था, उन्होंने हमारे लिए राष्ट्रगान बजाया था, और हम सब की आंखों में गर्व था और खुशी के आंसू थे कि आज हमने अपने राष्ट्र को दूसरे कंट्री में प्राउड फील कराया है। और इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहेंगे कि भारत ऑफशोर सेलिंग जैसे इस तरीके के एक्सपीडिशंस में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कल्चर नहीं है, और फॉरेन कंट्रीज में इसका बहुत कल्चर है। तो आप इंडिया से उनके कंट्री में जा रहे हो, और हमने किया ये फर्स्ट एवर ट्राई सर्विसेज, तो वो जो लोग थे वो हक्के बक्के थे कि इंडिया में विमेन को पूरे दुनिया का चक्कर लगाने भेज दिया। तो वो जो एक स्टेटमेंट होता है ना कि हम अपने कंट्री को एज अ विमेन रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं जो उनके देश ने भी नहीं की, वो अमेज थे। तो वो फीलिंग जो होती है कि आई एम अ इंडियन एंड आई एम हियर रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री, ये एक लाइफ लॉन्ग फीलिंग और एहसास है जो हम पूरी जिंदगी अपने साथ रखेंगे।
1: आपने एहसास उस समय फील किया, आप मुझे बता रही है, मतलब आई हैव गूज़बम्प्स कि आप सोचो आपको कितना अच्छा लगा होगा। और जैसे वैशाली जी खुशी के आंसू कह रहे थे, मतलब खुशी के आंसू आए, दर्द से और कठिनाई से चुनौतियों का सामना करते हुए वो आंसू नहीं आए।
0: उसके कभी नहीं।
1: नानी संदेह साहस का, आपने आत्मविश्वास का परिचय दिया इस अभियान में, लेकिन जो सबसे अच्छी बात थी वो मरीन पोल्यूशन को लेकर, आप बताएं मेजर प्राजक्ता किन किन बातों का ध्यान रखा?
0: सो मेनली हमारा जो वेस्टेज होता था वॉज आप मान लो सैनिटरी वेस्ट वन, एंड मेजरली इट यूज टू बी हमारा फूड या जो भी हम पानी पी रहे हैं। तो हमारे पास प्लास्टिक वाटर बॉटल्स होती थी, तो हम उसको क्रश करते थे। अब एंड उसको हम हमारे पास अभी जब हम हर एक पोर्ट ऑफ कॉल पे पहुंचते थे, तो हमारे पास 4 बड़े बड़े गार्बेज बैग्स भर जाते थे, क्योंकि हम फेंकते नहीं थे वो प्लास्टिक को पानी में। एंड जब हम पोर्ट ऑफ कॉल पे पहुंचते थे, वहां पे हम डिस्पोज ऑफ करते थे।
1: तो ये बहुत बड़ा संदेश है, मतलब सभी के लिए। जी वैशाली जी, 314 दिन लंबा आपका ये एक्सपीडिशन था, तो उस दौरान ऐसा कुछ मेमोरेबल आपका जो क्षण रहा हो, यादगार क्षण जो आप बताना चाहें?
3: बहुत सारे ऐसे दिन होते थे, वेदर खराब है, कभी तबीयत खराब है, कभी कुछ टूट गया है, कभी बादल है, बारिश हो रही है कंटिन्यूअसली, वो लगातार चलता रहता था। तो जो मिजरी है ना, वो इतनी कॉमन हो गई थी कि वो बुरा नहीं लगता था। लेकिन एक दिन जिस दिन सूरज निकलता था और हवा बिल्कुल एप्ट जो बोलते हैं ना कि ना कम है ना ज्यादा है, जो एंजॉय करने लायक वो हवा है वो होती थी, वो मुझे याद है, वो सनसेट, वो हाथ में एक कॉफी और गाना, क्योंकि उस दिन धूप निकली थी तो हमारे पास पावर थी कि हम एक गाना सुन सके, वो एक 5-10 मिनट का जो टाइम था। और बोट बहुत ही अच्छी स्पीड में चल रही है, वेदर खराब नहीं है, क्रैश नहीं हो रही, टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो रही, वो दिन बहुत ही अच्छा यादगार दिन था, और वो मेरे ख्याल से वो लाइफ लॉन्ग आगे जाएगा।
1: आपका लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस, ऐसा कुछ मोमेंट जो यहाँ रहा हो?
0: हम मैम और मैं दोनों साथ में ही थे उस टाइम पे, एंड दिस वॉज वेन वी वर कमिंग टू मुंबई फ्रॉम केप टाउन। एंड मॉर्निंग आई थिंक 5:30, 6 o'clock की बात है,

0: होराइजन पे सनराइज होता हुआ दिख रहा है एंड ऑल ऑफ अ सडन मे को आवाज आती है, बहुत कुछ तो उछल रहा है पानी में और बहुत ही दूर है ये, क्योंकि एकदम शांत है, हवा भी नहीं चल रही थी उस टाइम पे. तो दूर हमने देखा ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ डॉल्फिन्स, एक लाइन से हमें दिख रहा है कि हाँ कुछ तो उछलता उछलता उछलता हमारे सामने से वो ऐसे निकले. दे आर प्रोबेबली माइग्रेटिंग, क्योंकि इतने सारे थे, हमने कभी इतने सारे देखे ही नहीं है.
1: सच अ ब्यूटीफुल
0: एक्सपीरियंस.
1: तो मैं आपसे बस ये जानना चाहूंगी कि आप आज की पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहें?
2: मेरे हिसाब से ये कि जिंदगी में सपने देखना बहुत जरूरी होता है और सपने सच भी होते हैं, बस आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए.
1: वैशाली जी, जो सरकार है वो महिला नेतृत्व विकास पर जोर दे रही है और वो हर फील्ड में दिख रहा है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
3: लड़के लड़कियां, मैं सबके लिए मेरा एक ही संदेश है, फौज ज्वाइन करनी चाहिए, बी इट आर्मी, नेवी और द एयरफोर्स. किसी को भी सर्व करो, यू सर्व द नेशन, यू कम, यू एक्सपीरियंस दिस. सो फॉर ऑल द यंगस्टर्स, लड़के लड़कियां, एवरीवन, दे शुड ज्वाइन द फोर्सेस.
1: जी, आप क्या कहना चाहेंगी मेजर प्राजक्ता, आपके शब्द?
0: आई वुड लाइक टू से कि सक्सेस कम्स विथ हार्डवर्क, परसिवेरेंस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नॉट हैविंग एन ईगो. This is something which my father used to tell me and this has stayed with me because I have a letter जो उन्होंने मेरे को दिया था एंड जब मैंने ये एक्सपीडिशन स्टार्ट किया था तो मैंने वो लेटर लेके गई थी एंड दैट इज वॉट केप्ट मी गोइंग थ्रू दिस एंटायर.
1: मतलब अच्छा था आप लोगों का एक्सपीडिशन, आप लोगों की गाथा सुनने से निसंदेह सभी को बहुत ही प्रेरणा मिलेगी, उनको भी जो आगे अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं. आप तीनों का धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट में आई, आकाशवाणी से जुड़ी और अपने अनुभव हमसे साझा किए.
4: पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ऐतिहासिक समुद्र प्रदक्षिणा अभियान का हिस्सा रही विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम के साथ विशेष बातचीत. कार्यक्रम का संचालन कर रही थीं प्रियंका अरोड़ा. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं. इस कार्यक्रम के बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं. ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com.

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में लीजिए सुनिए कृष्ण राम चौधरी का शहनाय वादन। राग है केदार, मध्यलय, छपताल और द्रुत तीन ताल में निबद्ध है।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आप सुन रहे थे कृष्ण राम चौधरी का शहनाई पे बजाया राग केदार। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
2: सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय, पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
1: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा ने इसे कल पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन

0: संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने आज विधेयक संसदीय समिति को भेजने को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। गृहमंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप लॉन्च किया। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। श्री शाह ने बताया कि करीब 63 गांवों में पुस्तकालय शुरू किए जा चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक विकास के प्रमुख इंजनों में से हैं, लेकिन निजी पूंजी आकर्षित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सहयोग्यता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। बैठक में योजना के प्रमुख पहलुओं और देश भर के विद्यार्थियों के हित में इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया गया। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। कनाग लक्ष्मी राजेंद्रन, शांतिमोल शेरजिन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं जॉयस आशिता ने रजत और कुमारेशन पद्मा गिशो निधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Parliament has passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Cooperation Muralidhar Mohol moved the bill, which aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. The legislation also allows the state governments to extend funding from the corporation to any entity engaged in cooperative development. The Parliament has also passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. The Lok Sabha had passed the legislation yesterday. The bill seeks to change the name of the state of Kerala to Keralam in the first schedule of the constitution. Both Lok Sabha and Rajya Sabha today gave their approval for referring the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. The bill aims to further amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010. The objective of the bill is to make the use of foreign contributions more transparent and accountable. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said that Home Minister Amit Shah wrote a letter to the Lok Sabha Speaker Om Birla, stating once again that he is open to having a detailed discussion on the several incidents that took place during the protest on the NEET paper leak issue. Talking to reporters in the Parliament complex, the minister said the government itself is saying that it is ready for a discussion and will provide answers, But the opposition does not want to hear the answers and is shying away from the discussion.
2: The government wants a discussion in parliament while the opposition is running away from it. This is difficult to imagine because in a parliamentary democracy, it is usually the opposition that demands a discussion and the government that responds. But here, the government itself is saying that it is ready for a discussion and will give answers, while the opposition does not want to hear those answers and is walking away. We have repeatedly said that we want a discussion, but they are not agreeing to it.
1: Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has urged Indian businesses and citizens to adopt fair trading practices, promote recycling and reuse, and encourage a circular economy while taking Indian products and services to global markets. The minister said this while addressing the inaugural ceremony of Bharatiya Vyapari Mahotsav 2026 in New Delhi today. University Grants Commission, UGC, has issued 16 Letters of Intent, LOIs, to foreign higher educational institutions from Australia, Italy, UK and the US. Minister of State for Education, Dr. Sukanta Majumdar, said this in a written reply in the Rajya Sabha today. He informed that UGC has issued LOIs to 6 foreign higher educational institutions in Karnataka, 6 in Maharashtra, 3 in Delhi NCR and 1 in Tamil Nadu. Indian Railways has approved 153 crore rupees construction project of a 4-lane road overbridge at Gairatpur-Ahmedabad section of Western Railway. The ministry said the railway bridge portion will have a total length of 106 meters. It will comprise 2 composite girders of 53 meters each. Indian Railways has also approved the provision of Kavach version 4.0 on 660 route kilometer of the Izzat Nagar division of North Eastern Railway at an estimated cost of 295 crore rupees. As part of the Har Ghar Tiranga campaign in Jammu and Kashmir, the Riyasi District Administration today organized a Tiranga boat rally in the River Chenab as part of the celebrations marking 150 years of Vande Mataram, with the aim of fostering patriotic spirit among the people ahead of the Independence Day celebrations. In Maharashtra, the campaign is gaining momentum ahead of Independence Day, with patriotic rallies, cultural programs and a range of other activities being organized across the state. The India Meteorological Department, IMD, has predicted the formation of a low-pressure area over the North Bay of Bengal in the next 12 hours, leading to extremely heavy rainfall expected in Odisha and Gangetic, West Bengal, today and tomorrow. And that is the end of this news bulletin.
3: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा यहीं पर समाप्त होती है। कल प्रातःकालीन सभा में हम आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए। जय हिंद।